0: देश में इमरजेंसी लगा देता है वो अच्छा बता दीजिए।
1: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
2: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
3: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
4: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
5: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
6: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
7: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
8: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
9: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले, और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेज भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
7: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
10: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
8: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
11: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिरोज सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो FIR किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
7: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी FIR वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि CJP के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
12: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है। उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे, मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाए हिंद कर रहा होगा ना, तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
13: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
7: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
14: हमारे 75-year-old प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे रहे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
7: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
15: नीतीश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतीश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया था? अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई

0: जो ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
1: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
2: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीटी का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
1: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
3: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज है आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज है और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
1: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
4: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
1: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
3: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
1: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
5: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें जो आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग के कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको

0: फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
1: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
2: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी, आज तक।
3: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक, भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
4: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
5: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो, सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
4: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
6: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
4: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी टीडीपीएल परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
7: टीडीपीएल एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ, कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है? तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है।
4: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर छह छह सात सात बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
8: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली, हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
9: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
4: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
10: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
4: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है, और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
5: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
11: पूरा लिपा पोती हो और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
4: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
3: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी लोकसभा में चर्चा, कल रात 11 बजे तक चली बहस, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। प्रहलाद जोशी की प्रियंका पर टिप्पणी पर मचा घमासान, बीजेपी ने मांगा सबूत नहीं तो माफी मांगने की कही बात, सदन की कार्यवाही से हटाया गया बयान। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में 1 घंटे से ज्यादा तक चली बैठक, नेतन्याहू ने मीटिंग को बताया बेहतरीन, यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी मिले ट्रंप।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह 6 बजे की 6 ताजा खबरों के साथ हम आपके साथ हैं। और लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप अगले एक घंटे में आपको कौन कौन सी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल पर, आज लोकसभा में चर्चा का दूसरा सत्र है, दूसरा राउंड है, और राहुल गांधी भी आज दोपहर इस सत्र में चर्चा के दौरान हिस्सा लेंगे। दूसरी खबर आपको दिखाएंगे, कल चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी के किस बयान से जमकर हंगामा हुआ। तीसरी खबर यह भी होगी कि संसद में गौमूत्र विशेषज्ञ वाले बयान पर मचे सियासी घमासान की। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कांग्रेस जनता पार्टी ने अब सरकार को कौन सा अल्टीमेटम दिया है, तो ये भी आपको दिखाएंगे कि कहां किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, सड़क पर ही खाना बनाने बैठ गए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे मौसम का हाल, कैसे मौसम विभाग ने बताया है कहां कहां है बारिश का अलर्ट, कहां कहां है कुदरत का कहर। तो चलिए खबरों के विस्तार से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर आज भी चर्चा होगी। कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिल में चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और इस बिल पर होने वाली बहस में लगभग दोपहर के 12:30 बजे, जो अभी मौजूदा जानकारी है, कि राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख सकते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग भी हो सकती है, जिसके बाद लोकसभा से इस बिल को राज्यसभा में लाने की तैयारी है। सरकार की पूरी कोशिश है कि संसद के इसी सत्र में इस कानून को राज्यसभा में भी ले आया जाए। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर कल चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर के तंज कसा।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो बढ़कर 6,30,00,000 हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7,00,000 से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अप्लॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: तो संसद में आज भी सेंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी, लेकिन अब आगे बात करेंगे मंत्री प्रहलाद जोशी की, अब वो शिक्षा मंत्री भी हैं। प्रियंका की टिप्पणी को लेकर के मचे विवाद के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर संसद में टिप्पणी की थी, जिसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विवाद के बाद प्रियंका गांधी के बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन बाहर आकर के प्रियंका वही बयान फिर देती हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। इस बात का विरोध करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। तो अब प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, उन पर प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर के भी संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाई पावर टास्क फोर्स पर सियासी घमासान मचा है। तो अब प्रहलाद जोशी के ऊपर दिया गया प्रियंका गांधी का बयान एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। अब इसको लेकर के भी क्या आज संसद में भी हंगामा होगा, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी।
3: देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने
10: प्रियंका जी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर।
11: मैं ये मानता हूँ कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
12: प्रियंका गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। विरोध के बाद सदन की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी।
3: एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं।
12: मामला बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई।
3: मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई।
12: प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने संसद में विरोध किया। किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका से सबूत देने और माफी मांगने की मांग की।
10: ऑथेंटिकेट करना चाहिए आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है, कुछ भी बोल के चल सकता है क्या?
12: प्रहलाद जोशी के सबूत मांगने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जल्द सबूत दूंगी। वहीं प्रियंका के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर बेहद तीखा हमला किया।
13: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थी अ मैन देन समबडी हु says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange.
12: अब देखना होगा, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर क्या आज भी सियासी तनातनी देखने को मिलती है? आज तक ब्यूरो।
0: और अब परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स पर मची सियासत की। प्रियंका गांधी ने हाई पावर टास्क फोर्स पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी पर तंज कसा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि गौमूत्र विशेषज्ञ पर उनकी टिप्पणी काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक वैज्ञानिक का उपहास उड़ाया है जो कांग्रेस करती रही है।
3: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
10: अरे
3: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
14: मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
0: और अब बात करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी की, जिसने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर के लिखित गारंटी मिलती है तो वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा सरकार लिखित गारंटी दे। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बयान को कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर नहीं है उन्हें मत छोड़िए, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी ने फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जो वादा था उसे पूरा किया जाए, अगर लिखित गारंटी सरकार नहीं देती है तो फिर से प्रदर्शन हो सकते हैं।
15: हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में, अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे।
0: तो कई बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों में जैसे कि सरकार ने वादा किया था छात्रों पर दर्ज मुकदमे खासकर 20 जुलाई के दिन के वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे ने अपनी बात कही, विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी, बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर केस दर्ज किए गए थे उसे वापस लिए जाएंगे। तो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
2: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन ले जाए। बस हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो के वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा, अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे, मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
6: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
0: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
7: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
0: वही लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
8: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या एआई से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
0: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
9: और अब बात करेंगे भोपाल में किसानों के प्रदर्शन की। मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल की सीमा पर बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद किसान होशंगाबाद में रोड पर ही डट गए हैं। रात को सड़क पर खाना बनाया। किसानों का कहना है कि जब किसान ही भूखा रहेगा तो प्रदर्शन कैसे करेगा, इसलिए वे अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर आए हैं। किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात एक घंटे तक बैठक चली जो कि बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार का एक सप्ताह का समय देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
0: भोपाल में किसानों ने खोला मोर्चा। बीच सड़क पर डटे हजारों किसान,
10: किसान जो है वो यहाँ पे बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ गए हैं।
0: मुख्यमंत्री आवास जाने पर अड़े किसान। एमपी में मूंग की फसल की सरकारी खरीद की मांग को लेकर अब किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। किसानों का भोपाल कूच जब राजधानी के बॉर्डर पहुंचा तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। किसानों को आगे न जाने देने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ साथ बस भी लगा दी, जिससे किसान आगे न बढ़ पाए।
10: किसानों को इससे आगे नहीं जाने देना है, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन किसानों को यहाँ बैरिकेड पे रोक दिया है और आगे जाने की फिलहाल मनाही है।
0: पुलिस के रोके जाने पर किसानों ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया और सड़कों पर ही खाना बनाने बैठ गए।
10: दिन भर से थके हारे किसान भोपाल में जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है रात को अब खाने की भी जरूरत है और खाने की तैयारी भी किसान अपने साथ करके आए हैं। और मध्य प्रदेश का मशहूर जो पकवान है दाल बाटी और दाल बाफले, वो भोपाल की सड़कों पर अब किसान इसी तरीके से बैठ के तैयार कर रहे हैं। उपले तैयार है गोबर के, उनके जरिए इन बाफलों को बाटियों को सेका जाएगा और इन कंडों में फिर बनने के बाद जो दाल बाफले हैं वो यही किसानों को परोसा जाएगा।
0: सड़क पर बैठे किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो हटने वाले नहीं।
11: देखिए हम तो रात भर के हिसाब से, हम तो 15 दिन के हिसाब से आए हैं और जो हमारी सरकार से मांगे हैं वो मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस होशंगाबाद रोड से हिलने वाले नहीं है। सरकार के कान में जू नहीं गिंज रही है। आप किसानों को अन्नदाता बोलते हो परंतु 200 किलोमीटर दूर से पैदल से चलकर आ रहा किसान, आप लोग यहाँ सीएम हाउस से यहाँ तक नहीं आ पाए, आप हमारी मांगे नहीं सुन सकते और अन्नदाता आज रोड पे है।
0: किसानों का कहना है कि राज्य सरकार की मौजूदा खरीदी नीति से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात एक घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। अब देखना होगा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे किसानों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: चलिए बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश में 29 तारीख के बाद लगातार, और वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 तारीख और गुजरात के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। मानसून अब मध्य भारत में सक्रिय हो रहा है। इसी के साथ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
13: कौन हो सकते हैं आपके गुरु? गुरु होने के बारे में शास्त्र क्या कहता है? गुरु की पूजा कैसे करें? और अगर गुरु नहीं है तो गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
14: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
15: I have no idea how this election is going to play out,
14: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: एनटी पेपर लीक बिल पर आज भी लोकसभा में चर्चा, कल रात 11 बजे तक चली बहस, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। प्रहलाद जोशी की प्रियंका पर टिप्पणी पर मचा घमासान, बीजेपी ने मांगा सबूत, नहीं तो माफी मांगने की कही बात, सदन की कार्यवाही से हटाया गया बयान। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में एक घंटे से ज्यादा तक चली बैठक, नेतन्याहू ने मीटिंग को बताया बेहतरीन, यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी मिले ट्रंप। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 पहुंची, शिवसागर में 7 नई मौतें, 3,32,000 लोग अभी भी प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी, 7 जिलों के 3,32,000 लोग प्रभावित हुए हैं, 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल जलमग्न हुई। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की लोगों से मदद की अपील। कुलगाम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, कई घर जलमग्न, एसडीआरएफ ने सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से तबाही, एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त, राहत बचाव अभियान जारी। नागालैंड के कोहिमा और दिमापुर से बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना ने कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मुख्य सड़कें पानी में डूबी, कई गांवों का संपर्क टूटा। फरीदकोट में आधे घंटे की वर्षा से जगह जगह जल भरा हुआ, पानी में कई गाड़ियां डूबी। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश का कहर देखने को मिला, बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मॉनसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का चेनाब रूल पार करते हुए नजारा, बेहद मनमोहक नजर आई बादलों के बीच दौड़ती ट्रेन। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ, भूस्खलन की लाइव तस्वीरें वायरल हुई, फिलहाल महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया है। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी चेतावनी के स्तर को पार कर 294 मीटर के खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। बागेश्वर में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी उफान पर है, तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें बंद हुई हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, लड़कियों को बचाने गई थी महिलाएं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। राजधानी में बारिश मुसीबत बन गई, कनॉट प्लेस से लेकर के मिंटो रोड तक सारे इलाके पानी पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई, पचकुया रोड समेत कई इलाके में बारिश से परेशानी बढ़ी, बादलों की बरसात से राजधानी बेहाल हुई, आईटीओ समेत कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, ट्रैफिक जाम से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, पश्चिमी दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हुए, कई दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई, गंदे पानी से होकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, कांवड़ मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर देखने को मिली, और औराई कटरा गया घाट में बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन की लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में बारिश के बाद जलभराव के बीच हादसा हो गया, पानी से भरे रास्ते से गुजरते समय बिजली का झटका लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत हो गई। घटना के बाद एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, छात्रों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली, घरों स्कूलों में पानी भर गया, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। खबरें विस्तार से और बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जिसका दूसरा सप्ताह चल रहा है और तीसरे दिन लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े मामलों पर चर्चा जारी रहेगी। आज भी एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा होगी। बीते दिन भी दोपहर 2 बजे से लेकर के रात के 11 बजे यानी लगातार 9 घंटे बिल पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक 12:30 बजे राहुल सदन में अपनी बात रखेंगे, जहां पर वो बोलेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद इस बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा से बिल पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में भी लाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर कल चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर के तंज कसा।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रीइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
0: तो एक तरफ सदन में चर्चा हो रही थी एंटी पेपर लीक बिल पर, लेकिन इसी चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। तो बात करेंगे शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर मचे विवाद की। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर संसद में टिप्पणी की, जिसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विवाद के बाद प्रियंका गांधी के बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन बाहर आकर प्रियंका फिर बयान देती हैं। उन्होंने कहा

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
2: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज मैं, कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन ले जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर उस सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा, अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाए हिंद कर रहा होगा ना, तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
6: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर

0: किया हुआ है, हाफ मर्डर किया हुआ, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
1: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
2: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
1: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
3: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
1: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: बुलेट में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: कौन हो सकते हैं आपके गुरु? गुरु होने के बारे में शास्त्र क्या कहता है? गुरु की पूजा कैसे करें? और अगर गुरु नहीं हैं, तो गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
7: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एनडी पेपर लीक बिल पर आज भी लोकसभा में चर्चा, कल रात 11 बजे तक चली बहस, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। प्रहलाद जोशी की प्रियंका पर टिप्पणी पर मचा घमासान, बीजेपी ने मांगा सबूत, नहीं तो माफी मांगने की कही बात, सदन की कार्यवाही से हटाया गया बयान। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में 1 घंटे से ज्यादा तक चली बैठक, नेतन्याहू ने मीटिंग को बताया बेहतरीन, यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी मिले ट्रंप।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शास्त्र कहता है कि देवी देवताओं, भगवान, यहां तक कि ईश्वर से भी बड़ा होता है गुरु। और भारतीय परंपरा में हमारा पूरा एक दिन, एक सिस्टम गुरु को समर्पित है और वक्त होता है गुरु पूर्णिमा का। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हम बात करेंगे गुरु की महिमा के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 8:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 3:37 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व से आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा की जाती है और आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु को दक्षिणा, फूल, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य गुरु पूर्णिमा पर अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। अपने गुरु की पूजा उपासना करके, गुरु के निर्देशों का पालन करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। और जैसा आपको पहले भी बताया कि शास्त्र कहता है कि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, जो काम ईश्वर नहीं कर सकता वो गुरु रूप में आ करके अपने शिष्यों के लिए कर देता है। गुरु के महत्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए विशेष होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, एक बड़ा प्रश्न है कि गुरु बनाया किसको जाए, कौन गुरु हो सकता है, जो थोड़ा ज्ञान दे, जो थोड़ी अच्छी बातें करे, क्या वही गुरु हो सकता है या कोई और भी गुरु हो सकता है। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, वो बहुत आंशिक अर्थों में, बहुत नॉमिनल परिभाषा में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सके, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, केवल परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई आपका गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें इस प्रकार हैं: शांत, दांत, कुलीन, विशुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह की शक्ति रखने वाला। इन शक्तियों से युक्त व्यक्ति को शास्त्र गुरु कहता है। गुरु की जब आपको प्राप्ति हो जाए, अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों के बाद अगर आपको गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। सद्गुरु को अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, सद्गुरु केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। फिर भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। फिर बता दूं, ईश्वर जब मानव के शरीर में प्रकट होते हैं, मानव के शरीर में
अवतरित होते हैं तब वो गुरु रूप में अपने शिष्यों को ध्यान देते हैं और अपने शिष्यों को मुक्ति देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। सामान्य थोड़े से ज्ञान वाला व्यक्ति या थोड़ी सी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भले ही आपको आकर्षित करता हो लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पूनम रावत ने हमें लिखा है और ये देहरादून से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 15 मार्च 1993, जन्म का समय शाम के 6:40, जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी पुत्री की शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनका विवाह साल 2027 में होगा। साल 2027 के जनवरी से जून का समय एक अच्छा समय है जिसमें इनके विवाह की स्थितियां बन रही हैं। जब भी शादी करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा, कुंडली मिला लीजिएगा। आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र हो बेहतर हो,
इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण कराएं, सुबह और शाम उनको बोलिए कि वो 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आज गुरु पूर्णिमा का महान अवसर है और हम सबको आज अपने गुरु की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो गुरु की उपासना कैसे करेंगे? अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए और पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र अर्पित करिएगा और यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा भी अर्पित करिएगा और इसके बाद गुरु को साष्टांग प्रणाम करिएगा और गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा। आप चाहें तो गुरु की पूजा और गुरु की वंदना भी कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु की वंदना करें और गुरु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरा दायित्व स्वीकार करिए। गुरु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, संपत्ति की समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आप काफी समय से गुरु प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके गुरु नहीं हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, हर गुरु के पीछे अगर वो वास्तविक गुरु है तो उसके पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही विद्यमान हैं। इसीलिए अगर गुरु ना हो आपके तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान शिव के अलावा श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जी को भी जगत गुरु माना जाता है, तो भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए करिए और मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपको फिर बता दें, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं मानवीय शरीर में। इसीलिए ईश्वर ही गुरु के रूप में आपको सन्मार्ग दिखाते हैं, आपको सन्मार्ग पर ले जाते हैं और जन्म जन्मांतर की साधना के बाद तब जाकर इस जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, परिवार में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार और बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु बनाकर लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, गुरु का मतलब स्वयं ईश्वर है मानव शरीर में। हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता और गुरु होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना योग्यता के आप गुरु बनने का प्रयास करेंगे तो आप याद रखिए अपने शिष्य के पाप और पुण्य, उसके कर्म फल का सारा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और अपने शिष्य के कर्मों को आपको भोगना होगा, क्योंकि आपका शिष्य अपने कर्म आपको समर्पित करेगा। तो गुरु होना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। अगर आप गुरु बनते हैं तो आप अपने शिष्य के पापों और गलतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, परिवार में शुभ कार्य होगा। नंबर 4, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है
और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है।

मिलेगा आपको अपने गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो हरा

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है, आज अपने गुरु की पूजा अवश्य करिएगा और आज किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

जापान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री तनाई ताकाशी ने भूकंप में हुई मौतों की पुष्टि की है। कल जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें भारी तबाही हुई है। भूकंप का केंद्र क्यूशू आइलैंड पर कुमामोटो प्रोविंस के पास था। ये भूकंप जमीन से बेहद कम गहराई यानी 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था और इसमें तमाम इमारतें धराशायी हो गई। तो भारी तबाही जापान में देखने को मिली है। 7.1 रिक्टर पैमाने पर आया है भूकंप जिसे सीवियर भूकंप माना जाता है यानी सबसे खतरनाक स्तर की जहां से शुरुआत होती है ये बिल्कुल उस स्तर का भूकंप था। भारी तबाही हुई है, कई लोग अभी भी लापता हैं और जिस प्रोविंस में आया है उन इलाके में अब बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता इसलिए भी ज्यादा महसूस की गई क्योंकि ये इसकी गहराई बेहद कम थी, सिर्फ 10 किलोमीटर थी। क्यूशू आइलैंड का इलाका है, कुमामोटो प्रोविंस जापान का, और जापान के प्रधानमंत्री ताकाशी ने इसकी पुष्टि भी की है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें तबाही देखी जा सकती है जापान में। और ये जो ग्रामीण इलाका है जापान का, अब यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभियान काफी जोरों पर है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 के पार पहुंची। शिवसागर में 7 नई मौतें हुई, 3,32,000 लोग अभी भी प्रभावित हुए। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का कहर जारी है। 7 जिलों के 3,32,000 लोग प्रभावित होने के साथ साथ 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भी जलमग्न हो गई है। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने लोगों से इसमें मदद की अपील की है। वहीं कुलगाम में भी बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, कई घर जलमग्न हो गए। एसडीआरएफ ने फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई, एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई। राहत बचाव कार्य अभियान जारी है। नागालैंड के कोहिमा और दिमापुर से बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय वायुसेना ने कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्य सड़क के पानी में डूबी कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। फरीदकोट में आधे घंटे की बरसात के बाद जगह जगह जल भराव हो गया, पानी में कई गाड़ियां डूबती नजर आई। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर देखने को मिला, बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मॉनसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब पुल पार करते हुए नजारे को शेयर किया। बेहद मनमोहक नजर आई बादलों के बीच दौड़ती वंदे भारत ट्रेन। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ, सामने आई भूस्खलन की लाइव तस्वीरें। फिलहाल मार्ग को बंद किया गया है। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार में भी तेज बारिश होने के चलते कई डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते गंगा नदी चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है। 294 मीटर है खतरे का निशान। बागेश्वर में भी पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी उफान पर है। तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें इलाके में बंद हो गई है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। लड़कियों को बचाने गई थी ये महिलाएं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, कांवड़ मार्ग समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर है और आई कटरा गया घाट में बाढ़ का खतरा मंडराया, प्रशासन की लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में बारिश के बाद भारी जल भराव के बीच बड़ा हादसा हुआ, पानी से भरे रास्ते से गुजरते समय बिजली का झटका लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत। के बाद एबीपीपी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली, घरों स्कूलों में पानी भरा, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भोपाल में किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, सीएम हाउस जाते वक्त उन्हें रोक दिया गया। पुलिस की घेराबंदी तोड़कर किसान भोपाल पहुंचे, सावरकर सेतु पर अब उन्होंने डेरा डाल दिया है। मूंग के एमएसपी खरीद की मांग पर किसान अड़ गए हैं, सरकार के साथ बातचीत पहले दौर की बेनतीजा रही। भोपाल के वीर सावरकर सेतु पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, सड़क पर कंडों में दाल बाटी बनाई भूख, कहा भूखे रहकर आंदोलन नहीं होगा। भोपाल में सड़क पर दाल बाटी बनाकर डटे हैं किसान, शिवराज सिंह चौहान सीएम मोहन यादव को खाने पर आने का न्योता दिया। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने एक्शन लिया है, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई के चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल हैं, चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में। 5,000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह हैं, 422 दस्तावेज हैं, 43 सबूतों का भी सीबीआई ने जिक्र किया है। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गए एसआईटी, अन्य संदिग्धों की दबिश भी जारी है। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मामला सामने आया। मानसून सत्र में टी पेपर लीक बिल पर आज दोपहर 12 बजे फिर चर्चा शुरू होगी, करीब 12:30 बजे राहुल गांधी भी बोलेंगे। दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी, पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी दी, कहा अगर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन होगा। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव, नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनको रिहाई मिली। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिली, राखी के त्यौहार पर
पहली किश्त दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए रिलीज होगी। 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इंडिया और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं। धार के भूसाला विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी। वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज अदालत में सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ मित्रा की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अंडे फेंके जाने की घटनाओं के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने याचिका डाली थी। आज सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे और आशीर्वाद मिलेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है। नो कैश नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू है। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने के कारण जान गंवाने वाले पीएचडी स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने अपना इलेक्ट्रीशियन की नौकरी दे दी है। परिवार को 16 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद भी इसमें मौजूद रहे। नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बांकीपुर चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी यहां चर्चा हुई। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूल में जल भराव में कई बच्चे फंस गए। राहत बचाव दल ने रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुणे के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। अचानक बाइक फिसल गई। तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी। मौके पर दो सगे भाइयों की जान गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन की घटना हुई। उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारकर करीब 500 मीटर तक घसीटा। आरोपी चालक गिरफ्तार किया गया। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हुआ। रस्सी से बांधकर रखने के बाद वन विभाग ने इसे रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर फैला सरसों का तेल भरने से उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सूरत में 2,67,00,000 का सोना चोरी कांड का खुलासा हुआ। शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने चोरी की। मालिक पिता पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल पंप से हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध। पुलिस ने दोनों को आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अम्बेडकर अस्पताल में भीषण आग लग गई। आनंद फान में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिरी 4th क्लास की छात्रा। स्कूल से घर लौटते समय हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार पर भाग रहा प्रेमी युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटा। गुस्साए लोगों ने पिटाई की। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभराकर एक डिवाइडर गिर गया। एक शख्स इसमें घायल हो गया। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोपी वर्षा रानी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगरा में ताजमहल में दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक पर बंदर ने हमला किया। एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे की देरी हुई। बेगूसराय में ग्रामीणों को पिस्तल लहराकर धमका रहा था एक युवक। गांव वालों ने पकड़ा, जमकर पीटा। पुलिस ने 1 कट्टा और 5 गोली के साथ उसे गिरफ्तार भी किया। संभल में बारिश से बचते समय मिट्टी डालते समय एक हादसा हो गया। कच्चे मकान की छत गिरने से एक बच्ची समेत महिला की मौत हो गई। 5 इस हादसे में घायल हो गए हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल मिले हैं। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। सबसे ज्यादा 7 मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में भारत ने जीते हैं। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल जीता। 69 किलो वेट में कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट कुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 3 और मेडल अब पक्के हो चुके हैं। बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया गांगस और जादूमणि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। सावन शुरू होने से पहले ही नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग। हरिद्वार लाई जा रही है। नोटों से बनी कांवड़ अब आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस कांवड़ में 100 से लेकर 50 रुपए, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल है। बारिश से नोटों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए कांवड़ पर पॉलीथीन का कवर भी लगाया गया है। 9 लोगों ने मिलकर एक खास कांवड़ बनाई। शिवालय में अर्पित किए जाएंगे कांवड़ से लगे नोट। इसी राशि से भंडारा भी आयोजित होगा। सावन मेला कंट्रोल रूम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस अफसरों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने संवाद किया। सुरक्षा, यातायात, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर खोसला का खोसला 2 की स्टारकास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्ट्रेस सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहानी 3 में यामी गौतम की एंट्री हो चुकी है। विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर। 10 साल बाद आ रहा है पार्ट 3।
दीपक तिवारी की गुजराती फिल्म गेट सेट गो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है 7 अगस्त 2026 को फिल्म दस्तक देगी। मार्वल फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाकेदार तमिल एंथम रिलीज हो गया। दुनिया भर में 31 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान

ईरान ने हॉर्मुज मुद्दे पर सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया। वाशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग में समारोह में पूर्व सेनेटर लिंडसे ग्राहम को दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिकी सांसदों ने अंतिम विदाई दी। 11 जुलाई को दक्षिण कैरोलिना में हुआ निधन। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस का मॉस्को में जोरदार स्वागत हुआ। रूसी सेना प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस ने भीषण हमला किया। कई घर तबाह हुए। हमले में 3 बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। जापान के दक्षिण द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारी तबाही मची। कई जगहों पर सड़कें उखड़ी। दीवारें गिरी। 13 की मौत। स्पेन और फ्रांस में जंगलों में भीषण बड़ी आग लगी है। तेज हवाओं की वजह से अब आग भी फैल रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने कहा आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पूर्व महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान बने फ्रांस फुटबॉल टीम के नए कोच। जिदान ने पूर्व हेड कोच डिडिये की जगह ली।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

इंदौर पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। आरोपियों के नकली प्लास्टर का वीडियो वायरल। जेल पहुंचते ही आरोपियों ने उतार फेंकी पट्टियां। ये वीडियो इंदौर का है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने इलाके में जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपियों के हाथ पैर में प्लास्टर और पट्टियां बंधी दिख रही थी। इससे लोगों को लगा कि पुलिस ने इन पर कड़ा एक्शन लिया। वहीं अब ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें आरोपी जिला जेल के गेट पर खुद ही अपने हाथों और पैरों पर बंधे प्लास्टर और पट्टियों को

0: तोड़ते और फेंकते दिख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों को घायल दिखाने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वायरल वीडियो में कुछ लोग पैसों के लेन देन की बात करते सुने जा रहे हैं।
1: उनको इस पुलिस वाले ने 20,000 रुपए लेकर के, ये देखिए इनके हाथ पैर तोड़ने की शिकायत थी और ये पट्टा इसका ये यहाँ पे निकाल दिया।
0: पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 20,000 रुपए के लेन देन के चलते दिखावे के लिए प्लास्टर बांधा गया था।
2: उनको 170 बीएनएसएस के तरफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा गया था। तो उसी उपक्रम में एक वीडियो अभी सामने आया है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा रहा था उनके हाथ से पट्टी हटाई जा रही है। तो मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच गठित की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
0: वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र सरकार के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं पुल धस गया है, कहीं नदियों में जबरदस्त उफान है। और हालात ऐसे हैं कि वहां भगवान की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। ये उत्तराखंड का हाल है, वहां से आ रही तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमोली की तस्वीर। वहां देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम के करीब कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क को दोबारा खोलने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी के जलस्तर में जबरदस्त तूफान है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा नदी से करीब 30 मीटर दूर है। नदी का पानी गुफा के भीतर पहुंच चुका है, इस वजह से गुफा में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे भक्तों को गंगा जल भरने और गुफा तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाहाकार है। वहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसका असर जनजीवन पर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाड़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण 12 से अधिक गाड़ियां दब गई हैं मलबे में। लगातार हो रही बारिश के चलते भरमौर, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तडोली नाला भी उफान पर आ गया। तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी का मलबा बहा कर लाया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। चंबा में ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप, सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दे वरना मांगे माफी, प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 75। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में 1 घंटे से ज्यादा तक चली बैठक, यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी मिले ट्रंप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं और मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके साथ होंगी, आपको दिखाएंगे कि पेपर लीक पर नए बिल पर जारी चर्चा में आखिर क्या होने वाला है खबर, प्रियंका गांधी के बयान पर मचे घमासान की भी आपको पूरी डिटेल के साथ देंगे, साथ ही आपको भी बताएंगे कि सीजेपी का नया अल्टीमेटम क्या है, नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई एक्शन पर अपडेट भी आपको देंगे, साथ ही खबर भोपाल में किसानों के प्रदर्शन की भी विस्तार से बताएंगे, वही खबर होगी पहाड़ों पर जारी संकट की भी, पीओजे के प्रदर्शन पर कैसे बौखलाया है पाकिस्तान, ये डिटेल भी आपको देंगे, और बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मेडल वीरों की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुलेटिन में लोकसभा में जारी लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा की। दरअसल आज भी इस पर चर्चा होने वाली है और दोपहर 12 बजे से यह चर्चा शुरू होगी और राहुल गांधी करीब 12:30 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग हो सकती है और लोकसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले कल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे बिल पर चर्चा हुई। 12:30 बजे सदन में रख सकते हैं ये बात।

0: तो देखिए, कल हमने देखा रात 11 बजे तक चर्चा की गई है इसी मुद्दे पर, और वहीं आज 12:30 बजे राहुल गांधी बोलेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते हैं कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 से 10 साल की सजा इस बिल में रखी गई है। 5 बड़ी बातें पेपर लीक पर जो सख्त कानून बनाया गया है, 5 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगा इसको लेकर एक फैसला, वहीं 3 महीने में पुलिस और एजेंसी को जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। तो इस बिल को लेकर जो सख्त कानून बनाए गए हैं, कई राज्यों में स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 5 बड़ी बातें आप समझिए। अब इस पर चर्चा आज राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी 12:30 बजे आज इसको लेकर बोलेंगे। वहीं हाई लेवल टास्क फोर्स से परीक्षा लीक प्रूफ सामने आना चाहिए। तो ये 5 बड़ी बातें पेपर लीक पर जो सख्त कानून बनाए गए हैं उससे रिलेटेड। वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर कल चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, जैसा कि हमने देखा रात 11 बजे तक कल चर्चा हुई है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर कल चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी, और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर तंज कसा है। देखिए,
1: प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया,
2: सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, लोगों के मन में व्यापक चिंता।
3: एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसद में चर्चा,
4: कोर्ट नहीं देगा।
3: रात 11 बजे तक लोकसभा में बिल पर चली बहस,
5: ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है।
3: और करोड़ों युवाओं और बच्चों को न्याय दिलाने की कोशिश में देश की संसद। पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को लेकर कल लोकसभा में लगातार 9 घंटे तक चर्चा चली, लेकिन पास नहीं हो सका क्योंकि अभी भी कई सांसदों का बोलना बाकी है। बिल पर बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हिस्सा लेंगे। सूत्रों की माने तो राहुल करीब 12:30 बजे सदन में अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल आने से पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी।
6: इज आल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीस रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया।
3: जहां एक तरफ बिल पर चर्चा जारी रही, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर ही तंज कस दिया।
7: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
3: सरकार इस बिल को पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। वहीं विपक्ष इस पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर मचे हुए विवाद की। दरअसल बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर संसद में टिप्पणी की, जिसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विवाद के बाद प्रियंका गांधी के बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है, लेकिन बयानबाजी के बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
7: देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया?
8: इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर।
9: मैं ये मानता हूँ कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
3: प्रियंका गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। विरोध के बाद सदन की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी।
7: एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं।
3: मामला बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी।
7: मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई।
3: प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने संसद में विरोध किया। किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका से सबूत देने और माफी मांगने की मांग की।
8: ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है, कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या?
3: प्रहलाद जोशी के सबूत मांगने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जल्द सबूत दूंगी।
7: आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया, क्यों है वीडियो भी है उस समय का, और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी।
3: वहीं प्रियंका के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर बेहद तीखा हमला किया।
4: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन, देयर कैन बी नो फिल्थी अ मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट्स नीड प्रोटेक्शन, दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे, इट्स स्ट्रेंज, इट्स अ स्ट्रेंज।
3: अब देखना होगा, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर क्या आज भी सियासी तनातनी देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो उधर परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स को लेकर भी सियासत तेज है। प्रियंका गांधी ने हाई पावर टास्क फोर्स पर तंज कसते हुए कहा है कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल है। प्रियंका ने बिना नाम लिया आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी पर तंज कसा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि गौमूत्र विशेषज्ञ पर उनकी टिप्पणी काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक वैज्ञानिक का उपहास उड़ाया है जो कि कांग्रेस करती आई।
7: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
10: अरे बात
7: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
11: मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के, आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
0: बात कर लेते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की, जिसने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर लिखित गारंटी नहीं मिली तो वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उन्हें मत छोड़िए तो ये हमें मंजूर नहीं है।
12: हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा पे वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए, अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे।
0: अब बात कर लेते हैं सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस एक्शन की। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को नोटिस जारी किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर झूठा नैरेटिव फैलाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने नोटिस में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भ्रामक पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीप फेक वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीजेपी आंदोलन और हिंसा के दौरान इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में फर्जी पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीप फेक वीडियो अपलोड किए गए थे। प्रदर्शन को लेकर फैलाए गए इस भ्रामक कंटेंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। फर्जी पोस्ट, वीडियो, एडिटेड तस्वीरें हटाने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है, चलिए अब वो आपको बता देते हैं। पेपर लीक को लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाए गए उसको लेकर आरोप लगे हैं। 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म्स पर एक झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप है। डीप फेक वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। फर्जी पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें हटाने को कहा गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर ये पूरा एक्शन आपने समझा। वहीं पेपर लीक पर नए कानून की तैयारी और संसद में बिल पर चर्चा के बीच एक अहम खबर इस बार के नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई के आर्थिक अपराध शाखा ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम सबूतों को शामिल किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान पेपर लीक की पूरी कड़ी का पता लगाया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। सीबीआई ने 13 आरोपियों को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही जा रही है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल ये पूरा मामला। ऐसे में नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की तरफ से ये चार्जशीट दाखिल की गई है। अब कुछ बड़ी बातें आप इसको लेकर समझिए। इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम सामने आए हैं जिनको लेकर कार्रवाई की बात आगे कही जा रही है। एनटीए के 3 एक्सपर्ट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 13 आरोपी इसमें है। एनटीए के 3 एक्सपर्ट इसमें है। वही 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम सबूत इसमें शामिल हैं। तो चार्जशीट में क्या कुछ है वो आप समझिए। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर जो सीबीआई ने चार्जशीट जारी की है उसको लेकर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब एक और पेपर लीक से जुड़ी खबर। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की कड़ी सफलता उनको मिली है। दरअसल बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू ने मनीष कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीआरई पेपर लीक कांड में 15 मार्च 2024 की परीक्षा से पहले पटना के एक होटल में 30 अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का आरोप है। आरोपी मनीष प्रश्न पत्र के सीलबंद बक्से को बिना नुकसान पहुंचाए खोलने और दोबारा सील करने का एक्सपर्ट माना जाता है। और 2024 के बीपीएससी टीआरई पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं भोपाल में किसानों के प्रदर्शन की। दरअसल मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी तादाद में किसान भोपाल पहुंच गए हैं। बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद भी किसान रोड पर ही डटे हुए हैं और रात को सड़क पर खाना बनाया। किसानों का कहना है कि जब किसान ही भूखा रहेगा तो प्रदर्शन कैसे करेगा, इसलिए वो अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर आए हैं। वहीं किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात 1 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही है। किसानों ने सरकार का 1 सप्ताह का समय देने का प्रस्ताव भी ठुकराते हुए बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब खबर उत्तराखंड के विकास नगर की। दरअसल मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब डेंजर जोन में तब्दील हो गया है। खतरे के अलर्ट के बीच वहां पर कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। लगातार बरस रहे बादल, पहाड़ों पर कड़कड़ाती बिजली के बीच कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। हाईवे पर पहाड़ से उफनते झरने ने लोगों को डरा दिया। पानी का रौद्र रूप ऐसा कि लोगों के लिए एक कदम आगे बढ़ना भी जानलेवा साबित हो सकता था। उधर जम्मू कश्मीर में भी संकट बरकरार है। कुलगाम के देवसर इलाके में दारगंड में बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ। दरअसल बाढ़ का पानी और मलबे के चलते घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। वहीं बांदीपोरा में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

0: जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत, कुलगाम में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई मकान। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। राजौरी, पुंछ, गुरेज और उरी के बाद अब कुलगाम में भी बादल फटने से तबाही मची। ये तस्वीरें कुलगाम के देवसर के दार्दगंड की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में कई घर और मवेशी भी आए। बादल फटने की खबर मिलते ही SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुलगाम ही नहीं, बांदीपोरा में भी भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें, रिहायशी इलाके और खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। आज तक ब्यूरो।
1: POJK में लोगों पर गोलियां बरसाने में पाकिस्तान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल जून से अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। कल भी वहां पर रावलकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि POJK में प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मैं POJK के प्रदर्शनकारियों को भारत की ही श्रेणी में रखता हूं और उन्हें भी पाकिस्तान का दुश्मन मानता हूं।
2: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
3: नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
1: एक बड़ी खबर पश्चिमी एशिया में तनाव की। दरअसल सऊदी अरब ने इराक के निनवे प्रांत पे हमला किया और सऊदी के हवाई हमलों के बाद वहां पर कई धमाके भी हुए हैं। वीडियो में निनवे प्रांत में इराक की 30वीं ब्रिगेड के हेक्टेयर पर हमले के बाद के हालात दिख रहे हैं। ये तस्वीरें प्रेस टीवी के हवाले से आई है। सऊदी अरब का कहना है कि उसने ईरान समर्थित समूहों के ठिकानों पर हमले किए। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह हमले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए गए। दावों के मुताबिक ये हमले ऑयल फैसिलिटी पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिकी मिलिट्री ने भी इस पूरे हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी मिलिट्री ने बताया है कि सऊदी के साथ मिलकर किए गए हमले में कई आतंकी ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है। बात यूक्रेन की कर लेते हैं, जहां के एक पोर्ट पर 13 भारतीय नाविक फंस गए। और दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी इलाके में लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण जहाज पर सवार चालक दल की जान पर खतरा मंडरा रहा है। MV AMIR-1 नाम के मालवाहक जहाज पर कुल 15 लोग सवार थे और इनमें 13 भारतीय नाविक हैं। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार, जहाज के मालिक, संबंधित देश और साथ ही अन्य अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर चालक दल को सुरक्षित निकालने की अपील भी की है। FSUAI ने एक वीडियो शेयर कर किया है जिसमें पोर्ट के आसपास घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूनियन ने कहा है कि जहाज के बेहद ही करीब ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की जा रही है, जिससे कि चालक दल के लोग लगातार डर के माहौल में हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के रनर गुलवीर सिंह ने अपने अपने मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीते। महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में 29 वर्षीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 4 साल पहले बर्मिंघम खेलों में 71 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने वाली हरजिंदर ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। वहीं गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा भारतीय बॉक्सर्स ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम 3 और मेडल पक्के कर दिए। और चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। मीरा रोड में दिल दहला देने वाली हिट एंड रन का मामला आया सामने। उबर कार की टक्कर से जोमैटो डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल, चालक फरार। बेंगलुरु में महिला ने खुद भरा सड़क का गड्ढा, वीडियो वायरल होते हुए उठाए गए प्रशासन पर सवाल। राजस्थान के दौसा स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला फिसली, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। महाराष्ट्र के अकोला में नशे में धुत ट्रक चालक ने कार और चाय के ठेले को मारी टक्कर। पुणे में एक कार शोरूम में लगी भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक। पुणे के बारामती में अचानक से फिसली बाइक और तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी, मौके पर दो सगे भाइयों की गई जान। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार पर भाग रहा था प्रेमी, युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटता हुआ नजर आया, गुस्साए लोगों ने की पिटाई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से ही स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। सुपर एट में आ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, पर इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर क्या
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah.
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली से महाराष्ट्र तक पेपर लीक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सबूत पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
1: जब एग्जाम थी उसके दो दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे, और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए है। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भी इस चीज में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
0: वहीं रोहित पवार के आरोपों पर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है।
2: दो उमेदवार या परीक्षे मध्ये सिलेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याला वाटलं की ही परीक्षा 12-14 वर्षांनी झालेली आहे, आता पुढची 10-12 वर्ष परीक्षा होणार नाही आहे, त्यामुळे आपण या सध्याच्या जर आपण अशी तक्रार केली तर कदाचित ही परीक्षा रद्द होईल आणि फेरपरीक्षा होईल, म्हणून त्यांनी अशी मी अशी तक्रार केलेली आहे, मी अशी तक्रार माझी वापस घेतोय।
0: इसके अलावा रोहित पवार ने ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कहा है कि जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक फाइनल रिजल्ट और नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दे वरना मांगे माफी, प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया, पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 75, जम्मू कश्मीर में फिर से फटे बादल। जेके में नरसंहार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेशर्म बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन, अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 से ज्यादा जाने ली जा चुकी हैं, मुनीर आर्मी ने कहा।

असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 पहुंची। शिवसागर में 7 हुई नई मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी, 7 जिलों के 3,32,000 लोग प्रभावित, 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल जलमग्न। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन के लोगों से मदद की अपील। कुलगाम में बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़, कई घर जलमग्न हुए, एसडीआरएफ ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने की वजह से तबाही, एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त, राहत बचाव अभियान अभी भी जारी। नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर में बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना ने कई लोगों का किया सफल रेस्क्यू। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मुख्य सड़कें पानी में डूबी, कई गांव का टूटा संपर्क। फरीदकोट में आधे घंटे की वर्षा की वजह से जगह जगह पर जलभराव हुआ, पानी में डूबी गाड़ियां। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश का कहर, बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मानसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब रेल पुल पार करते हुए नजारा, बेहद मनमोहक नजर आई बादलों के बीच दौड़ती ट्रेन। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन, सामने आई भूस्खलन की लाइव तस्वीर, फिलहाल मार्ग बंद। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी चेतावनी स्तर के पार, जलस्तर 294 मीटर के खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण उफान पर सरयू और गोमती नदी, तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, लड़कियों को बचाने के लिए गई थी महिलाएं, अचानक से बढ़ा नदी का जलस्तर। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल, चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 5000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूतों का जिक्र। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गई एसआईटी, अन्य संदिग्धों की दबिश जारी। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मामला आया सामने। मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर अब आज दोपहर 12 बजे फिर से चर्चा, करीब 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, बोले इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी, पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीपके की सरकार को चेतावनी, कहा पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द होगा बड़ा प्रदर्शन। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव, नीट पे प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मिली रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के दिल्ली कैबिनेट से मिली मंजूरी, राखी के त्योहार पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग, एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला, साथ ही प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं चुनौती। धार के भोजशाला विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। वैकल्पिक नमाज स्थल की जगह को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर। कोलकाता हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई, अंडे फेंके जाने की घटनाओं के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका। आज सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का करेंगे दौरा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे और लेंगे आशीर्वाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों को किया खारिज। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा है कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है, नो कैश और नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने के कारण जान गंवाने वाले पीएचडी स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी इलेक्ट्रीशियन की नौकरी, परिवार को 16 लाख की वित्तीय मदद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, बांकीपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को एक बड़ी सफलता, बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर मनीष पर प्रश्न पत्र के सील बंद बक्से बिना नुकसान पहुंचाए खोलने और दोबारा सील करने का एक्सपर्ट होने का दावा, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से पहचान हुई। डॉक्टर मनीष पर 30 अभ्यर्थियों से लगभग 1,20,00,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा है। छात्रों के डेटा की जांच के दौरान डॉक्टर मनीष तक पहुंचने में मिली मदद। ईओयू सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मनीष अपने सहयोगियों डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। 2024 के बीपीएससी टीआरए पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पेपर लीक के मामलों पर सुनवाई के लिए बिहार में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में किया गया गठन। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर। एमपी के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र, मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की रखी मांग। प्रदर्शनकारी किसान वीर सावरकर सेतु पर जुटे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को दाल बाटी खाने का न्यौता दिया। आंदोलनकारी किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि 100% मूंग खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसला होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आज तक की खबर का एक बार फिर से हुआ असर। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर निषादपुरा रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूल में जलभराव की वजह से कई बच्चे फंसे रहे। रात बचाव दल ने रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुणे के बारामती में भीषण सड़क हादसा, अचानक से फिसली बाइक और तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी। मौके पर दो सगे भाइयों की गई जान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन की घटना। उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारकर करीब 500 मीटर तक घसीटा, आरोपी चालक गिरफ्तार। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो वायरल, रस्सी से बांधकर रखने के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला सरसों का तेल भरने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सूरत में 2,67,00,000 के सोना चोरी कांड का खुलासा। शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने की थी चोरी, मालिक पिता पुत्र समेत 4 गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध, पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में लगी भीषण आग, आनन फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिरी 4th क्लास की छात्रा, स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार कर भाग रहा था प्रेमी, युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटता नजर आया, गुस्साए लोगों ने की पिटाई। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभराकर गिरा डिवाइडर, एक शख्स घायल हुआ। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ FIR दर्ज। आगरा में ताजमहल में दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक पर बंदर का हमला, एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे की देरी हुई। बेगूसराय में ग्रामीणों को पिस्टल लहराकर धमका रहा था युवक, गांव वालों ने पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस ने 1 कट्टा और 5 गोली के साथ किया गिरफ्तार। संभल में बारिश से बचने के लिए मिट्टी डालते समय हादसा हुआ, कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से बच्ची समेत महिला की मौत, 5 घायल। सावन शुरू होने से पहले ही नजर आ रहा है कावड़ यात्रा के अलग अलग रंग। दरअसल हरिद्वार दिल्ली लाई जा रही नोटों से बनी कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। इस कावड़ में 100 से 50 से लेकर 20 और 10 के नोट शामिल। बारिश से नोटों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए कावड़ पर लगाई गई है पॉलिथीन। 9 लोगों ने मिलकर बनाई है ये खास कावड़, शिवालय में अर्पित किए जाएंगे कावड़ में लगे नोट, इसी राशि से भंडारा आयोजित होगा। सावन मेला कंट्रोल रूम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल, कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया गया संवाद, सुरक्षा यातायात तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल मिले, अब तक कुल मेडल की संख्या 12। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले, सबसे ज्यादा 7 मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में जीते। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल, 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल, इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के और 3 मेडल पक्के, बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया और जादूमणि सेमीफाइनल में पहुंचे। दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर बनी खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट का हिस्सा, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हुआ, 14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कहानी 3 में यामी गौतम की एंट्री, विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर। दीपक तिजोरी की गुजराती फिल्म गेट सेट गो का ट्रेलर रिलीज हुआ, 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी फिल्म। मार्वल फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाकेदार तमिल एंथम रिलीज, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म। अमेरिका दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से की मुलाकात, इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच ईरान, गाजा, लिबनान समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम ईरान को अब और समझौते तोड़ने नहीं दे सकते, ईरान के मामले में हमारी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत।
ईरान ने हॉर्मुज मुद्दे पर सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज जलडमरू मुद्दे में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित पर जोर दिया। कहा ओमान के साथ बातचीत पूरी तरह से द्विपक्षीय है।

आते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

संतान की चिंता हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

राशि व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, संपत्ति की समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

धनु राशि आर्थिक लाभ के योग हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते।

समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि।

के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ।
2: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका की टिप्पणी से बचा घमासान, बीजेपी का आरोप, सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दें वरना मांगे माफी। प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों से मूसलाधार बरसात का अलर्ट, पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 75, जम्मू कश्मीर में फिर फटे बादल। और पीओजेके में नरसंहार के बाद पाकिस्तान की रक्षा मंत्री का बेशर्म बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन, अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 से ज्यादा जान ले चुकी है मुनीर की सेना।

0: नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 9 बज गए मैं बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में हम देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी, विस्तार से भी होंगी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रोफेसर कामकोची की कहानी, संसद में प्रियंका ने क्यों कहा गौमूत्र विशेषज्ञ, कौन है कामकोटी, बुलेटिन में इस पर हम आपको बताएंगे। साथ ही एंटी पेपर लीक बिल पर गर्मा गर्म बहस के दौरान शायराना तंज, दिखाएंगे बहस की चुनिंदा झलकियां आपको। और कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों सताया कार्रवाई का डर, सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर कल क्या कहा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर आपके लिए। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से, एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज बहस का दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे बिल पर चर्चा शुरू होगी। दोपहर 12:30 बजे बहुत खास वक्त है, देखिए 12:30 बजे, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिल पर बोलेंगे। लेकिन कल शाम से चर्चा प्रियंका गांधी की स्पीच की है जो उन्होंने लोकसभा में। प्रियंका का 2 बयान चर्चा में है, प्रहलाद जोशी पर दिया गया बयान और पेपर लीक पर बने टास्क फोर्स के सदस्य SIT मद्रास के डायरेक्टर कामकोटी पर उनका दिया गया बयान। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी को संसद में जबरदस्त हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन बयानबाजी के बाद अब बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया?
2: इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर।
3: मैं ये मानता हूँ कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
4: प्रियंका गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी को लेकर BJP ने खड़े किए सवाल। विरोध के बाद सदन की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी,
5: एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं।
4: मामला बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी।
5: मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई।
4: प्रियंका के बयान पर BJP ने संसद में विरोध किया। किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका से सबूत देने और माफी मांगने की मांग की।
2: ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते है क्या?
4: प्रहलाद जोशी के सबूत मांगने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा जल्द सबूत दूंगी।
5: अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया है, वीडियो भी है उस समय का, और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी।
4: वहीं प्रियंका के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर बेहद तीखा हमला किया।
6: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थियर मैन देन समबडी हु says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange.
4: अब देखना होगा, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर क्या आज भी सियासी तनातनी देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में अब जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने संसदीय गरिमा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। कांग्रेस का ये दावा है कि प्रियंका ने जो कहा उसका सबूत उनके पास है।
7: तो वो समझती कि कितना महत्वपूर्ण है बिल, वो बिल पे ही नहीं बोल रहे हैं, तो अब हम क्या जवाब दें? देखिए, इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं, और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना।
8: जो बातें उन्होंने कही है उसका पूरा प्रूफ, उसका पूरा एविडेंस उनके पास है, और वो रखना भी चाहती थी, लेकिन स्पीकर इंटरवीन कर गए और जिन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है। उन्होंने एक तरह से चेयर का सम्मान करते हुए उस बात को रोक दिया, वरना एविडेंस तो है ही है उसका।
0: संविधान के अनुसार और रूल के अनुसार ही पार्लियामेंट में बोला जा सकता है, और एक गरिमा होती है किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, वो गरिमा को कभी नीचे नहीं गिराते। सदन के अंदर प्रियंका जी ने, जिसको कि एक्सपंज कर दिया है स्पीकर साहब ने, और सदन के बाहर राहुल गांधी जी ने, उनको बड़े छोटे का कोई शर्म लाज लिहाज नहीं।
9: जब प्रियंका जी ने उस विषय पे बात की और जैसे ही रिजिजू जी ने कहा कि इसके ऊपर ऑथेंटिक करें, और जैसे ही दुबे जी हमेशा की तरह उनका माइक चालू होता है खड़े हो गए, जब प्रियंका जी ने ऑथेंटिक किया तो अध्यक्ष ने कहा कि इसको जाने दीजिए। क्यों? प्रियंका जी ने तो कहा मैं उसको ऑथेंटिक कर रही हूँ। तो ये बात तो सबको पता है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनका सत्कार किसने किया, उनके साथ में कौन खड़ा था। तो ऐसा है कि जब जब ये बातें आती है, सच्चाई बोली जाती है, तो सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं भाजपा में। भाजपा सच सुन सकती है क्या?
10: आप केवल चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नए शिक्षा मंत्री के इमेज को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की। तो ऐसा स्पंज भी होना चाहिए, लेकिन इसे साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल हो, ये लोग केवल सरकार को हर समय गाली या हर समय निराधार असत्य आरोप लगा करके देश में, लेकिन इस तरह से देश की जनता समझ चुकी है।
11: यही पक्षपातपूर्ण रवैया हो जाता है। निशिकांत दुबे जी जिस प्रकार आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई ऑथेंटिकेट करने की बातें नहीं है। अब जब कांग्रेस पार्टी कोई बातों का, और हमारे पास पूरे प्रमाण है जिस प्रकार उन्होंने कहा है, जिस प्रकार चाहे वीडियो के देख लें चाहे जितने पेपर्स में देख लें, अगर उन्हें लगता है प्रहलाद जोशी जी को अगर ये कोई गलत बात हो तो उस पेपर वाले पे उनपे आप करो ना मानहानि के दावा करो।
0: और हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बात प्रियंका गांधी की चल रही है, आज भले ही राहुल गांधी के जो स्पीच है उनका इंतजार किया जाए, लेकिन कल प्रियंका गांधी का एक बयान और उसके बाद से अभी तक घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है कब तक सबूत प्रियंका गांधी दे पाएंगी इसका?
12: देखिए, क्योंकि जब उन्होंने एक बयान दिया प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको लेकर, उसके बाद जो है ये विवाद जो है वो बढ़ा निशिकांत दुबे की तरफ से, जो है जो अल्लाह नेहरू के लिए कहा गया कि एक किताब में उनके लिए कोट है, वो किताब भी लेकर आए, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जो है प्रियंका गांधी और निशिकांत दुबे ने जिन बातों का जिक्र किया था उनको एक्सपंज कर दिया है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ जो है वो अड़ी हुई है, वो ये कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जिसको कोट किया वो एक अखबार के अंदर दिया गया इंटरव्यू है, उसको उन्होंने कोट किया है। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसको कैसे लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपंज करने के बाद दोनों ही मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, और जो सदन की कार्रवाई है लगातार जो है वो प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल पर जो है वो लगातार चलती रही, और देर रात जो है हाउस स्थगित हुआ, और आज जब 12:15 पर एक बार फिर से इस चर्चा की जो है वो शुरुआत होगी, जब पेपर ले कर दिए जाएंगे, और आज राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, और जितेंद्र सिंह जो है
0: आप बने रहिए हमारे साथ हिमांशु, क्योंकि जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जितेंद्र, 12:30 का वक्त है जब राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे आज लोकसभा में, और सब इंतजार करेंगे कि राहुल आज किस तरह से सरकार को घेरते हैं, क्या उम्मीद की जाए?
4: बिल्कुल, राहुल गांधी करीब 12:30 के आसपास जो है जब चर्चा की शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के, तो उस दौरान अपनी बातें रखेंगे। राहुल गांधी की अगर पहले की स्थिति देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर के, तो लगातार वो सरकार के ऊपर हमलावर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, इसके साथ साथ जो युवाओं के ऊपर या फिर छात्रों के ऊपर पैलेट गन और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी लगातार मुखर रहे हैं। आज जब 12:30 के बाद वो लोकसभा के अंदर बोलेंगे तो ये देखना होगा कि किन बिंदुओं को उनके द्वारा इस पूरे मामले पर रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया है नए शिक्षा मंत्री को लेकर के, उसको लेकर के राहुल गांधी भी सदन के अंदर तो नहीं, संसद परिसर में जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। तो ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या लोकसभा के अंदर भी इस पूरे मुद्दे
13: मुद्दे को लेकर के एक बार फिर कहीं वो बात तो नहीं करते हैं। हालांकि पूरी जो कार्रवाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिए थे उसको एक्सपंज कर दिया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लेकिन राहुल गांधी की ओर सबकी नजरें हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पेलेट गन का मुद्दा हो, फिर या AK-47 की जो बात सीवान में लगातार उठ रही है, उस मुद्दे को लेकर के वो लगातार मुखर रहे हैं संसद।
0: और प्रियंका गांधी के बयान के बाद राहुल ने भी संसद के बाहर प्रहलाद जोशी को घेरते हुए बयान दिया था प्रियंका के समर्थन में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे सिर्फ प्रहलाद जोशी का बयान नहीं है, प्रियंका गांधी का एक और बयान विवाद में है। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने हाई पावर टास्क फोर्स पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल है। प्रियंका ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामा कोठी पर था, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया, पलटवार करते हुए कहा गौमूत्र विशेषज्ञ पर उनकी टिप्पणी काफी शर्मनाक है।
14: उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
15: तो सत्य कह दिया,
14: इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच सच है।
16: मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर IIT मद्रास के प्रोफेसर वी कामा कोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामा कोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप RSS का हो जाएंगे तो। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
0: तो कौन है प्रोफेसर कामा कोटी जिन्हें प्रियंका गांधी ने गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया? देखिए, हाल ही में पेपर लीक पर बनाए गए हाई पावर टास्क फोर्स के एक अहम सदस्य हैं प्रोफेसर कामा कोटी। वो इस वक्त IIT मद्रास के निदेशक हैं। प्रोफेसर कामा कोटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के सदस्य हैं। IIT मद्रास से ही उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS और PhD की डिग्री हासिल की है। प्रोफेसर कामा कोटी देश के अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिकों में से एक हैं। और अब बताते हैं आपको कि कामा कोटी पर प्रियंका ने गौमूत्र विशेषज्ञ वाला तंज क्यों कसा। तो देखिए, दरअसल पिछले साल जनवरी में चेन्नई में एक कार्यक्रम में कामा कोटी ने गौमूत्र के गुण बताए थे और बताया था कि गौमूत्र में रोग से लड़ने के गुण होते हैं और ये पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है, और यही एक वजह थी कि प्रियंका गांधी की तरफ से तंज कसा गया। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने थे, तीखी नोकझोंक भी होती रही और एक दूसरे पर जमकर हमला करने के सांसदों ने कविता और शेर व शायरी का खूब इस्तेमाल किया।
17: यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दे, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दे, मैं ये जो जुल्म किया गया है पैलेट गन मारकर,
18: धन्यवाद
17: मैं खत्म कर रहा हूँ, पैलेट गन मारकर चार लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
19: किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे।
20: इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है।
18: घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुकुम लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और उसी सुनिए सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू।
21: युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है।
0: तो कल बहुत शायराना माहौल रहा संसद में। और अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर लिखित गारंटी नहीं मिलती है तो वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उन्हें मत छोड़िए तो ये हमें मंजूर नहीं है।
22: हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा पे वादा आप रखिए। एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे।
0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है और जांच में यह खुलासा हुआ कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीईटी का पेपर लीक हुआ था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले जा रही है जिससे उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। और देखिए अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
23: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
24: इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रीहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में।
23: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर पार्ट और बेच रहे थे।
24: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉइज है इनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
23: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
1: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है, जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा, क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
0: और अब बात बाढ़ बारिश ही कर लेते हैं। देखिए, मानसून जमकर बरस रहा है, पहाड़ों के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानो मूसलाधार आफत बरसी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि हालात कितने खतरनाक हैं।
2: कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है, कहीं लोगों की आफत में जान है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा डर लग रहा है सड़कों पर। यह देहरादून मसूरी रोड की तस्वीरें हैं। ऊपर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इस रास्ते पर भूस्खलन हुआ तो दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी बड़ी लाइनें लग गई, घंटों तक यात्री परेशान रहे। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया। वहीं देहरादून मसूरी रोड पर ही मूसलाधार बारिश के बीच एक और बड़ा हादसा टल गया। यहां सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट पर अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गिरे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और किसी की जान नहीं गई। मसूरी से ही एक और वीडियो सामने आया है, यहां पूरा का पूरा पहाड़ ही बहकर नीचे आ गया। यह मसूरी चमसारी सड़क का वीडियो है। यह रास्ता गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने खिसक कर सड़क पर आ गई। बारिश पहाड़ों पर कहर तो मचा ही रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रही है। यह देहरादून के प्रेमनगर का वीडियो है, जहां नीचे से टॉन्स नदी बह रही है। भारी बारिश में पुल की अप्रोच रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। साल 2025 में सितंबर के महीने में देहरादून के अलग अलग इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा में यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल को फिर से तैयार करने में 16 करोड़ रुपए की लागत लगी, 10 महीने का समय लगा और 13 जुलाई 2026 को यह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सिर्फ 16 दिन के भीतर ही इस पुल की अप्रोच रोड धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। सरकार के पास वही घिसापिटा जवाब है कि जांच कराएंगे, कमी होगी तो दूर की जाएगी, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जिसने पुल को तैयार करने के लिए 10 महीने का वक्त लिया, 16 करोड़ रुपए खर्च किए और 16 दिन में ही ये गड्ढे में बदल गया।
3: देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं।
2: सिस्टम अगर ठीक से काम करता तो इस छोटे से पुल को बनाने में इतना लंबा समय नहीं लगता। मानसून आने से पहले ही ये बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में इसे खोला गया तो हादसा हो गया। वो तो गनीमत थी कि जब यह गड्ढा बना उस वक्त यहां आवाजाही नहीं थी। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: और देखिए बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा क्योंकि जगह जगह सड़कें टूट गईं, पहाड़ों पर नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर रही हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भारी बारिश की चेतावनी आगे भी जारी है।
2: पहाड़ों पर भारी बारिश कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल देती है ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा पुल है जहां मंदाकिनी नदी में ये महिलाएं फंस गई हैं। ये महिलाएं नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने के लिए यहां गई थी लेकिन अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। जिस तरफ से महिलाएं गई थी वहां पानी भर गया जिससे महिलाएं यहीं फंस कर रही।
5: तीन महिलाएं तिलवाड़ा की नदी के तट पर लकड़ी लेने गई थी तो दोनों ओर से बाढ़ आने के कारण तीनों महिलाएं यहां पर फंस गई हैं।
2: इसके बाद लोगों ने SDRF को सूचना दी। तुरंत SDRF की टीम मौके पर पहुंची। नदी के एक तरफ से छोटा सा अस्थायी पुल बनाया गया और फिर एक एक करके इन महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ क्योंकि नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था और इसी बहाव में इन महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में सारी नदियां उफान पर हैं। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। अलकनंदा का डेंजर लेवल 627 मीटर है और नदी अभी 626 मीटर तक पहुंच गई है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव की मूर्ति है वो भी नदी में डूब गई और अब तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह है प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और बगल में अलकनंदा बहती है। अलकनंदा के जल से श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा सीधे खुद ही गुफा के अंदर जलाभिषेक कर रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है क्योंकि बारिश और भूस्खलन हो रहा है, इसीलिए यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है क्योंकि कल रात ही केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी में पहाड़ी टूट गई और मलबा दो दुकानों में घुस गया जिससे कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर चमोली में देर रात से बारिश जारी है जिसकी वजह से कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। यहाँ पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़कों पर आ गई जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन कह रहा है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और सतर्क रहें। बारिश से तबाही उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ चंबा में सोमवार की रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलबा कई घरों में घुस गया। राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा वाहन दब गए जिनमें निजी कारें, मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकिलें और स्कूटी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आज तक भी
0: तो 9 बज गए में बिना ब्रेक की खबरें लगातार जारी रहेंगी। आगे दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर लेकिन उससे पहले हेडलाइंस
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप, सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दें वरना माफी मांगे। प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बरसात का अलर्ट, पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 75। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नरसंहार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेशर्म बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन, अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 से ज्यादा जानें ले चुकी है मुनीर आर्मी।

मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर आज दोपहर 12 बजे फिर चर्चा, करीब 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में सरकार पर जमकर बरसे प्रियंका गांधी, घायल छात्रों के परिजनों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा क्या जरूरत थी इतनी बर्बरता की, किसके आदेश पर कार्रवाई। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा सदन इस देश की अमानत है, किसी की जागीर नहीं, हम सभी लोगों के सेवक हैं, ये सत्ता भी उन्होंने दी। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा देश के युवाओं का भरोसा इस सिस्टम से टूट चुका, पूंजीपतियों के लोन माफी से भी कम शिक्षा बजट। डिंपल यादव ने पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 2024 में जब यह बिल पास हो गया था तब भी लीकेज क्यों हुई, ये षड्यंत्र है या फिर सरकार के सिस्टम का परमानेंट लीकेज। लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि जो चढ़ावा चोर को नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। पेपर लीक मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा, युवाओं ने सरकार झुका दी और सरकार ने प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री बचा लिया। अखिलेश के एंटी पेपर लीक बिल वाले बयान पर किरण रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया, आंदोलन के बाद बिल लेकर आना अच्छा या आंदोलन को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा। किरण रिजिजू के जवाब पर अखिलेश ने फिर किया पलटवार, कहा दिल्ली में जो हुआ वो भी इमरजेंसी से कम नहीं था, इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और इस बार भी होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला, कहा यह सरकार केवल कमेटी बनाने की मास्टर और जब गवर्नेंस फेल है तो कानून बदलने में माहिर। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने एनडीए सरकार में हुई पेपर लीक की घटनाएं गिनाई, वित्त मंत्री की नीट पेपर लीक को लेकर दिए गए बयान की भी आलोचना की। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला बोले, इमरजेंसी वाली मानसिकता देखी पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीप्त की सरकार को चेतावनी, कहा पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द होगा बड़ा प्रदर्शन। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को दिल्ली कैबिनेट से मिली मंजूरी, राखी के त्यौहार पर पहली किस्त देगी दिल्ली सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। सीजेपी नेताओं ने दिल्ली में राकेश शिटकैन से की मुलाकात, किसान छात्रों और युवाओं के संयुक्त मोर्चे की रणनीति पर चर्चा, सरकार को चारों तरफ से घेरने का किया दावा। पटना में आज बिहार कैबिनेट की बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, 5:00 बजे बैठक प्रस्तावित। बिहार में 3-4 के तहत 30,000 शिक्षक पदों पर होगी भर्ती, अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन, शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। भागीपुर रोड शो में तेजस्वी यादव का दावा, लालटेन के पक्ष में बदलाव की लहर, बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। मुंद्रा मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन पर कथित कब्जे का मामला, फर्जी ट्रांसफर और मॉर्गेज को लेकर 19 लोगों पर सीसीबी ने दर्ज की FIR। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल, चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग अभी न्यायिक हिरासत में। 5,000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज, 43 सबूतों का जिक्र। महाराष्ट्र टीएटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड ब्रजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गई एसआईटी, अन्य संदिग्धों की दबिश जारी। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मामला सामने आया। 30 जुलाई को बाकी प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग, एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला, साथ ही प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं। धार के बोचाला विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वैकल्पिक नमाज स्थल की जगह को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका है। कलकत्ता हाईकोर्ट में महुआ मोहित्रा की याचिका पर सुनवाई, अंडे फेंके जाने की घटनाओं के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका। आज सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का करेंगे दौरा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 30 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा, जनसभा की तैयारियां तेज, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संत रविदास जन्मस्थली से बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान शुरू, 27 राज्यों में पहुंचेगा सामाजिक समरसता का संदेश, 27 चुनाव से पहले दलित और युवा वर्ग पर फोकस। मेरठ में IMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा की नमाज से की तुलना, बयान पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, कार्रवाई की मांग की। आर्म्स लाइसेंस अनियमितता मामले में गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी पर 3री FIR दर्ज, पुलिस जांच में कथित रिकॉर्ड गायब होने और हथियारों के सत्यापन से जुड़े मामले सामने आए, SIT को सौंपी गई जांच। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है, नो कैश नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने के कारण जान गंवाने वाले PhD स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी इलेक्ट्रीशियन की नौकरी, परिवार को 16 लाख की वित्तीय मदद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, बाकीपुर चुनाव को लेकर रणनीति बनी। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता, BPSC शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में EOU ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया।
आरोपी डॉक्टर मनीष पर प्रश्न पत्र के सीलबंद बक्से बिना नुकसान पहुंचाए खोलने और दोबारा सील करने का एक्सपर्ट होने का दावा। डॉक्टर मनीष पर 30 अभ्यर्थियों से लगभग 1,20,00,000 रुपए वसूलने का भी आरोप। छात्रों के डेटा की जांच के दौरान डॉक्टर मनीष तक पोस्ट में मदद मिली। ईओयू सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मनीष अपने सहयोगी डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। 2024 के बीपीएससी ट्रेड पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। पेपर लीक के मामले पर सुनवाई के लिए बिहार में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना लखीसराय पूर्णिया में किया गया गठन। मध्य प्रदेश से मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर। एमपी के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र, मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की मांग। प्रदर्शनकारी किसान वीर सावरकर सेतु पर जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को दाल बाटी खाने का न्यौता दिया। आंदोलनकारी किसानों ने साफ ऐलान किया कि 100% मूंग खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसला होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आज तक की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर निषादपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अपील, श्रद्धालु परंपरागत मार्ग से ही करें यात्रा, दिल्ली देहरादून और गंगा एक्सप्रेसवे का ना करें इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, मीट दुकानदारों को दुकानें ढकने के निर्देश, खुले में मास्क रखने पर रोक। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के लिए 4,000 जवान तैनात, 9 सुपर जोन, 230 सब सेक्टर में बांटा गया पूरा इलाका सीसीटीवी से नजर। अयोध्या में पूर्व राम जन्मभूमि मंदिर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का गुरु पूजन, श्री राम मंदिर के पुजारी महंत प्रदीप दास शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना में डुबकी लगाई। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 पहुंची, शिवसागर में 7 हुई मौत, 3,32,000 लोग अभी भी परेशान। असम में बाढ़ का कहर जारी है, 7 जिलों में 3,32,000 लोग प्रभावित, 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल जलमग्न। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की लोगों से मदद की अपील। कुलगाम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, कई घर जलमग्न, एसटीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से तबाही, एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त, राहत बचाव अभियान जारी है। नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर से बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना में कई लोगों का सफल रेस्क्यू। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मुख्य सड़कें पानी में डूबी, कई गांवों का टूटा संपर्क। फरीदकोट में आधे घंटे की वर्षा से जगह जगह जलभराव, पानी में डूबी गाड़ियां। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश का कहर, बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मानसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का चुनाव, रेल पुल पर पार करते हुए नजारा बेहद मनमोहक। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन, सामने आई भूस्खलन की लाइव तस्वीरें, फिलहाल मार्ग बंद है। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी चेतावनी स्तर के पार, जलस्तर 294 मीटर के खतरे के निशान पर पहुंचा। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण उफान पर सरयू और गोमती नदी, तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, लड़कियों को बचाने गई थी महिलाएं, अचानक बढ़ गया पानी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल, अब तक कुल मेडलों की संख्या 12 हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले, सबसे ज्यादा 7 मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल, 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल, इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से 3 मेडल पक्के, बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया घांगस और जादूमणि सेमीफाइनल में। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया, सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। बिहार पुलिस ने लौटाई लोगों के चेहरे पर मुस्कान, 103 मोबाइल मालिकों के खोए हुए मोबाइल लौटा दिए, 19,25,000 रुपए की कीमत थी। आगरा में महिला ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, पति और सास ससुर पर प्रताड़ना के आरोप। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त। झारखंड के रांची पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण, ऑपरेशन जनजीवन 2 में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। यूपी में अतिक्रमण की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती, माफिया की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस रहा है। सहारनपुर में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, दोस्त निकला हत्यारा, विवाद का बदला लेने के लिए युवक की गला घोट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दहेज प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने की आत्महत्या, पति समेत ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर एफआईआर। बाराबंकी में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सड़क पर मची अफरा तफरी, सप्लाई बंद।
झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में आस्था की आड़ में चोरी। महाआरती में प्रसाद लेने के बाद श्रद्धालुओं का बैग, साइकिल और जूते लेकर फरार हुए चोर सीसीटीवी में कैद। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूल में जलभराव से कई बच्चे फंस गए। राहत बचाव दल ने सभी बच्चों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। बूढ़े के बारामती में भीषण सड़क हादसा, अचानक फिसली बाइक और तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी। मौके पर दो सगे भाइयों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन का मामला। उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, 500 मीटर तक घसीटा, आरोपी चालक गिरफ्तार। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो वायरल, रस्सी से बांध कर रखने के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला सरसों का तेल, भरने उमड़ी लोगों की भीड़। सूरत में 2,67,00,000 के सोना चोरी कांड का खुलासा। शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने की थी चोरी, मालिक पिता पुत्र समेत 4 गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज में देखे 2 संदिग्ध, पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में लगी भीषण आग, आनंद फानंद में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिरी चौथी क्लास की छात्रा, स्कूल से घर लौटते समय हादसा, रेस्क्यू जारी। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार पर भाग रहा था प्रेमी, युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटा, गुस्साए लोगों ने पिटाई की। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभरा कर गिरा डिवाइडर, एक शख्स घायल हो गया। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ FIR। आगरा में ताजमहल में दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक पर बंदर का हमला, एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे की देरी। बेगूसराय में ग्रामीणों को पिस्टल लहरा धमका रहा था युवक, गांव वालों ने पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस ने 1 कट्टा 5 गोली के साथ गिरफ्तार किया। संभल में बारिश से बचने के लिए मिट्टी डालते समय हादसा, कच्चे मकान की छत गिरने से बच्ची समेत महिला की मौत, 5 घायल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
5: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
6: वाह वाह वाह वाह।
5: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint bade aaram se.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को जेल से रावण को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी क्या ये सरकार

0: युवाओं को नकार सकती हैं।
1: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
2: तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
3: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कन्फर्म्ड है,
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं पुल धस गया है, कहीं नदियों में जबरदस्त उफान है। और हालात ऐसे हैं कि वहां भगवान की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। ये उत्तराखंड का हाल है, वहां से आ रही तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमोली की तस्वीर। वहां देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम के करीब कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क को दोबारा खोलने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी के जलस्तर में जबरदस्त तूफान है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा नदी से करीब 30 मीटर दूर है। नदी का पानी गुफा के भीतर पहुंच चुका है, इस वजह से गुफा में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे भक्तों को गंगा जल भरने और गुफा तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाहाकार है। वहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसका असर जनजीवन पर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाड़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण 12 से अधिक गाड़ियां दब गई हैं मलबे में। लगातार हो रही बारिश के चलते भरमौर, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तडोली नाला भी उफान पर आ गया। तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी का मलबा बहा कर लाया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। चंबा में ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल लयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दे वरना मांगे माफी। प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। पंजाब में फार्मासिस्ट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा गरमाया, फरीदकोट जाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस नेता चन्नी। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा लीक में सरकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग, खाना पीना और सोना सब सड़क पर। पीओके में नरसंहार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेशर्म बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन। अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 से ज्यादा जाने ले चुकी है मुनीर आर्मी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज भी संसद के हंगामेदार होने के आसार हैं। आज राहुल गांधी पेपर लीक के खिलाफ सख्त बिल पर चर्चा में शरीक होंगे। हमारी इस पर पूरी नजर रहेगी, लेकिन पहले आपको बता दें कि इसके अलावा आज क्या खास रहेगा। तो बात होगी प्रियंका गांधी के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और मूत्र विशेषज्ञ वाले बयान पर घमासान की। साथ ही बताएंगे कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों थमाया नोटिस, क्या क्या दिए निर्देश। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां किसानों ने राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास तक मार्च की तैयारी कर ली है और अब मोहन यादव सरकार तनाव में है, तो इस सब पर बात होगी।

0: प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है, कुछ भी बोल के चल सकता है क्या?
1: नहीं, वो ऑथेंटिकेट मैंने वीडियो भी है उस समय का।
2: इस नई कमेटी में तो गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
3: आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
4: बस एक घंटे बाद संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। सदन में क्या होगा इसकी वानगी बाहर ही दिखने लगी है। सरकार और विपक्ष दोनों खेमे लाम लश्कर के साथ तैयार हैं। बड़ी खबर आई है कि कल प्रियंका गांधी ने विपक्ष को धार दी और सरकार को पलटवार पर मजबूर कर दिया। शिक्षा मंत्री को घेरा, टास्क फोर्स को कटघरे में खड़ा किया। आज बारी नेता विपक्ष राहुल गांधी की है, क्योंकि आज दोपहर 12:30 बजे उनका बयान होगा, वो बोलने वाले हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर सवाल उठाए गए हैं। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया जो बाद में तो एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन उसकी वजह से बवाल काफी मचा। उधर टास्क फोर्स को भी प्रियंका गांधी ने नहीं छोड़ा, एक मेंबर पर सवाल खड़े कर दिए, उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया। और आज सबकी नजरें टिकी है राहुल गांधी के बयान पर। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कानून से ज्यादा सियासी बयान सुर्खियों में रहे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया। हंगामे के बीच प्रियंका गांधी के शब्द संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए, यानी कि उन्हें एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन संसद के बाहर विवाद और तेज हो गया। खुद प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगा दिया और प्रियंका गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग कर दी। तो प्रियंका गांधी ने सबूत पेश करने की बात कह दी। यहां तक कि सदन के बाहर भी प्रियंका ने अपने आरोप को दोहरा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर मोर्चा खोल दिया।
0: प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है, कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए।
5: और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूँ और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए
6: तैयार हूँ। चर्चा होगी,
1: आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं?
6: माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। फिर भी ये विधेयक का विषय नहीं है।
4: तो प्रियंका गांधी अपने बयान पर अड़ी रही। सदन के बाहर उन्होंने अपने आरोपों को एक बार फिर दोहराया।
1: मैम ऑथेंटिकेट करना है या अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट? मैंने वीडियो भी है उस समय का, आप समझ भी नहीं और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से।
4: राहुल गांधी ने भी प्रियंका का समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि प्रहलाद जोशी ने बलात्कारियों का बचाव किया था।
7: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थी अ मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट नीड प्रोटेक्शन। दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे। इट्स स्ट्रेंज, इट्स अ स्ट्रेंज।
4: तो प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिए बयान पर सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है।
8: बिल पे अगर बोलती तो वो समझती कि कितना महत्वपूर्ण है बिल, वो बिल पे ही नहीं बोल रहे हैं तो अब हम क्या जवाब दें? देखिए, इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं, और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना।
9: जो बातें उन्होंने कही है उसका पूरा प्रूफ, उसका पूरा एविडेंस उनके पास है, और वो रखना भी चाहती थी, लेकिन स्पीकर इंटरवीन कर गए और जिन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है। उन्होंने एक तरह से चेयर का सम्मान करते हुए उस बात को रोक दिया, वरना एविडेंस तो है ही है उसका।
10: संविधान के अनुसार और रूल के अनुसार ही पार्लियामेंट में बोला जा सकता है, और एक गरिमा होती है किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, वो गरिमा को कभी नीचे नहीं गिराते। सदन के अंदर प्रियंका जी ने, जिसको कि एक्सपंज कर दिया है स्पीकर साहब ने, और सदन के बाहर राहुल गांधी जी ने, उनको बड़े छोटे का कोई शर्म लाज लिहाज नहीं।
11: जब प्रियंका जी ने उस विषय पे बात की और जैसे ही रिजिजू जी ने कहा कि इसके ऊपर ऑथेंटिक करें, और जैसे ही दुबे जी हमेशा की तरह उनका माइक चालू होता है खड़े हो गए, जब प्रियंका जी ने ऑथेंटिक किया तो अध्यक्ष ने कहा कि इसको जाने दीजिए। क्यों? प्रियंका जी ने तो कहा मैं उसको ऑथेंटिक कर रही हूँ। तो ये बात तो सबको पता है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनका सत्कार किसने किया, उनके साथ में कौन खड़ा था। तो ऐसा है कि जब जब ये बातें आती है, सच्चाई बोली जाती है, तो सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं भाजपा में। भाजपा सच सुन सकती है क्या?
4: और आइए अब सुन लेते हैं कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं।
12: खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बात साफ हो जाती है।
4: धन्यवाद। आपको बता दें कि मुद्दा गर्माता ही जा रहा है, इस पर लगातार सियासत उबल रही है, ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या ये तनातनी और ये विवाद बढ़ेगा या चर्चा पर फोकस किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन नेता प्रतिपक्ष अपना बयान देने वाले हैं नीट पेपर लीक के मुद्दे पर, जो बेहद अहम मुद्दा है। एक बार आइए सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं।
13: मंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है बिल पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो मुद्दों को भटका करके पॉलिटिसाइज कर रहा है।
12: बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस बिल जो उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने, 20 तो पेपर 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से?
14: अखिलेश सर, जनता पार्टी फिर से कह रही है प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो है प्रोटेस्टर्स को हैरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुए सुप्रीम कोर्ट
12: में। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है।
4: धन्यवाद। तो आइए फिर से रुक करते हैं प्रियंका गांधी के बयान और उससे जुड़ी सियासत का। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी प्रियंका के बयान का विरोध किया है, तो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने निशिकांत दुबे के बयान को सामने रख दिया।
15: आप केवल चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, एक नए शिक्षा मंत्री के इमेज को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की, तो ऐसा स्पंज भी होना चाहिए। लेकिन इसे साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल हो, ये लोग केवल सरकार को हर समय गाली या हर समय निराधार असत्य आरोप लगा करके देश में, लेकिन इस तरह से देश की जनता समझ चुकी है।
16: यही पक्षपातपूर्ण रवैया हो जाता है। निशिकांत दुबे जी जिस प्रकार आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई ऑथेंटिकेट करने की बातें नहीं है। अब जब कांग्रेस पार्टी कोई बातों का, और हमारे पास पूरे प्रमाण है, जिस प्रकार उन्होंने कहा है, जिस प्रकार चाहे वीडियो के देख लें चाहे जितने पेपर्स में देख लें, अगर उन्हें लगता है प्रहलाद जोशी जी को अगर ये कोई गलत बात हो, तो उस पेपर वाले पे उन पे आप करो ना मानहानि के दावा करो।
4: तो चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा। बात कर लेते हैं पहले प्रियंका के बयान की। हिमांशु, कल जो उन्होंने कहा, हालांकि उसे एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर सियासत लगातार जारी है, क्या यही अब आगे बढ़ता रहेगा या आज हम कोई चर्चा देखेंगे सदन के अंदर?
17: देखिए, क्योंकि कल जो है रात 8 बजे के करीब जो है लोकसभा सेक्रेटरिएट के टेबल ऑफिस की तरफ से जो है वो इस जो भी कन्वर्सेशन हुई प्रियंका गांधी की तरफ से जो है शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर जो बयान दिया गया उसको एक्सपंज कर दिया गया, और उसके साथ साथ निशिकांत दुबे ने जो जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहा सदन के अंदर उसको भी एक्सपंज कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि जब रूल्स की बात आई तो प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि मैं ऑथेंटिकेट करती हूँ, स्पीकर ने कहा कि आप छोड़िए और मामले को सुलझाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है थोड़ा सा हंगामे के बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है वो आगे की तरफ चल गई और लगातार सदन की कार्रवाई चलती रही। उसके बाद किसी भी तरीके से इस मामले को नहीं उठाया गया। हाँ, सदन के बाहर जो है सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए गए कि जो कुछ प्रियंका कह रही है वो गलत है, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया जो कुछ प्रियंका गांधी कह रही है वो बिल्कुल सही है, उसको वो ऑथेंटिकेट कर सकती हैं और ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थी। तो अब देखना यह है कि इससे आज की सदन की जो कार्रवाई चलनी है उस पर किसी भी तरीके का कोई बाधा तो नहीं होगी, कोई हंगामा तो नहीं होगा, क्योंकि आज जो है इसी बिल पर जब चर्चा आगे बढ़ेगी 12:30 बजे के करीब तो राहुल गांधी जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से जो है वो वक्ता होंगे।
4: तो बिल्कुल मानशु, और इसी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह का। जितेंद्र, क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरीके से राहुल गांधी अपने बयान को आज तीखा बना सकते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे?
18: देखिए, राहुल गांधी जब से 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र चल रहा है तब से उनके तेवर जो हैं काफ़ी तीखे हैं, चाहे वो पैलेट गन का मुद्दा हो जो छात्रों के ऊपर उसका इस्तेमाल किया गया, इसके साथ साथ सीवान में जो AK-47 पुलिस के द्वारा यूज किया गया है, यही नहीं राहुल गांधी लाठी चार्ज को लेकर के भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज राहुल गांधी जब करीब 12:30 से 1 के बीच में बोलेंगे सदन के अंदर, तो उस दौरान उनके ये तीखे तेवर जो है वो सदन के अंदर भी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट को लेकर के जो यहाँ पर रेल भवन तक पहुँचे थे उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस के गोले या फिर जो तमाम चीज़ें छोड़ी गई हैं उसको लेकर के लगातार सरकार के ऊपर सवाल राहुल गांधी के द्वारा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही पेपर लीक को लेकर के पहले से ही राहुल गांधी जो युवाओं से हैं वो कई बार मिल चुके हैं, वो तमाम मुद्दे जो है उनके द्वारा इस अपने भाषण के दौरान उठाया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन के अंदर बोला था उसको हालांकि लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने सदन के बाहर संसद परिसर में वो तमाम चीजें दोहराई थी जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही थी, और उनकी बातों को उन्होंने हूबहू वैसे ही दोहराया। तो क्या आज राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को लेकर के फिर सदन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार को घेरा जाए, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर इस जो नया संशोधन विधेयक आया है इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो हैं सवाल खड़े कर चुके हैं, उसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका रहती है ये देखना होगा।
4: बिल्कुल, और हमारी नजर रहेगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। उधर पेपर लीक को रोकने के लिए बनाई गई नई कमेटी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, सदस्यों का नाम लेकर कहा कि इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता है। सबसे बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर वी कामकोटी पर किया है।
2: उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
19: तो सत्य कह दिया,
2: इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच सच है।
20: मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर IIT मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना इस चाहिए इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप RSS का हो जाएंगे तो। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
4: तो प्रोफेसर वी कामकोटी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। प्रियंका गांधी ने उन्हें गोमूत्र एक्सपर्ट कहकर बुलाया, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आखिर इससे जुड़ा विवाद है क्या? आपको समझाते हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी भारत के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस और पीएचडी की उपाधि उन्होंने ली है। आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2022 से आईआईटी मद्रास के निदेशक भी हैं। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति परियोजना से वो जुड़े हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन भी रहे हैं। पिछले साल जनवरी में चेन्नई में एक गौशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम के दौरान कामकोटी ने देसी गायों और जैविक खेती के बारे में बात करते हुए कहा कि गोमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन से जुड़े गुण होते हैं। उन्होंने एक साधु का किस्सा भी सुनाया जिनके बारे में उन्होंने कहा कि गोमूत्र पीने के बाद उनका बुखार उतर गया। तो कौन है प्रोफेसर कामकोटी जिन्हें प्रियंका गांधी ने गोमूत्र विशेषज्ञ बताया है? हाल ही में पेपर लीक पर बनाए गए हाई पावर टास्क फोर्स के एक अहम सदस्य हैं प्रोफेसर कामकोटी। वो इस वक्त आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। प्रोफेसर कामकोटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के सदस्य भी रहे हैं। तो कल प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलने की जरूरत है।
2: संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: प्रियंका गांधी ने छात्रों पर पेलेट गन दागने पर भी मोर्चा खोला।
2: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।
4: और भाषण खत्म करते करते प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि पूरा सदन खिलखिला उठा।
2: देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म।
4: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के तेवर भी कल काफी सख्त थे।
3: युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया, हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा।
4: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
21: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं,
12: लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष बोधे, अगर इमरजेंसी ने याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष बोधे ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera।
8: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: परीक्षा संशोधन बिल पर आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कल रात 11 बजे तक चली बहस, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप, सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दे वरना मांगे माफी। प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी। पंजाब में फार्मासिस्ट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा गरमाया, फरीदकोट जाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस नेता चन्नी। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक में सरकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद, 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग, खाना पीना और सोना सब सड़क पर। पीओके में नरसंहार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन। अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 से ज्यादा जाने ले चुके हैं मुनीर की सेना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या?
5: वीडियो भी है उस समय का।
6: इस नई कमेटी में तो गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
7: आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।

0: सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ ही देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है और सदन में क्या क्या होगा ये सब हमने देखा है और इसका एक उदाहरण बाहर भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष और सरकार के बीच बहस बाहर भी चल रही है, सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं। दोनों खेमे तैयार हैं एक दूसरे पर हमले के लिए। तो कल प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर हमला किया, सरकार को पलटवार करने पर मजबूर कर दिया, उन्होंने शिक्षा मंत्री को घेरा, टास्क फोर्स को भी कटघरे में खड़ा किया और आज बारी है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। एक दूसरे पर हमला करने के लिए सांसदों ने कविता और शेरों का भी खूब इस्तेमाल किया।
1: अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दे, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या दे। मैं ये जो जुल्म किया गया है पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर चार लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
2: किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसने जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
3: इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है।
4: घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुकुम लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था, और उसी सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है, और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू।
5: युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है।
0: तो चलिए अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जिसने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर लिखित गारंटी नहीं मिलती तो वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उन्हें मत छोड़िए तो ये हमें मंजूर नहीं है।
6: हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में, अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए, अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे।
0: और बात सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस एक्शन की, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को नोटिस जारी किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर झूठा नैरेटिव फैलाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने नोटिस में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भ्रामक पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीप फेक वीडियोस को हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीजेपी आंदोलन और हिंसा से जुड़े और इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों की संख्या में फर्जी पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीप फेक वीडियोस अपलोड किए गए थे। प्रदर्शन को लेकर फैलाए गए इस भ्रामक कंटेंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है, यह आरोप दिल्ली पुलिस लगा रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का। अरविंद, दिल्ली पुलिस ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन इस नोटिस के जवाब में कितना जवाबदेही या जिम्मेदारी बनती है इन प्लेटफॉर्म्स की? क्या ये एक्शनेबल नोटिस है?
7: बिल्कुल, और देखिए इस पर एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर डिलीट करने के लिए पहले कहा था, उसमें काफी पोस्ट डिलीट भी किए हैं। उसके अलावा भड़काऊ कॉन्टेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो, इस तरह के जो कॉन्टेंट है वो बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में पोस्ट किए गए, शेयर किए गए, उनको डिलीट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक ये है, इनको डिलीट करने के लिए कहा। आपको याद होगा एक पीयूष गोयल का भी डीप फेक वीडियो था, तो उस तरह के कई वीडियो हजारों की तादाद में है
0: जी।
7: इसका कहना है कि उनको भी लोग शिकायत कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस को शिकायत मिल रही है उसको नोटिस किया जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, और अगर पाया जा रहा है तब भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जा रहा है।
0: जी, शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। उधर पेपर लीक पर नए कानून की तैयारी और संसद में बिल पर चर्चा के बीच एक अहम खबर आ रही है। इस बार के नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई है यह खबर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अहम सबूतों को शामिल किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान पेपर लीक की पूरी कड़ी का पता लगाया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। और बात पंजाब में पेपर लीक को लेकर मचे सियासी घमासान की। फरीदकोट में पेपर लीक के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। प्रदर्शन से पहले चन्नी ने कहा कि अब जवाबदेही और सभी के लिए समान अवसरों की मांग करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से मुक्त व्यवस्था के हकदार हैं। जो लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी बोले कि वे विरोध कर रहे हैं, छात्रों को संबोधित करेंगे और सीबीआई जांच तथा पेपर लीक विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपेंगे।
8: उनसे पूछिए कि आपके राज्य में 6 पेपर लीक हो गए हैं मुख्यमंत्री साहब, कौन जिम्मेदारी लेता है? आपके मंत्री जिम्मेदारी लेंगे और आप जिम्मेदारी लेंगे। 5 लाख से ऊपर बच्चों का भविष्य उस पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। बोल रहे चीटिंग का मामला है, साजिश रचता कौन है? भगवंत मान, अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो कह देते हैं कि नहीं टायर फट गया है, सिलेंडर फट गया है, ये तो असलियत है पंजाब की।
9: पॉलिटिकल वेंडेटा बता,
8: मैं कह रहा हूँ कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा? पॉलिटिकल वेंडेटा तो खुद आम आदमी पार्टी करती है।
10: कौन बोल रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ? कौन ये बात बोल रहा है? बेशरम लोग, ये वो लोग बात कर रहे हैं केजरीवाल, भगवंत मान या हरजोत बैन, ये बेशरम कैटेगरी के सियासतदान है और मैं ना मानूंगा तो लाज कोई नहीं।
11: नवदया सिंह, अच्छा पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ है। फर्स्ट थिंग, फार्मेसी पेपर लीक वाज नॉट अ पेपर लीक, इट वाज चीटिंग। जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको मौके पर पकड़ लिया है। दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट। थर्ड चीज ये है जी कि पूरे देश के विचों बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। आई एम वाज द ओनली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर हु वेंट देयर। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਮਾਈ ਵਰਡਸ।
0: और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी असीम बस्सी का। असीम, ये मुद्दा दिल्ली की संसद तक पहुंच चुका था, इसकी गूंज सुनाई दी थी, लेकिन पंजाब में कितना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है अब आगे ये मुद्दा?
9: जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जब से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद लगातार जो है पंजाब सरकार के ऊपर फोकस है, रडार है। और ये जो फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम इन्होंने कराया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में, वो पूरा अंडर स्कैनर है। हालांकि पंजाब सरकार ये डिफेंस करती है कि ये लीकेज का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक चीटिंग था, मास चीटिंग था, जिसमें हाईटेक डिवाइसेज यूज किए गए। लेकिन चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं कि हाँ ये पेपर लीक हुआ है। और आज चरणजीत सिंह नहीं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो भी फरीदकोट पहुंचेंगे और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो है धरना लगाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ देंगे। कुछ दिन पहले श्रोमणी अकाली दल के लोग भी पहुंचे थे। सो लगातार पॉलिटिक्स जो है इस इशू के ऊपर गरमाई हुई है पंजाब के अंदर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो बार स्टेटमेंट दे दिया है, कल तो पार्लियामेंट हाउस भी गए थे और बाहर गेट के पास भी एक स्टेटमेंट दिया कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है, यह सिर्फ चीटिंग का मुद्दा है और पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने क्लेम किया कि पेपर शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही पेपर जो है बाहर चला गया थ्रू हाईटेक डिवाइसेस, ऑपोजिशन उसको क्वेश्चन कर रही है और कह रही है पहली बार नहीं हुआ, साढ़े चार साल के कार्यकाल में पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। सो ये अब लगातार ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट यहां पर हुआ है और लोग जो है ऑपोजिशन के लोग जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी हाँ
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए असीम। तो अब छात्रों के बाद बात किसानों की, बात करते हैं भोपाल में किसानों के प्रदर्शन की। मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी तादाद में किसान भोपाल पहुंच गए हैं। बॉर्डर पर पुलिस के रोके जाने के बाद किसान होशंगाबाद रोड पर ही डटे हुए हैं और रात को सड़क पर ही खाना बनाया किसानों ने।

0: demeaning kind of languages he uses, which is not good for democracy, which is not good for our country.
1: Thank you, sir.
2: छात्रों के मुद्दे से अलग एक और मुद्दा है जिसे समाजवादी पार्टी लगातार उठाना चाहती है और वो है अयोध्या में चंदा चोरी का मुद्दा और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से तख्तियां लेकर संसद में आज समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे।
3: चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ इस वक्त संसद भवन गूंज उठाए और इस नारों को लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने और आप देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद है और राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा। अखिलेश यादव, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र यादव के साथ साथ प्रिया सरोज, राम गोपाल यादव भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए प्रिया सरोज के हाथ में एक डब्बा है जिस पर लिखा हुआ है दान पात्र और चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक मुद्दा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा राजनीति हुई। ट्रस्ट जो है वो उसको पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया और उसमें जो है चंपत राय को हटाया भी गया और अब यह पूरा मुद्दा संसद भवन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
2: तो फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
9: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
8: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
10: You're listening to MSNBC.
8: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
11: Sokudo.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
2: थंबटैक प्रेजेंट्स टाइल ट्रबल. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
0: Sanitary solutions.
5: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी. हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा. वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया. हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे. हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया. ये है असलियत. और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो. किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं. आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं.
6: Yes.
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
8: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty.

रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: से भटका रही है कांग्रेस। संसद शुरू होने से पहले किरण रिजिजू का आरोप, आज दोपहर 12:30 लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी, कल रात 11 तक बहस चली।
1: प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी का आरोप सदन में चरित्र हनन किया, सबूत दे वरना मांगे माफी, प्रियंका ने कहा तथ्य भेज दूंगी।
0: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच में चढ़ावा चोरी पर नया मोर्चा, समाजवादी पार्टी ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन, अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी सांसदों का विरोध।
1: मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर रखेंगे MSP की मांग, खाना पीना और सोना सब सड़क पर।
0: POJK में नरसंहार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेशर्म बयान, कहा प्रदर्शनकारी भारत की तरह मुल्क के दुश्मन, अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 70 का कत्लेआम, मुनीर आर्मी मर रही है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, खबरों के डबल डोज एक और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल।
2: नमस्कार, मैं हूं अंजलि अस्टवाल। सीधा रुख करते हैं संसद की कार्रवाई का। दोनों सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आपके लिए सीधा वहीं से लेकर। आज घमासान की उम्मीद।
3: माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल सच्चिदानंद मैंने पहले भी कहा मान्य सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल मान्य सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके सदन को व्यवधान के दा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज नौ प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आए, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये लोकसभा जो कल चल रही थी, जहां कल बहस भी हुई और आज फिर जब प्रश्नकाल था, जो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, खुद स्पीकर ने बताया कि खुद ऑपोजिशन के भी बहुत सारे लीडर्स पहुंचे थे कि हम अपने सवालों को रखना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई 12 बजे तक के लिए।
2: और आइए अब रुक करते हैं शतक आज तक का।

0: डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने एनडीए सरकार में हुए पेपर लीक की घटनाएं गिनाई। वित्त मंत्री की नीट पेपर लीक को लेकर दिए गए बयान की भी आलोचना की। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, बोले इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी, पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीपके की सरकार को चेतावनी, कहा पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द होगा बड़ा प्रदर्शन। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव, नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मिली रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मिली दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी, राखी के त्योहार पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। सीजेपी नेताओं ने दिल्ली में राकेश टिकैत से की मुलाकात, किसान छात्र और युवाओं के संयुक्त मोर्चे की रणनीति पर चर्चा, सरकार को चारों तरफ से घेरने का किया दावा। पटना में आज बिहार कैबिनेट की बैठक, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित। बिहार में TRE4 के तहत 30,000 शिक्षक पदों पर होगी भर्ती, अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन, शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। बांकीपुर रोड शो में तेजस्वी यादव का दावा, लालटेन के पक्ष में बदलाव की लहर, बीजेपी को जनता सिखाएगी सबक। मदुरई मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ रुपए की जमीन पर कथित कब्जे का मामला, फर्जी ट्रांसफर और मॉर्गेज को लेकर 19 लोगों पर सीसीबी ने दर्ज की FIR।
1: नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स भी शामिल, चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग और सभी न्यायिक हिरासत में। 5,000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूतों का जिक्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गए SIT, अन्य संदिग्धों की भी तलाश जारी। रैकेट के सगन बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद मामला सामने आया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। गाजियाबाद में मोहम्मदाबाद में 30 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा, जनसभा की तैयारियां तेज, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। वाराणसी में संत रविदास जन्मस्थली से आज शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान, सीएम योगी करेंगे यहां पर माथा टेक कर शुभारंभ। 131 कलशों के जरिए देशभर तक पहुंचेगा संदेश, 2027 चुनाव से पहले दलित और युवा वर्ग पर फोकस। मेरठ में AIMIM प्रवक्ता शादाब जौहर ने कांवड़ यात्रा में से नमाज की तुलना की और बयान पर हिंदू संगठनों का भी विरोध, कार्रवाई की मांग। आर्म्स लाइसेंस अनियमितताओं मामले में गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी पर 3 FIR दर्ज, पुलिस जांच में कथित रिकॉर्ड गायब होने और हथियारों के सत्यापन से जुड़े मामले सामने आए, SIT को जांच सौंपे गए।
0: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच तेज, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से जल्द होगी पूछताछ, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल जारी। यूपी में BSP कमीशन 2027 शुरू, आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज, सादाबाद सीट के उम्मीदवार का होगा ऐलान। लखनऊ में यूपी विधानसभा में 4 अगस्त को आएगा सप्लीमेंट्री बजट, योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और जनहित योजनाओं पर जोर, चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का होगा प्रावधान। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर 2027 की चुनावी विसाद, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टिकट और समीकरणों को लेकर मंथन तेज। गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट पर 2027 की चुनावी तैयारी तेज, ओम प्रकाश राजभर में के सीट बदलने की अटकलों से बदले सियासी समीकरण, एनडीए इंडिया गठबंधन और BSP में टिकट के लिए दावेदारों की बड़ी दौड़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों को किया खारिज। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है, नो कैश और नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने की वजह से जान गंवाने वाले PhD स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी इलेक्ट्रिशियन की नौकरी, परिवार को 16 लाख की वित्तीय मदद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बांकीपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।
1: पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता। बीपीएस से शिक्षक बहाली। पेपर लीक मामले में ईओयू ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष पर प्रश्न पत्र के सील बंद बक्से को बिना नुकसान पहुंचाए खोलने का और दोबारा सील करने का भी एक्सपर्ट होने का दावा किया गया। सीसीटीवी और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों से पहचान की गई। डॉक्टर मनीष पर 30 अभ्यर्थियों से लगभग 1,20,00,000 रुपए वसूलने का आरोप है। छात्रों के डेटा की जांच के दौरान डॉक्टर मनीष तक पहुंचने में मदद मिली। ईओयू सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मनीष अपने सहयोगियों डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर पेपर लीक के गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। 2024 के बीपीएससी ट्रीएडी पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक के मामलों पर सुनवाई के लिए बिहार में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना लखीसराय और पूर्णिया को गठन किया गया। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन। निर्णायक मोड़ पर एमपी के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र। मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की रखी मांग। प्रदर्शनकारी किसान वीर सावरकर सेतु पर जुटे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को दाल बाटी खाने का निमंत्रण दिया। आंदोलनकारी किसानों ने साफ ऐलान किया कि 100% मूंग खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसला होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आज तक की खबर का एक बार फिर से हुआ असर। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर निषादपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया।
0: श्रावण यात्रा 2026 को लेकर मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अपील। श्रद्धालु परंपरागत मार्ग से ही करें यात्रा। दिल्ली देहरादून और गंगा एक्सप्रेसवे का न करें इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मीट दुकानदारों को दुकानें ढकने के निर्देश। खुले में मास्क रखने पर है रोक। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट पर। सुरक्षा के लिए 4,000 जवान तैनात। 9 सुपर जोन और 230 सब सेक्टर में बांटा गया पूरा क्षेत्र। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। मीट मछली और अंडे की दुकानों पर ताले। दुकानदारों को नोटिस जारी। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में लगाई डुबकी। असम बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 पहुंची। शिव सागर में 7 नई मौतें। करीब 3.5 लाख लोग अब भी प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी। 7 जिलों में 3.32 लाख लोग प्रभावित। 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जनमग्न। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की लोगों से मदद की अपील। कुलगाम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। कई घर जलमग्न। एसडीआरएफ ने सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से तबाही। एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त। राहत बचाव अभियान जारी।
1: नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर में बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना ने कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्य सड़कें पानी में डूबी। कई गांवों का संपर्क टूटा। फरीदकोट में आधे घंटे की बारिश में जगह जगह जल भराव। कई जगहों पर गाड़ियां डूबी दिखी। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर। बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मानसून की धुंध के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब रेल पुल से गुजरने का नजारा। बेहद मनमोहक दिखाई दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल मिले। अब तक कुल मेडल की संख्या 12। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड और 7 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले और सबसे ज्यादा मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में मिले। वेटलिफ्टिंग मुकाबलों में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। 69 किलो वेट कैटेगरी में 227 किलो वजन उठाया। एथलीट गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल और इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 3 और मेडल पक्के हैं। बॉक्सिंग में प्रीति पवार प्रिया घंगस और जादू मणि सेमीफाइनल में।
0: आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए किया प्रेरित। बिहार पुलिस ने लौटाई लोगों के चेहरे पर मुस्कान। 103 मोबाइल मालिकों को लौटाए उनके खोए हुए मोबाइल फोन। 19 लाख रुपए है इन खोए हुए मोबाइल्स की कुल कीमत। आगरा में महिला ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। पति और सास ससुर पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। इलाज के दौरान मौत। तीनों गिरफ्तार। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त। झारखंड के रांची पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण। ऑपरेशन नवजीवन 2 में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। यूपी में अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती। माफिया की अवैध संपत्तियों पर लगातार शिकंजा। सहारनपुर में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। दोस्त निकला हत्यारा। विवाद का बदला लेने के लिए युवक की गला घोंटकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दहेज प्रताड़ना से तंग। विवाहिता ने की आत्महत्या। पति समेत ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर FIR दर्ज। बाराबंकी में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सड़क पर मची अफरा तफरी। सप्लाई बंद कर टाला गया बड़ा हादसा। झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में आस्था की आड़ में चोरी। महाआरती में प्रसाद लेने के बाद श्रद्धालु का बैग, साइकिल और जूते लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत।
1: नागपुर में भारी बारिश के बीच में स्कूल में जल भराव में कई बच्चे फंसे। राहत बचाव दल रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित निकालता दिखा। पुणे के बारामती में भीषण सड़क हादसा। अचानक पिछली बाइक और तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी। मौके पर दोनों सगे भाइयों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन का मामला। उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। लगभग 500 मीटर तक घसीटा। आरोपी चालक अरेस्ट। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो आया सामने। रस्सी से बांध कर रखने के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क पर फैला सरसों का तेल। लोगों की भीड़ पकड़ जो उठाने के लिए उमड़ी। सूरत में 2,67,00,000 के सोना चोरी कांड का खुलासा हुआ। शेयर बाजार का खर्च चुकाने के लिए खुद ही संचालकों ने चोरी की थी। मालिक पिता पुत्र समेत 4 गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। आनंद फानंद में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच में खुले नाले में गिरी 4th क्लास की छात्रा। स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार करके भाग रहा था प्रेमी। युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटा। गुस्साए लोगों ने पिटाई की। भारी बारिश के बीच में नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभराकर गिरा डिवाइडर। एक शख्स घायल। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ FIR। आगरा में ताजमहल में दक्षिण कोरिया महिला पर्यटक पर बंदर का हमला। एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे की देरी हुई। बेगूसराय में ग्रामीणों को पिस्टल लहराकर धमका रहा था युवक। गांव वालों ने पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने 1 कट्टा 5 गोली के साथ किया गिरफ्तार। संभल में बारिश से बचने के लिए मिट्टी डालते समय हादसा हुआ। कच्चे मकान की छत गिरने से बच्चे समेत महिला की मौत। 5 घायल।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का। हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। नीट पेपर लीक को लेकर मचे कोहराम के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग में धांधली का मुद्दा भी गरमा गया है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों ने झारखंड की कांग्रेस JMM सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
1: तो ये बड़ी खबर इस समय। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अनियमितताओं के, धांधली के, पारदर्शिता की कमी के, सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप लगाए और झारखंड सरकार इस समय ओपोजिशन जो वहां पर है बीजेपी उसके निशाने पर है।
0: तो जब बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है। लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक हो, भर्ती धांधली होती है, तो विपक्ष दल चुप हो जाता है, यह आरोप लगाती है सरकार। यही झारखंड में होता हुआ दिखा, जहां युवा नाराज है, सड़क पर है। वजह झारखंड लोक सेवा आयोग में हुई धांधली है।
3: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
4: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
3: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
5: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
3: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां चार तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
6: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है।
1: और अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
7: Bharat ki apni electric.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
11: Savari. So

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: सोनम वांगचू की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को नीचे जमाया, राहुल गांधी को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
2: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
12: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कन्फर्म्ड है,
13: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सबकी निगाहें संसद की ओर टिकी हुई हैं क्योंकि लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। आज फिर से क्वेश्चन आवर के समय में जबरदस्त हंगामा और इसी वजह से 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। आधे घंटे के बाद लोकसभा में इस पर चर्चा शुरू होने वाली है।
1: बताया ये जा रहा है कि 12:30 बजे राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं। वहीं एक दिन पहले लोकसभा के अंदर और बाहर नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी के दिए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वैसे तो लोकसभा की कार्रवाई से प्रियंका के बयान को हटा दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। इस पर हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरी अहम खबर ये कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब संसद तक पहुंच गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आज उन्होंने तख्तियां लेकर और दानपात्र लेकर संसद में प्रदर्शन किया है।
0: तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है तो राज्यसभा में भी आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने एक्शन को लेकर विपक्ष सवाल उठाए हैं। इस पर वहां हंगामा हुआ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं।
1: इसके जवाब में जेपी नड्डा ने उन पर ही पलटवार कर दिया। नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट को गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान जब विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था।
2: जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं उसको करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू पीपल वी आर फ्रॉम देयर आर नॉट राइट, दे शुड बी पनिश्ड बाय द गॉड्स। हु आर दे, हु आर दे,
3: यू आस्क योर पीपल टू सिट इन देयर,
2: नो आई एम आस्किंग हु आर, हु आस्क देम टू गो देयर
3: नाउ,
4: नाउ सर, नाउ बी लेट इन द हाउस, व्हाटएवर माय फ्रेंड Sir, what my friend John Bikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bikas. It is a normal situation. A student activist has to jail. And so to take law and order in their own hand, the police have to act accordingly. And the police has acted accordingly for those cases. It is, they are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes. And any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced those halls many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is the very normal situation, sir.
1: तो आज एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा हुआ है और उस वजह से कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। थोड़ी देर में लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर से लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होने वाली है। बीती रात करीब 11 बजे तक 9 घंटे की मैराथन चर्चा हुई।
0: वहीं उससे आगे की चर्चा अब आज कुछ ही मिनट के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद शुरुआत होगी। आज राहुल गांधी भी बोलेंगे। पहले दिन की चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब के बाद अब आज सबकी निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हैं। एक दिन पहले गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कई विपक्षी नेताओं ने, सांसदों ने सरकार को घेरा। वहीं आज ये माना जा रहा है कि लोकसभा में चर्चा पूरी होने के बाद बिल को पास कराने के लिए वोटिंग भी कराई जाएगी।
1: तो आपको बता दें कि सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आज नेता विपक्ष क्या बोलते हैं। राहुल गांधी को मौका मिलेगा इस बात बोलने का, कल प्रियंका गांधी बोली थी जिसके बाद बहुत से विवाद खड़े हो गए, बल्कि उनकी कई बातों को एक्सपंज भी करना पड़ा। तो आज क्या कहेंगे राहुल गांधी, इस पर सबकी नजर रहेंगे। क्या पैलेट गन का मुद्दा उठाएंगे, क्या गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाएंगे? उधर आज समाजवादी पार्टी सांसदों ने संसद परिसर में चंदा चोरी को लेकर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा।
0: तो ये बड़ी खबर, सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट देखने को मिला। आपको याद होगा कि संसद कि इस मॉनसून सत्र की जब शुरुआत हो रही थी तो ओपोजिशन के दो मुद्दे थे क्लियर, एक तो चंदा चोरी का और दूसरा नीट का मुद्दा। चूंकि नीट का मुद्दा उसी समय सीजेपी के प्रोटेस्ट की वजह से बड़ा बन गया था तो उस मुद्दे पर ओपोजिशन हमलावर था, लेकिन राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा भी खासतौर पर समाजवादी पार्टी लगातार बनाए रखना चाह रही है क्योंकि 2027 चुनाव नजदीक है। और कुछ इस तरह से आज प्रोटेस्ट किया गया सपा की तरफ से।
5: चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ इस वक्त संसद भवन गूंज उठाए और इस नारों को लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने और आप देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद है और राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के के द्वारा। अखिलेश यादव, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र यादव के साथ साथ प्रिया सरोज, राम गोपाल यादव भी यहाँ मौजूद है। देखिए प्रिया सरोज के हाथ में एक डब्बा है जिस पर लिखा हुआ है आदान पात्र और चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक मुद्दा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा राजनीति हुई। ट्रस्ट जो है वो उसको पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया और उसमें जो है चंपा राय को हटाए भी गया और अब ये पूरा मुद्दा संसद भवन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
0: अब इस प्रदर्शन में शामिल हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए वो पेपर लीक क्या रोक पाएंगे।
6: वही बात है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है।
7: हम तो लुट गए।
1: तो समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज से खास बातचीत में कहा है कि जब तक चंदा चोरी पर बात नहीं होगी हम सदन चलने नहीं देंगे।
8: मकर द्वार के ठीक सामने एक नए तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में चंदा की पेटी लिए इकट्ठा हुए हैं। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ सपा के सांसद। सर क्या मैसेज है इस पेटी के साथ आप यहाँ आए?
9: ये सिंबल है जो प्रभु श्री राम के मंदिर में लोगों ने दान दिया और उस दान को जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लूटा और जो लूटने वाले लुटेरे हैं उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। सरेआम वहां की निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान है कि यहां चोरी नहीं डकैती पड़ी है और उसके बावजूद वहां के इंजीनियरों का बयान है कि निर्माण कार्य में 40% गया है। जमीन के घोटाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कई बार खुलासे कर चुके हैं। तो प्रभु श्री राम का मंदिर के निर्माण का जब से फैसला आया है आज तक, और अभी फैसले से ही नहीं, जो 90 में जो रथ यात्रा चली थी उस समय का भी जो चंदा इकट्ठा हुआ था, सारे चंदाओं पे चोरी नहीं डकैती डाली है भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने
8: जी। लेकिन क्या आज कांग्रेस के सांसद आपके साथ में दिखाई दे रहे
9: हैं? कांग्रेस के भी साथी आएंगे, इसको कोई आप अदरवाइज ना लें, कांग्रेस के भी साथी इस मुद्दे पर सदन में साथ हैं, यहाँ भी साथ रहेंगे। ये चूंकि आज केवल हमारी पार्टी का अनाउंसमेंट था या कॉल थी इसलिए केवल समाजवादी पार्टी
8: तो माना जाए सर अगले पूरा इंडिया अलायंस इसी पे घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
9: बिल्कुल घेरेंगे, पूरा देश सुनना चाहता है। आखिर सनातन के नाम का ठेका लेने वाले ये भाजपा प्रभु श्री राम के नाम पर इतना चंदा चोरी कैसे कर सकती है?
8: आप लोग सर बीजेपी सांसदों के पास दान पेटी लेके गए थे, क्या हुआ फिर?
9: हमने कहा कि जब तुम सारा ले गए तो उसको भी ले जाओ
8: जो बचा हुआ है,
9: लेकिन वो उनके अंदर छेप और शर्म आप समझ सकते हो शर्म को।
0: कई तरफ विपक्ष का हंगामा तो दूसरी ओर झारखंड में बीजेपी के सांसदों ने भी संसद परिसर में जमकर नारेबाजी की है।
1: उन्होंने झारखंड में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए हैं।
5: नीट पेपर लीक के बाद अब पंजाब और झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद हैं जो झारखंड से खास तौर पर आते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो बीजेपी झारखंड के सांसद है बीजेपी झारखंड से जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस और राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म हो तो झारखंड सरकार से वापस समर्थन। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि झारखंड की कांग्रेस और जेएमएम की सरकार युवाओं के भविष्य का बंद करो। तो इस वक्त झारखंड बीजेपी के जो सांसद है वो संसद भवन के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में हमने देखा कैसे नीट को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला करता है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो विपक्ष की सरकारों पर काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे उठाया गया, वही अब झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को अब बीजेपी सांसदों के द्वारा यहां पर उठाया जा रहा है और लगातार जो है वो यहां पर नारेबाजी हो रही है। पूछते सर आपके हाथ में तख्ती है, इस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस भर्ती परीक्षा में धांधली बंद करो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करो, क्या मांग आप लोग?
7: निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जब से इस झारखंड प्रदेश में बनी है तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है, बड़े बड़े घोटाला हो रहा है, इसका हम सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। उत्पात सिपाही के बहाली में 18 बच्चे की जाने गई है, उसको हम लोग 1-1 करोड़ रुपया उस परिवार को मुआवजा के रूप में हम लोग मांग करते हैं।
1: तो लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया है। हंगामे के बीच प्रियंका गांधी के शब्द संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए, लेकिन सदन के बाहर ये विवाद और तेज हो गया।
0: खुद प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है और प्रियंका गांधी से उन्होंने सार्वजनिक माफी की मांग कर दी। तो प्रियंका गांधी ने सबूत पेश करने की बात कही है। आज भी संसद पहुंचने पर उन्होंने ये कहा कि वो अपने बयान पर कायम है।
10: उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है।
11: कार्रवाई से हटा दिया गया
10: क्या? कार्रवाई कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है।
12: मैम लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया, क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर?
10: हाँ, रेज करूंगी।
1: और इस मुद्दे पर जमकर अब सियासत हो रही है। देखिए,
13: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में बनी हुई उच्च मर्यादा को तोड़ने में माहिर हो गए। जिस तरह की भाषा प्रहलाद जोशी जी के लिए बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जोशी जी बहुत सभ्य है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत शालीन व्यक्ति हैं और मिनिस्टर के तौर पर उनका काम बेहतरीन रहा है, पहले भी कई मंत्रालय को संभाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लगता है कि कोई भी मंत्री बने उनसे पूछ के बने, उनकी एनओसी चाहिए। अगर वो शिक्षा मंत्री बने हैं प्रधानमंत्री का

0: इसकी जो कहीं से भी प्रासंगिक नहीं था और संसदीय मूल्यों के विपरीत उनका आचरण था।
1: अपराजो सिंह के समाचार पत्रों में वीडियो में जिस प्रकार उन्होंने सहमति जताई, जिन्होंने बातें की है रेप विक्टिम के बारे, तो एक के नियत कह सकते हैं, एक लोगों के संस्कार कह सकते हैं, लोगों की क्या मंशा है, तो वो परिलक्षित होते हैं। और विशेषकर जो शिक्षा मंत्रालय जो पूरे देश को शिक्षित करने का जिम्मा जिनको है, वो अगर उनके चेहरे खुद दागदार हो तो उस नैतिकता की अपेक्षा करना मैं समझता हूँ ये पूरी तरह बेमानी है। आज चेहरे उन्होंने जरूर बदले हैं लेकिन आज भी उतना ही दागदार हो रहा है।
2: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
8: Hello, Ted.
7: Your cat seems thirsty-er.
9: Whoa, slow down, buddy.
7: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
8: Veg ER for Pets, this is Kate.
7: Veg, the better, kinder ER for Pets.
10: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
11: సోకుడు

कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं पुल धस गया है, कहीं नदियों में जबरदस्त उफान है। और हालात ऐसे हैं कि वहां भगवान की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। ये उत्तराखंड का हाल है, वहां से आ रही तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमोली की तस्वीर। वहां देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम के करीब कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क को दोबारा खोलने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी के जलस्तर में जबरदस्त तूफान है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा नदी से करीब 30 मीटर दूर है। नदी का पानी गुफा के भीतर पहुंच चुका है, इस वजह से गुफा में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे भक्तों को गंगा जल भरने और गुफा तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाहाकार है। वहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसका असर जनजीवन पर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाड़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण 12 से अधिक गाड़ियां दब गई हैं मलबे में। लगातार हो रही बारिश के चलते भरमौर, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तडोली नाला भी उफान पर आ गया। तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी का मलबा बहा कर लाया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। चंबा में ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल लयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
3: Hello, Ted.
2: Your cat seems thirstier.
4: Whoa, slow down, buddy.
2: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
3: Veg ER for pets. This is Kate.
2: Veg. The better, kinder ER for pets.
5: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: जब जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है, तब तब पीओजेके में पाकिस्तानी हुकूमत की इंतहा हुई है। फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की रावला कोट की मिट्टी लहू से लाल हुई। वहां फिर पाकिस्तानी जुल्म का कहर टूटा है। वहां बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसी हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कम से कम 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बेरहमी भरे एक्शन में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जुल्म और अत्याचार की ये तस्वीरें 27 जुलाई की हैं, जब पीओजेके में चुनाव कराए जा रहे थे तो लोगों का विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। फिर इस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने फायरिंग का फरमान जारी कर दिया। पीओजेके में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी के बाद जीएएसी ने दावा किया है कि रावला कोट मार्च में 20 लोग मारे गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान की कायरता दिखी हो। इससे पहले भी पाकिस्तानी फौज ने अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। अभी 14 जुलाई को ही रावलाकोट और बैठक बलूच में सुरक्षा बलों ने बेरहमी की हदें पार कर दी। उस दिन गोलीबारी में 8 युवकों की मौत हुई थी। उससे पहले 5 जुलाई को भी पाकिस्तानी जुल्म टूटा। इस दिन 9 लोगों की जान चली गई थी। जीएएसी ने पहले मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया था। उस दिन भी गोलियां चली थी, जबकि 27 जुलाई को वहां हुए विधानसभा चुनावों को लेकर बवाल हुआ। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का विरोध पीओजेके विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। पाकिस्तान की सरकार ने उन सीटों को आरक्षित किया है, जिसे लेकर जेएएसी आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान उन 12 सीटों के चुनावों में धांधली करता है। आरोप ये भी है कि पाकिस्तान ने बाहरी लोगों को पीओजेके की राजनीति तय करने का हक देने की साजिश की। ऐसे संगीन आरोपों के बाद पीओजेके के लोगों का गुस्सा फूटा और दोनों चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वो सड़कों पर उतर गए। लोगों के चुनाव के बड़े पैमाने पर बहिष्कार से पाकिस्तानी अधिकारी बौखला गए और विरोध दबाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग पर जेएएसी ने गंभीर सवाल उठाए, जिन पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमला बोला। वो पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है। वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के टैक्स के पैसे से गोलियां खरीद कर उन्हीं पर दागी जा रही हैं। रावला कोट के साथ साथ पीओजेके के कोटली में भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बेरहमी दिखी है। वहां भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सोमवार को हुई फायरिंग और कई लोगों की मौत के बाद पीओजेके में आज भी तनाव है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी है। आज तक ब्यूरो।

बिल पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। बहस के बाद होगी वोटिंग रिजिजू का आरोप। विधेयक पर चर्चा को मुद्दे से भटका रही कांग्रेस। प्रहलाद जोशी पर दिए गए बैन पर कायम है प्रियंका गांधी। कहा वीडियो सबूत हैं, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। राज्यसभा में सरकार पर भड़के खड़गे। कहा देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। नड्डा ने कहा मैं भी इमरजेंसी में जेल गया, ये कानून व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली का बीजेपी का आरोप। प्रीलिम्स में नतीजों में गड़बड़ी का आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में। कांग्रेस जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना, पानी और सोना सब सड़क पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज संसद की खबर से। लोकसभा में थोड़ी देर बाद एनटीए पेपर लीक बिल पर फिर से चर्चा शुरू होने वाली है आज, और आपको बता दें कि लोकसभा में ठीक आधे घंटे के बाद राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, राहुल गांधी का संबोधन होगा कल। गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी बात रखी। पेपर लीक को लेकर उन्होंने सरकार को गठघरे में खड़ा किया। अब आज राहुल गांधी बोलने वाले हैं, 12:30 बजे राहुल गांधी का संबोधन शुरू होगा। वो क्या कहते हैं इस पर सबकी निगाहें रहेंगे। फिर आज वोटिंग भी होगी और कल से ये बहस चल रही है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उस समय हंगामा ही हुआ, तो क्वेश्चन आर नहीं चल पाया। अब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू, और इस कार्यवाही में देखना यह होगा कि बहस कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या दलीलें, क्या क्या तर्क दोनों ही ओर से रखे जाते हैं। आप दोनों ही सदनों की तस्वीर देख रहे हैं, कार्यवाही शुरू हो रही है।
2: ऑनरेबल मेंबर्स, सो मेनी मेंबर्स हैव गिवन नोटिस ऑफ एडजॉइनमेंट्स। द ऑनरेबल स्पीकर हैज डिसअलाउड दोस एप्लीकेशन फॉर एडजॉइनमेंट नोटिसेस, हेंस लेट अस रिज्यूम द बिजनेस। Item number 2. Yeah, but the honorable speaker has disallowed all the adjournment motion notices. So, purpose to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh ji.
3: Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the house papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, speaker sir.
2: Thank you. आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद जी।
4: महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं।
2: आइटम नंबर 4, डॉक्टर पी चंद्रशेखर।
3: सर, विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स मेंशनड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 4 इन टुडेस रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू।
2: आइटम नंबर 5, श्री बीएल वर्मा जी।
5: महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित पत्र सभा पटल पर।
2: आइटम नंबर 6, श्री सतीश चंद्र दुबे। आइटम नंबर 6, श्री सतीश चंद्र दुबे।
6: माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ।
1: लोकसभा की कार्यवाही अभी चल रही है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही पर आपको बता दें कि असर पड़ा है। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, आज राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं, 12:30 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। कल की स्ट्रैटेजी और आज की स्ट्रैटेजी में क्या अंतर होगा?
7: देखिए, बेहद तीखे तेवर कल इख्तियार करते हुए प्रियंका गांधी ने अपना सरकार को घेरा था। अखिलेश यादव भी इस पूरे मसले पर सरकार को घेर रहे थे। तो हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाक्य युद्ध छिड़ा था, जहां पे खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरी चर्चा की शुरुआत की थी, और सत्ता पक्ष ने भी बड़े बड़े वक्ताओं को, तेजस्वी सूर्या हो, बासुरी स्वराज, जिन्होंने पूरी चर्चा की शुरुआत की बीजेपी की ओर से, वो लोग मैदान में उतरे थे। तो आज राहुल गांधी 12:30 बजे बोलेंगे, मुझे बताया जा रहा है। और जिस तरीके के लाइन ऑफ अटैक है उसमें राजीव, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे। ये वो वक्त है जब लगातार वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दे कि आखिर लाठीचार्ज और जो पिटाई हुई छात्रों की, किसने उसके आदेश दिए थे। और इसको लेके राहुल गांधी पैलेट गन्स का मसला बहुत लंबे तरीके से और आक्रामक तरीके से उठा सकते हैं। 12:30 बजे उनकी स्पीच है, जिसके बाद कुछ ही देर बाद मंत्री का भी जवाब होना है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या गृह मंत्री के स्टेटमेंट को लेकर राहुल गांधी अड़ते हैं।
1: और बिल को समर्थन रहेगा कांग्रेस का या नहीं, वोटिंग में सपोर्ट करेंगे या नहीं?
7: अगर आप देखिए राजीव, जो पटकथा लिखी गई है पूरी बिल पे, चर्चा के दौरान भी बिल पर कम चर्चा हो रही है, और जो मौजूदा परिस्थिति है, सियासी परिस्थिति है, छात्रों का प्रदर्शन है, उसपे नेता और सत्ता पक्ष ज्यादा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल का समर्थन सभी दल करेंगे, क्योंकि ये कानून को जो पब्लिक एग्जामिनेशन लॉ है 2024 का, उसको और सख्त बनाता है। तो उसको लेके मुझे नहीं लगता कि कोई गतिरोध ऐसा होने वाला है, पर अब ये देखना होगा कि उससे पहले क्या वार चलते हैं।
1: ठीक है, मौसम आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। आज संसद के उच्च सदन में भी हंगामा देखने को मिला, राज्यसभा में ये हंगामा हुआ जिसकी वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसकर सीबीआई लोगों को उठा रहे हैं, देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इमरजेंसी के दिनों को याद करिए, इमरजेंसी के दिनों में उन्हें क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था।
8: जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग पुलिस ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। Democracy is not safe. People are not safe. Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why do I ask? Who are they? Who are they?
9: You ask your people to sit in there.
8: No, I'm asking. Who asked them to go there?
9: Now.
1: आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और अब 2 बजे तक के लिए भी स्थगित होगी। लेकिन जेपी नड्डा ने क्या कहा था राज्यसभा में जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपको सुनाते हैं।
10: Whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. Been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested, Mr. John Vitas. It is a normal situation. A student activist has to face.
1: लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, एक बार फिर से चेयर पर ओम बिरला पहुंच गए।
11: मोदी जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नौ
12: ये सर
11: देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए।
12: यस सर,
11: प्लीज नो प्लीज, और को लोगों बोलने दें, प्लीज डिबेट शुरू करने दें, डिबेट शुरू करो, आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज प्लीज
12: देखिए। स्पीकर सर, यस स्पीकर सर, आई विश टू मूव दैट दिस हाउस टू एक्सटेंड टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 एंड द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 अप टू द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट वीक ऑफ द विंटर सेशन 2026।
11: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
12: हाँ।
11: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय।
13: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए।
11: चलिए मनीष तिवारी के वाह काव्य, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, लोक परीक्षा। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक प्रस्तावित करें।
14: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक स्थापित करता हूँ।
15: माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत।
16: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्रहित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूँ। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, मैं संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तरह अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10,00,000 रुपये जुर्माने की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50,00,000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सब सेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में कोई संगठित गिरोह या कोचिंग संस्थान शामिल किए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। नई धारा 12 की उपधारा 1A और B जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरा करना है और चार्जशीट दाखिल करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई कर चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेनी है। महोदय,
1: थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं, एक बार फिर से संसद की कार्यवाही आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ और खबरों का इस बीच रुख कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रियंका गांधी के टिप्पणी को लेकर संसद की कार्यवाही से उनके उस शब्दों को उनके उस बयान को हटा दिया गया, लेकिन इस पर प्रियंका ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उनकी बातों को असंसदीय कहा गया था, उन्होंने कहा कि मैंने तो सच कहा, अगर सच बोलने की सजा देना चाहते हैं तो दे दें, मैं तो फिर से मुद्दा उठाऊंगी।

0: उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं पूरे वीडियोस हैं, और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है।
1: कार्रवाई से हटा दिया गया
0: क्या? कौन सी कार्रवाई?
2: पार्लियामेंट्री,
0: मैंने तो सच ही बोला है
2: मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया, क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर?
0: हाँ, रेज करूंगी।
3: अब वक्त कांग्रेस जनता पार्टी के, जिसने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया है, एक बार फिर से चेतावनी दी है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर लिखित गारंटी नहीं मिलती है तो वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उन्हें मत छोड़िए, तो ये हमें मंजूर नहीं है।

0: हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हम
1: लोकसभा में पप्पू यादव बोल रहे हैं, सुनाते हैं।
2: किसकी होगी जो दुनिया में एक बेहतर व्यवस्था को चला पाएगा, जब इस कंट्री में हमारे नेता पदाधिकारी और माफिया सभी लोग मिलकर। आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 2019-20 में 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3,554 करोड़ आय अर्जित की, 3,554। 18 में एनटीए को लाया गया, उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे, हाईकोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए, गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार बार बार बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है और एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरी चीज, 26 तक केवल 24 ही पदाधिकारी एनटीए के पास है, मात्र 24 पदाधिकारी के द्वारा ये एनटीए चला रहे हैं, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, यह व्यक्ति यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है, 6 करोड़ से 8 करोड़, 20 लाख एग्जाम होता है 1 लाख नौकरी में और 15 लाख एग्जाम होता है 1,000 की नौकरी में जेई का, और नीट का होता है 20 लाख। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं, हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर, पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490-500 के लगभग मार्क ले आएंगे, जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जीएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 200-500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296, पहले बार जो क्वेश्चनार था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा, सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बड़ी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा, एसआईटी बनाएगी सरकार, स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए, इसके 2026 में छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा, एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी, आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ सर अभी शुरू किए सर,
3: नहीं नहीं नहीं,
2: कंप्यूटर बेस्ड एडोपेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार, कोरिया सोगनम मॉडल अपनाना चाहिए जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा
3: ब्रीच
2: कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म के तहत परीक्षा रोट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन क्योफाल के तट पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो, जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। एनटीए प्राइवेट वेंडर्स को तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करे।
3: प्लीज
2: मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी, सिंगापुर के तरह डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल हो, एग्जाम सेंटर तक पूरी तरह एनक्रिप्टेड रहे, एक ये रिक्वेस्ट है। प्राइवेट सेंटर जैसे अध्यक्ष जी,
3: प्लीज प्लीज
2: स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज पर परीक्षा करवाना आउटसोर्सिंग तुरंत बंद करिए। आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी गलत है, बिना फुल प्रूफ के।
3: श्री सोला सिंह जी, श्री सोला सिंह, सॉरी भोला सिंह,
2: जुर्माना नहीं,
3: श्री भोला सिंह,
2: एक माफिया कमिटी है। मैं आपसे एक मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा,
3: प्लीज प्लीज कंक्लूड करो, प्लीज
2: कंक्लूड करो सर। मेरा रिक्वेस्ट है,
3: एक सेकंड।
4: अरे सर,
2: मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, एनटीए के ऑडिट आरटीआई और उसको बर्खास्त करने की कोई चर्चा नहीं। आपने एक ऐसा कानून लाया जो माफिया और सरकार को बचाती है।
3: धन्यवाद।
2: अंत में
3: धन्यवाद शुरू करो।
2: अंत में
5: धन्यवाद,
2: एक सेकंड सर।
5: धन्यवाद सभापति महोदय, सभापति महोदय।
1: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
4: Hello, Ted.
3: Your cat seems thirsty-er.
5: Whoa, slow down, buddy.
3: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
4: Veg ER for pets. This is Kate.
3: Veg. The better, kinder ER for pets.
6: No.
7: Oh, no.
8: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
8: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
7: Oh, my God.
9: It's got to be deliciously desperate.
7: Why do these girls forget him?
10: She has a soft spot for troubled men.
9: Boo bloody hoo.
8: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
7: Love runs deeper than we know.
8: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
14: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे? नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
15: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
16: दिल्ली से महाराष्ट्र तक पेपर लीक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सबूत पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
17: जब एग्जाम थी उसके दो दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे, और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
16: वहीं रोहित पवार के आरोपों पर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है।
18: दो उम्मीदवार या परीक्षे मध्ये सिलेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याला वाटलं की ही परीक्षा एक 12-14 वर्षांनी झालेली आहे, आता पुढची 10-12 वर्ष परीक्षा होणार नाही आहे, त्यामुळे आपण या सध्याच्या जर आपण अशी तक्रार केली तर कदाचित ही परीक्षा रद्द होईल आणि फेरपरीक्षा होईल, म्हणून त्यांनी अशी तक्रार केलेली आहे।
19: इसके प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अब से थोड़ी देर में परीक्षा बिल पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। दूसरे दिन की बहस शुरू। रिजिजू का आरोप, विधेयक के मुद्दे से सदन को भटका रही है कांग्रेस। प्रहलाद जोशी पर दिए गए बैन पर कायम है प्रियंका गांधी। कहा, वीडियो सबूत हैं, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली, सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। राज्यसभा में सरकार पर भड़के खड़गे। कहा, देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। नड्डा ने कहा कि मैं भी इमरजेंसी में जेल गया, यह कानून व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया।

झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध। प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में। जेएमएम कांग्रेस सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद। 19 किसान संगठनों का भोपाल को सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना पीना सोना सब सड़क पर।

0: संसद की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। इससे पहले अब तक के इस सत्र में पप्पू यादव ने सरकार को बहुत सारे सुझाव भी उन्होंने दिए। कई देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों से हमें सीखना चाहिए। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा लगातार चल रही है और चर्चा का दूसरा दिन है आज। जिसका नंबर हो अपने सीक्वेंस अपने नंबर पर बोल रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी बोलने वाले हैं। समय बिल्कुल नजदीक है, कुछ ही मिनटों के बाद राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। कल प्रियंका, अखिलेश, तमाम लोग अपनी बात रख चुके हैं।
1: आज इस समुदाय के 769 बच्चे विदेशों में स्टडी ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसमें पीएम गरीबों के शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। और सभापति महोदय, मैं बताऊं कि हमारी सरकार जो गरीबों के विद्यार्थियों के साथ खड़ी है, ईएसआई के विभाग ने 17 मेडिकल कॉलेज बनाए, उस 17 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2086 सीटें हैं। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि 2086 सीटों में से 794 सीटें जो ईएसआई का कार्ड धारक मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए रखने का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। सभापति महोदय, यूपीए की सरकार में एक प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि देश में भ्रष्टाचार इतना है कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 25 पैसे गांव तक पहुंचता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने आने में जो व्यवस्था बदली, आज जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, किताब और बैग के लिए जो सरकार राशि देती थी, आज उसके पेरेंट्स के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार।
2: समाप्त करें
1: सभापति महोदय।
2: मनी भोला जी, समाप्त करें।
3: 2 मिनट हुए
1: सभापति महोदय। अरे रुक जाओ भैया,
2: आप केवल चेयर को एड्रेस।
1: 2024 में पहली बार इसके लिए कानून बना और सरकार इसमें संशोधन लेके आई है और इसके संशोधन से महत्वपूर्ण है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने चाहिए, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के इसमें महत्वपूर्ण है कि कठोर सजा से महत्वपूर्ण शीघ्र सजा मिले, इसके लिए संशोधन के माध्यम से जांच 2 महीने में होगी। जो गंभीर मामले हैं केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल टास्क फोर्स काम करेगा, डे टू डे बेसिस पे जांच होगी, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट काम इसमें करेगा। 3 महीने के भीतर पूरा प्रावधान है चार्जशीट लगाने का और इसके बाद हाई कोर्ट की भी 2 जजों के बीच में इसकी सुनवाई होगी अगर वो लगाते। एक ही मकसद है, अपराधी बच नहीं पाएगा, जांच लटकेगी नहीं, मुकदमा वर्षों तक खिंचेगा नहीं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभापति महोदय। सभापति, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अभी हमारे साथी कह रहे थे कल हम यहाँ पे बैठे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व अखिलेश यादव जी का हमने विषय सुना, युवा के लिए बड़े चिंता के उसमें कल दिखे सर। मैं सर छोटा बच्चा था, 1991 में हमारी भाजपा की सरकार आई, पहली बार माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 1992 में हमारी सरकार नकल रोकने के लिए अध्यादेश लेके आई, उसको लागू किया और 1992 में जो उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा के एग्जाम हुए उसमें जो विद्यार्थी पास हुए उस समय बिना नकल के, वो आज भी गर्व के साथ कहते हैं कि मैं माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार का पास हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, उस समय शिक्षा मंत्री थे। लेकिन सभापति महोदय, 1993 में चुनाव हुए, जब चुनाव होते हैं तो जनता अपेक्षा करती है कि पार्टी क्या उनके जो घोषणा पत्र क्या घोषणा करेगी। विद्यार्थी देखते हैं कि उनके लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा होगी, कॉलेज की घोषणा होगी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा होगी, लेकिन घोषणा हुई कि जो भाजपा की सरकार नकल लोगों को अध्यादेश लेके आई है, हम सत्ता में आएंगे तो उसको खत्म करेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र। और सभापति महोदय, उन्होंने समाप्त भी किया, उसको समाप्त भी किया और हम देखते थे कि सेल्फ सेंटर में ओपनली नकल होती थी, वो किसके लिए? क्या वो शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने का काम नहीं था? क्या वो शिक्षा का वो करने का काम नहीं था? सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सत्ता में थे, 2015 में भी भर्ती घोटाले हुए, लोगों से पैसे लेके भर्तियों में पैसे लिए जाते थे और एक जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, वो अपनी जमीन बेच के रिश्वत देता था। ऐसे भी लोग हैं आज भी उत्तर प्रदेश में कि उनको नौकरी भी नहीं,
2: समाप्त
1: जमीन भी गई और उनके पैसे भी वापस नहीं।
2: धन्यवाद आप
1: सभापति महोदय। अभी 2 मिनट प्लीज।
2: नहीं
1: सभापति महोदय,
2: 1 मिनट में समाप्त।
1: पर्ची सिस्टम था, कल माननीय अखिलेश जी बात कर रहे थे पीडीए की, प्लीज सभापति महोदय, हमें आपसे आप मुझसे बहुत बड़े, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पीडीए की कल आपने बात की, जब आपकी सरकारें थी,
2: आप चेयर को एड्रेस करिए, मत पूछिए।
1: सौदी महोदय, आपने उस सरकार में, देखिए पिछड़ा वर्ग में उत्तर प्रदेश में 79 जात ओबीसी में आती हैं, तो उसमें कितने ओबीसी जातियों को, कितनों को आपने नौकरी दी, कितनों को आगे बढ़ाया, एससी वर्ग के कितने लोगों को मौका दिया, मैं जानना चाहता हूँ सभापति महोदय।
2: समाप्त करें, अब समाप्त
1: ऐसे ही सभापति मेरा रह गया,
2: एक मिनट में समाप्त।
1: सभापति महोदय, अब मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, मैं सीधा सीधा एक मिनट दो, जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं इस विधेयक का, मैं जानना चाहता हूँ वो किस बात को लेकर विधेयक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, 10 लाख के फाइन से बढ़ा के 50 लाख किया इस बात का।
0: संसद में चर्चा चल रही है, लेकिन इसी बिल को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं।
3: हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर, संसद में जिस तरीके से विपक्ष आज भी कई मुद्दों को लेकर के हंगामा उनके द्वारा किया जा रहा है, राहुल गांधी हालांकि बोलेंगे कुछ देर बाद, तो आप किस तरीके से देखें?
4: राहुल जी कभी विषय पर नहीं बोलते हैं, और कल भी 9 घंटे चर्चा हुई, कांग्रेस 9 शब्द बिल पर नहीं बोल पाए, उनका युवाओं से कोई लेना देना नहीं, पेपर लीक के बारे में कोई बेहतर सुझाव वो कभी दिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस की इमरजेंसी के काल में 1 लाख छात्र जेलों में बंद थे, मीसा कानून उन पर लगा दिया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, देश भर में सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे भेज के युवाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई, राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, जो शिक्षा मंत्री थे उनको सम्मानित राहुल गांधी ने करके प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, और आज देखिए सोरस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पाती।
3: सर उधर प्रियंका गांधी ये बोल रहे हैं कि गोमूत्र एक्सपर्ट, एक इतने बड़े वैज्ञानिक को इस तरीके का बोलना किस तरीके से आप देखें?
4: मैं इतना ही कहूंगा, इनकी आदत बन गई है पढ़े लिखे लोगों की बेइज्जती करना, उनको अपमानित करना, अगर पूरे गांधी परिवार की डिग्री जोड़ ली जाए, पढ़ाई का अनुभव जोड़ लिया जाए, उससे ज्यादा इनका अनुभव है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी हैं, तो गोमूत्र पर शोध भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? इनको तो अपने संस्कार और अपनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं कांग्रेस को, ये तो अपने वैज्ञानिकों को नीचा दिखाते हैं, शिक्षकों को नीचा दिखाते हैं, उन पर डंडे चलवाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने यही किया। मैं आपको और कहना चाहता हूं कि करना क्या चाहते हैं, इनको कोई रास्ता ही पता नहीं, अपने राज्यों में कुछ नहीं कर पाए, अब जब केंद्र की सरकार ने कदम उठाए तो उसका केवल विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, छात्रों ने इनको पूछा नहीं, कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई, ऐसी हालत है।
3: शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: एक बार फिर से लोकसभा को लिए चलते हैं।
5: बिल टू द पब्लिक सो एज टू एलिसिट द पब्लिक ओपिनियन एंड टू बी रिटर्न बाय 1st December 2026. So I may be given little bit time. I am having 16 more amendments also that is yet to be moved. Sir, there are only cosmetic changes in the amendment bill.
2: You are quite aware there is a time limit, time constraint.
5: Yes, sir. Sir, at the time of moving amendments, we will not be getting time. I will not take time.
2: You have not taken
5: that time. Because at the time of moving the amendments, we may not get time. That's why I would like to get some time. Sir, there are only cosmetic change in the amendment bill. Just an eyewash and to overcome the present political crisis due to the students' agitations against the government. Sir, before coming to the provisions of the bill, I would like to congratulate the students and youth in the street. They were fighting against the government for the genuine cause of the students and that has become a big victory and it is a historical agitation made by the students and youth of this country. Sir, at the same time, I would like to demand before this house, let the Honorable Home Minister, because on 20th July, we have experienced the brutal, inhuman and barbarous lathi charge and also using the weapons and it has never seen in the history of India against the students of this country, youth of the country, the future of the country is being brutally attacked and AK-47 gun is used and so many other weapons are used. I would like to know that who is responsible for this. So we demand that let the Honorable Home Minister come to the house and make a statement before the house. Why? Because Honorable Home, Education Minister minister has resigned. Education minister has resigned on the basis of accountability. Sir, education minister has resigned on the basis of accountability. If that be the case, I would like to know from the government who is responsible for this brutal lathi charge and atrocities against the students and youth of this country. That has to be stated first. Sir, coming to the provisions of the bill, sir, this bill is lacking bona fides. Why I am saying is that the aims and objects, it is saying that it is to strengthen the fairness and credibility of the public examination system. So my specific question to the government is whether the existing statute of 2024.
0: तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी बोलने वाले हैं, अभी इस समय एक एक करके स्पीकर बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि खूब सियासत भी चल रही है। प्रियंका के द्वारा दिए गए एक बयान के बाद से बवाल खड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है।
6: बिल पे अगर बोलती तो वो समझती कि कितना महत्वपूर्ण है बिल, वो बिल पे ही नहीं बोल रहे हैं, तो अब हम क्या जवाब दें? देखिए, इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं, और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना।
7: जो बातें उन्होंने कही है उसका पूरा प्रूफ, उसका पूरा एविडेंस उनके पास है, और वो रखना भी चाहती थी, लेकिन स्पीकर इंटरवीन कर गए और जिन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है। उन्होंने एक तरह से चेयर का सम्मान करते हुए उस बात को रोक दिया, वरना एविडेंस तो है ही है उसका।
8: संविधान के अनुसार और रूल के अनुसार ही पार्लियामेंट में बोला जा सकता है, और एक गरिमा होती है किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, वो गरिमा को कभी नीचे नहीं गिराते। सदन के अंदर प्रियंका जी ने, जिसको कि एक्सपंज कर दिया है स्पीकर साहब ने, और सदन के बाहर राहुल गांधी जी ने, उनको बड़े छोटे का कोई शर्म लाज लिहाज नहीं।
9: जब प्रियंका जी ने उस विषय पे बात की और जैसे ही रिजिजू जी ने कहा कि इसके ऊपर ऑथेंटिक करें, और जैसे ही दुबे जी हमेशा की तरह उनका माइक चालू होता है खड़े हो गए, जब प्रियंका जी ने ऑथेंटिक किया तो अध्यक्ष ने कहा कि इसको जाने दीजिए। क्यों? प्रियंका जी ने तो कहा मैं उसको ऑथेंटिक कर रही हूँ। तो ये बात तो सबको पता है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनका सत्कार किसने किया, उनके साथ में कौन खड़ा था। तो ऐसा है कि जब जब ये बातें आती है, सच्चाई बोली जाती है, तो सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं भाजपा में। भाजपा सच सुन सकती है क्या?
0: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कानून से ज्यादा सियासी बयान सुर्खियों में रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया। हंगामे के बीच प्रियंका गांधी के शब्द संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए, लेकिन सदन के बाहर विवाद और ज्यादा तेज हुआ। खुद प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी से उन्होंने सार्वजनिक माफी की मांग की, तो प्रियंका गांधी ने सबूत पेश

0: mother of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction.
1: तो राहुल गांधी का ये बयान भी आपने सुना और प्रियंका गांधी को भी आपने सुना. उन्होंने बकायदा वीडियो दिखाया और कहा कि मेरे पास तो एविडेंस, मेरे पास तो प्रूफ है. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी की टिप्पणी और उसके बाद से हालांकि उस शब्द को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया. इस पर प्रियंका ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी बातें असंसदीय नहीं थी. उनकी बातों में ऐसा असंसदीय क्या था? उन्होंने जो कहा सच कहा. अगर सच बोलने की सजा देना चाहते हैं तो दे दें. वो मुद्दा लगातार उठाती रहेंगे. और हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए. पीयूष, इस मामले पर ऐसा लगता है कि अब थमने वाली नहीं है. मतलब कांग्रेस भी पूरी अड़ी हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी जवाब मांग रही है.
2: जी बिल्कुल राजीव, ये जो मामला है लगातार राजनीतिक बनता जा रहा है और सरकार का ये मानना है कि जो बिल है उस पर चर्चा विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है. कल लगभग 9 घंटे के आसपास चर्चा हुई, लेकिन सरकार का ये मानना है कि अपनी बात रखने के दौरान विपक्ष के किसी भी नेता ने पेपर लीक के जो प्रावधान सरकार लेके आई उस पर कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की. हालांकि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बाकी जो नेता हो, वो सभी इस बात पर अडिग हैं कि जिस तरह की बातें कही गई हैं प्रहलाद जोशी के द्वारा पास में, उस पर वो अपनी बात रखें, उस पर अपना जवाब दें और अगर उन्होंने नहीं कहा ऐसा तो खंडन करें. एक बात और इसमें साफ हो जाती है, जब प्रियंका गांधी ने ये बात रखी थी तब उस वक्त प्रहलाद जोशी ने कहा था कि इसके कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई बात अगर कही जाती है तो उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है. अब देख रहे होंगे कि किस तरह से चर्चा आगे चलती है. कुछ देर में राहुल गांधी बोलने वाले संसद भवन वो पहुंच गए हैं और जब राहुल गांधी बोलेंगे उसके बाद सरकार का जवाब होने के बाद ये बिल लोकसभा में पास भी होने की संभावना आ गई है.
1: बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए. और कुछ देर बाद राहुल गांधी का जो संबोधन है, उनकी जो स्पीच है वो शुरू होगी. एक बार फिर से लोकसभा आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
9: कुछ तो बात है इस दिल में.
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। Yes.
4: यूपी के रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे विद्यार्थियों की खुशी का टिक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

थोड़ी देर में परीक्षा बिल पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। जारी है दूसरे दिन की बहस। किरण रिजिजू का आरोप, विधेयक के मुद्दे से सदन को भटका रही है कांग्रेस। प्रहलाद जोशी पर दिए बयान पर कायम है प्रियंका गांधी। कहा, वीडियो सबूत है, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली, सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। राज्यसभा में सरकार पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, मैं भी इमरजेंसी में जेल गया, यह कानून व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध। प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में। कांग्रेस जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद। 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना पीना और सोना सब सड़क पर।

0: कहाँ पे? लोकसभा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल, आपका स्वागत है आज तक में। और इस वक्त लोकसभा में चर्चा चल रही है जो नीट पेपर लीक कर को लेकर कानून लाया गया, ये सुनिए।
1: ये किसी मुलजिम का करना होता है तो कोर्ट तय करेगा कि नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा। आप कानून ही बना दो ना कि पेपर लीक के अंदर अगर पकड़ा जाएगा उसका नार्को पॉलीग्राफ पुलिस जब चाहे करवा सकती है। ये हम सुझाव इसके अंदर दे रहे, क्योंकि सर हमने वो स्थिति खुद
2: राहुल गांधी
1: मंत्र पे गए, ये परिस्थितियां देखिए सर। और राजस्थान वो प्रांत जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, अध्यक्ष जी आप भी वहां से आते हैं तो सुध रहे हैं राजस्थान की और पूरे देश की। मेरा आग्रह है कि हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं घूम रहे, हमने कई लोगों को देखा जो पॉलिटिकल
2: जी
3: Thank you, Speaker sir, for letting me speak on the subject of students, of their exams, of the education system, of your proposed bill. But before I start, I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred, this was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. In fact, I am pretty certain, and I have seen examples of it, if my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. Now, I thought I'm going to be giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said, a student is someone who has an open mind. and open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said, in one second, humility. I said, why? She said, the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student, she said, a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand, like a sponge. You want to take everything in, you want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. Speaker, sir, what is going on, sir? So she said to me, she said to me,
2: Manya Sadasya, aap pratipaksh ke neta hain.
3: She said to me,
2: ek minute. Manya Sadasya, please, ek minute. Manya Sadasya,
3: main aapke baare mein nahi bol raha hu.
2: Pratipaksh ke neta hain.
3: I'm not talking about you.
2: Manya pratipaksh ke neta, main aapse aagrah karta hu. आप सुनिए मेरी बात. एक मिनट. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.
3: मैं कर रहा हूं सर. आप मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर.
2: ठीक रहेगा
3: सर. आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर. आई विल कलेक्ट मी कैरी ऑन सर. सो आई सेड सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. उसके लिए सच्चाई मीठी होती है. ट्रूथ इज स्वीट. Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest, proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. I thought कि ये student है और फिर ये idiot भी है. तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त. इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt, who follows the idiot. Now, so Speaker sir,
2: नेता है आप
3: नाउ सुपर
2: सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें
3: okay, उचित रहेगा. आगे जा रहा हूं. सो स्पीकर सर, आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क, एंड दिस फ्रेमवर्क केम टू मी फ्रॉम अ 18 ईयर ओल्ड गर्ल, लवली स्टूडेंट, प्रोबेबली वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इन द छात्रों की गूंज प्रोग्राम्स. सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. और ये सच है. Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 ghante students padhte hain, saalon ke liye padhte hain. Sir, please.
4: Sir,
3: they're not right.
4: We will not allow anybody to talk. These are the point. Kiran Rijuji, then we will not allow. What is this? Sir,
5: सकता ही नहीं। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं
6: सर,
5: वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया।
6: आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, आई डिड यूज इट फॉर यू।
5: रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब
7: है,
5: और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है।
2: माननीय सदस्य
6: स्पीकर सर,
2: आप संसद
6: सर, मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट,
2: आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोला,
6: आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता हूँ, मैं दूसरा दे देता हूँ सर।
2: वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसद उसको निकाल देंगे।
6: स्टूडेंट को हम
2: आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है
6: सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज ना, लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द उसका प्रॉक्सी शब्द
2: नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विधेयक पर आप बोले
6: सर,
2: आपसे ये मेरी अपेक्षा
6: सर, बट आप सर, आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
2: आप विधेयक पर बोले, मैं हाउस को ऑर्डर रखूंगा क्या।
6: सो स्पीकर सर, सो I defined this young lady gave me a beautiful framework, three categories of people. I found this to be speaker sir, order lai sir,
8: you are not allowing that, let me speak.
5: सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया,
7: ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं, जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया, हम आपके आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है, हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है।
9: आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता, हाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं बोलना चाहते मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं, अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है, आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा
6: सर,
9: है।
6: देखिए सर, सर सर हाउस सर टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। द मोमेंट आई ओपन माय माउथ the entire opposition starts to shout
7: मैं फिर से कहता हूं राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया, ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है, फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं
6: सर। इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट अस जस्ट बी प्रिसाइज, इट इज अनपार्लियामेंट्री फॉर मी टू यूज दैट वर्ड अगेंस्ट अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker, ऐसा अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होके यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
10: ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया।
9: एक मिनट माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर
6: मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, आप उनको मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं।
9: नो, संसदीय कार्य मंत्री आप उन...
6: ये फिर से आ गए।
9: रक्षा मंत्री जी
10: बोलना क्या,
9: एक मिनट देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो
6: सर मैंने हिल नहीं किया,
9: हिल नहीं किसी हिल नहीं का, अगर कुछ बोला
6: नहीं, मैंने हिल नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने हिल नहीं किया है।
9: बोलिया नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं, मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं, पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, बोला है सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे।
11: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग मेरे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए।
9: अपना व्यवस्था से निकल जाता है।
11: ओके, ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूँ कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।
6: सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, there is one category of people called student vidyarthi jo vidya ka arth dhoondta hai, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures, so the student is never scared of the truth, he loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, ईमानदार है, वो बाईपास हो जाता है। तो दे आर अपसेट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एंड आवर सिस्टम इज टेरेबल, इट्स टेरेबल, इट्स क्रूअल। लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज आर टेकन फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल, एवरीथिंग हैज बीन प्राइवेटाइज्ड, पेपर लीक्स, इन वन एग्जाम समथिंग हैपन्स, इन अनदर एग्जाम समथिंग एल्स हैपन्स, Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry.
12: Yes.
6: Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this. And I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Yes. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. Yeah. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please.
9: ये प्रश्न माननीय मंत्री बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं.
6: आई सॉ द होम मिनिस्टर सर कारकेड. सर आई सॉ द कारकेड 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग शेकिंग. व्हाट इज दिस सर? Sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir.
9: देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही. आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं
6: द होम मिनिस्टर सर द होम मिनिस्टर
9: आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है. जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं. ये व्यवस्था रहती है सदन के अंदर.
6: सर द होम मिनिस्टर सर द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
9: क्या बोल रहे
5: सर? ये आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं. आप कल्पना कर सकते हैं आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया?
6: What is going on?
5: कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं ऐसा मत बोले. राहुल गांधी जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए. आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं ये ठीक नहीं है सर. अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी. बहुत गलत बात बोला. मैं इसका आपत्ति करता हूँ. कार्रवाई से निकलना ही चाहिए. लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है. आप ऐसे नहीं बोल सकते. गलत बात बोला है. How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते. आप कैसे बोल सकते हैं?

0: A Desmond. Nene, a Desmond. Nene, a Desmond hai agar nahi a Desmond hai agar neta pratipaksh ne koi gambhir aarop lagaya sarkar pe to ye sarkar ki zimmedari banti hai कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
1: ये सही बात
0: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
2: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। ये गलत बात आपको, राहुल जी आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है।
3: देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठी चार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष अखिलेश नहीं बिका, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें ये उचित नहीं है।
4: सर
3: उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
4: सर आतंकवादी को गोली मारी जाती है,
2: ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आप मैं कहूंगा राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस में बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर, यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोले, कैसे बोला है, आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगिए है? ऐसा नहीं चल सकता है, अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं, नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस में बोला है, ऐसा नहीं होगा।
3: नहीं बोलिए आप लेकिन
4: सर द यूज मैं बोल सकता हूँ सर प्लीज
3: मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य की है उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए
4: बोलने तो दीजिए सर
3: आप बोलिए ना
4: बोलने दीजिए सर
3: कौन मना कौन कर रहा बोल लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप सदन के बाहर और सदन के अंदर
4: मैं बोल सकता हूँ सर
3: हाँ बोल सकते हैं आप
4: सदन तो बैठाइए सर इनको बोल सकते हैं स्पीकर सर स्पीकर सर द यूज ऑफ फोर्स use of force can only be authorized by the home minister
3: no.
4: it cannot be authorized either by the home minister no. or the prime minister
3: aise nahi chal sakta sir aap sadan ke andar hamare kai baar kehne ke baad bhi baar baar aagrah karne ke baad bhi aap शेर की अवहेलना कर रहे हैं उचित नहीं है नो no.

और आपको बता दें कि एक बार फिर से बवाल हुआ लोकसभा में. आप देख रहे थे कार्रवाई. राहुल गांधी जब अपना बयान देने के लिए उठे थे तो लगातार रुकावट के साथ वो बोल रहे थे. और

0: ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है, आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूँ, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं,
1: माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए,
0: माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप?
2: माइक नहीं है,
1: माइक नहीं है सर,
0: माइक तो चालू है। आप मानिए, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप?
1: मैं बोल सकता हूँ सर?
0: आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं।
1: उनको आप बैठाइए सर।
0: नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, सदन के, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और मान्य सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पर बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो।
3: तो सीधी कार्रवाई आ रही थी लोकसभा से, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो हंगामा हो रहा था उसके बाद वो बोल नहीं पाए। ऐसे में सभापति ने उन्हें कहा कि अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन अब तक जो हमने कार्रवाई देखी उसमें लगातार राहुल गांधी के बयान के बीच में संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति दर्ज की।
0: ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे।

0: बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उससे पहले आइए आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर लगातार बनी हुई है वो क्या है। लोकसभा में लगातार हमने देखा कि किस तरीके से नेता विपक्ष जब खड़े हुए उन्होंने बोलना शुरू किया तो शुरू से ही उनके बयान के कई हिस्सों पर आपत्तियां दर्ज होती रही और अंत में जब गृह मंत्री को लेकर कुछ बातें नेता विपक्ष की तरफ से कही गई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि गलत बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने आपत्ति दर्ज की क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री की तरफ से पैलेट गन चलाई गई और गोलियां चलाई गई स्टूडेंट्स के ऊपर और इसको लेकर वो लगातार किरेन रिजिजू की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई। आइए सुनिए किस बयान के ऊपर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ।

0: happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please.
1: प्रश्न
0: माननीय
1: मंत्री जी बैठे हैं जिनका विधेयक वो बैठे हैं
0: आई सॉ द होम मिनिस्टर सर कारकेड सर आई सॉ द कारकेड 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग शेकिंग Sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The Home Minister, sir, the Home Minister.
1: No, आज Home Minister पर चर्चा नहीं है. जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं. यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर.
0: Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
1: क्या बोल रहे
2: सर ये आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं
0: What?
2: आप कल्पना कर सकते हैं आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया
0: What is going on?
2: कैसे बोल सकते हैं आप इतना गलत बात करते हैं ऐसा मत बोले राहुल गांधी जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं गंभीरता से बात बोलना चाहिए आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं ये ठीक नहीं है सर अभी थोड़ा ना आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी बहुत गलत बात बोला मैं इसका आपत्ति करता हूँ कार्रवाई से निकलना ही चाहिए लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए ये ठीक बात नहीं है आप ऐसे नहीं बोल सकते गलत बात बोल रहा है
3: How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
1: माननीय सदस्य कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में जब आप नेता सदन के नेताओं को बोल नहीं देते बेल में आते हैं अभी आपको चुप तो है सदन में ऐसा तो नहीं है आज तो आप कर रहे हैं ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा
0: sir,
1: है
0: देखिए सर सर सर हाउस सर टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर द मोमेंट आई ओपन माई माउथ The entire opposition starts to shout.
2: मैं फिर से कहता हूं राहुल गांधी जी आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक एक नियम हमने पढ़ के सुनाया, ये किताब का भी जिक्र किया कि आन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके, ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
4: तो राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री का नाम लिया गया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आपत्ति जताई गई और उसी के बाद यह हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए अभी स्थगित किया गया है, दोबारा से शुरू होगी, हंगामे के आसार हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री का नाम लिया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आपत्ति करते हैं और उसके बाद हंगामा, लग रहा था कि चर्चा सार्थक होगी लेकिन फिर से एक बार हंगामा हो गया। अब आगे क्या रणनीति, क्या आसार नजर आ रहे हैं?
5: देखिए, जो लाइन राहुल गांधी ने कही उसको लेके हंगामा बरपा, जब उन्होंने बोला कि गृह मंत्री ने ये ऑर्डर दिया था कि छात्रों पर गोली चलाई जाए, द होम मिनिस्टर ऑर्डर दैट द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया शुड बी शॉट, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कारकेट गृह मंत्री का जा रहा था, वो कांप रहे थे, इस बात को लेके जबरदस्त हंगामा हुआ। और लगातार कई बार राहुल गांधी बैठे क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं दिया जा रहा दे रहा है, आप पहले सदन को ऑर्डर में लाइए, पर स्पीकर ने बोला कि आप जो है अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मामला एक शब्द पर था। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री की बात आई और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री पर सारा दारोमदार डाल दिया तो हंगामा बरप गया। और अब राहुल गांधी माफी मांगे, ये हमने पूरा सीन देखा लोकसभा में, हम भीतर थे, पूरे सत्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे उसके बाद ही हम हाउस चलने देंगे। इमरान मसूद हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। इमरान साहब, आप हाउस में थे, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ तथ्य होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए।
6: बताइए, गोली चली है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उस पैलेट गन से बच्चों के गोली के निशान राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दिखाया कि जिसके पैलेट गन चली है, AK-47 लेकर के मारते हुए गोली चलाते हुए फुटेज मीडिया ने दिखाने का काम किया है। तो ये तमाम चीजें तो होते हैं ना, गृह मंत्रालय की सब चीजें देखते हैं और दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठी चला करके हाथ पैर तोड़े तो उसके ऊपर इतना बवाल करने से बेहतर है कि शर्मिंदगी अपने आप करें और ये इनको माफी मांगनी चाहिए, छात्रों से इनको माफी मांगनी चाहिए, नौजवानों से जिनके हाथ पैर तोड़ दिए।
5: ये कहा, ये सत्ता पक्ष इस बात को लेके बिफर गया कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कह दिया, अखिलेश यादव बीच में उठे तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप बता दीजिए अगर गृह मंत्री ने ऑर्डर नहीं दिए थे तो किसने दिए थे, किरण रिजिजू से, जिस पर किरण रिजिजू ने बोला इस तरीके से बोले तो अलग बात है, पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दे।
6: नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गृह मंत्रालय की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी दूसरे की थोड़ी ना होती है। तो गृह मंत्रालय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही राहुल जी ने कहा है। और ये असल में राहुल जी ने जो बातें कही हैं उससे परेशानी बहुत ज्यादा है इनको, ये राहुल जी को बोलने नहीं देना चाहते।
5: और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो संसदीय है, वो कहा जा रहा है,
6: उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी सदस्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया। तो जब असंसदीय होगा, जब आप किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, तो गलत। देखिए, राहुल गांधी को बोलने से रोकना चाहते हैं और अगर ये राहुल जी को नहीं बोलने देंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा।
5: पर इमरान साहब, ये सीधे कह देना कि गृह मंत्री ने आदेश दिए,
7: कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है, उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन कि बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो एक किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
8: पर क्या सबक नहीं सीखते, क्योंकि झूठ बोलना सदन के अंदर,
7: वो क्या है कि वो अभी तक अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जनता उनको लगातार पराजय दे रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं है।
9: सर, आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने कि शिक्षा मंत्रालय
7: कितनी बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है। शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं, अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं और हमारी सरकार देश में एक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनकी तरह नहीं कि बाहर से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सोनिया गांधी जी की तरह इनकी सरकार चलाए। इनको अभी तक वही याद है जो कारनामे वो खुद किया करते थे और शायद इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सरकार व्यवस्थित तरीके से कैसे चलती है।
4: तो हंगामा जमकर हुआ, ये आपने देखा। राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आपत्ति जताई गई। अब जो इतना हंगामा हुआ, बयान क्या था वो सुनाते हैं आपको।
10: एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर। He does not have the courage to come and sit here, sir, please.
1: आज प्रश्न
10: माननीय
1: मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं।
10: I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car, like that, looking. Shaking. What is this, sir? Sticker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The Home Minister.
1: आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर।
10: सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ही पुट पैलेट्स इन टू द ब्लड our students. He ordered the students of India to be shot.
1: क्या बोल रहे
10: सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया,
11: व्हाट इज गोइंग ऑन,
10: कैसे बोल सकते हैं आप कितना गलत बात करते हैं? ऐसा मत बोलिए राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसे बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी थूरो ना, आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोल रहे हैं। कैसे आप गृह मंत्री जी पर आरोप कैसे लगा
3: बोल सकते हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग यू कैन मेक स्टेटमेंट आउटसाइड इन द हाउस यू कैन नॉट मेक दैट स्टेटमेंट इट इज अ सीरियस एलिगेशन इट इज अ ब्रीच ऑफ हिज ओन पोजीशन एंड प्रिविलेज
4: तो हंगामा हुआ, बहुत जोरदार हंगामा हुआ जो अभी आप देख भी रहे थे। अब 20 मिनट और 2:30 बजे फिर से शुरू होगी कार्रवाई और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार एक सार्थक चर्चा हो। हमारे साथ मौसमी भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, पीयूष भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी मुद्दे की बात छोड़कर हर बात कर रहे हैं और राहुल कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं किरण रिजिजू की तरफ से हस्तक्षेप कर दिया जाता है। जनता जानना चाह रही है कि कैसे समाधान निकलेगा इस गतिरोध का।
11: जी मानशु, एक बात तो साफ है कि जब 2:30 बजे दोबारा से लोकसभा की कार्यवाही चालू होगी तब उस वक्त भी ये कोहराम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने यह साफ कह दिया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके कोई तथ्य नहीं है, बेबुनियाद आरोप है और ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप राहुल गांधी लगा रहे और इसीलिए हंगामा इतना हुआ। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे थे कैसे विपक्ष सरकार पर हमला हुआ था, लेकिन आज लोकसभा में जब राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया उसके बाद सत्ता पक्ष के जो सांसद है वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और माफी मांगो राहुल गांधी तक के नारे हमने सुने। इसी बीच में लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, 2:30 बजे ये कार्यवाही फिर से शुरू होगी। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसको लेकर सरकार का साफ साफ ये कहना है कि सदन से बाहर आप कुछ भी बोलिए, जो आप चाहे वो बोल सकते हैं, कि सदन के अंदर आप अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपको वो आरोपों के सबूत देने होंगे, उनको सस्पेंशन करना पड़ेगा, उसको आपको पहले से उसका नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि हमको बोले नहीं दिया जा रहा, हमारी बात को दबाया जा रहा है और कई बार उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं बोले शुद्ध के लिए खड़ा होता हूं तब लोकसभा स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष के मंत्री को बोलने का मौका दे देते हैं। तो इसी बीच में लगातार कोहराम के बीच में फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2:30 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद है वो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग करेंगे। वही दूसरी ओर राहुल गांधी फिर से ये आरोप दोहरा सकते हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा।
4: अच्छा, मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, एक बात बताइए, हमने ये देखा है विपक्ष की भूमिका को पहले भी राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका बहुत स्पष्ट रहता है। इससे पहले भी जब इस्तीफे की बात हो रही थी इस्तीफा दो के नारे और सदन की कार्यवाही स्थगित हो जा रही थी। अब यहां पर जो एनडीए के सांसद हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, किरण रिजिजू हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे इस तरह से कार्रवाई नहीं चल सकती है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं और एनडीए के जो सांसद हैं किरण रिजिजू हैं अगर ये अड़े रहते हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है?
5: बिल्कुल हिमांशु, देखिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल था। मैंने देखा कि हम लोग की आंखों देखी हम बता सकते हैं कि पूरा हाउस खड़ा हुआ था, सत्ता पक्ष भी खड़ा हुआ था, विपक्ष भी खड़ा हुआ था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि संसद में शोर ही शोर नजर आ रहा था। सबसे पहली बार जब राहुल गांधी ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया जो कहा गया पार्लियामेंट्री है वो 1:18 था, लेकिन 1:18 से लेकर 2 बजे तक इतना बवाल हुआ कि हाउस को अडजर्न नहीं होना था लेकिन हाउस को अडजर्न करना पड़ा। और स्पीकर और जब राहुल गांधी को दोबारा मौका दिया गया, शायद मामला
4: अच्छा, मौसमी मैं अभी रोकता हूँ, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से अमित शाह मिल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किरण रिजिजू से मिल रहे हैं। और देखिए अमित शाह को लेकर बयान दिया था राहुल गांधी की ने लोकसभा में, जिसके बाद हंगामा खड़ा हुआ। अमित शाह से मुलाकात में संबित पात्रा और अनिल बलूनी भी शामिल हैं। तो राहुल गांधी बयान देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आपत्ति जताई जाती है और कहा जाता है कि राहुल गांधी माफी मांगे। अब देखिए 2:30 बजे कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बहुत अहम मुलाकात ये कही जा सकती है किरण रिजिजू की और अमित शाह की। अब इसमें संबित पात्रा भी हैं, इसमें अनिल बलूनी भी हैं। पीयूष बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। पीयूष, इस मुलाकात को कैसे देखें?
11: ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है हिमांशु, जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये मुलाकात संसद भवन के अंदर चल रही है, गृहमंत्री अमित शाह संसद के अंदर ही है और किरण रिजिजू जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है वो फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात में संबित पात्रा जो बीजेपी के ना सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता है बल्कि सांसद भी है वो मौजूद है, और अनिल मलूनी जो बीजेपी सांसद है वो मौजूद है। अमर, हमने देखा है कि जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तब एक बैठक हेमंत मिश्रा के द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार ये कहीं ना कहीं मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि आरोप जो है वो सीधे गृहमंत्री अमित शाह पर लगा दिए हैं राहुल गांधी ने, और सत्ता पक्ष के सांसदों का ये मानना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इसका कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाए हैं, और सदन में अगर कोई आरोप आप लगाते हैं तो आपको उसके लिए एविडेंस भी देना होता है, सबूत पेश करने होते हैं। इसीलिए जिस तरह से हंगामा हुआ उस बीच में किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हो रही है, और इस मुलाकात के बाद जरूर एक स्टेटमेंट जो है वो सकते हैं,
4: स्टेटमेंट आगे दिया जा सकता है। देखिए बहुत अहम मुलाकात है और 15 मिनट का वक्त बचा है, 15 मिनट यानी 2:30 बजे ये कार्रवाई दोबारा से शुरू हो जाएगी, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जो इस्तीफा जो राहुल गांधी की तरफ से जो माफी मांगने की बात पर अड़े हुए हैं केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी तरफ से, तो उसमें क्या होता है ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन अब तक आप अगर अनुभव की बात करें तो पीयूष ये बताइए कि क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि हमने राहुल गांधी को देखा है, राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और अगर राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आगे क्या संभावना है?
11: ये देखिए अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो जरूर ये होगा कि सत्ता पक्ष के सांसद सरकार की तरफ से लगातार राहुल गांधी से माफी मंगवाने की अपील लोकसभा में होती रहेगी, लगातार नारेबाजी होती रहेगी, क्योंकि जो राहुल गांधी ने बोला है वो बिल्कुल बेबुनियाद और उसमें कोई सत्य नहीं है, इसीलिए लगातार हंगामा होगा। 2:30 बजे के आसपास जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद जरूर इसमें को दोहराएंगे कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की तरफ से बात कही जाएगी। अब देखना होगा कि कुछ देर में किस तरह से चीजें बदलती है, अगले कुछ मिनटों में जब इस मुलाकात के बाद चीजें बाहर निकल के आती है तो इसमें संभवतः ये पूरी बात है कि संबित पात्रा की तरफ से हो सकता है कि वो प्रेस को एड्रेस करें, वो अपनी बात रखें, और जब संबित पात्रा बोलेंगे तो जरूर जो बातें राहुल गांधी ने कही है उसको आगे रखेंगे।
4: अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आज समझिए आज बहुत अहम दिन सदन का, क्योंकि पेपर लीक बिल पर यहां पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से अपनी बात रखी जाती है, और राहुल गांधी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं उसके कुछ ही देर बाद हंगामा होता है, सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई जाती है, लेकिन जब राहुल गांधी जब अपनी बात रख रहे तो उसके बाद जब सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, आपत्ति जताई गई, तो फिर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के पक्ष में अपनी बात रखी, और फिर उसका जवाब केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री थे किरण रिजिजू उन्होंने कैसे दिया वो सुनवाते हैं आपको।
12: अध्यक्ष महोदय अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
13: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा राहुल गांधी जी ने, इंक्वायरी का बात नहीं किया उन्होंने, सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है, एक ही नहीं ये गलत बात। आपको राहुल जी आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए, आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, आपका शब्द बहुत गलत बात है।
4: तो देखिए बेहद गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा होनी थी लेकिन गंभीर हंगामा यहां पर हो गया, अब से कुछ देर बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी, आपको लिए चलेंगे लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
15: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
16: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है।
18: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
19: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
20: वाह वाह वाह वाह।
19: सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
21: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
22: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
23: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
7: दिल्ली से महाराष्ट्र तक पेपर लीक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सबूत पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
8: जब एग्जाम थी उसके दो दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे, और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
7: वहीं रोहित पवार के आरोपों पर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है।
9: दो उमेदवार या परीक्षे मध्ये सिलेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याला वाटलं की ही परीक्षा 12-14 वर्षांनी झालेली आहे, आता पुढची 10-12 वर्ष परीक्षा होणार नाही आहे, त्यामुळे आपण या सध्याच्या जर आपण अशी तक्रार केली तर कदाचित ही परीक्षा रद्द होईल आणि फेर परीक्षा होईल, म्हणून त्यांनी अशी तक्रार केलेली आहे।
7: इसके अलावा रोहित पवार ने ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कहा है कि जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक फाइनल रिजल्ट और नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: लोक परीक्षा बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री शाह पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा में एनडीए सांसदों ने जमकर किया विरोध। हंगामे के बाद कार्रवाई आधे घंटे तक बाधित। बीजेपी ने की माफी की मांग। प्रहलाद जोशी पर दिए बयान पर कायम प्रियंका गांधी, कहा वीडियो सबूत हैं। स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। राज्यसभा में सरकार पर भड़के खड़गे, कहा देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। नड्डा ने कहा मैं भी इमरजेंसी में जेल गया, ये कानून व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध। प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में। कांग्रेस जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना पीना और सोना सब सड़कों पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: तो लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी का एक बयान और एनडीए सांसदों ने माफी की मांग की। कौन सा बयान था वो आपको सुनवाते हैं।
2: एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर। ही डज नॉट हैव द करेज
3: आज प्रश्न
2: माननीय
3: मंत्री बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं।
2: आई सॉ द होम मिनिस्टर सर कारकेड सर आई सॉ द कारकेड 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इन साइड द कार लाइक दैट लुकिंग शेकिंग।
4: किसका नाम बोला? चल गया, किसको बुलाया? नहीं नहीं क्या बोलेंगे। राहुल जी, राहुल जी
5: सुनिए सुनिए,
4: बोलिए बोलिए निशिकांत जी।
6: दिया ये हाउस नियम कानून से चलता है, रूल 117 और रूल 132 ये कहता है
4: कि
6: कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा, रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा
7: उसमें 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो देखिए 3 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है और जैसा कि इससे पहले कई बार हमने देखा है कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद तुरंत स्थगित हो जाती है, तो ऐसा ही हुआ। सबसे पहले 2 बजे कार्रवाई स्थगित होती है, राहुल गांधी का एक बयान और उसके बाद जमकर हंगामा होता है। एनडीए सांसदों की तरफ से माफी की मांग की जाती है। फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और जैसे ही 2:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई निशिकांत दुबे अपनी बात रख ही रहे थे, तुरंत लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। यानी आधे घंटे के लिए और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आज काफी हंगामेदार दिन रहा। तो जो लोग अभी जुड़े उनको बता देते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी और राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया गया और उसके बाद एतराज जताया गया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से। क्या कहा गया था किरण रिजिजू की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं।
8: होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति अधिकारी को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते है। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता, आप परमिशन नहीं दे सकते।
9: बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप, आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप, किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते आप। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूँ, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा, मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं,
0: तो एक तरफ विपक्ष था, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष था। विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोकझोंक चल रही थी क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया गया था, जिस पर आपत्ति किरण रिजिजू की तरफ से जताई जा रही थी। अब इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस नोकझोंक में शामिल होते हैं और राहुल गांधी का बचाव करते हैं।
10: नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
8: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा राहुल गांधी जी ने, इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप, ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए, आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, आपका शब्द बहुत गलत बात है।
0: मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। मौसमी, बहुत उम्मीद की जा रही थी कि 2:30 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर एक सार्थक चर्चा होगी, राहुल गांधी बोलेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिर से 3 बजे तक के लिए शुरू हो गई कार्रवाई, स्थगित हो गई, तुरंत कार्रवाई स्थगित कर दी गई। क्या 3 बजे उम्मीद क्या की जाए?
11: देखिए, दोनों पक्ष जो है अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। किरण रिजिजू ने दो टूक कह दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, आप या तो अपनी बात माफी मांगे या फिर सबूत दीजिए जो आपने आरोप लगाए हैं। तो अपने आप में ये बात इस पर अड़ गई, और राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। वो अगर उनको दोबारा मौका मिलता है तो शायद वो वही बात दोबारा दोहरा दे, और ऐसा पहले भी हुआ है कि कई बार उन्होंने अपनी भाषणों में वही बात दोहरा दी जिस पर बवाल मचाया। अब ये देखना होगा कि क्या देश के जो नेता, लोकसभा के जो नेता विपक्ष है, वो अपना भाषण कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। दूसरी बात की क्या वो माफी मांगते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव होता है बीजेपी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ? ये अप्रत्याशित होगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरीके से मूव हो, और वो भी बात पेचीदा इसलिए हो गई है क्योंकि मामला गृह मंत्री पर आ गया है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री जो है वो लोकसभा में मौजूद नहीं है, उसके बाद उन्होंने बोला कि गृह मंत्री जो है वो जवाब दे, उन्होंने कार्रवाई करवाई, छात्रों को पिटवाया, उन पर अच्छा, गोली चलवाई।
0: अभी अभी रोकते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें कि स्पीकर से मिलने का सिलसिला भी अभी जारी है, मुलाकातें भी हो रही है, शायद कोई बात बन जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर से मिले। अब खबर यह है कि प्रियंका गांधी भी स्पीकर से मिलने पहुंची हैं। अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर से मिल रहे हैं। देखिए, 3 बजे कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मुलाकात हो रही है। हमारे साथ सहयोगी मौसमी हमारे साथ जुड़ी हैं। मौसमी, स्पीकर से मिलने दोनों पक्ष पहुंचे हुए हैं। किरण रिजिजू की मुलाकात चल रही है, प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं। अब इन मुलाकातों से क्या समाधान निकल पाएगा?
11: देखिए, बड़ी पेचीदा बात हो गई है और देखना होगा कि क्या स्पीकर कुछ मध्यस्थता करके बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको एक्सपंज कर दिया गया है और राहुल गांधी आगे की बात करें, पीछे की बात ना करें। देखिए, सरकार के ऊपर भी दारुमदार है, उनके ऊपर भी दारुमदार है कि ये बिल पास हो। मामला छात्रों का है, विपक्ष इसको बुनाने की कोशिश करेगा, अखिलेश यादव ने भी बीच में हस्तक्षेप कर दिया, तो सरकार उस बात को लेके भी सजग होगी कि किस तरीके से उसकी छवि जो है वो बाहर जाती है। और उसको लेकर भी शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी और किरण रिजिजू इतने हंगामे के बाद और दो स्थगन के बाद दोबारा एक साथ इस तरीके से आप बैठे हुए हैं और स्पीकर के सामने मध्यस्थता चल रही है। जाहिर तौर पे स्पीकर की भी ये कोशिश होगी कि ये बिल को पारित किया जाए और ऐसे में आगे जो स्पीकर्स है वो वक्ता बोले। पर लेकिन राहुल गांधी क्या ये शर्त रखते हैं कि उनको अपनी बात
12: What would you call this color?
13: This would be parrot green.
12: Parrot green. क्या हो गया?
14: आपसे माफी की मांग
15: कह रहे थे, अभी बोलने देंगे। जिस तरह से किरण जी कह रहे कि राहुल माफी मांगे तभी हम बोलने देंगे।
12: देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया,
13: इसको नीचे कर लिया।
12: दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। Otherwise, he ordered it, in which case he is culpable. मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना
16: सर? बीजेपी ये भी कह रही है, मांग कर
12: रहा है। एंड देखिए, सदन में भी नहीं आए, why is he not coming? Supposedly brave home minister of India, why is he not in the house? If he is not done anything, If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। एनीवे, नहीं देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए।
0: तो राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे और अब देखिए 3 बजे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या 3 बजे एक सार्थक चर्चा हो पाएगी। देखिए, उससे पहले मुलाकातें हो रही हैं, स्पीकर से मिलने के लिए किरण रिजिजू पहुंचते हैं, प्रियंका भी पहुंचती हैं। अब माफी मांगे जाने पर राहुल गांधी का भी बयान आ गया कि संसद परिसर में बोले राहुल की देखते हैं, तो आमतौर पर बोल देते ना कि हम चलिए देखते हैं, तो ऐसे ही राहुल गांधी ने भी कह दिया कि देखते हैं। संसद में बोलने का मेरा हक दिया जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था 2 बजे से पहले कि मेरा माइक नहीं है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अब जब माफी मांगे जाने का सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। संसद में आज बहुत अहम चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया वो हम आपको सुना देते एक बार फिर।
12: इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना
16: सर? बीजेपी ये भी कह रही है, मांग कर रहा है।
12: एंड देखिए, सदन में भी नहीं आए, why is he not coming? Supposedly brave home minister of India, why is he not in the house? If he's not done anything, agar kuch nahi kiya, koi order nahi diya, to phir bas safai de de ki maine order nahi diya. Anyway, nahi dekhiye main cheez।
0: तो देखिए बयानों का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर ने बात की, उन्होंने क्या कहा आज की कार्यवाही पर, वो सुनिए।
17: जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के अंदर गृहमंत्री अमित शाह को लेकर के इस तरीके का बयान दिया है, आप उसको कैसे देख रहे हो सर?
18: देखिए, पूरे आंदोलन में कहीं कोई गृहमंत्री की का नाम नहीं आया। आंदोलन समाप्त हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और आंदोलनकारी वापस गए। जो प्रधानमंत्री या सरकार ने वायदा किया था कि हम नीट की परीक्षाएं या इस तरीके की परीक्षाओं की स्वच्छता के लिए हम कठोर कानून बनाएंगे, और वो कठोर कानून आ भी गया, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या 3 मंथ में डे टू डे करके लॉजिकल एंड तक कन्विक्शन का सवाल हो या 10 साल की सजा 10 करोड़ की, और उसको लेकर के चर्चा हो रही। आज पहली बार एक अनर्गल, गंभीर, तथ्यहीन राहुल गांधी, पहले तो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इडियट इडियट शुरू किया स्पीकर के बार बार आग्रह के बाद, क्या आज उनकी स्पीच है, और उसके बाद सीधा उन्होंने गृहमंत्री पर आरोप लगा दिया। मैं चुनौती देता हूं संसदीय कार्य मंत्री जिनका कि आप कोई आरोप लगा रहे हैं रूल 353 में, उस आरोप को किसी गृहमंत्री या मंत्री या सदस्य के खिलाफ है तो आप लिखित दें स्पीकर को और उस मंत्री को दें जिससे उसका जवाब। इससे साफ है कि इस सदन का एक एलओपी होकर के ये दुरुपयोग करेंगे कि देश में झूठी बात केवल लोगों को अनर्गल गंभीर इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करें। उस गृहमंत्री के लिए जो देश की आज़ादी के बाद से नक्सल आंदोलन जिसकी कितनी बड़ी आहुति हुई, कांग्रेस के नेता हों चाहे किसी पार्टी के, बेगुनाह जनता हो, सैनिक हो या कॉप्स हो, सिपाही हो, कितनी बड़ी संख्या, एक संकल्प लिया कि हम देश से पूरे इस नक्सल बात का अंत करेंगे, उस तरीके से एक पटेल की भूमिका की तरह से काम किया, और आज वो उन छात्रों को लेकर के उन पे आरोप लगा रहे हैं।
17: राहुल गांधी की ऐसी भूमिका, मतलब आप सदन चेयर में भी बैठते हैं, इस तरीके से क्यों इसको आप देख रहे हैं?
18: इसलिए कि न वो संसदीय मर्यादा का पालन करते हैं, न उनको नियमों का ज्ञान है, न उनको परंपराओं का ज्ञान है, वो केवल कहानी सुनाते हैं और केवल मोदी जी और गृहमंत्री जी पे केवल सीधा सीधा एक अनर्गल आरोप लगा के अटैक करना चाहते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, तथ्यहीन है। स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री बार बार कह रहे हो, और आप सोचिए बच्चों की तरह से बार बार सदन में बैठ जा रहे थे कि हम, आप आखिर देखिए प्रधानमंत्री को कितनी बार इन लोगों ने नहीं बोलने दिया, तब भी प्रधानमंत्री बोलते रहे। आज संसदीय कार्य मंत्री राजनाथ जी, पूरी पार्टी, वो कुछ भी बोले जा रहे थे, उनको बैठ के सुन रहा था, और कुछ भी अनर्गल बातें, लेकिन जब उन्होंने गृहमंत्री को जिस तरह से कहा कि उनके आदेश से, फिर उस पर संसदीय कार्य मंत्री या इस तरीके, तो जब तक वो माफी मांग नहीं लेंगे कैसे सदन चलेगा।
0: तो राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, और सत्ता पक्ष उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल की तरफ से भी बयान आया है, और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
19: राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया?
3: इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिसइन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर।
4: मैं ये मानता हूँ कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
5: प्रियंका गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। विरोध के बाद सदन की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी।
2: एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं।
5: मामला बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी।
2: मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई।
5: प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने संसद में विरोध किया। किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका से सबूत देने और माफी मांगने की मांग की।
3: ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। एक एक कुछ भी बोल के चल सकते है क्या?
5: प्रहलाद जोशी के सबूत मांगने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जल्द सबूत दूंगी।
6: आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का, और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी।
5: वहीं प्रियंका के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर बेहद तीखा हमला किया।
7: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थी अ मैन देन समबडी हु says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange.
5: अब देखना होगा, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर क्या आज भी सियासी तनातनी देखने को मिलती है? आज तक ब्यूरो।

0: in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस अब कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।
2: yes.

0: पहाड़ों पर भारी बारिश कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल देती है, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा पुल है जहां मंदाकिनी नदी में ये महिलाएं फंस गई हैं। ये महिलाएं नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने के लिए यहां गई थी, लेकिन अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। जिस तरफ से महिलाएं गई थी वहां पानी भर गया, जिससे महिलाएं यहीं फंस कर रह गई।
1: ये तीन महिलाएं तिलवाड़ा की नदी के तट पर लकड़ी लेने गई थी, तो दोनों ओर से बाढ़ आने के कारण ये तीनों महिलाएं यहां पर फंस गई हैं।
0: इसके बाद लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी के एक तरफ से छोटा सा अस्थायी पुल बनाया गया और फिर एक एक करके इन महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था और इसी बहाव में इन महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में सारी नदियां उफान पर हैं। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। अलकनंदा का डेंजर लेवल 627 मीटर है और नदी अभी 626 मीटर तक पहुंच गई है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव की मूर्ति है वो भी नदी में डूब गई और अब तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह है प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और बगल में अलकनंदा बहती है। अलकनंदा के जल से श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा सीधे खुद ही गुफा के अंदर जलाभिषेक कर रही है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बारिश और भूस्खलन हो रहा है, इसीलिए यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है, क्योंकि कल रात ही केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी में पहाड़ी टूट गई और मलबा दो दुकानों में घुस गया, जिससे कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर चमोली में देर रात से बारिश जारी है, जिसकी वजह से कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। यहाँ पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़कों पर आ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन कह रहा है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और सतर्क रहें। बारिश से तबाही उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ चंबा में सोमवार की रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलबा कई घरों में घुस गया। राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा वाहन दब गए, जिनमें निजी कारें, मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकिलें और स्कूटी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा में एनडीए सांसदों ने जमकर किया विरोध। हंगामे के बाद कार्यवाही आधे घंटे के लिए हुई बाधित। बीजेपी ने की माफी की मांग। प्रहलाद जोशी पर दिए गए बैन पर कायम प्रियंका गांधी, कहा वीडियो सबूत है, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया।
1: माननीय मंत्री जी
2: अध्यक्ष महोदय, इस 10 घंटे चलने वाली इस चर्चा के उपरांत मुझे उत्तर देने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष LOP जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर इन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे, हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं, गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब यह भी कहा गया अब इन्होंने एक कहानी सुनाई तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष न मालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब ना मालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है, जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7LKM के दरवाजे पर जा बैठे, और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले, और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में कुरहेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पर दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जानूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि अटमोस्ट रिस्ट्रेंट वॉज एक्सरसाइज एंड इट वॉज मेड श्योर दैट कैजुअलिटीज डोंट हैपन। लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। यह आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, वो कहती है कि 150 टाइम्स पेपर लीक हैपन्ड विच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7 billion, 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहाँ से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 एफआईआर लग चुके हैं पिछले दो वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए, शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 760 टू 1293। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विदाउट एविडेंस। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 51,534 टू 64,896। इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए, इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच इज अ गेम चेंजर एंड विच शुड हैव हैपेंड एक्चुअली। वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमनक्लेचर यूज इन द कॉरपोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट, एंड यू हैड मेड यंग चिल्ड्रन prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं सब्जेक्ट में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट 31,100 से 86,300 तक। अब तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया, और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया, और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन और अगले 3 महीने में ट्रायल। इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई, हम तीसरे दर्जे पर आज खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस विषय, इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि रिपब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी, कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज इनएक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई, फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इंप्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई, फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज रिड्यूस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
1: प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री एन के प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर सौगत राय, दीन कोरिया, नीरज मोरे, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधा कृष्णन, ए बी बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, डीएम कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: परीक्षा संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है, ये इसमें की बड़ी खबर है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा से पारित हो गया है। शोर शराबे के बीच में ये बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हंगामे के बीच में ऑपोजिशन जमकर नारेबाजी कर रहा था, पूरे उनके संबोधन के दौरान एक सेकंड के लिए भी ऑपोजिशन खामोश नहीं रहा, चीख और चिल्ला रहा था। और इस हंगामे, इस शोर शराबे के बीच में यह बिल पास हो गया है, लोकसभा से पास हुआ है। हालांकि अभी आगे का, चूंकि राज्यसभा में जाएगा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। अब एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया, राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी की स्पीच में जो उनके उनकी स्पीच के कुछ हिस्से थे उस पर आपत्ति उठी, खूब हंगामा हुआ, उसकी वजह से कार्यवाही पर असर पड़ा, बार बार स्थगित करने पड़े। लेकिन अब जब 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो तब केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखनी शुरू की। हालांकि लगातार हंगामा हो रहा था। राहुल गांधी ने कहानी सुनाई थी, एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई थी, और उसके बाद अभी जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की सुनाई गई कहानी पर भी एक कहानी सुनाई। और उन्होंने, राहुल गांधी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ऑपोजिशन को लगातार घेरा, और उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, तमाम चीजें उन्होंने भी रखी साथ। लोक कल्याण मार्ग में क्या होता था, उन्होंने कहानी सुनाई कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर कैसे ये हताश होकर बैठ गए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, ऑपोजिशन जो पहुंच गए थे, तो विपक्ष ने तमाम जो हंगामा लगातार इस पर किया। लेकिन ये बिल पास हो गया है, कल चर्चा की शुरुआत हुई थी और आज ये बिल लोकसभा से आखिरकार पास हो गया है। प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, असम आंदोलन, कई सारा जो है उनके स्पीच में कई चीजों का जिक्र रहा। और हंगामे के बीच में उन्होंने ये भी बताया कि ऑपोजिशन तैयारी के साथ नहीं आया था, ऑपोजिशन ने बिल पर बात ही नहीं की, उनको जानकारी भी नहीं था कि जब से ये पहले कानून बना था तो कितने केसेस में, 52 तो FIR इसमें जो है दर्ज हुई थी। वेणुगोपाल का उन्होंने जिक्र कर दिया, कहा कि उन्होंने कहा था कि कई सारे स्कूल बंद कर दिए। दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि उच्च शिक्षा के स्तर पर अवसरों में 30% तक का इजाफा हो गया है। हिमांशु, आम तौर पर जब ऑपोजिशन हंगामा करता है तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, आज विपक्ष नारेबाजी कर ही रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री उस दरमियान भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने अपनी बात पूरी रखी हंगामे और शोर शराबे के बीच में।
4: देखिए, शोर शराबा चलता रहा, हंगामा जो है वो चलता रहा, और उसी हंगामे के बीच में, क्योंकि सरकार को ये बिल पास कराना बहुत जरूरी था और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो संदेश देना चाहती है युवाओं को कि इस बिल के आने के बाद जो है पेपर लीक जैसे मामलों में जो है वो कमी आएगी। और इसीलिए राहुल गांधी जब अपने भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जिस तरीके से आतंकी शब्द और कुछ ऐसे तथ्य तीन चीजों को जो कहने की कोशिश की जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो ऑब्जेक्शन किए गए, जिसमें रूलिंग पार्टी की तरफ से जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी ऑब्जेक्ट किया, निशिकांत दुबे और तमाम सांसदों की तरफ से जो ऑब्जेक्ट किया गया, तो हाउस की प्रक्रिया नहीं चली। और उसके बाद क्योंकि राहुल गांधी से मांग की गई, उन्होंने जो कुछ कहा उसके माफी मांगे, नहीं तो सरकार जो है इस बिल को बिना अधूरी चर्चा के अंदर ही जो है वो पास करा लेगी। और उसके बाद जब राहुल गांधी माफी के लिए तैयार नहीं हुए तो जितेंद्र सिंह ने जो है वो हंगामे के बीच में अपनी बातों को रखा और फिर सदन
0: हिमांशु। लेकिन राहुल गांधी के जो तीन शब्द है स्टूडेंट इडियट अंधभक्त, इसने ऐसा लगता है कि आप एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दिए?
4: देखिए बिल्कुल, जब भी राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो इसी तरीके से वो आक्रमक रूप अपनाते हैं और उनका रुख बिल्कुल साफ होता है, चाहे उस उनके निशाने पर गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जब जब वो बोलते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से नियमों के तहत ये बताया जाता है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, और उसको लेकर जब जब राहुल गांधी बोलते हैं सदन में इसी तरीके का हंगामा जो है वो देखने को मिलता है।
0: अब कल जो है स्थगित कर दी गई है, अब राज्यसभा के लिए क्या प्रिपरेशन है सरकार की?
4: देखिए सरकार की प्रिपरेशन साफ है कि अब इस बिल को जो है राज्यसभा के अंदर जो है सरकार लेके जाएगी और कल जो है राज्यसभा के अंदर इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस और पासिंग एंड कंसीडरेशन के लिए रखा जाएगा, जिससे जब ये दोनों ही सदन से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हाथ से नोटिफिकेशन के बाद जो है ये कानून का रूप ले लेगा, जो प्राइवेट एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल है, ये 2026 के अंदर जो है नए अमेंडमेंट्स के साथ नए संशोधन के साथ जो है नए कानून में दिखाई देगा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग होगी, 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, 3 महीने के अंदर जो है वो सुनवाई करके फैसला देना है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रावधान है सजा के वो 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना है।
5: संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल यानी एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो गया है, परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। अब कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा को अडजर्न कर दिया गया है, आगे अभी चर्चा और होगी इसमें राज्यसभा में। लेकिन फिलहाल जो सरकार का लक्ष्य था वो आखिरकार अभी उसे हासिल हो गया है, इस बिल के साथ उम्मीदें भी बहुत सारी हैं। 2024 में जिस स्वरूप में यह बिल आया और अब संशोधन के बाद जिस तरीके का यह बिल रहेगा उसके साथ पूरे देश की उम्मीदें भी हैं कि परीक्षा लीक प्रूफ हो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

भारी हंगामे के बीच लोकसभा में परीक्षा बिल पास। जितेंद्र सिंह ने दिया चर्चा का जवाब। राहुल प्रियंका समेत विपक्ष के सभी आरोपों का चुन चुन कर हिसाब। लोकसभा में पूरा नहीं हुआ राहुल गांधी का बयान। गृहमंत्री पर आरोपों के बाद आग बबूला हुआ एनडीए का। पहले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष, तब आगे बोले। राहुल ने कहा, सदन में बोलना मेरा हक। प्रहलाद जोशी पर दिए बयान पर कायम प्रियंका वाड्रा, कहा वीडियो सबूत है, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली, सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध। प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6, जांच के दायरे में कांग्रेस जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीद के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना पीना सोना सब सड़क पर।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक सबसे बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर थी। लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है। बाहर निकलकर लोकसभा से प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बात की।
1: आपकी स्पीच पूरी नहीं हो पाई राहुल जी, क्या मुझे आपको लगता है सर, आप नेता विपक्ष है, क्या आपको लगता है बोलने नहीं दिया गया आपको सर? सरकार कह रही थी आप अपोलोजाइज कर लीजिए, इफ यू टेक बैक योर वर्ड्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर सकते हैं।
2: एनीथिंग यू हैव टू से राहुल सर ऑन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन।
1: सबने देखा राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी हमारी। सरकार कह रही है कि माफी मांग ले राहुल जी, हम सरकार कह रही है कि राहुल जी माफी मांग ले तो वो अपने बयान को वापस ले ले। कैसे देखते हैं आप इसको कि नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो सब कुछ पता है? तो यहाँ पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रियंका गांधी ने हमसे ये कहा और जब हमने राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने बोला मैं पूरी बात बताऊंगा। और इसको लेकर जो है कांग्रेस बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है। पूरा जो कांग्रेस के तमाम सांसद है वो वेल के भीतर चले गए। जब हम मौजूद थे वहां पे हमने अपनी आंखों से देखा कि लगातार नारेबाजी होती रही। वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पूरे बिल पर बयान देते रहे और अपने आप में ये वो वक्त है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल पर चर्चा कम लेकिन जो सड़क पर घटा उसको लेके संसद में खूब जोर हंगामा है बरपा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो न तो राहुल गांधी और न ही प्रियंका वाड्रा ने किसी सवाल का जवाब दिया। ये जरूर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें अब सामने आएंगी। आज तक के तमाम सवालों पर केवल ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सारी बातें अब सामने रखी जाएंगी।

0: शॉर्ट बना लो।
1: इस सदन परिसर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को आप एक साथ देख रहे हैं। राहुल गांधी ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उनकी तरफ से लगाए गए कुछ आरोप और कुछ टिप्पणियां, कुछ शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया जिस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता वहां पर हंगामा करने लगे। लोकसभा अडजर्न हुई लेकिन राहुल गांधी आगे नहीं बोल सके। ये कहा जा रहा है कि वो अगर अपनी बातों पर माफी मांग ले उसके बाद आगे वो अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल लोकसभा जब दोबारा उसकी शुरुआत हुई तो जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। राहुल गांधी की तरफ से दिए हुए वक्तव्य का कि उन्होंने निंदा भी की और साथ में बाकी बातों पर और आरोपों पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में क्या कहा आपको सुनाते
2: हैं। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष ना मालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। ना मालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है, जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7LKM के दरवाजे पर जा बैठे। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर इन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे, हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं, गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना, गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता।
1: मौसमी सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। मौसमी, जिन बातों का जिक्र जितेंद्र सिंह की तरफ से किया जा रहा है, जिन बातों पर वो जोर दे रहे हैं कि गृहमंत्री विदेश नहीं गए थे, ये बात गलत बोली राहुल गांधी ने, या फिर गोली चलाने के आदेश को लेकर जो उन्होंने कहा मंत्री कभी नहीं देता मैजिस्ट्रेट देता है, क्या इन बातों का जवाब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देना चाह रहे हैं या फिर अपनी बात को वो आगे रखना चाह रहे हैं?
0: देखिए श्वेता, ये हम लोग को बताया प्रियंका गांधी ने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राहुल गांधी सारी बात रखेंगे। तो जाहिर तौर पे जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये कहा कि अमित शाह ने ऑथराइज किया था कि छात्रों पर गोली चलाई जाए, तो उस जो बात उन्होंने कही उसी को वो आगे जाहिर तौर पर रखेंगे। और जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये बयान भी दे रहे थे, तो राहुल गांधी खुद भी हाउस में थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों बैठे हुए थे, और तमाम सांसद उनके जो है वो वेल में थे, बिल्कुल दो फीट की दूरी पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना बयान दे रहे थे। लगातार कांग्रेस के सांसद वेल में हंगामा कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने भी सुना होगा जो बातें डॉक्टर जितेंद्र सिंह रख रहे हैं, और जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल भी उनसे पूछे जाएंगे, वो उन पर इलाबरेट भी करेंगे। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि जो बात वो अपनी पूरी नहीं कर पाए, वो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने वाले हैं। खास तौर से उनका निशाने उनके निशाने पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सारी बात इसी से शुरू हुई थी श्वेता, कि गृह मंत्री अमित शाह हाउस में नहीं आए हैं, और राहुल गांधी ने उसी को लेके पूरा जो अपना हमला है, पूरा अपना निशाना जो है वो गृह मंत्री पर केंद्रित रखा, जिसकी वजह से इतना हंगामा बरपा।
1: हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, चलिए, बिल जो संशोधन के साथ अपना पास तो हो गया यहां पर, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे, आज जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए जो है वो अगर इस बात पर जोर दे रही है कि राहुल गांधी माफी मांग लें फिर अपनी बात आगे वो करते रहें, क्या हम ये समझें कि इस समय जो बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई है सरकार फ्रंट फुट पर ही रहना चाह रही है?
3: देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार जो है वो फ्रंट फुट पर रहना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण श्वेता ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कहा कि वो माफी मांगे, और लगातार वो इस पर हमलावर थे, और उसके बाद जिस तरीके से नियमों का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और उनके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने ये हवाला दिया कि इस तरीके की चीजें बयान जो है राहुल गांधी सदन में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के कारण जो है सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा दो बार। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था विपक्ष को कि अगर राहुल गांधी अपने बयान पे माफी मांगेंगे तभी जो है हम उनका जो स्पीच है उसको कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज हम सीधा जो है इस बिल को पास करना चाहते हैं। जब राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने अपोलोजी नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया, और उसके बाद जो है सरकार ने इस जो बिल था इसको लोकसभा से पास कराया, और जितेंद्र सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है।
1: लेकिन इस सबके बीच एक नए हंगामे की सूरत दिख रही है मौसमी।
0: बिल्कुल, देखिए बड़ा बवाल जो है खड़ा हो गया है। मैंने किसी बीजेपी के मंत्री से पूछा भी था कि क्या, क्योंकि आप देखिए किरण रिजिजू ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, तो ये मामला अभी मॉनसून सत्र चल रहा है श्वेता, मामला और तूल पकड़ सकता है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्योंकि हर बार जब राहुल गांधी हाउस में आएंगे फिर वो किसी और मुद्दे पर भी इस मुद्दे को रेज कर सकते हैं, या जीरो आर में इसको लेके हंगामा हो सकता है। आप देखिए जिस तरीके की नारेबाजी तमाम कांग्रेस के सांसद कर रहे थे, वो सब गृह मंत्री अमित शाह और जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसको लेकर थे, तो ये बवाल और बढ़ने वाला है। और राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कह सकते हैं जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से आ सकता है, तो ये मामला भी थमने वाला नहीं है। और लगातार छात्रों के इस पूरे मसले को लेके अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लग गई है।
1: हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज संसद में जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी उसमें राहुल गांधी की तरफ से क्या आरोप लगाए गए जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है।
4: And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please.
5: आज ये प्रश्न है, माननीय मंत्री बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं।
4: आई सॉ मिनिस्टर सर कारकेड सर आई सॉ द कारकेड 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग शेकिंग व्हाट इज दिस स्टिकर सर Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared.
6: Home Minister का कौन सा order है? वो order का copy आप निकाल के बताइए. आपने कहा Home Minister ने order दिया है firing के लिए. आप वो order का copy निकालिए. आप बताइए किसने आपको बताया? कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है कौन सा अधिकारी आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए ऐसा नहीं हो सकता है चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ये भारत का संसद है यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते ऐसा नहीं हो सकता आप परमिशन नहीं दे सकते
7: बिना नोटिस के बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप आपने बिना इंक्वायरी बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप किसी पे नहीं लगा सकते एक सदस्य भी नहीं लगा सकते आप नहीं बोलना चाहते मैं नियमों से बात कर रहा हूँ नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है इतने गुस्से में मत होइए आप सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता ऐसा नहीं है
8: नहीं मैं जाकर माफी मांगते हैं आज सदन का दुरुपयोग किया गया उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता
9: सर राहुल गांधी ने एक और आरोप आरएसएस को लेकर के लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिंबल थे आरएसएस का शिक्षा विभाग पर पूरा कब्जा है और हर संस्थान में आरएसएस के लोग ही काबिज
8: हैं एक होता ना फोबिया हो गया है ये पीढ़ी दर पीढ़ी फोबिया है आरएसएस का इनको शायद इनको पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है और बार बार इस तरह की टिप्पणी उसके लिए करना ये दोनों अपना कद दिखाते हैं राहुल जी और प्रियंका जी और मैं इतना ही कहूंगा आरएसएस का शाखा ज्वाइन कर ले थोड़े संस्कार आ जाएंगे थोड़ी समझ आ जाएगी तो टिप्पणी करने अपने आप बंद कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ भी जाएंगे
9: थैंक यू
1: संबित पात्रा की तरफ से भी क्या कहा गया है सुना देते हैं
10: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रखा है और जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बांधा है वह आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है पहली बात गोली चली

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: सोनम वांगचू की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को जमकर रावण को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
12: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
13: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कन्फर्म्ड है।
14: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।

0: पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है, यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है। इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है। वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है। जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है। जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं, वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में जिप्टो, शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है, जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश से पहले कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई, कर्ज, वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा। वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चर्चा का जवाब, राहुल प्रियंका समेत विपक्ष के सभी आरोपों का चुन चुन कर हिसाब। लोकसभा में पूरा नहीं हुआ राहुल गांधी का बयान, गृहमंत्री पर आरोपों के बाद आग बबूला एनडीए, कहा पहले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष फिर आगे बोले। राहुल ने कहा सदन में बोलना मेरा हक। प्रहलाद जोशी पर दिए बयान पर कायम प्रियंका गांधी, कहा वीडियो सबूत है, स्पीकर के सामने उठाऊंगी मामला। बीजेपी बोली सदन में शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध, प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप, 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में, कांग्रेस और जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग दाल की 100% खरीदारी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, सीएम मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग, खाना पीना और सोना सब सड़क पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द भी बोले, फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली के छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए और इसे लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और संसदीय नियमों का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष से किरण रिजिजू ने कहा कि आप अपने आरोपों के समर्थन में या तो प्रमाण दें या माफी मांगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में हुए हंगामे और बीच में रोकी गई स्पीच को लेकर संसद के बाहर फिर क्या कहा। उससे पहले हम आपको वो विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि राहुल गांधी अब 6 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी संसद में 50 मिनट तो बोले लेकिन अपनी पूरी बात नहीं कर पाए। आज तक से बोली कांग्रेस की वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कि 6 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पूरा मत रखेंगे। राहुल गांधी ने संसद में कई बातें उठाई, उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए, लेकिन जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पेलेट गन को चलाने का आदेश दिया, तो किरण रिजिजू उस पर खड़े हुए और उन्होंने बोला आपके पास इस बयान को रखने का तर्क क्या है, सबूत क्या है, किस आधार पर ये कह रहे हैं। और उसके बाद संसद को पहले स्थगित करना पड़ा, लेकिन क्या कहा गया सुनिए।
3: आपकी स्पीच पूरी नहीं हो पाई राहुल जी, क्या वजह आपको लगता है?
4: राहुल सर द बिल हैज बीन पास,
3: क्या आपको लगता है कि सर आप नेता विपक्ष है, क्या आपको लगता है बोलने नहीं दिया गया आपको? सर सरकार कह रही थी आप अपोलोजाइज कर लीजिए, इफ यू टेक बैक योर वर्ड्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर सकते हैं।
4: एनीथिंग यू हैव टू से राहुल सर ऑन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन,
3: सबने देखा
4: राहुल
3: जी को बोलने नहीं दिया गया, आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी मैम, सरकार कह रही है कि माफी मांग ले राहुल जी, हम सरकार कह रही है कि राहुल जी माफी मांग ले तो वो अपने बयान को वापस ले लो।
5: कैसे देखते हैं आप इसको कि बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो सब कुछ पता है?
3: तो यहाँ पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रियंका गांधी ने हमसे ये कहा और जब हमने राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने बोला मैं पूरी बात बताऊंगा। और इसको लेकर जो है कांग्रेस बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है। पूरा जो कांग्रेस के तमाम सांसद है वो वेल के भीतर चले गए। जब हम मौजूद थे वहां पे हमने अपनी आंखों से देखा कि लगातार नारेबाजी होती रही। वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पूरे बिल पर बयान देते रहे। और अपने आप में ये वो वक्त है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल पर चर्चा कम लेकिन जो सड़क पर घटा उसको लेके संसद में खूब जोर हंगामा है बरपा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और संसद में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि राहुल गांधी को गृहमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे बात की।
6: गृहमंत्री को लेकर के कई आरोप लगाए हैं सदन के अंदर। हालांकि बिल तो पास हो गया है लेकिन राहुल गांधी अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें बोलने जा रहे हैं।
7: पहली बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। और दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृहमंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृहमंत्री नहीं देश से भी माफी मांगनी चाहिए। कोई गोली नहीं चली, कोई फायरिंग नहीं हुई और ये जिम्मेदारी डीएम के पास होती, पूरे देश को पता है लेकिन कांग्रेस के नेता को पता नहीं। थोड़ा पढ़ लें भाई, ना सदन के नियम पता है और ना सड़क पर आंदोलन कर रहे हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसके भी उनको नियमों का पता नहीं है। ये क्या चलाएंगे पार्टी को? माफी मांगनी चाहिए गृहमंत्री से राहुल गांधी जी को और देश से माफी मांगनी चाहिए।
6: आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है कि हर एक जगह वाइस चांसलर आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
7: आरएसएस का फोबिया इस परिवार को बहुत पहले से है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी है और ये पीड़ा मैं इनकी समझ सकता हूं। पर इतना ही सुझाव दूंगा राहुल जी, शाखा जाइए, थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी शिक्षा मिलेगी, थोड़ी राष्ट्रभक्ति मिलेगी और राष्ट्र की शक्ति बनने का प्रयास करिए। राष्ट्र को तोड़ने वालों की शक्ति के साथ शक्ति में जोड़िए।
6: शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। अनुराग ठाकुर इस वक्त।
0: और इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज संसद में मेरे भाषण के दौरान मैंने दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है नाम लिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिखा। फिर राहुल गांधी ने लिखा कि मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया, आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो संसद में कहने नहीं दिया गया। आप माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। तो अब से लगभग 2 घंटे में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 50 मिनट संसद में बोले। भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है जिस तरह की शब्दावली का संसद में प्रयोग किया गया। आपने अनुराग ठाकुर को, सांसद अनुराग ठाकुर को सुना। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों पर हुई बर्बरता का उन्होंने मुद्दा उठाया और राहुल गांधी के मुताबिक कौन इसके लिए जिम्मेदार है उस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया। इससे पहले राहुल गांधी जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो कई बार उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। जब राहुल गांधी ने गृहमंत्री पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए तब न केवल पूरा एनडीए बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी खड़े हो गए और इसका विरोध किया। लेकिन पहले जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वो बयान दिया जिसको लेकर लोकसभा में न केवल बयान उस समय बवाल हुआ बल्कि लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा। सुनिए।
8: एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please.
9: आज मुझे प्रश्न है,
8: माननीय
9: मंत्री जी बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं।
8: आई सो द होम मिनिस्टर सर कार्केड सर आई सो द कार्केड 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग शेकिंग। Sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared.
10: होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आप परमिशन नहीं दे सकते
11: बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप, किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते आप। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूँ, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा, मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं
0: तो जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर या गृह मंत्री कहकर यह कहा कि पैलेट गन चलाने का आदेश वहां से आया, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने भी सदन में कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुनिए।
12: नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
10: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा राहुल गांधी जी ने, इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप, ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। ये गलत बात, आपको राहुल जी आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, आपका शब्द बहुत गलत बात है।
0: आपने सारी बातें सुनी, दरअसल चर्चा तो पेपर लीक की रोकथाम कैसे हो, इसके लिए सभी सांसदों को अपने मत देने की आवश्यकता थी, पेपर लीक रोकथाम के बिल पर यह चर्चा थी। लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष ने जिस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल किया, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जो आरोप लगाए, उसके उन आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर दिया। देखिए उन्होंने 21 जुलाई के बाद से घटी घटनाओं पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा, सुनिए।
13: अब इन्होंने एक कहानी सुनाई तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है, जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में परहेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जा करके वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बेआबरू बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जानूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए।
0: तो जेंजी की भाषा, चाहे MIA मिसिंग इन एक्शन हो या फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरह की शब्दावली का अब संसद में भी उपयोग हो रहा है। वैसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी घेरने का प्रयास किया और पूछा कि 152 बार पेपर लीक का आंकड़ा उनके पास आया कहां से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका कोई प्रमाण उन्हें तो नहीं दिया, लेकिन 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो कुछ राहुल गांधी को संसद में नहीं कहने दिया वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे। सुनिए।
13: माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ, ये आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 टाइम्स दी पेपर लीक हैपन्ड विच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। आई हैव वेरीफाइड दिस फ्रॉम द रिटन स्क्रिप्ट विच वॉज देयर इन द पार्लियामेंट लास्ट नाइट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्चुअली चेक ऑन माई सेल्फ। 150 पेपर लीक्स अफेक्टिंग 750 करोड़ चिल्ड्रन विच मीन्स 7.5 बिलियन, the entire population of the world is just about 8 billion.
0: इस बीच एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी नेता विपक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुनिए।
14: राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है, उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी वो आज दिख रही है, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है। तो एक किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए।
0: तो ध्वनिमत से पेपर लीक संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास हो गया है। अब सजा 5 साल के बजाय 10 साल और 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ रुपए होगी। 8 साल के लिए कंपनियां बार हो जाएंगी। इन सब विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। हम आपको पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान की सेना की बर्बरता जारी है यह खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
15: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
16: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
8: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
9: वाह वाह वाह वाह।
8: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: In association with
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah.
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: नेता प्रतिपक्ष LOP जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता है, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का की जानकारी नहीं। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: भारी हंगामे के बीच लोकसभा में परीक्षा बिल पास। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया चर्चा का जवाब। राहुल प्रियंका समेत विपक्ष के सभी आरोपों का चुन चुन कर हिसाब। लोकसभा में पूरा नहीं हुआ राहुल गांधी का बयान। गृहमंत्री पर आरोपों के बाद आग बबूला एनडीए। कहा पहले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष तब आगे बोले। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल। राष्ट्रगीत का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल। झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली पर बीजेपी का विरोध। प्रीलिम्स के नतीजों में गड़बड़ी के संगीन आरोप। 10 भर्ती परीक्षाओं में 6 जांच के दायरे में। कांग्रेस और जेएमएम सरकार कटघरे में। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद। 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर रखेंगे एमएसपी की मांग। खाना पीना और सोना सब अब सड़क पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर।
2: अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले सारी जिंदगी अपनी नसें पालने वाले हमारे पैसे पे इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे आएंगे। एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला।
3: पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी?
0: आप देख रहे रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। और इस समय पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर रणभूमि बना हुआ है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त स्वतंत्रता का वो ज्वालामुखी फट चुका है जिसको दबाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जनता, वहां के जम्मू और कश्मीर जो उनके पास गैर कानूनी तरीके से है, वहां की जनता पर जलियांवाला बाग जैसा कत्लेआम करना शुरू कर दिया है। और ये हम नहीं वहां के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान आज भी भारत के कश्मीरियों को भड़काता है, यहां पर आतंकवाद फैलाता है, लेकिन अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की सेना इस समय खून की नदियां बहा रही है। यह भी हम नहीं वहां की आवाम कह रही है। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की जुल्म जो है वो अब हर हद को पार कर चुकी है। कत्लोगारत की इबारतें वहां लिखी जा रही हैं। भूख, बुनियादी हक, आटा और बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज, जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाई थी पिछले 48 घंटों में, वो गोलियां इस समय पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना बहा रही है। जी हां, चला रही है। 31 बेगुनाह वहां पर मारे गए हैं, इसकी औपचारिक पुष्टि हो गई है। अगर आधिकारिक पुष्टि की अगर आप बात ना करें तो वहां की आवाम कह रही है 40 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सड़क पर पाकिस्तान की सेना गोली चला रही है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मौत के घाट उतार दिया है। यह पाकिस्तान जो कहता था वो मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान है, वहां पर देखिए समय क्या हो रहा है। इस बर्बरता के बीच जो सबसे बेशरम बयान आया है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आया है। ख्वाजा आसिफ ने एक तरह से असलियत बता दी है। क्या असलियत बताई है? पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जो आवाम है ना, उन्होंने कह दिया तो भारत की तरह है। पाकिस्तान का दुश्मन है वहां का वहां के लोग। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट करार दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान के हुक्मरानों को वहां की मीडिया ने ही अब कहना शुरू कर दिया है, आप तो कहते थे कश्मीर आपकी शह रग है, अब आप कह रहे हैं ये भारत के एजेंट है। पाकिस्तान में जो पत्रकार अब इतने दिनों बाद कुछ पूछने की जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर ये कश्मीरी भारत के एजेंट है तो 2 साल से इनसे बातचीत क्यों हो रही थी। दूसरी तरफ जो वहां की आवाम है जो अब उठ खड़ी हुई है अपने हक की लड़ाई के लिए, वो कह रहे हैं कि ये उनके बुनियादी हक की लड़ाई है। उन्होंने हुंकार भरी है कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है वो मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे और खून की नदियां बहे, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में ये जो आंदोलन की आग है ये धधकती रहेगी। ये वहां की आवाम कह रही है, सुनिए।
4: लगातार फायरिंग जारी है, कुछ क्या मान रहे हैं हमारे भाइयों को, क्या करूं।
5: पाकिस्तान के हाथ से पीओके अब पूरी तरह निकलता जा रहा है। फर्जी चुनावों और झूठे वादों का ढोंग रचने वाली पाकिस्तानी हुकूमत अब सीधी तानाशाही और कत्लेआम पर उतर आई है। सोमवार को रावलाकोट और मंगलवार को मीरपुर में पाकिस्तानी फौज ने हक की आवाज उठा रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई।
6: आप बैक करो, आप पीछे हट जाओ।
5: पाकिस्तानी फौज की हैवानियत का आलम यह रहा कि उसने मस्जिद को भी नहीं बख्शा। मीरपुर की बिलाल मस्जिद के अंदर नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मस्जिद के इमाम मौलाना इनायतुल्लाह के सिर में सीधे गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया गया और अब पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं। पीओके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के बड़े नेता सरदार अमन कश्मीरी का आरोप है कि पाकिस्तानी फौज ने महज 48 घंटों में 31 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया।
7: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
5: 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 80 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल। लेकिन कश्मीरी आवाम अब पीछे हटने वाली नहीं। JAAC ने साफ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज के इस दमन चक्र के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। और
0: हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। 19 किसान संगठन एक साथ एक मंच पर आए हैं, भोपाल चलो उनकी मांग है। मूंग दाल पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो चाहते हैं और पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की खबरें इस समय आ रही हैं। दरअसल किसानों का जो मार्च है ये मुख्यमंत्री आवास की ओर है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी लगातार किसानों के साथ इस मार्च को रिपोर्ट कर रहे हैं। रवीश, इस समय क्या जमीनी स्थिति है भोपाल में?
8: बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं गौरव। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वीर सावरकर सेतु है भोपाल का और इससे ठीक मुहाने पे ही किसानों को पुलिस ने रोक रखा था कल से। लेकिन अब देखिए आप तस्वीरों में किसानों के जत्थे जो हैं वो अलग अलग जत्थे अब मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर गए हैं। जो बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ कल से की हुई थी उस बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ दिया। बसें लगी हुई थी, बसों को पार कर दिया, बसों के अंदर से रास्ता इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने बनाया। और फिर उसके बाद अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं इस पुल के आखिरी हिस्से की तस्वीर। आप देखिए भीड़ और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पे किसानों के जत्थे जा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की ओर। तो हजारों की संख्या में किसान जो हैं अब वो रुके नहीं रुक रहे हैं। पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन असहाय नजर आई पुलिस यहाँ पे किसानों को रोकने में। और अब किसान जो है वो यहाँ से मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ गए। हम किसानों से भी बात करेंगे जिन्होंने अभी 4 बजे तक धैर्य रखा लेकिन फिर उसके बाद सब्र का बांध टूट गया। क्या हुआ, आप लोग रुके हुए थे कल से लेकिन आज अचानक?
9: क्या करें साहब, मजबूरी है हमारी। अब खाना बनाना, खाना सब, हम सब तरफ से परेशान हैं। हम लोग सब लोग ज्यादा परेशान हो गए। मोहन सरकार ने बहुत पूरी तरीके से हमको परेशान
8: कर। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप?
10: सीएम हाउस। अच्छा,
11: पुलिस रोकेगी आगे फिर?
12: पुलिस रोकेगी तो जैसा लड़ेंगे पुलिस से भी लड़ेंगे।
11: ये तो हमारी मांगे पूरी करो।
12: अरे हमारी भाई है साहब, पुलिस हमारी भाई है, हम ही गेहूँ उगाते हैं किसान, जब आप खाते हो पुलिस भी खाती है, सीएम भी खाता है। सीएम कहाँ से लाता है? उसका कोई खेत उगा के ले आता है वो? हम परेशान, हमको परेशान करके
11: किसान है और वो परेशान है।
13: समर्थन मूल्य बनाया किस लिए सरकार ने? समर्थन मूल्य बनाया किस लिए? उस पर खरीदी कही जाए,
11: खरीदी करो। आपने
13: हम क्या मांग रहे हैं? जो आपने दिया वही मांग रहे हैं ना, कोई नई चीज नहीं मांग रहे। पर मन में जब चुनाव होता है तब आ जाते हर चीज लेके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
0: और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं, इस बीच हम किसानों की बात करेंगे। संबित पात्रा का क्या कहना है सुनिए।
14: सदन के अंदर चर्चा, सदन के अंदर गहमा गहमी, यह लोकतंत्र का गहना होता है। लोकतंत्र इसी से सजीव रहती है, लोकतंत्र इसी से चलता है। विगत कुछ दिनों में जो घटनाचक्र हुआ, हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र वो सामने आए, उन्होंने आंदोलन किया। छात्रों के आंदोलन में किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ, और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे, तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तक्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, यह निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं, यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी तो, बीच बीच में मैं देख रहा था प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृहमंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृहमंत्री हैं,

वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का तीन कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है, इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है, वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को तीन कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा एक जगह, वो ये भी बता रहे हैं कि तीन कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स? और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो, मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनका उनके अपना कोई, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी तीन कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी दो कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई ही नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके तीन तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर फिर भी राहुल गांधी कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ ऑल्सो एन इडियट विद इन द प्रमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विद इन द हाउस, बिकॉज द हाउस इज अ डेकोरम। हाउस की मर्यादा होती है, हाउस नियम से चलता है। बार बार किरण रिजिजू जी कॉल एंड शकदर और रूल बुक दिखा रहे हैं कि इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इडियट आप यूज नहीं कर सकते हैं, मगर बार बार वो उसको नकार रहे हैं और इडियट इडियट इडियट कह रहे हैं। पांचवा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृहमंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30

0: गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी। उन्होंने देखा जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा, आपको लग रहा है 5 मिनट नहीं बैठ सकते? राहुल गांधी ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं आप गिनिए और बताइए, 30 गाड़ी तो शायद प्रधानमंत्री जी के काफिले में भी नहीं। और इन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा कि अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ी थी, झूठ। और उसके बाद उन्होंने एक्शन करते हुए, विथ एक्शन ही डिपिक्टेड, आई सॉ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी इनसाइड द कार, इनसाइड हिज कार ट्रेम्बलिंग, और इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, दिन रात परिश्रम करके जिस व्यक्ति ने भारत से नक्सल हटाया हो, भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाया हो, वह व्यक्ति कांप रहा था। एक एक नक्सली जिसने सौ सौ हत्याएं की थी, चुन चुन करके उनका सफाया किया था अमित शाह जी ने, वह व्यक्ति कांप नहीं सकता। आपने कहा अमित शाह जी कांप रहे थे, जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं उनके नाम पे यह कहना कि वो कांप रहे थे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, आप सच्चाई से बहुत दूर है और केवल देश को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। राहुल जी, एक बात आज आप कान खोल के सुन लीजिए, विगत 75 वर्षों में जब से भारत आजाद हुआ, बीच में हमारी सरकार भी रही, उस कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, जितने कालखंड में कांग्रेस की और कांग्रेस समर्थित सरकार केंद्र में रही, जेन जी के बारे में चिंता नहीं हुई, जेन जी के बारे में चिंता हुई। जेन जी मतलब जनरेशन गांधी, किस प्रकार से गांधी डायनास्टी की जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, केवल उसी की चिंता हुई, कोई जेन जी की चिंता नहीं हुई। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जब आंदोलन चले थे, कितने सैकड़ों छात्रों को आपने गोली से उड़ा दिया था, गोली करके मार दिया था। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से आप गोली चलाते थे, किस प्रकार से बाकीरा असम में असम स्टूडेंट यूनियन के ऊपर किस प्रकार से आपने गोली चलाई थी और 800 से अधिक स्टूडेंट्स की बर्बरता पूर्वक हत्या की थी। तो उस समय जेन जी केवल जनरेशन ऑफ गांधी इस कैसे प्रधानमंत्री बनते रहे उसकी चिंता होती थी, अब जेन जी के बारे में चिंता होती है, देश के भविष्य के बारे में चिंता होती है। आज तो बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था, मैं बैठा था सामने, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे लाल बत्ती जल रही है, माइक कहां से बंद कर दिया भाई? लाल बत्ती जल रही थी, लाल बत्ती का जलने का अर्थ होता है कि माइक ऑन है। माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे कैसे माइक बंद कर दिया भाई तुम्हारा, देखो तो सही। और उसके बाद खुद ही बंद करके बोल रहा है मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। जेब में हमेशा, वो जेब में हमेशा क्यों हाथ डाले रखते हैं पता है आपको? दोनों जेब में विक्टिम कार्ड रखा हुआ है, विक्टिम कार्ड निकालेंगे तुरंत, देखो माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। अरे पूरी दुनिया, आपको क्लिप चलाना आज, पूरी दुनिया देख रही है माइक ऑन है, बिना आदत नहीं है नीचे देखने की ना, ऐसे देखते हैं ऊपर। वो फोटो भी किसी ने ठीक ट्वीट किया था, कहीं विदेश गए थे ऊपर देखते हुए, ऊपर ही देखते रहते हैं, नीचे देख ही नहीं रहे, लाल बत्ती जल रही है। ये लाल बत्ती देखने के लिए यहां भी बत्ती जलनी चाहिए, जब यहां की बत्ती नहीं जलती है तो यहां की बत्ती दिखती नहीं है, तो दिखी नहीं उनको, माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। एक बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इसको तमाम मीडिया चैनल संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत सारे वक्ताओं ने, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज और कल अपने भाषण में कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े। ये नहीं है, असत्य है। ये आर्म्ड फोर्सेस है, CAPF है, ये हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, ये मां भारती के आंचल को बचाती है। आज CAPF है इसलिए मां भारती का आंचल सुरक्षित है, वरना मां भारती के आंचल को फाड़ने के लिए तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और न जाने कितने देशद्रोही ताकतें लगी हुई है। मगर सलाम है इन आर्म्ड फोर्सेस को कि उन्होंने मां भारती पर आंच नहीं आने दी। और आज जब सदन में खड़े होकर इसी आर्म्ड फोर्सेस पे आप कहते हैं कि इन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, और जिस प्रकार के उन्होंने एक्शन करके दिखाया कपड़े फाड़े, ये दिल को बहुत सदमा देता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के नरेटिव को, जिससे कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल में गिरावट आती हो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में पहले नहीं थे, बाद में कांग्रेस ने उन्हें लिया, उन्होंने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस के लोग महिलाओं का रेप करते हैं, नहीं करते हैं। और इस प्रकार से सदन में कहना कि वो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, ये एक बहुत खराब विषय है। इसको आप लोग प्लीज ठीक से दिखाइए ताकि आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके मोराल के लिए सही हो। कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनने वाली थी हिंदुस्तान में, यही चाहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है, वो जानते हैं कि 7LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं, अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है, इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, CJP ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी भ्रम फैलाओ ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो, फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे, माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो, माहौल बिगड़े और उस बिगड़े माहौल में आप राजनीतिक फायदा उठाओ। केवल और केवल यही ध्येय राहुल गांधी का है, और इसलिए आज राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो सारी बातें मिथ्या थी, झूठ थी। उन्हें बोलने का पूरा मौका माननीय स्पीकर जी ने दिया, क्योंकि हम सब सदन में मौजूद थे, और बार बार स्पीकर साहब ने पूछा आप बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी वॉज रिलक्टेंट टू स्टैंड एंड टॉक, वो खड़े होकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इस कारण से उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे।
1: राहुल जी पहली बार नहीं इस तरह के भाषण का इस्तेमाल किया, कई बार उन्होंने कई दफा लोकसभा में इस तरह के भाषण का इस्तेमाल उन्होंने किया है।
2: तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे होगी, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा BJP के सांसद उन्होंने ली है और कहा है कि छात्र में कोई भी इडियट नहीं है, छात्रों का अपमान, जो आंदोलन वहां पर कर रहे थे उन छात्रों का अपमान किया है। संबित पात्रा ने एक नया आरोप लगाया हुआ है, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी के सदन के भीतर जो स्पीच दिया गया उसमें इडियट, अंधभक्त, छात्र कोई नहीं था और उनका अपमान किया गया है, ये कहने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब 6 बजे राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और राहुल गांधी का दावा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदन के भीतर उन्हें अपना भाषण पूरा करने का मौका नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और दंगल में आपका स्वागत है। तो दरअसल इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है और आज की खबर तो आपको पता ही है कि लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पारित हो चुका है। वैसे इस सत्र की शुरुआत सीजेपी के आंदोलन के शोर के बीच हुई थी और इस आंदोलन का तूफान ऐसा आया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और गुबार छटा तो पता चला कि एक एंटी पेपर लीक बिल फिर से कानून बनने की राह पर है, जो बिल दरअसल 2024 में भी पारित किया गया था। जिस नीट पेपर लीक के बाद यह नाराजगी बढ़ी थी, उस कांड में गिरफ्तार 13 आरोपियों की चार्जशीट अब हो चुकी है। अब नए कानून के तहत उनकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई की जाएगी और सजा का इंतजार किया जाएगा। लेकिन इस पूरे आंदोलन का विपक्ष के पास सियासी हासिल बस इतना ही है कि वो जेंजी की कामयाबी की कसीदे पढ़ रहे हैं, सरकार पर हमले के मौके तलाश रहे हैं और अब गृह मंत्री पर आरोपों की बौछार करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष की पूरी राजनीति देश में परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के निजीकरण से हटकर सीजेपी के आंदोलन में चले आंसू गैस, लाठी चार्ज और अब पैलेट गन पर सिमटी नजर आ रही है। जिस एंटी पेपर लीक के बहाने विपक्ष देश की शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण की महामारी पर चर्चा करना चाह रहा था, वह आरोपों तोहमतों की भेंट चढ़ गया है। जिस देश का कुल शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ का है, वहां सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग दो स्ट्रीम का निजी कोचिंग कारोबार 60,000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच रहा है। यह सवाल संसद की चर्चा से गायब था। पिछले 25 साल में शिक्षा 10 गुना महंगा हो चुकी है, इसका जवाब नहीं मिला। सरकारी स्कूल में 2,863 रुपए की पढ़ाई निजी स्कूल में 25,000 रुपए से भी ऊपर चली जाती है, इसका भी जवाब नहीं कोई पूछ पाया और ना ही मिल पाया। देश में 75% कॉलेज प्राइवेट क्यों है, इसकी भी चर्चा किसी ने नहीं की और ना ही हो पाई। जो जेएनजी के असली सवाल है वो मंत्री के इस्तीफे और तरह तरह के कानूनों की सियासत में अब धुल गए, धुआं हो गए। अब संसद में सिर्फ सियासत चल रही है, लेकिन जेएनजी के असली सवाल अभी भी बाकी है और उनकी चर्चा कौन करेगा ये अभी तक नहीं पता है। हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले संसद की जरा रिपोर्ट देख लेते हैं।
3: संसद के दो सदनों में दो विधेयक पर चर्चा हुई लेकिन शोरगुल सिर्फ गृह मंत्री को लेकर रहा। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा थी लेकिन गृह मंत्री नहीं थे, इसलिए विपक्ष नाराज हुआ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई और गृह मंत्री नहीं थे, इसीलिए सियासत थी।
4: इसका लक्ष्य क्या होता है?
3: दरअसल संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा चल रही थी। राहुल बोलने उठे, उन्होंने पहले भारतवासियों को एक कहानी के जरिए 3 कैटेगरी में बांटा, जिसमें एक वर्ग विद्यार्थियों और बाकी 2 कैटेगरी बेवकूफ और अंधभक्त वाली बताई। इस पर शोर हुआ, असंसदीय शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो वो असंसदीय शब्द निकाला गया।
4: जब नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज।
3: फिर राहुल ने कहा कि इस्तीफा तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस ने कब्जा कर रखा है।
4: एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे हैज अ वाइस चांसलर फ्रॉम द आरएसएस।
3: चर्चा आगे बढ़ी थी, राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री पर वार करना शुरू किया।
4: दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
3: राहुल ने अमित शाह पर ताबड़तोड़ आरोप लगाने शुरू कर दिए। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री में सामने आने का साहस नहीं, गृह मंत्री 30 कारों के काफिले में चलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गृह मंत्री के आदेश पर विद्यार्थियों पर गोली चली।
4: He is not here today because he is scared.
3: सरकार ने तुरंत बड़ा विरोध किया, अमर्यादित, अपुष्ट, आपत्तिजनक आरोपों के सबूत राहुल गांधी से मांगे।
5: किस बेसिस पे ये बयान दिया? बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। मैं इसका आपत्ति करता हूँ। क्या राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, इतना गंभीर आरोप है। आप गृहमंत्री के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, आपको माफी मांगना होगा सर। ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता।
6: सदन की कार्रवाई
3: शोर हुआ, स्थगन हुआ और फिर राहुल गांधी का भाषण अधूरा रह गया। दोबारा एक मिनट के लिए कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल पर पलटवार तेज हुआ।
7: ये हाउस नियम कानून से चलता है, रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा, रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं, इडियट जो है इन्होंने विधेयक क्यों होगा।
3: एंटी पेपर लीक बिल पर 10 घंटे की चर्चा तय, 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो मंत्री के जवाब का वक्त हो चुका था।
6: नौकरी की मांग ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती।
3: मंत्री जितेंद्र सिंह के पूरे जवाब तक विपक्ष की ओर से नारेबाजी होती है और इसी शोर शराबे के बीच विधेयक पर संशोधन नामंजूर हुआ, विधेयक मंजूर हुआ।
6: जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित हो गया, अब राज्यसभा की बारी, लेकिन इस विधेयक पर चर्चा में प्रस्तावित कानून पर कम और सियासत का शोर ज्यादा रहा। आज तक ब्यूरो।
2: तो आखिरकार जब बिल पारित हुआ तब भी हंगामे के साथ ही पारित किया गया। अब उस पर कौन कहां पर खड़ा था ये बात तो पता नहीं चल पाई क्योंकि राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए और वहां से संसद से निकल गए। लेकिन अभी अभी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले खबर आ रही है कि राहुल गांधी का जो स्पीच यहां पर नजर आ रहा है उसमें से और दो शब्द एक्सपंज कर दिए गए हैं। एक गृह मंत्री पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑथराइज किया शूटिंग के लिए, वो दो शब्द हटाए गए और उसके साथ साथ वो गाड़ी में बैठे थे, ही वाज सिटिंग इन कार एंड शेकिंग, तो शेकिंग जो शब्द है वो थरथरा रहे थे, वो शब्द भी पटल से निकाल दिया गया है, सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। तो अब चर्चा करेंगे आखिरकार ये चर्चा कब होगी, असली शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कब होगी, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। और उसके साथ साथ क्या देश को इस बात का जवाब मिल पाएगा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने के आदेश आखिरकार किसने दिए थे, इस पर भी चर्चा जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पैलेट गन की फायरिंग रही, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया और सरकार का उस पर अब तक कोई बयान न आना, इसको वो कैसे देखते हैं, उस पर भी उनसे पूछेंगे। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या एंटी पेपर लीक कानून से परीक्षा में भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि एक ऐसा ही कानून 2024 में भी पारित किया गया था, ये कानून सख्त किया गया है, अमेंडमेंट उस पे लाई गई है, प्रावधान उसमें बदले गए हैं, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान होगा। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष नौजवानों के असली मुद्दे पर चर्चा के बजाय सरकार की सियासी घेराबंदी में ज्यादा जुटा है, क्या लगता है आपको, इस पर भी चर्चा होगी। और तीसरा सवाल, क्या सीजेपी आंदोलन के बाद विपक्ष जेएनजी के कंधे पर और आंदोलन की हसरतें पाल रहा है, क्योंकि आंदोलन बढ़ सकता है, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई है क्या उस पर भी चर्चा होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप बीजेपी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 6 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपको, क्योंकि बिल पर जब चर्चा हो रही थी तब बार बार पैलेट गन किसने चलाया उस पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही थी, कल प्रियंका गांधी ने भी पूछा और आज राहुल गांधी भी वो मुद्दा उठा रहे थे, और सबसे बड़ी बात आज तो सीधे वो गृहमंत्री पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे।
8: नहीं, कोशिश नहीं कर रहे थे साहिल जी, वो सवाल उठाए गए और वो गृहमंत्री का ही मुद्दा है, वो गृहमंत्री का ही विभाग है और सवाल सीधे उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन आज बहुत ही कमजोर गृह मंत्री देश को मिले हैं, वैसे तो अपने आप को चाणक्य कहते हैं लेकिन संसद को वो फेस नहीं कर पा रहे, अपने विभाग से जुड़े हुए तमाम इश्यूज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो 20 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, लगभग 10 दिन हो गए आज, 10 दिन तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी साहब तो कभी करते ही नहीं है, गृह मंत्री साहब एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इनकी पुलिस बार बार टाइम मांगती है, झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से किया उसने भी झूठ बोले, उसने कहा कि AK-47 से कोई गोली नहीं चली और तमाम मीडिया चैनल्स के स्क्रीन पर चला। फिर उस चलाने वाले को सस्पेंड कर दिया गया, उसको इंक्वायरी बैठा दी गई, SP DM ने मान लिया। पैलेट गन की बात भी थी, पैलेट गन भी चला। जब तक वो बच्चा राहुल गांधी जी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खड़ा हुआ, जिसकी आंख चली गई, जिसके ऊपर तमाम छर्रे लगे हुए थे, तब तक भाजपा डिनाई करती रही। तो डिनाई और डाइवर्ट तो इनका पुराना मुद्दा है ना। मुद्दे की बात यह है कि आज तक गृह मंत्री महोदय ने 10 दिन में एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया। वो कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे, कहते कि मैं कहां कांप रहा था, मैं तो नहीं कांप रहा था, आके बताते। क्यों नहीं वो आपका फेस करना चाहते हैं संसद को, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी जिस दिन 20 तारीख को ये पूरा हंगामा हुआ उस दिन तो किरण रिजिजू जी के साथ बड़े ठहाके लगा रहे थे संसद परिसर के अंदर ही। उसके बाद वो आज तक उनका कोई जवाब दे ही नहीं है। मतलब झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर इतना बुरा लाठी चार्ज हुआ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने, विश्व के मीडिया ने दिखाया किस तरह से एक बच्ची के पीछे एक SHO डंडा पूरी तरह से कैसे वो गुप्तांगों के अंदर चलाने का प्रयास कर रहा है। क्या पूरे देश ने नहीं देखा? क्या कपड़े फाड़ने की घटना पूरे देश ने नहीं देखी? एक नहीं, तमाम लड़कियों ने बयान नहीं दिए? लेकिन बेशर्मी की हद है, कोई भी बयान देते हैं आकर चले जाते हैं। अरे भाई आप अगर ऑर्डर दिया तो बता दीजिए किसने दिया। अभी फिर उन्होंने कहा साहब ये तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, तो अभी तक वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, फिर तो मुलायम सिंह ने ऑर्डर दिया ही नहीं था कभी। आज तक मुलायम सिंह को कोसते रहे कि उन्होंने जो है वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। तो पहले सरकार तय कर ले कि मजिस्ट्रेट इस देश को चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं, DCP चला रहे हैं, या गृह मंत्री चला रहे हैं।
9: जफर इस्लाम,
8: सरकार तो है
9: पूरी, पिछले 3 दिन से लगातार मीडिया में पैलेट गन चलाने की खबर आ रही है, हर बार किसी ना किसी सूत्र के हवाले से, हर बार पुलिस स्टेशन में की गई डायरी एंट्री के वजह से, हर बार राम मनोहर लोहिया अस्पताल के भीतर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार से मीडिया ये खबर दिखा रही है। क्यों नहीं सरकार के तरफ से अधिकृत तौर पर इस पर कोई बयान आता कि पैलेट गन अगर चलाई गई है तो आखिरकार किसके आदेश से चलाई गई है? यह मुद्दा तो बनेगा। आलोक शर्मा यहां पर एक बात तो ठीक उठा रहे हैं कि अगर कार सेवक के ऊपर गोली चलती है तब वो मुलायम सिंह यादव के आदेश से चलती है, लेकिन यहां पर अगर पैलेट गन चलाई जाती है तो वो किसके आदेश से चलती है? ये सवाल का जवाब तो सरकार को देना होगा कहीं ना कहीं।
10: देखिए साहिल जी, पहले तो मैं सबसे पहले देश के सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था एक मजबूत बिल लाने का, वो आज मजबूत बिल पास हो गया है, वो एक सच्चाई है। और देश के जो माफिया, जो पेपर लीक माफिया है, उस पर जिस तरह से कानून बन के आया है, इतनी सख्ती होगी कि कोई ऐसा काम करने का कोशिश भी नहीं करेगा। साथ साथ जो देश के छात्रों को और भी भरोसा बढ़ेगा कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह का जो है इस पूरे और प्रावधान है जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, लोगों का और विश्वास बढ़ेगा इस बिल के बाद। लेकिन एक हकीकत बात है कि ये मौका था ऑपोजिशन के सभी लोगों का, मौका था कि आज के युवा पीढ़ी की जो एक बात उठी थी उस पर चर्चा करते। उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम और इससे जुड़े हुए बातों को कहा था और उस पर एक डिटेल चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि डाइवर्ट किया इश्यूज को, बार बार अपने जो है मुद्दे, अलग अलग मुद्दे लेकर आए, लेकिन छात्रों के बारे में कोई मुद्दा नहीं, खुद की राजनीतिक चमकाने की कोशिश करते। आज पूरा आप डिबेट देख लीजिए, डिबेट में क्या था, छात्रों के बारे में क्या बात कर रहे थे, छात्रों को इडियट बताया। ये बताइए, ये इनका सत्र है कि छात्रों को, जिनके कंधे पर बैठ के ये राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की राजनीति, उनको भी इडियट कह रहे हैं। और फिर झूठ का पुलिंदा और अराजकता इनके इनके ब्लड में है। इसलिए देखिए, जिस तरह से किसी ने कहा कि राहुल गांधी आज एक प्रतीक बन गए अराजकता के, जहां अराजकता फैलाना है राहुल गांधी को भेज दीजिए, वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। और अब लोग समझ चुके हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं कर सकते, ये सदन के पटल पे कोई अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकते, बल्कि झूठ और झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। आज जितनी भी बातें कही, आज
9: हमारे
10: कलीग
9: मुझे इस मुद्दे पर तो अलग से चर्चा करनी है।
10: साफ साफ कर दिया
9: कि जो बिल 2024 में पारित किया था उस बिल के भीतर भी आपने यही रखा था कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ क्या सख्त प्रावधान होंगे। आज आपने वही बिल एक संशोधन के आधार पर आपने लाया कि जिसको 5 साल की सजा थी उसको 10 साल की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना होगा 10 लाख का जुर्माना हो गया है। ये बिल जो है इससे पेपर लीक के बाद सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी, ये मुद्दे इसमें आए हैं। जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की उम्मीद थी वो चर्चा तो हो ही नहीं पाई है। जिस तरीके से बिल इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 और 2026 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल का इंट्रोडक्शन वो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन एक मुद्दा छूट रहा है, एक मुद्दा छूट रहा है जो सवाल मैंने आपको पूछा है। क्या आपको नहीं लगता कि पैलेट गन किसने चलाया, इस बात को लेकर सरकार के तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी जनता के सामने, सदन के सामने और विपक्ष के सामने रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए?
10: देखिए मैं उस पे आ रहा हूं, पहले मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये मौका उनके लिए भी था ना चर्चा करने का, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसकी कोशिश की झूठ फैलाओ और कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करो। आज भी वो बातें जो कर रहे थे गुमराह करने के लिए और कहीं ना कहीं उसकाने की बात कर रहे थे। अरे बच्चे को छात्रों के कंधे पर रखकर राजनीति नहीं चमकानी चाहिए, उनके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आज ये कानून पास हुआ तो उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कानून पास हुआ। जहां तक पेलेट गन का सवाल है, आपने पूरा देखिए हर चीज सामने आपके, ये सारी चीजें मनगढ़ंत बहुत सारी चीजें जो इन लोगों ने फैलाई है। हकीकत जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो हर हकीकत आपके सामने आ जाएगा, लेकिन झूठ फैला के लोगों में गुमराह, लोगों को गुमराह करना और लोगों में इस तरह का
9: इन्वेस्टिगेशन
10: आक्रोश पैदा करना,
9: किसने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, कौन सा बयान है, कोई अधिकृत बयान मेरे सामने तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले दिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना का पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जो अधिकृत बयान उनके तरफ से आया था। कहां इन्वेस्टिगेशन, किसके कहने पर मैं मानूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया?
10: सुनिए साहिल जी, ये सारी चीजें जो उठी है, जो जनता के बीच में आप लोगों ने भी लेके गए और ये अपोजिशन पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है, उसमें सच्चाई है कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई देश के सामने आएगी और इनका झूठ भी सामने खुल जाएगा।
9: आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए, ये वो कह रहे हैं कि आप मुद्दा भटका रहे हैं,
10: पहली प्राथमिकता
9: शिक्षा पर चर्चा करनी चाहिए थी, कुछ सुझाव देने चाहिए थे, उसके बजाय आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप आप पर।
8: देखिए इस बिल के अंदर क्या विपक्ष से कभी भी बिल को, पहले इतने दिन से काम चल रहा था, क्या बिल रातों रात तो बना नहीं? क्या सांसदों को बिल इनको 2-3 दिन पहले नहीं देना चाहिए था? 1 दिन पहले बिल दिया और तमाम जो खामियां एजुकेशन सिस्टम की हैं वो तमाम सांसदों ने एक एक करके क्रमवार उठाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब इनकी नीयत ठीक नहीं है तो नीति ठीक नहीं हो सकती, बिल ठीक नहीं हो सकता, और अगर बिल ठीक भी होगा तो उसको इंप्लीमेंट करने वाले अगर बीजेपी और आरएसएस के सब लोग होंगे, उस बिल में एक लाइन ये भी होनी चाहिए थी कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के साथ बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती नहीं होंगे, बैकडोर से भर्ती नहीं होंगे, कैपेबल लोगों को भर्ती कैसे किया जाएगा उसका भी कोई प्रोविजन होना चाहिए था। एनटीए को भंग करने की बात कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उठा रही है, एनटीए को भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक चपरासी तक को अकाउंटेबल नहीं फिक्स किया है, क्यों नहीं किया है? आप केवल एनटीए और इनोवेटिव व्यू, दो कंपनियां हैं ये, एक एनजीओ है एनटीए और इनोवेटिव व्यू कंपनी है नोएडा में, जिसके पास पूरा जिम्मा है किस चीज का, पेपर के ट्रांसपोर्टेशन का, पेपर बायोमेट्रिक का, इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2024 में भी यही दोनों कंपनियां थी, 26 में भी यही थी, इन्हीं से पेपर लीक होता है ना। 24 में सीबीआई
9: की वही बात तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दे आलोक जी वही बात तो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, वही आरोप तो बीजेपी लगा रही कि जो मुद्दे अभी आप इस चर्चा में रख रहे हैं वही मुद्दे संसद में रखते, लेकिन वहां पर तो चर्चा पैलेट गन पर चली गई।
8: नहीं देखिए पैलेट गन भी
9: कहने का उनका मतलब वो है कि जो बिल पर चर्चा थी वो तो हुई नहीं।
8: नहीं मैं देखिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को आज जिस तरह से नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष हंगामा करता है किसी बिल के ऊपर, आज सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा, सत्ता पक्ष के तमाम लोग बोल रहे हैं, एलओपी के बोलने के समय पे किरण रिजिजू जी बार बार बोल रहे थे और उनको बार बार टोक रहे थे, और अंत में जब सदन स्थगित किया गया तो किरण रिजिजू जी के कहने पर किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये डिसीजन स्पीकर का होता है। किरण रिजिजू जी ने कहा कि ऐसे संसद नहीं चल सकती है और तुरंत वहां पर स्पीकर साहब ने कहा कल तक के लिए स्थगित कर देते।
9: जवाब दीजिए,
8: स्पीकर निर्णय लेगा,
9: हमारे लिए पैलेट गन भी इम्पोर्टेंट है, दरअसल विपक्ष कह रहे हैं।
10: साहिल जी देखिए, साहिल जी पूरा डिबेट दिखा दिए जब तक राहुल गांधी जी बोल रहे थे। कितनी बार उनसे कहा गया कि आप चर्चे में आइए, इस बिल पे बात कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, इस बिल पे बात कीजिए। एक बार नहीं, स्पीकर साहब ने 7 बार कहा उनको, 7 बार एक डिबेट में आधे घंटे के अंदर 7 बार, और हर बार वो डिबेट से भटक रहे थे। ये डिस्कशन किस पे था? मैं पूछता हूं, डिस्कशन इसलिए था कि लोगों को गुमराह करना, बच्चे को उसकाना या मिसलीड करना, या पूरा मुद्दा जो है वो मिसलीड करने का काम कर रहे थे। मुद्दा था बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना, लेकिन ये तो अपनी भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इनका इनकी पूरी नीयत अपनी भविष्य बनाने के लिए, अपने अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। बच्चे के तो
11: अभी तक नहीं पता चला,
10: बच्चों का रेफरेंस किस लिए दिया कि इडियट बोला बच्चे ने, अपने को बच्चे ने बताया कि इस तरह क्या होता है, उनको इडियट कहा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए दो बात कहना चाहता हूं साहिल जी, बस दो सेकंड बोलना चाहता हूँ साहिल जी। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, आज ये सुनहरा मौका था, इनके जितने पाप थे, जितने पुराने पेपर लीक के पाप थे, उनको कम से कम आज धोने का काम कर सकते थे। ये कह के कि एक ऐसे मजबूत बिल में हम भी योगदान देंगे, हम भी सुझाव देंगे, और एक मजबूत बिल पास कर पारित करने में काम सहयोग देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
8: देखिए मैं कहता हूं, 2012 में हमने एक प्रपोजल हम लेकर आए कि जिस तरह यूपीएससी एसएससी है, सीबीएसई है, इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। 2014 में हमारी सरकार चली गई, ये 2013 के शुरू की बात है। इक्का दुक्का पेपर आउट होता था, उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी लेते हैं, हमारी सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, लेकिन एक बार भी सदन में, संसद में, विधानसभाओं में विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया।
10: तब तक आपने क्या किया? दूसरी बात यह आती है कि 2014
8: में इनकी सरकार आ गई, 2014 से लेकर 17 तक ये पूरे बिल के ऊपर कुंडली मारकर बैठे रहे, और इन्होंने कोई भी अकाउंटेबल संस्था ऐसी नहीं बनाई जो यूपीएससी और सीबीएसई की तरह से हो, जिसका गठन संसद से किया जाए। इन्होंने व्यापम घोटाले जैसी एक एनटीए संस्था बना दी, और व्यापम घोटाले जैसी संस्था में सारे भाजपाइयों को घुसा दिया इन्होंने, और ये कांड पे कांड होते रहे। हम कुछ नहीं, बिल के अंदर
9: ठीक है। लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के बीच में, चूंकि यह आंदोलन के बाद यह बिल यहां पर आया हुआ है, वरना जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, मानसून सत्र जब शुरू हुआ था, एक मिनट सैयद जफर इस्लाम जी, आशुतोष जी, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, यानी मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तब तो ये सारे मुद्दे थे ही नहीं। सदन में चर्चा किस बात की होनी है, इस बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी थी। विपक्ष के मुद्दे भी तय थे, विपक्ष का कहना था पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष ने कहा था राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाएंगे, सरकार की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम वाला बिल लाया जाएगा, जजेस की संख्या बढ़ाने का बिल लाया जाएगा, हो सकता है कि डिलिमिटेशन का बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए, वो सारी चर्चाएं चल रही थी। ये बिल तो आया इसी के वजह से, क्योंकि सीजेपी का वहां पर आंदोलन हुआ है। ऐसे में अब इस पूरी चर्चा के मूल में, यानी सेंटर में, कहीं ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज, जिस तरीके से वो सीजेपी के आंदोलन पर हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये चर्चा होनी चाहिए थी? और आज सदन के भीतर ना गृहमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, हालांकि ये बिल सरकार की तरफ से ये कहकर पेश किया गया कि एक बहुत बड़ी बात सरकार की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर भी आपकी टिप्पणी।
3: देखिए साहिल, मुझे इस बात की उम्मीद थी कि जब परीक्षा बिल के ऊपर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री जी भी वहां मौजूद होंगे और गृहमंत्री जी भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं देख के निराश हुआ कि ना तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे ना ही गृहमंत्री मौजूद थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मौजूदगी इस वजह से थी क्योंकि वो इस बिल को लेकर गंभीर नहीं थे, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में निराशा हुई पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैंने इस संसद के अंदर तमाम ऐसे बड़े बड़े बिल देखे जहां प्रधानमंत्री पूरे समय तक बैठे रहते और पूरी डिबेट को सुनते हैं और उसके बाद नोट्स भी लेते हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही नहीं मौजूद थे, दोनों दिन नहीं मौजूद थे, तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं 2-3 बातें बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। मुझे लग रहा था कि इस पूरी बातचीत, इस पूरी बहस में शिक्षा को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उस पर कोई चर्चा मैंने देखी नहीं, ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से देखी, ना मैंने विपक्ष की तरफ से वो चर्चा देखी जो गंभीरता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस बात को लेकर यह कि 2013-14 और बल्कि इस देश के अंदर एक टारगेट रखा गया कि 6% का एजुकेशन बजट होना चाहिए था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013-14 में हमारा
11: एजुकेशन बजट 4.6% का था, एजुकेशन बजट टोटल बजट का। 2025-26 में यह बजट घटके हो गया 2.6%, यानी तकरीबन 2% का शिक्षा के बजट कम हुआ। यह क्यों कम हुआ, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सरकार को सवाल के जवाब देने चाहिए कि बजाय आप 2% बढ़ाने के, 1.5% बढ़ाने के, 6% करने के, ये घटकर 2.6% क्यों हुआ शिक्षा का बजट। दूसरा प्रश्न ये है कि मनमोहन सिंह के जमाने में 23 पेपर लीक्स हुए थे 10 साल के अंतर्गत 23, और ये सब गूगल पे अवेलेबल है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो पिछले 12 सालों में इसकी संख्या बढ़ गई है 89, 23 से बढ़ के 89। और जब ये बिल आया, जब ये बिल बनाया गया राधाकृष्णन कमीशन के साथ साथ जब बिल बना, उसके बाद दिसंबर 2024 से लेके 2026 तक 13, यानी संख्या और बढ़ गई तेजी के साथ। यानी जब आप बिल बना रहे हैं, जब आप कमीशन बना रहे हैं, उसके बाद भी ये जो प्रेस पेपर लीक रुक नहीं रहे, बल्कि और तेजी इसमें आ गई है। अब ये प्रश्न है, अगर सरकार गंभीर है, अगर विपक्ष गंभीर है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है। और जो असली सवाल है, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से पूछा जाना चाहिए, जो आपने भी सवाल पूछा कि भाई पैलेट गन, जम्मू कश्मीर के बाद पहली बार इस देश के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल देश की राजधानी में हुआ है, और कोई यह बताने को तैयार नहीं कि दरअसल इस पैलेट गन का अथोराइजेशन किसने किया। क्या वो आरएएफ के कमांडर ने किया, कमांडेंट ने किया, क्या वो डीसीपी ने किया, क्या मजिस्ट्रेट ने किया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी हुई कि बैकडेट से एंट्री की गई, 20 तारीख को चला, 22 तारीख को और उसमें बैग पुलिस में डायरी में डाला गया कि 1:26 पे कि भाई ये हुआ डीसीपी के कहने पे, और डीसीपी ने अपने टॉप बॉस को बताया है कि जहां
9: डिनाय कर रहे
11: चलने की बात की गई वहां तो मैं हुई नहीं,
9: मैं तो था ही नहीं वहां पर। डीसीपी तो कह रहे हैं कि मैं तो वहां पर था ही नहीं,
11: मैं वहां पर था ही नहीं। तो सवाल यह कि सरकार डिसोन, और जब अगर ये सवाल अगर गृहमंत्री से पूछा जाता है तो गलत सवाल तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे केंद्रीय मंत्रालय देखता है उसको, तो गृह मंत्री को जवाब देना है।
9: मेरा तो ये, मेरा तो इस बिल पर और कानून पर भी सवाल है आशुतोष, मेरा तो इस बिल और कानून पर भी सवाल है। 2024 में जो कानून बनाया गया था एंटी पेपर लीक कानून, पहली बार बना था 2024 में, और ये कहकर बनाया गया था कि हम डिटरेंट चाहते हैं कि कोई अगर इस तरीके से पेपर लीक करने की कोशिश करेगा तो उनके लिए डिटरेंट साबित हो। 2025 में पेपर लीक की संख्या बढ़कर हो जाती है 15, 2024 में पेपर लीक हुए थे 12, 2025 में पेपर लीक होते हैं 15, यानी डिटरेंस के बजाय 3 पेपर लीक ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ कानून से डिटरेंस होता है क्या, यह एक अलग सवाल होगा। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, सबसे पहले आशुतोष ने सही सवाल उठाया, ना विपक्ष ना सरकार, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने चाहिए उस पर किसी ने बात नहीं की, सब अपनी पीठ थपथपाते रहे, सियासी चाल खेलते रहे। आशुतोष दरअसल ये कहना चाहते हैं, पहले सैयद जफर इस्लाम और फिर मुझे विक्रम सिंह जी के पास भी जाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बिल।
10: साहिल जी, साहिल जी, कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था सोनिया गांधी जी ने किसी पेपर पे, उसमें उन्होंने सुझाव दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, 1986 की बात पे है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था पेपर लीक पे कानून आना चाहिए। आप बताइए सरकार उनकी कितने सालों तक रही, कोई कानून लाया, कोई सुधार किया, कोई सुधार करने की मंशा दिखाई, कोई चिंता की। आज ये लेख लिख के आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो हमारी सरकार ने, मैं मानता हूं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सदन के पटल पे वही तो चिंता करनी थी कि हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर आपस में जो भी सुझाव है देंगे, ताकि एक मजबूत कानून देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए बनाया जाए। लेकिन उसमें क्या योगदान मिला है ऑपोजिशन का, कोई योगदान नहीं। बार बार जो है उनके जो डिबेट कहीं और भटकते रहे, किसी और, उस पूरे डिबेट में उनका फोकस रहा, बिल को डिस्कस नहीं किया,
9: बल्कि जवाब देना,
10: कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को डालने की कोशिश, कटघरे में डालिए ना, मैं कहां मना करता हूं, लेकिन क्या ये पटल था, ये समय था सरकार को निशाना बनाने के बजाय ये छात्रों के बारे में, छात्रों के साथ धोखा किया लोगों ने, पहले उसके कंधे पर रख के अपने राजनीति चमकाई, और जब मौका मिला उनके सुधार के लिए तो नहीं ये किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी
11: और सवाल का जवाब
10: पूरी जनता देखी, और छात्र के जो छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इनको अब और क्रिटिसाइज करेंगे, ऑपोजिशन ने अपना धर्म नहीं निभाया,
9: देखा जाएगा कौन किसको क्रिटिसाइज करता है, ये देखा जाएगा। 20 तारीख से जो आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें हिली है आशुतोष,
11: ठीक है साहिल, अगर ये अच्छा होता कि जफर साहब इस सवाल का जवाब देते कि भाई 4.6% जो एजुकेशन बजट था वो घटके 2.6% क्यों हुआ, और 23 से बढ़कर संख्या 89 क्यों हुई और कानून बनने के बाद एक मिनट जफर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए उसके बाद आप जवाब दीजिए।
10: बजट क्या हो गया बताइए जफर साहब प्लीज। 2014
11: जफर साहब आप बहुत संजीदा
10: बता
11: रहा जवाब दीजिएगा ना आप संजीदा प्रवक्ता आप दूसरे प्रवक्ताओं तरीके से बिहेव मत करिए जो आके गाली गलौज करते टीवी चैनल पे। मैं तो बुनियादी तौर पर जो नीलेकणी कमीशन बनाया मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो राधा कृष्णन कमीशन बना था उसने 101 रिकमेंडेशंस दी थी।
9: नीचे खबर भी आ रही है कि 20 जुलाई को गनशॉट इंजरी पर पुलिस ने एक फैक्ट चेक डाला हुआ है और पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिकॉर्ड में गनशॉट की पुष्टि नहीं है। ये पुलिस का मानना है, पुलिस का ये पहला बयान आया हुआ है और दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक है। दरअसल गनशॉट से चोट नहीं है डॉक्टर की राय में, ये पुलिस कह रही है। 20 जुलाई को गनशॉट इंजरी पर पुलिस का भी कौन सी गनशॉट इंजरी है, क्या ये पैलेट गन की गनशॉट इंजरी है, क्योंकि जिनके पैलेट गन की इंजरी का जो विक्टिम है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया गया था, उनका स्टेटमेंट भी उस पर दिया गया है। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये सरकार किस तरीके से इस बात की हैंडल कर रही है? ये फैक्ट चेक डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, कोई 20 तारीख की गनशॉट इंजरी, कौन सी गनशॉट इंजरी है उसका कोई जिक्र वहां पर नहीं है। अलग अलग खबरें वहां पर आ रही है, उसमें डायरी एंट्री दिखाई देती है वहां के पुलिस स्टेशन की जिसमें लिखा होता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके तरफ से कोई ना कोई अधिकृत तौर पर एक बयान आना जरूरी था या नहीं था?
12: साहिल जी, हम लोग जो बहुत दौर देखा है, ऐसी स्थिति में रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग की जाती है और उसमें सभी को ब्रीफ किया जाता है कितने राउंड चले, कौन घायल, किसने चलाया। ये जीडी एंट्री ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये फैक्ट चेक और गूगल चेक और एआई चेक से हमारा काम नहीं बनने वाला है। जीडी रिपोर्ट ये कहती है, इस समय दर्ज है डेटेड 20-7 जुलाई को। सतीश कुमार सांगवान डीसी डिप्टी कमांडेंट 108 आरएफ ने बताया कि जोन ए के जनपद डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया के साथ ड्यूटी पर थे, उनके आदेशानुसार सीजी के प्रोटेस्ट में हमने ये चलाया और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मान है जो जीडी एंट्री, अगर आप इसको देख लें तो इस जीडी एंट्री के बागे ये फैक्ट चेक वैक्ट चेक में माने नहीं रखता है। और आपने जितना विलंब किया ना, इसका मतलब दिखाता है कि आपके ना तजुर्बेकारी थी, 48 घंटे के विलंब से आपने क्यों दिखाया? आप विलंब का मतलब ही यही होता है कि क्या आप मैनिपुलेट कर रहे थे? ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। पैलेट गन चलाते कह देते मैंने चलाया है, हम लोगों ने सॉलिड बुलेट चलाई है और कहा कि मैं विक्रम सिंह इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैंने 6 गोली चलाई, 5 हताहत हुए, ये जिम्मेदारी मेरी है, किसी और पे मत थोपिएगा। उसका एक तौर तरीका होता है। और अगर हम वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, गोली चलाने का आदेश जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट के अभाव में डीसीपी को मैजिस्ट्रियल पावर्स थे, या सीनियर मोस्ट ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जो कि आपकी डीएनएसएस की धारा 128 से 150 तक है, उसके अंतर्गत बल प्रयोग हो सकता है, न्यूनतम बल प्रयोग हो, नॉन वाइटल पार्ट पे हो और इस तरीके से हो कि कमर के नीचे हो, ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से हम ऑटोमेटिक कर दें या हम AK-47 लहराने लगे, ये शोभा नहीं देता है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से कुटाई हुई है वो भी अभूतपूर्व है। 150 के करीब दिल्ली पुलिस के महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हैं, उनके ऊपर जो आक्रमण, 30 जो उनकी गाड़ियां जलाई गई हैं, इसका विषय ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन मेरे लिहाज से बिल्कुल नहीं था और पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है उसका औचित्य है और वो आवश्यक था।
9: लेकिन विक्रम सिंह जी, सवाल यहीं पर होता है, आप आगे आकर कह रहे हैं कि अगर खून खराबा हो रहा था, पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, कानून को हाथ में लिया जा रहा था, तो जो वहां पर कार्रवाई की गई वो सही है। अगर कई की गई कार्रवाई सही है तो आगे आके कहिए कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही की है, ये छुपाने की क्या बात है? दिल्ली पुलिस के हैंडल से डॉक्टर क्या कह रहा है वो बताया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात जिसका जिक्र इससे पहले आलोक शर्मा भी कर चुके हैं कि अगर कार सेवकों पर फायरिंग की जाती है तो उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो अगर पैलेट गन चलाया जाता है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? क्या मंत्री की इसमें दखल अंदाजी होती है या नहीं होती है, या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए?
12: बहुत अच्छा सवाल है। राजनीतिक मित्र, अगर हमको कुछ लाभ लेना है राजनीतिक, तो हम उसकी वाहवाही जरूर ले लेंगे। वरना अगर हमने अप्रत्याशित बल प्रयोग कर दिया तो हम निलंबित भी हो जाएंगे। कहते साहब आपको किसने कहा था, हम लोग जो है बड़े लोकप्रिय सरकार हैं, हम जनविरोधी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करते। तो राजनीतिक मित्रों को प्रणाम करते हुए साहिल जी मैं यही कहूंगा, जो लॉ कहता है हम वही मानते हैं, और वहां पर न मुख्यमंत्री रेलिवेंट होता है न गृह मंत्री रेलिवेंट होता है, वहां रेलिवेंट होता है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर, वो निर्णय लेगा स्वविवेक से कि हमको गोली चलानी है, लाठी चलानी है, वाटर कैनन और किस।
9: ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन अब 6 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर कई सारे मुद्दे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैं सदन में नहीं बोल पाया वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, वहां भी चलेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
13: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
14: To right field, and it will leave.
13: From the first pitch of the season to the stretch run,
14: and that's the ball game.
13: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
15: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: सोनम वांगचू की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
4: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
5: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
6: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
8: राहुल गांधी के जमीन रावण को उठा लिया गया।
9: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
10: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
11: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
12: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, I was very relieved।
13: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
14: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कन्फर्म्ड है।
15: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ballgame.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
6: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark. गोल्ड के लिए हॉलमार्क
7: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
8: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
10: कुछ तो बात है इस दिल में.
11: उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी लिख रहा है. यूपी अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मिसाइल और हथियार बनाने का भी सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. जिस यूपी को कभी सिर्फ खेती और कारोबार के लिए जाना जाता था वही अब ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहे हैं. यानी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे भारत का नया डिफेंस हब बनता जा रहा है. 2018-19 के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी. इसका मकसद साफ था, भारत में ही हथियार बने, विदेशों पर निर्भरता कम हो और भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बने. यह कॉरिडोर 6 शहरों में फैला है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट. यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं लग रही बल्कि रिसर्च, टेस्टिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है. अब तक इस परियोजना में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: BMAC, the mustard specialist since 1933.
5: उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी लिख रहा है. यूपी अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मिसाइल और हथियार बनाने का भी सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. जिस यूपी को कभी सिर्फ खेती और कारोबार के लिए जाना जाता था, वहीं अब ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहे हैं. यानी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे भारत का नया डिफेंस हब बनता जा रहा है. 2018-19 के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी. इसका मकसद साफ था, भारत में ही हथियार बने, विदेशों पर निर्भरता कम हो और भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बने. यह कॉरिडोर 6 शहरों में फैला है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट. यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं लग रही बल्कि रिसर्च, टेस्टिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है. अब तक इस परियोजना में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री बन रही है. इसके अलावा HAL, BEL, BDL और अडानी डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियां भी यहां निवेश कर रही हैं और कई जगहों पे काम शुरू हो चुका है. इसमें प्राइवेट रक्षा कंपनियों के साथ साथ रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर रहे कई MSME भी मौजूद हैं. अलीगढ़ में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए जा रहे हैं. झांसी में जल्द ही मिसाइल निर्माण यूनिट शुरू होने वाली है. वहीं कानपुर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. अब आप पूछेंगे कि यूपी ही क्यों, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर कनेक्टिविटी. यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आने वाला गंगा एक्सप्रेसवे, इन सभी से जुड़ने के कारण कच्चा माल और तैयार हथियार तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं. यानी उत्तर प्रदेश अब सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा हब बनने जा रहा है. इससे सीधे तौर पर 53,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. अगर यह रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में यूपी से भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो सकता है. साथ ही यह मॉडल स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर सृजित करेगा. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनेगा और भारत को अग्रणी रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा.
6: I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger. This was not violence. This was not hatred. This was an expression, deep expression of the youth of this country.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास, भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से मिली मंजूरी, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान, जितेंद्र सिंह का विपक्ष को करारा जवाब। लोकसभा में हंगामे के बीच राहुल गांधी का बयान रह गया अधूरा, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृहमंत्री पर आरोपों को लेकर नेता विपक्ष पर भड़की बीजेपी, छात्रों के संसद मार्च में नहीं चली गोली। राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी का तगड़ा हमला, संबित पात्रा बोले, नेता विपक्ष ने देश के छात्रों का अपमान किया है। राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदारी के लिए लामबंद 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, अन्नदाताओं से थोड़ी देर में मिलेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
3: The so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here.
4: चर्चा ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा।
5: यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता।
6: तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य, देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज चर्चा इसी बात को लेकर होगी क्योंकि संसद में जो ये राउंड टू आप देख रहे हैं, लोकसभा से पेपर लीक रोकने का नया बिल पास तो हो गया लेकिन आज सियासत की लड़ाई और तेज हो गई। अब से कुछ देर में राहुल गांधी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें हम आपको सीधे लिए चलेंगे। आज लोकसभा में अमित शाह पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से ऐसा हंगामा हुआ है जिसके बाद सदन में उनका भाषण भी पूरा नहीं हुआ। उधर विपक्ष के हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से पेपर लीक रोकथाम बिल 2026 पास हुआ। सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह पर उंगली उठाई है। बीजेपी लोकसभा में राहुल गांधी के दो शब्दों इडियट और अंधभक्त पर आग बोला है। राहुल इस पूरे मसले पर अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहने वाले हैं। इसलिए सवाल है कि क्या जेनजी पर सियासी लड़ाई का राउंड टू शुरू हो चुका है? गृहमंत्री अमित शाह पर बयान, राहुल का घमासान, इसी पर आज हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत।
1: जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: लोकसभा ने पेपर लीक रोकने के नए बिल पर मुहर लगा दी लेकिन बिल पास होने के पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
0: लोकसभा में अमित शाह पर राहुल गांधी का हमला इन्हीं शब्दों से शुरू हुआ और फिर अमित शाह पर उनके आरोपों का सिलसिला सीजेपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल समेत 20 जुलाई के पुलिस एक्शन तक कुछ यूं पहुंचा कि सदन की कार्यवाही बाधित हो गई।
3: लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांग रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। कैसे
4: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
1: हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप शेर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। तथ्यों पे बोले, इस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य बोलना नहीं चाहते।
0: फायरिंग को लेकर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाने वाला राहुल गांधी का बयान तो रिकॉर्ड से हटा दिया गया लेकिन राहुल ने अपने आरोपों को सदन के बाहर भी दोहराया।
5: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया,
6: इसको नीचे कर लिया।
5: दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं, लॉजिक है ना।
0: लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान कुछ और शब्दों पर भी सत्ता पक्ष की ओर से एतराज जताया गया।
7: बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस असंसदीय शब्द का प्रयोग मेरे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए।
0: राहुल पूरे भाषण के दौरान आरएसएस पर हमलावर रहे।
2: राजनाथ सिंह जी सेड दैट वी आर नॉट द यूपीए, आवर मिनिस्टर्स नेवर रिजाइन। ही इज राइट। What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Yes. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office.
0: लोकसभा में चर्चा पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए बिल पर थी लेकिन बिल के प्रावधानों पर बहस से ज्यादा लड़ाई शिक्षा की सियासत पर हुई। अमित शाह पर राहुल गांधी के बयान पर हुए हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही बिल पेश करने वाले मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब से शुरू हुई।
8: शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में परहेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में एमआईए हो गया। एमआईए मतलब मिसिंग, इनएक्शन, जो हमारे जेनजी की भाषा है, और दूसरा जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, जो दबे हुए अरमान है 7 LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जानू किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए।
0: जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से बिल पास हुआ। पेपर लीक रोकने के बिल पर अभी राज्यसभा में चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही में दोनों ओर के तेवर साफ नजर आ गए हैं।
9: उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही।
0: राहुल से पहले कल न सिर्फ शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के बयान पर हंगामा हुआ था, बल्कि परीक्षा सुधारों पर बनी टास्क फोर्स के सदस्य प्रोफेसर वी कामकोटी पर उनके बयान पर आर पार की नौबत आई थी।
10: इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
11: तो सत्य कह दिया,
10: इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता।
12: RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना इस चाहिए इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
0: संसद सत्र में विपक्ष ने पेपर लीक पर छात्रों के आक्रोश पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सियासी लड़ाई में क्या छात्र पीछे छूट रहे हैं, ये सवाल अब ज्यादा बड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पूरे चर्चा में। हमारे साथ अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ अतुल औंधे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, शुरू में तो दिल्ली पुलिस ने इनकार किया, लेकिन फिर ये ऑन रिकॉर्ड माना गया है कि RAF ने पेलेट गन का दिल्ली में इस्तेमाल किया, तो क्या ये जानना देश के लिए जरूरी नहीं है कि आखिर इसका आदेश कहां से आया, किसकी वजह से यह इस्तेमाल हुआ?
13: निश्चित तौर पर यह जानना जरूरी है, और सांसदों को पूरा अधिकार है कि वो इस चीज की बात संसद में रखें कि किसके आदेश पे ये किया गया। लेकिन किसी सांसद को यह अधिकार प्रभु ने नहीं दिया के ऊपर से कि सीधे कहे कि गृह मंत्री के आदेश से छात्रों पर गोलियां चलाई गई। पैलेट गन और गन में अंतर होता है, पहली बात यह है। दूसरी बात, अंजना जी, मैं तो अभी पटना में बैठा हूं, कल यहां चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर थोड़ा काफी 18 साल 19 साल 20 साल सो कॉल्ड जेन जी वाले लोग बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी जी का भाषण चल रहा था, तो राहुल गांधी जी के भाषण पे एक ने मुझे कहा कि कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, जब तक ये CA लोग बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे CA से क्या मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आए पार्लियामेंट में तो अच्छी बात होती है ना। कहा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, क्रेजी एस। यार संसदीय भाषा है, कहा संसदीय भाषा पार्लियामेंट पे बोल रहे हैं, छात्रों को इडियट बोल रहे हैं, छात्रों को अंधभक्त बोल रहे हैं, और मैं CA आपको बोल रहा हूं तो मेरी अनसंसदीय, वो मुझसे लड़ गया। तो छात्रों का रोष तो यहां हो रहा है कि छात्रों को कैटेगराइज करके 3 कैटेगरी में बांटा गया जो पार्लियामेंट में, कि एक इडियट होते हैं, एक अंधभक्त होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो RSS से लड़ते हैं। किसकी बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं? देश के 500 जिलों में से ज्यादा AVVP का संगठन है जो RSS की विचारधारा से प्रभावित है। 70 लाख सदस्य हैं AVVP के, सब अनुभक्त या इडियट हैं? मतलब कोई स्थूर होता है कि नहीं बातचीत करने का संसद में? आए जो मन आया, अपने मन से बोलते चले गए, झूठ इल्जाम लगा दिया, गृहमंत्री के आदेश से चल गई गोलियां, कहां गोली चली? बिहार में AK-47 चली, एक सिपाही ने चलाई, हवा में चलाई, सस्पेंड कर दिया गया। गृहमंत्री आदेश देंगे बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, दिल्ली में एक भी गोली चली? पैलेट गन का अगर चला है, क्यों चला है, उसकी एक इंक्वायरी होगी, जांच होगी, उसके बाद आप संसद में रखिए। 15 भाई साहब 2004 से संसद में, कुछ तो गरिमा रखो। अरे तब इंग्लैंड में कहावत थी डॉक्टरों के बारे में कि गधे कोई भेजो तो पीट पीट के ठोक ठोक के घोड़ा बना देते हैं। संसद में भी कोई 20 साल अगर सांसद रह जाए तो उसको संसदीय परंपरा संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ठीक करते हैं हमारे जनजी, जब तक सीए लोग रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, वही हो रहा है। और उनसे बार बार कहा गया कि आप शब्द वापस लीजिए, खेद व्यक्त कीजिए। ना कहे जी, हम गांधी परिवार है, हम थोड़ी ना शब्द वापस लेते हैं, देखेंगे कल्पेबल है ये है, हु इज ही टू डिसाइड। आई मीन सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटरी इतनी ज्यादा है कि संसद इनके हिसाब से चलेगी या नहीं चलेगी, और किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे। पार्लियामेंट के बनाया के मजाक बना दिया है। इसी तरह लास्ट टाइम नरवणे की किताब पे किया था, बिना ऑथेंटिकेट किए हुए बातों को रखते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो। कल प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 1,40,000 करोड़ का शिक्षा बजट है और 1,32,000 करोड़ सिर्फ एक साल में नीट के एग्जाम से वसूल लेती है। अतुल जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मैक्सिमम 23 लाख छात्रों ने आज तक एग्जाम दिया है, एवरेज 20 से 21 लाख छात्र है, डिवाइड कीजिए जरा 1,32,000 करोड़ से। क्या छात्र सरकार 5,74,000 रुपए एक छात्र से लेती है? मतलब कुछ भी आए बाएं शाएं बोल देना है, चले जाना है, अब बात को कुछ वैल्यूएशन नहीं, अब वो बात संसद के रिकॉर्ड में जाएगी। आज बोल गए कि 750 करोड़ बच्चों ने, जो जितेंद्र सिंह ने पॉइंट किया, 12 साल में 152 परीक्षा लीक हुई। आशुतोष जी को सुन रहा था पिछले डिबेट में, ये कह रहे थे 89 परीक्षा लीक हुई है 12 साल में। प्रियंका गांधी जी ने आपको झूठा बना दिया, उन्होंने 152 परीक्षा, राहुल गांधी भी 152 परीक्षा।
0: ठीक है, चलिए अब सेकंड राउंड में बोलिएगा, अतुल लांडे पाटिल जी के पास चलते हैं। अतुल जी, कुछ रील से इतने प्रेरित हो गए क्या राहुल गांधी जी कि अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप भी ऐसे शब्द टीवी पे कभी बोलते हुए मुझे सुनाई दिए हैं। मतलब कौन है ये, किसको इडियट कह रहे हैं, किसको अंधभक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
14: नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर मुलायम सिंह ने कार से ओके पे गोली चलाई थी तो बच्चों पे पैलेट गन और गोलियां अमित शाह ने चलाई, इसे नकार नहीं सकते। ये कहेंगे वो सब सही होगा, ये नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। किसने कहा था ए कटवे, ए मुसलमान, किसने कहा था पार्लियामेंट में? क्या क्या स्पष्टीकरण दिया देश के प्रधानमंत्री ने? किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय? किसकी भाषा है ये? देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ना। किसने कहा था अय्याश, वो निशिकांत दुबे? बताओ क्या उसकी सच्चाई क्या है? और आप ये जो कह रहे हैं ना, तो स्टूडेंट कह रहे होंगे बीटा है, बीटा जाके देख लेना बीटा का मीनिंग क्या होता है। आपने एजुकेशन की बात की, मैं तो पढ़ा लिखा हूं और सोचता भी वैसा ही हूं। आपको पता है 5,74,000 कैसे निकाले गए? बच्चों को जो स्टूडेंट फीस देनी पड़ती है ना, जरा एलन का फीस जाके देख लो, उसके बाद हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहने के बाद के खाने पीने के खर्चे निकाल लो, लोगों की जमीन बिक जाती है। मैं बीच में बोला
13: ना, सरकार कहती है एलन में जाने के लिए,
14: मैं बोल रही
13: हूं कहती है एलन में जाने के लिए,
0: बीच में नहीं आ जाए, लेट हिम कम।
13: सरकार कहती है एलन में जाने के लिए, बताओ ना पहले।
14: ये देखो, सच बोलना शुरू हुआ तो देखो कैसे लग गई।
0: अजय जी कंप्लीट कीजिए।
14: तो ये खर्चा जो है बच्चों का, इसमें जमीनें बिक जाती है, महिलाओं के गहने बिक जाती है, आत्महत्या इसीलिए हुई। और अगर जिन जी रस्ते पर आया है तो राहुल जी के बारे में क्या सोचता है और मोदी जी के बारे में क्या सोचता है, जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में सबने दिखा दिया है। सवाल ये नहीं है अंजना जी, वो बता रहे थे, वो बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या की, इडियट की डेफिनेशन क्या की और अंधभक्त की डेफिनेशन क्या की। इन्होंने मान लिया इडियट नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए भड़क गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का किसी व्यक्ति विशेष को थोड़ी कहा, एक विद्यार्थी, एक छात्रा क्या बता रही थी और किस तरह से ये सब चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो इन्होंने उस बात को बताकर, राहुल जी जेन जी को लेकर ये बिल को लेकर कुछ बात न रखे, इसकी इन्होंने बुरी कोशिश की। ये तो एक बिल नहीं था, ये संशोधित बिल था। 2024 में भी इन्होंने यही बात कही थी, हमने उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया राधाकृष्णन जी से लेकर सबको लेकर। मुझे एक बात बताइए, रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेकर, क्लोजअप रील बनाकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में जब चर्चा चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे हाउस में? आप नेहरू जी को गाली देते हो ना, नेहरू जी पूरी वक्त संसद में बैठते थे, देश के गृह मंत्री नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया बच्चों पे AK-47 से गोली चली हवा में, नहीं चले अलोक जी, फुटेज अवेलेबल है, लगी है गोली 15 साल के बच्चों को, आपके बिहार के बच्चों को लगी है। अगर व्यवस्था में ऐसा कुछ हुआ है तो विपक्ष और पक्ष मिलकर, आप वहां पर अगर देश के गृह मंत्री अगर स्टेटमेंट दे देते तो बात अलग होती। मुझे बताइए, जो जोशी एनटीए का अध्यक्ष है, पूरा रिकॉर्ड उसका फ्रॉड का है, यानी चंपत राय एक चोर को बचाने के लिए दूसरा महाचोर किसको लाता है, विजय विश्वास पंत को, जिसके ऊपर 420 की केस है। भरोसा हम आपके ऊपर रखें, देश की जनता राम भक्त जो है भरोसा आप पे रखे। एक जोशी जो जिस व्यापन घोटाले का क्या बोलते हैं उसको, किंग पिन, छत्तीसगढ़ इसका अध्यक्ष, पीएससी का, मध्य प्रदेश पीएससी का अध्यक्ष, उसे आप एनटीए का अध्यक्ष बना के लाते, भरोसा हमने आपके ऊपर रखना चाहिए। एक रहे सचिव को अब चेंज करते हैं, शिक्षा सचिव को किसको लाते हैं, जिसने खीरे में अपने ही परिवार को सब्सिडी दिलाई, ऐसे लोगों को आप लाओगे और कहोगे कि हम आप पे भरोसा करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है ना देश के प्रधानमंत्री ने, पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का वकील सीबीआई उपस्थित नहीं रहा, वकील उपस्थित नहीं रहा, और एक एक हर स्टेट में एक एक।
0: आज आज सुनिए एक सेकंड सुनिए ना, आप लगातार कह रहे हैं लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जो लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें वो अंधभक्त नहीं होते हैं, जो बीजेपी का करें वो अंधभक्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बिल पर राहुल जी ने क्या क्या बोला है, क्योंकि असल मुद्दा तो बच्चों का है ना, डिफ्लेक्ट करने का बीजेपी को एक मौका मिल गया, अब वो इसी इन्हीं दोनों शब्दों पर झूल गए हैं, वो इन बातों पर झूल गए हैं। बिल पर राहुल जी ने बिल को मजबूत करने के लिए क्या कहा, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगा।
14: के मंतव्य में ही सब है कि राहुल जी जेंजी को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर कुछ बोल नहीं पाए, इन्होंने कोटा में और देहरादून में राहुल जी को देख लिया था बोलते हुए, इसीलिए बोलने नहीं देना है, इन्होंने कहा ही नहीं ना। ये लोग मानते हैं मोदी जी को इडियट, हमने थोड़ी कहा, वो तो स्टूडेंट ने डिफाइन किया व्हाट इज स्टूडेंट, व्हाट इज इडियट, व्हाट इज अंधभक्त, उन्होंने किसी को पॉइंट आउट ही नहीं किया।
0: जवाब दीजिए अजय आलोक जी,
14: अजय आलोक जी जाए नहीं,
0: आ रही हूँ एक बार, अजय आलोक जी डिफेंड करें अपनी पार्टी को, उसके बाद आ रही हूँ आशुतोष जी और रोहित जी, जल्दी से अजय आलोक जी उनके सवालों का जवाब।
13: देखिए अंजना जी मैं पटना में बैठा हुआ हूं, ये झूठ बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को AK-47 की गोली लगी है, ये पुलिस का आधिकारिक बयान है। अगर एक स्टूडेंट को AK-47 की गोली लगी है, कि इनकी प्रदेश अध्यक्ष क्या यहां पे कर रहे हैं, क्यों नहीं गए मिलने स्टूडेंट से मैदान?
0: एक सेकंड, आपको टोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है राहुल गांधी की, चलिए।
15: एज यू सॉ टुडे द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट अलाउड टू speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker
16: to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out.
15: Then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. To me, the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. Were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye. Cannot see. I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping
17: a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at PM House, nobody knows who they are, where they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. Now, here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, he humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We've asked you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings were done by Delhi police. And the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized their deployment? I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure, but the government ensures it or doesn't ensure it, we will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe sometime from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. We will ensure that the people who shot our students with pellet guns will be punished. It's very simple for us to do. We have the photographs. We've collected all the videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. This is our guarantee. This is our opposition guarantee to the students. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah, and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. At least have the decency to take responsibility for what you have done. Thank you. Hindi?
18: Yes, Hindi.
17: Jo hamare students protest pe the, peaceful protest, non-violent protest, pyar se resist kar rahe the, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया, ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट्स थे, एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का। और मैंने उनसे साफ कह दिया, भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया और इसलिए मुझे यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक। द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर आई एम साइलेंस्ड। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस अमित शाह दैट, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो दो मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की, आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है, एंड बोथ ऑफ देम दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, दो सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लिथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए, क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों? आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए।
18: पीटीआई से आसिम।
19: So when the students called off the protest, one of their demands was that no action will be taken against the students. But FIRs are being filed and there are reports of their harassment. So how do you plan to take that forward? How do you plan to take it up?
17: I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition. They are threatening them. Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children. They are our future. And the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished.
18: NIC Siddharth.
20: सर, आप जब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हाउस में भी आपने लगाए और यहां पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में ये कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियां चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहां से आती है? और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू ने बाहर जो है बाइट देते हुए ये कहा कि आप बिल पे बिल्कुल बोले ही नहीं, आप मिसलीड कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था, और बिल जो पास हुआ है क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं?
17: देखिए, जहां तक पैलेट गन की बात है, पैलेट गन इज ए लीथल वेपन। एट क्लोज रेंज पैलेट गन कैन किल अ पर्सन। पैलेट गन कैन ब्लाइंड अ पर्सन। मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पैलेट गन का विक्टिम से आप से बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पैलेट गन यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या जाते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? और जहां तक डिस्कशन की बात है, द बिल इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। व्हाट आर द स्टूडेंट सेइंग? द स्टूडेंट इज सेइंग दैट the education system does not work, our papers are leaked, we go through extreme pain and discomfort, it is too expensive. And what is the government response? We will increase the punishment from 1 year to 10 years. What difference does that make? You don't punish anyone anyway. Nobody has been convicted. Aaj tak koi conviction nahi hua hai. Aur aap keh rahe ho bhaiya ek saal se hum 10 saal bada denge. और आप ये भी कह रहे हो बिल में, आप ये भी कह रहे हो कि भैया एक साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा। दैट इज व्हाट द बिल इज सेइंग। द बिल इज सेइंग दैट वी एक्सेप्ट पेपर लीक्स एंड वी विल पनिश दोज पीपल हु डू पेपर लीक्स। वी आर सेइंग नो, वी डोंट एक्सेप्ट पेपर लीक्स, चेंज द सिस्टम सो दैट देयर आर नो पेपर लीक्स, रिमूव द आरएसएस फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, रिमूव द वीसीज हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द आरएसएस। सो the bill is a band-aid, not even a band-aid when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea.
18: Alok Jha, IANS.
17: Isko band kar do. Sorry.
21: Sir, सड़क पर आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको घसीटा जाता है, और संसद में माइक बंद किया जाता है, आपसे माफी मांगने को कहता है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कैसे अपनी बात रखें?
17: ऑप्शन तो पूरा रास्ता खुला हुआ है, अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप देख रहे हो, ऑप्शन की कोई कमी थोड़ी है। बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्पेसेस होती हैं। जो मैंने आज पार्लियामेंट में बोला, एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड, गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, सस्टेन करने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं थिंकिंग दैट जस्ट बिकॉज ही पुट द फोन इन फ्रंट ऑफ हिज फेस लाइक दिस ही सडनली बिकम्स ही इज एबल टू कम्युनिकेट टू जेन जी। नो, द प्रॉब्लम इज योर इमेज, द प्रॉब्लम इज व्हाट यू हैव डन टू दीज स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम इज हाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड देयर फ्यूचर, द प्रॉब्लम इज व्हाट यू हैव डन टू द इकोनॉमी, दैट्स द प्रॉब्लम। And that image is gone. So, field is open for us. And I really thank the students. I'm very proud of them. And I don't like saying this. They had the courage that their parents did not have. I'm sure many of your children were in the protests. They had the courage that you did not have. And I'm proud of every single Indian student who did it. Thank you.
18: CNN Network 18 से शिरीन। ये इधर फ्रंट।
3: Hi sir, my name is Sharon. I'm from CNN News 18. My question is that there has been a demand from the Congress and the opposition that there needs to be a statement by the Home Minister. Today the anti-paper leak bill has been passed. Do you expect that the statement will happen or will you continue to demand a statement?
17: It's not an anti-paper leak bill. It's a paper leak punishment bill. There's nothing in this that says they are going to stop paper leaks. Anti-paper leak bill is something that stops paper leaks. This is not going to stop paper leaks. Paper leaks are going to continue. This is just putting a little rubber stamp saying that we've increased the punishment from 1 year to 10 years. That's all it is. Right?
18: Manoranjan,
17: no, sorry, what is the second part?
18: Sorry.
17: No, we'll demand it, but the fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. So we don't expect him to come. But we do understand that he is responsible and we're not going to let him get away with it. फाइनल क्वेश्चन,
18: यस सर, एनडीटीवी।
4: सर आपने कहा कि पूरा फील्ड खुला हुआ है आपके पास, तो कोई स्ट्रेटेजी है कि इसको कैसे कंकर्ट किया जाएगा?
17: नहीं, अब स्ट्रेटेजी मैं आपको थोड़ी बताऊंगा, आपको स्ट्रेटेजी का इफेक्ट तो दिख रहा होगा, आपको तो स्पेशली दिख रहा होगा।
18: मौसमी,
17: थैंक यू
18: मौसमी इंडिया। सर लास्ट क्वेश्चन, मौसमी, मौसमी माइक
22: दीजिए।
18: मौसमी इंडिया टुडे।
22: अरे राहुल जी, 20 तारीख को लाठीचार्ज और पूरा मार्च हुआ, पैलेट गन्स की खबर आई। 21 तारीख को दिल्ली पुलिस पब्लिकली डिनाई करती है कि कोई पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और 22 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट के डायरी में यह आता है कि पैलेट गन्स, शॉक बेटन्स, लाठीचार्ज, सारी चीजों का इस्तेमाल किया रैपिड एक्शन फोर्स, अपनी जनरल डायरी में ये लिखती है, नोट लिखती है। उसके बाद से खबर ये आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इतने क्रिमिनल्स हैं, 2800 क्रिमिनल्स थे उस मार्च में। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी खबर आती है कि फेस रिकग्निशन हो रहा है या अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सन्नाटा है इस पूरे मसले पर। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस और ये कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं उसके बाद ये सब होता है, तो क्या आपको लगता है जो आप कह रहे थे कि होम मिनिस्टर या तो इनकॉम्पिटेंट है या तो फिर वो दोषी है?
17: आप तो मेरी बात रिपीट करनी है।
22: मेरा सवाल
17: मैंने
22: ये
17: तो आप दिखाओ जरा स्लाइड, मौसमी ने देखा नहीं शायद इसको,
22: मतलब मेरा सवाल मैंने देखा ही है, मैंने ये देखा,
17: दिस इज द स्लाइड, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस नाउ, आई डोंट।
22: मेरा सवाल ये है कि क्या आप, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है,
17: हाँ।
22: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है,
1: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
22: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
1: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो। थैंक यू वेरी मच।
18: सवाल और, सुहेल, हिंदी हिंदुस्तान।
5: राहुल जी, आपने पूरा अपना बता दिया कि क्या करना है। अब हम ये उम्मीद करेंगे पार्लियामेंट में हंगामा रहेगा या इसका आप डिमांड करेंगे?
1: नहीं, ये तो हम ऑपोजिशन से मिलकर डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट में फ्लोर की स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी मीटिंग होती है, हर रोज होती है सुबह, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है। हम जनरली कंसेंसस से एक्शन लेते हैं उस पर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
18: थैंक यू, आप लोग थोड़ी देर में आइए, चाय पीजिए, सवाल वहां करेंगे बैठकर।
0: तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और उन्होंने कहा लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है। अजय आलोक जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया उनकी बातों पर। तो आपको बता दें, युवाओं पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जिस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री के सामने वो सवाल उठाते रहेंगे। और आज तक के सवाल पर राहुल गांधी ने खास तौर पर कहा है कि अमित शाह को जाना होगा और इसके लिए वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। आपको बताएंगे दिल्ली में प्रदर्शनकारी बवाल पर तो बच गए, लेकिन गाली पर क्या फंस गए? इसके बाद आपको बताएंगे कि पेपर लीक की सियासी लड़ाई इडियट शब्द पर क्यों आई, और आखिर में आपको बताएंगे कि POJK में जेन जी के आक्रोश ने पाकिस्तान के होश कैसे उड़ा दिए। देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
25: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
26: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
27: Looking for your favorite local radio stations? Look no further.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: समझकर इन्वेस्ट कर।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
7: डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
8: देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड। There is one category of people called student vidyarthi, jo vidya ka arth dhoondta hai, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures, so the student is never scared of the truth.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गृह मंत्री शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, राष्ट्रीय गीत पर अपमान करने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल। मॉनसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन, 19 संगठनों का भोपाल कूच, राज्य के मंत्रियों ने की मुलाकात, मूंग की 100% खरीद की मांग। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह मस्ट गो। इस मुद्दे पर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने राहुल गांधी से सवाल किया, तो आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा।
1: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले न्याय मिलेगा, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
1: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
0: मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी?
3: देखिए मारिया, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो दिन से हम लोग कवर कर रहे थे कि अमित शाह का बयान होना चाहिए इस पर। अमित शाह जवाबदेही उनकी पूरी तरह से होनी चाहिए, संसद में बयान दे। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने दिखाया, अभी राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस पे कोई समझौता नहीं है, अब वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल अमित शाह को जाना पड़ेगा, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद एक ही हफ्ते में वो दूसरे बड़े गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, बताना था कि किस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को बोलने दिया जाता है, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया जाता है, और इसीलिए जो चीज मुझे संसद में बोलनी थी मैं यहां आके कह रहा हूं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मारिया, उन्होंने कहा कि जो छात्रों के ऊपर, जिनके ऊपर FIR हुई है, फेस रिकग्निशन हो रहा है, छात्रों को जो है उनका कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, इसको लेके मैं चिंतित हूं। बजरंग दल का उन्होंने नाम लिया और आरोप लगाया कि बजरंग दल के गुंडे पीट रहे हैं उन छात्रों को, और इसीलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। तो कुल मिला के अपने आक्रामक तेवर राहुल गांधी यहां पे काफी तीखे करते हुए।
0: चलिए मौसमी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में भी अपने भाषण के दौरान जमकर अमित शाह पर वो बरसे थे, हंगामा भी खूब हुआ। अमित शाह पर राहुल के आरोपों को एक्सपंज कर दिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से ये मुद्दा उठाया।
2: पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते, तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की, दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को, और दूसरी साइड आरएएफ ने की, आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। किसी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है, एंड बोथ ऑफ देम दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं।
0: उधर बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।
4: लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया, गृहमंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना।
5: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है, तो आज बच्चा बच्चा जानता है लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
0: लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया। लंबी चर्चा हुई, ध्वनि मत से बिल पास हो गया है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से उन पर पलटवार किया गया।
6: तमाम शोर शराबे, तमाम हंगामे, तमाम नारेबाजी के बीच आखिरकार लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया।
7: जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने।
6: लेकिन बिल पास होने से पहले सदन में गृह मंत्री के ना होने पर विपक्ष नाराज था, विपक्ष सवाल कर रहा था।
8: एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
6: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर हमले के साथ ही अपने भाषण की शुरुआत की। छात्रों के प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल समेत 20 जुलाई के पुलिस एक्शन तक अमित शाह पर आरोपों के तीर चलाए। राहुल के आरोपों पर सत्ता पक्ष भड़क उठा।
9: होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए।
10: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
7: बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप। आपने बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप।
6: राहुल गांधी का बयान तो रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन राहुल ने अपने आरोपों को सदन से बाहर भी दोहराया।
11: दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया,
12: इसको नीचे करिए।
11: दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग हो।
6: राहुल गांधी आरएसएस पर भी हमलावर रहे।
13: एंड इट्स अ सिस्टम दैट हैज बीन कैप्चर्ड। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS.
6: 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। आज उस धरने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में राहुल पर हमला बोला।
14: बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7LKM के दरवाजे पर जा बैठे।
6: छात्रों के साथ हुई बेरहमी पर राहुल ने अमित शाह पर आरोप लगाया था। जितेंद्र सिंह ने इन आरोपों को लेकर भी राहुल पर पलटवार किया।
14: तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कहकर के निकल जाना यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता।
6: तो तमाम शोर शराबे के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित हो चुका है, अब राज्यसभा की बारी है। लेकिन इस विधेयक पर चर्चा में प्रस्तावित कानून पर कम और सियासत का शोर ज्यादा दिखा। आज तक ब्यूरो।
0: इस बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी जुड़ गए हैं। जेठमलानी साहब, क्या सजा सख्त कर देने से पेपर लीक रुक सकता है?
15: देखो, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, लेकिन इसको जल करने में तो इसका काफी असर होने ही वाला है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सजा हैवी होने के वजह से लोग और भी डर जाएंगे ऐसे ऐसे कर्मों से, वो भविष्य में ज्यादा कम तो हो ही जाने वाला है।
0: किसी भी कानून को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है, तो इस कानून को लेकर क्या चुनौती आपको लगता है हो सकती है?
15: निर्भय के केस में इसका काफी असर था, यानी निर्भय के केस में जो स्पेशल स्टैट्यूट था और फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए गए और सजा भी बढ़ाया गया, उससे असर पड़ा, क्योंकि जो मुकदमा था वो
0: संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
16: का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर दो या तीन बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी, और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसकी स्पष्टीकरण दी, मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता विनम्रता और बहुत ठंडक थी, गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे, क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की, उन्होंने कहा, राहुल जी आप बोलिए और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से ये अपील करता हूं कि सब राहुल गांधी जी को ध्यान से सुने। इससे बड़ा लोकतांत्रिक परंपरा क्या हो सकता है, जहां सदन के उपनेता रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं, यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे, दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वेर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृहमंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तक्षणात क्या एक्शन लेना है, अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृहमंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था, बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी। और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृहमंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप बता दीजिए कहां देखा कि गृहमंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार, आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। आज जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, देखिए बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है यहां। दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया, आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया, सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया, टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स, फिर आज एक पुख्ता कानून बनाया, केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा, और एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है, दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, काम ही सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शांत करता हूं, धन्यवाद।

0: बीजेपी का अब कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे और ये वो इश्यू संसद में और संसद के बाहर उठाते रहेंगे। वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
5: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
6: We know LeBron has to be the best player on the planet to
4: get The Daily.
7: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: सवारी ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
9: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
8: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
10: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
14: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
15: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: नहीं,
19: तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं।
18: एकदम
19: सॉलिड।
20: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
21: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
22: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
2: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
12: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कन्फर्म्ड है।
13: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।

0: जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत, कुलगाम में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई मकान। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। राजौरी, पुंछ, गुरेज और उरी के बाद अब कुलगाम में भी बादल फटने से तबाही मची। ये तस्वीरें कुलगाम के देवसर के दार्दगंड की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में कई घर और मवेशी भी आए। बादल फटने की खबर मिलते ही SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुलगाम ही नहीं, बांदीपोरा में भी भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें, रिहायशी इलाके और खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। आज तक ब्यूरो।
1: कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है, कहीं लोगों की आफत में जान है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा डर लग रहा है सड़कों पर। ये देहरादून मसूरी रोड की तस्वीरें हैं। ऊपर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इस रास्ते पर भूस्खलन हुआ तो दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। घंटों तक यात्री परेशान रहे। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया। वहीं देहरादून मसूरी रोड पर ही मूसलाधार बारिश के बीच एक और बड़ा हादसा टल गया। यहां सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट पर अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गिरे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और किसी की जान नहीं गई। मसूरी से ही एक और वीडियो सामने आया है। यहां पूरा का पूरा पहाड़ ही बहकर नीचे आ गया। यह मसूरी चमसारी सड़क का वीडियो है। यह रास्ता गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने खिसक कर सड़क पर आ गई। बारिश पहाड़ों पर कहर तो मचा ही रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रही है। यह देहरादून के प्रेमनगर का वीडियो है, जहां नीचे से टोंस नदी बह रही है। भारी बारिश में पुल की अप्रोच रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। साल 2025 में सितंबर के महीने में देहरादून के अलग अलग इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा में यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल को फिर से तैयार करने में 16 करोड़ रुपए की लागत लगी, 10 महीने का समय लगा और 13 जुलाई 2026 को यह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सिर्फ 16 दिन के भीतर ही इस पुल की अप्रोच रोड धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। सरकार के पास वही घिसापिटा जवाब है कि जांच कराएंगे, कमी होगी तो दूर की जाएगी, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जिसने पुल को तैयार करने के लिए 10 महीने का वक्त लिया, 16 करोड़ रुपए खर्च किए और 16 दिन में ही ये गड्ढे में बदल गया। सिस्टम अगर ठीक से काम करता तो इस छोटे से पुल को बनाने में इतना लंबा समय नहीं लगता। मानसून आने से पहले ही ये बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में इसे खोला गया तो हादसा हो गया। वो तो गनीमत थी कि जब ये गड्ढा बना उस वक्त यहां आवाजाही नहीं थी। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कंगना ने जेन जी को कल एक पोस्ट में गटर छाप कहा था और आज बाकायदा वीडियो जारी करके वो खुद को सही साबित करने पर तुली हैं। लेकिन कंगना के बयान पर भारी विवाद हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या कंगना ये सब कुछ अपने मन से कर रही है या फिर पार्टी ने भी उन्हें हरी झंडी दी हुई है।

0: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। कोई उनको भगवान मानता है,
1: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें।
2: कंगना रनौत इतनी नाराज क्यों है? जंतर मंतर पर उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ जिसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए या फिर वहां प्रदर्शनकारियों ने अभिव्यक्ति की आजादी की सारी सीमाएं लांघी? इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की वो रील्स जिनमें जेंजी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के लिए भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे, आपत्तिजनक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कंगना रनौत ने इसे भारतीय संस्कृति का मुद्दा बना दिया।
0: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे, हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है।
2: कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी को खूब खरी खोटी सुनाई और कई हदें भी पार कर दी। जैसे कंगना ने लिखा, ये तथाकथित पश्चिमी भारतीय महिलाओं की पीढ़ी है जिन्हें मैं गटर वाली पीढ़ी कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास तो इस समाज को देने के लिए कुछ नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बल्कि ये तो इतने भद्दे और भ्रष्ट हैं कि यह हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। लेकिन वो बड़े गर्व से ड्रग्स, शराब और अनैतिक यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती, अपने घर वालों के पैसों पर पलती।
0: क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं, तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं।
2: असल में कंगना लगातार इस आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रही है। जिस दिन से इस आंदोलन ने तूल पकड़ा, कंगना ने लगातार आंदोलन के खिलाफ अपना अलग स्टैंड लिया हुआ है। कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी बदसूरती एक साथ नहीं देखी। जेंजी के विरोध प्रदर्शनों की ये रीलें देखकर घिन आती है। इन लोगों के बोलने का तरीका और जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर फ्रेम इतना अजीब और परेशान करने वाला है कि देखकर घिन आती है। आखिर इन्हें जन्म कौन दे रहा है और कौन इनकी परवरिश कर रहा है?
0: तो हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
2: असल में कंगना इस बात से ज्यादा नाराज है कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौच हुआ। कंगना ने आज जो वीडियो जारी किया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत से लोगों के लिए प्रधानमंत्री भगवान हैं और प्रदर्शन में जिस तरह की बातें हुई हैं उससे उनकी भावनाएं आहत हुई।
0: मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा।
3: आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे।
2: कंगना रनौत पर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो और हंगामा हो गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कह दिया कि कंगना रनौत को उनकी पार्टी में ही कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इस पर भी कंगना ने जवाब दिया,
1: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेंजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं।
2: कंगना ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को फिर से सोशल मीडिया पर ही रिप्लाई किया, लिखा, मैंने गूगल किया है, ये लड़का 28 साल का है, ये खुद को स्टूडेंट कैसे बोल रहा है, समझ में नहीं आता। हाँ मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूँ लेकिन पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ जी रही हूँ। उसकी उम्र तक आते आते मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। हाँ एक नई सांसद के तौर पर मैं काम के बोझ से अभिभूत हो गई थी क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और उद्यमी भी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो वो कभी नहीं समझ सकता कि किसी भी उम्र में हर समय इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारे मुद्दे निजी हैं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो स्किल्स सीखने से शुरू करते हैं, शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है।
4: कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो जब बीजेपी की सांसद नहीं थी तब से वो इस तरह के राजनीतिक विवादों में रही हैं, लेकिन अब वो बीजेपी की सांसद हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। जिन जेन जी के लिए उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिन जेन जी से उनकी सरकार के 2 मंत्री नेगोसिएशंस कर रहे हैं, अब उन्हीं को गटर छाप कहना, बेशर्म भद्दा कहना राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है।
2: कंगना ने जेन जी पर जो बोला है उस पर तो अब उन्हें अपनी इंडस्ट्री से भी साथ नहीं मिल रहा। कंगना की बात को सोनू सूद ने खुलकर शर्मनाक कहा है।
5: अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल, बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलें क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
2: कंगना को वैसे तो विवादों में रहने की पुरानी आदत है और उन्हें पहले भी बीजेपी की तरफ से कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी भी चुप है क्योंकि कंगना ने सीधे प्रधानमंत्री के लिए आवाज उठाई है। वो जेन जी से जुड़े हर विवाद पर बोल रही हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जब मुंबई में इस प्रदर्शन के दौरान एक अकेली लड़की पुलिस की वैन के आगे खड़ी हो गई थी। इसे ऐसे देखा गया कि जेन जी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये रिया अहिर है जो मुंबई की एक मॉडल है। पहले 2 दिन तो उनकी बहुत तारीफ हुई लेकिन अब जब ये प्रदर्शन खत्म हो गया तो रिया को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया पर उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनकी पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की है।
6: मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। अगर मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं करूंगी तो आपको पता ही है औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। मुझे माफ करना। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी को बचना चाहिए। ये मैं आपसे पूछती हूँ, पॉलिटिशियंस जो भी ये देख रहे हैं संसद के साथी, ये देखकर मुझे बताएं कि बेटी का रेप होना चाहिए और उसे उसका एंजॉय करना चाहिए, या बेटी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो उसका मुंह कुचल देना चाहिए।
2: और ऐसा किसी एक प्रदर्शनकारी के साथ नहीं हो रहा, कईयों के साथ हो रहा है। कई लोगों को सड़क पर पकड़कर पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और इनके लिए भी कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
4: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: इंदौर पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। आरोपियों के नकली प्लास्टर का वीडियो वायरल। जेल पहुंचते ही आरोपियों ने उतार फेंकी पट्टियां। ये वीडियो इंदौर का है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने इलाके में जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपियों के हाथ पैर में प्लास्टर और पट्टियां बंधी दिख रही थी। इससे लोगों को लगा कि पुलिस ने इन पर कड़ा एक्शन लिया। वहीं अब ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें आरोपी जिला जेल के गेट पर खुद ही अपने हाथों और पैरों पर बंधे प्लास्टर और पट्टियों को खोलते और फेंकते दिख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों को घायल दिखाने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वायरल वीडियो में कुछ लोग पैसों के लेन देन की बात करते सुने जा रहे हैं।
1: उनको इस पुलिस वाले ने 20,000 रुपए लेकर के, ये देखिए इनके हाथ पैर तोड़ने की शिकायत थी और ये पट्टा इसका ये यहाँ पे निकाल दिया।
0: पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 20,000 रुपए के लेन देन के चलते दिखावे के लिए प्लास्टर बांधा गया था।
2: उनको 170 बीएनएसएस के तरफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा गया था। तो उसी उपक्रम में एक वीडियो अभी सामने आया है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा था, उनके हाथ से पट्टी हटाई जा रही है। तो मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच गठित की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
0: वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र सरकार के साथ आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: शाह पर राहुल गांधी का हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का आरोप लगाया, कहा हर बार चेंज कर देते हैं गोल्ड पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मॉनसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन, 19 संगठनों का भोपाल कूच, राज्य के मंत्रियों ने की मुलाकात, मूंग की 100% खरीद की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। 8 बज रहे हैं और खबरदार करने का वक्त है। मुद्दा छात्रों का है, देश के युवाओं का है। सियासत सड़क से संसद तक पहुंची, आरोपों से वार, बयानों से पलटवार बहुत तेजी से हो रहा है। इन सब के बीच नीट यूजी काउंसलिंग की समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की है। सरकार किसी भी स्तर पर कहीं कोई चूक नहीं रहने देना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तैयारियों का जायजा लिया। तो एक तरफ नीट परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ लोकसभा से आज पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान वाला बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इन सब के बीच छात्रों की लड़ाई पर सियासी हवाई गोली चल रही है। लोकसभा में चर्चा का मौका मिलने पर राहुल गांधी ने गृहमंत्री को घेरा, हंगामा हुआ। दोपहर में सदन में राहुल गांधी ने आरोप लगाकर कह दिया कि गृहमंत्री के आदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली थी। बीजेपी ने कहा कि गोली कहीं नहीं चली, राहुल झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि झूठ बोलने की वजह से राहुल को माफी मांगनी होगी।
1: विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
2: करीब 10 घंटे बहस लोकसभा में चली। 45 सांसदों ने पक्ष और विपक्ष से बिल पर बहस की। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाला सख्त प्रावधान का बिल पास तो हो गया, लेकिन पेपर लीक रोकने वाले सख्त कानून के बिल से ज्यादा चर्चा अबीडियट, अंधभक्त, सच, झूठ, गृहमंत्री पर वार, राहुल गांधी पर पलटवार की हो रही। जहाँ पहले सदन में राहुल गांधी 50 मिनट बोलते हैं, शुरुआत में एक छात्रा से बातचीत के आधार पर कहानी सुनाते हैं, इडियट, अंधभक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू टोकते हैं, असंसदीय शब्द वाले शब्दकोश की याद दिलाते हैं, कार्रवाई से शब्द हटा दिया जाता है।
3: सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
4: मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूँ कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।
2: इसके बाद हंगामे के बीच राहुल गांधी आगे बोलने लगे तो गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे बीजेपी ने तथ्यहीन, झूठा बताते हुए साबित करने को कहा।
5: आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती।
6: जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तक्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, यह निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं।
7: गन्स चनी है, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है?
8: जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती।
2: चर्चा के दौरान ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री के सदन में न होने को लेकर सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
3: आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर। आई सॉ द होम मिनिस्टर सर कारकेड, सर आई सॉ द कारकेड, 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग।
9: सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई इज ही नॉट इन द हाउस?
6: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, दिन रात परिश्रम करके जिस व्यक्ति ने भारत से नक्सल हटाया हो, भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाया हो, वह व्यक्ति कांप रहा था? एक एक नक्सली जिसने 100-100 हत्याएं की थी, चुन चुन करके उनका सफाया किया था अमित शाह जी ने, वह व्यक्ति कांप नहीं सकता? आपने कहा अमित शाह जी कांप रहे थे, जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं उनके नाम पे यह कहना कि वो कांप रहे थे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है।
0: इसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो दिल्ली में गोली चलने की जगह पैलेट गन से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग वाली बात बताने लगे। इसी आधार पर गृह मंत्री को घेरने लगे, कहने लगे कि आदेश गृह मंत्री ने दिया। बीजेपी पूछने लगी कि क्या राहुल गांधी ने यह सब देखा, क्या राहुल को पता नहीं कि मैजिस्ट्रेट स्थानीय स्थिति के हिसाब से फैसला लेते हैं? बीजेपी की मांग है राहुल को माफी मांगनी होगी।
3: आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है।
6: राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं, तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स, फिर आज एक पुख्ता कानून बनाया। केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा। और एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है, दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, काम ही सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा।
0: आज गुरु पूर्णिमा है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, विपक्ष के दूसरे नेता, हर राज्य के मुख्यमंत्री समेत तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु यानी टीचर के महत्व को बताते हुए पोस्ट किया है। ज्यादातर ने लिखा है कि गुरु का महत्व एक शिष्य यानी स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा होता है। गुरु शिष्य दोनों का संबंध शिक्षा से है, जिससे जुड़े पेपर लीक के मुद्दे पर आज लोकसभा में भारी हंगामे के बीच नया बिल पास हो गया। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर गंभीरता की बात करती सियासत के बीच एक हकीकत से सामना करा देते हैं, जिसकी न संसद और विधानसभाएं चिंता करती हैं, न ही चर्चा करती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में 104,125 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 12,912 सिंगल टीचर स्कूल हैं। दूसरे नंबर पर झारखंड में 9,172, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर। देशभर में 7,993 स्कूल ऐसे भी हैं जहां टीचर तो है पर एक भी बच्चा नहीं। इनमें पश्चिम बंगाल में 3,812, तेलंगाना में 2,245 स्कूल हैं। देश के बड़े राज्यों की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा 2,77,070 टीचर की पोस्ट खाली है, झारखंड में 99,565, पश्चिम बंगाल में 77,788, उत्तर प्रदेश में 77,400, मध्य प्रदेश में 52,019, कर्नाटक में 38,163 टीचर की पोस्ट खाली है। मतलब जितने टीचर होने चाहिए उतने हैं ही नहीं। गुरु पूर्णिमा पर आज पांचवा आईना दिखाता तथ्य जो हर सरकार को देखना जरूरी है वो ये कि शिक्षकों को सर्वे, चुनावी ड्यूटी, नेताओं के स्वागत सत्कार वाले दौरे जैसे नॉन टीचिंग कामों में लगा देने से पढ़ाई के तय दिनों में करीब 14% समय पढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो पाता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कंगना ने जेन जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर अपनी सफाई दी, मीडिया पर आरोप लगाया कि उसने एक तरफ का ही पक्ष दिखाया। इसके अलावा कंगना ने सीजेपी पार्टी के सौरभ दास पर भी पलटवार किया, उन्हें बेकार और बेरोजगार तक कह दिया।
10: मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है।
11: जब कुछ समझ में ना आए, जब बड़ी गलती हो जाए तो सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दो। लेकिन खबरदार करता तो सवाल ये है कि जेंजी पर अपने गटर ज्ञान से क्या वो बच सकती है।
10: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर,
11: कंगना रनौत ने इस बार हद ही पार कर दी। एक सांसद होने के बावजूद जेंजी लड़कियों, खासकर हिंदू लड़कियों को भ्रष्ट, बदसूरत बताते हुए कहा कि ये ड्रग्स लेने, शराब पीने और कईयों के साथ शारीरिक संबंध को अपनी आजादी कहती और इसका दिखावा करती है।
10: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर, सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे।
11: अपनी ऐसी बातों के लिए कंगना रनौत चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन कंगना गलती मानने के बजाय जंतर मंतर पर जेंजी प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले सौरव दास पर भड़क जाते। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरव का वीडियो शेयर किया और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उनकी उम्र और छात्र होने के दावे पर सवाल उठाए। कंगना लिखती है कि उन्होंने सौरव के बारे में गूगल किया और उनकी उम्र 28 साल है, ऐसे में वो खुद को छात्र कैसे बताते हैं, ये उनकी समझ से बाहर है। इसके बाद कंगना अपने काम गिनवाने लगती है। वो कहती है कि भले ही पिछले 2 साल से वो राजनीति में हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में करीब 20 साल से। कंगना रनौत ने सौरव दास को छोटा साबित करने के आगे लिखा है कि सौरव की उम्र तक मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हूँ। वो ये मानती हैं कि शुरुआत में वो काम देखकर थोड़ी परेशान हुई, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति के साथ फिल्म निर्माण, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर का काम भी संभाला। कंगना रनौत का ये गुस्सा उनके विवादित बयान पर सौरव दास और अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया पर निकला, जिन्होंने कंगना को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कंगना को उनकी पार्टी गंभीरता से लेती ही।
12: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है।
11: ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन जी को लेकर
13: उनको कौन सीरियसली लेता है?
11: इसी से भड़क कर कंगना ने अपनी खींच सौरव दास पर निकालते हुए आगे लिखा कि जो व्यक्ति पूरी तरह बेकार और बेरोजगार, वो कभी नहीं समझ सकता कि किसी भी उम्र में हर समय इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरव, तुम्हारी प्रॉब्लम पर्सनल, तुम छात्र नहीं, तुम सिर्फ बेकार। चलो हुनर सीखने से शुरू करते हैं, शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। कंगना रनौत पहले ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयानबाजी करती रही, लेकिन इस बार मामला जेन जी से जुड़ा है, जिसने प्रदर्शन के दम पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया। शायद इसीलिए कंगना भी जेन जी को लेकर सौरव दास की तरह आक्रामक नहीं दी।
10: मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेन जी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी, और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेन जी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं।
11: विपक्षी नेता कहते हैं कि कंगना रनौत को प्रदर्शनकारियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कंगना को देखकर लगता नहीं कि उन्हें अपने किए का कोई भी पछतावा है।
0: कंगना ने साफ कहा कि उनकी जो राय थी वो सभी जेन जी के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनकी भाषा पर उन्हें आपत्ति हुई। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हुए देश भर के प्रदर्शन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कंगना और सीजेपी के बीच ये विवाद अभी भी सोशल मीडिया पर जारी है, जिसमें कंगना के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया और विरोधी कंगना से माफी मांगने से लेकर उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की मांग करने लगे।
10: एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है, भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा।
11: जेन जी को गटर छाप कहकर कंगना रनौत बुरी तरह घिरी हुई, लेकिन कंगना पीछे हटने को तैयार नहीं और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर दिए गए अपने विवादित बयान बचाव करना शुरू कर दिया।
10: तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटीमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे।
11: गुरु पूर्णिमा के मौके पर शेयर किए गए इस वीडियो में कंगना ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए इस तरह का सेल्फी वीडियो बना रही हैं।
10: मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा।
11: महिला जेन जी के कुछ वर्ग के खिलाफ कंगना ने जो विवादित बयान दिया, उसकी वजह वो प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को बता चुकी है, लेकिन ये सब करते करते खुद विवादों में घिरती जा रही है।
14: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी।
11: लेकिन विपक्ष कंगना को छोड़ने के लिए तैयार, और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए सदन से निष्कासित करने के साथ गिरफ्तारी तक की मांग की है। पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी की सांसद कंगना ने पूरी पीढ़ी को गाली दी, गटर जनरेशन कहा, हमारी बेटियों पर अनगिनत लोगों के साथ हम बिस्तर होने का आरोप लगा, उसकी जवाबदेही कब तय होगी, उसे सदन से निष्कासित किया जाए, गिरफ्तार कर मुकदमा। बॉलीवुड में भी कंगना का विरोध शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पर संगीतकार विशाल ददलानी ने
2: छात्रों के बचाव में एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि खराब भाषा, आपने सड़कों पर बच्चों को पीटा, उन पर पत्थर फेंके और उन्हीं को दोषी ठहराया, उन पर गोलियां चलाई, ये गालियां आपने खुद कमाई है मेरे दोस्त।
13: अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक तो वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा।
2: लेकिन कंगना पीछे हटने को तैयार है। वो लगातार कह रही कि स्वतंत्रता के नाम पर किसी को गाली नहीं दी जा सकती।
10: आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी।
0: इस सियासत के बीच आपको हम इस बार मई के महीने में हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मामले में एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको बहुत कुछ सोचना है। सीबीआई ने कल ही नीट पेपर लीक के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन इन 13 आरोपियों के बारे में जानेंगे तो आप चौंकेंगे, क्योंकि पेपर लीक के इन 13 आरोपियों में मनीषा मंधारे जो कि एनटीए की बायोलॉजी विशेषज्ञ है, प्रहलाद विठल राव कुलकर्णी एनटीए केमिस्ट्री विशेषज्ञ, मनीषा हवलदार एनटीए फिजिक्स विशेषज्ञ, मनीषा बागमारे ब्यूटिशियन और बिचौलिए के तौर पर, धनंजय लोखंडे बिचौलिया, शुभम मधुकर खैरनार बिचौलिया, यश यादव बिचौलिया, मांगीलाल बिवाल बिचौलिया, विकास बिवाल एमबीबीएस छात्र, दिनेश बिवाल नेता और बिचौलिया, डॉक्टर मनोज भगवान राव शिरूरे डॉक्टर और बिचौलिया, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट लातूर के मालिक, हर्षद कुमार शाह एपीएमए कोचिंग इंस्टीट्यूट पुणे में फिजिक्स फैकल्टी और सीओओ। ये 13 नाम देखिए, समाज में अलग अलग तरह का काम करते रहे, इनमें से कुछ बिचौलियों को छोड़ दें तो 3 आरोपी एनटीए की तरफ से विषय विशेषज्ञ हैं, कोई ब्यूटिशियन है, कोई एमबीबीएस छात्र, कोई कोचिंग मालिक, तो कोई कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर, नेता तक इसमें शामिल। दुनिया, समाज, आसपास के लोगों के सामने ये अपना चेहरा कुछ और दिखाते रहे होंगे, लेकिन 360 गवाह और 43 अहम सबूत के आधार पर सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि असल में ये लोग पेपर लीक कराने के खिलाड़ी रहे। पेपर लीक भर्ती में धांधली का मुद्दा केवल एक राज्य एक सरकार की जवाबदेही का नहीं है, ये समस्या, ये बीमारी जिसका शिकार युवा होते हैं वो हर जगह फैली है, लेकिन राजनीति अपना नफा नुकसान देखकर ही आवाज उठाती है। कल ही हमने आपको जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कराई गई 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रिलिम्स का रिजल्ट आने के बाद लगते धांधली के आरोपों से खबरदार किया, जहां लगातार युवा अब प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआईडी की जांच में बड़े चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। आज इस मामले में संसद से लेकर रांची तक प्रदर्शन हुआ। पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां संसद परिसर में झारखंड से आने वाले सांसदों ने झारखंड में भर्ती में होती धांधली को लेकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है और पूछा है कि इस पर विपक्ष के वो नेता क्यों चुप्पी साध लेते हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं।
15: सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है, नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया, नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी, इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे।
0: अब से कुछ देर पहले शाम को झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। रांची में जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ ये प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, जिनकी सबसे बड़ी मांग सिविल सर्विसेज इम्तिहान में धांधली की बड़ी जांच को लेकर है। अभी सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच दे रखी है, जबकि छात्रों को सरकारी एजेंसी पर विश्वास नहीं, वो कहते हैं सीबीआई से जांच कराई जाए।
16: पेपर लीक का मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है, इसी को लेकर झारखंड के राजधानी रांची में भी पेपर लीक, जैसे कि 14वीं जेपीएससी के बाद आज फिर स्टूडेंट जो है छात्र रोड सड़क पे उतरे। पिछले 5 घंटा से फिरायलाल चौक पर छात्र यहां पहुंचे हैं। आपको दिखा दे तस्वीरों के माध्यम से लोग जो है 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर तमाम छात्र आज रांची के फिरायलाल चौक पर यहां उपस्थित है। ये कह रहे हैं 14वीं जेपीएससी रद्द करो,
17: बिना चेयरमैन की सहमति के एक भी काम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा हेर फेर है। इसलिए जितने भी छात्र हैं वो ये डिमांड करें कि सीबीआई और ईडी की जांच हो, और हम भी ये चाहते हैं यदि सीबीआई, ईडी और यहाँ की जो स्टेट की एजेंसी है सीआईडी, तीनों का परिणाम यदि एक निकल के सामने आता है तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि जांच सही तरीके से चला आ रहा है।
16: कुल मिलाकर कहना ये है कि सीबीआई जांच हो पूरे मामले की, जो पेपर लीक हुआ है 14वीं जेपीएससी और झारखंड में तमाम जितने भी जेपीएससी हुए हैं, एक भी ये कह सकते हैं कि अनियमितता हर में बढ़ती गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तमाम छात्र जो है सड़क पे उतरे हुए हैं। ये तस्वीर आपको साफ जाहिर करेगी कि ये छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं। रांची का ये फिरायलाल चौक है, जंतर मंतर की चौक की तरह यहाँ भी छात्र पहुंचे हुए हैं, तमाम हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ये क्या आगे की रुख अपनाते हैं।
18: हमारा सीधा बात कि जितनी भी परीक्षाएं इस सरकार में हुई है, जब से यह सरकार आई है तब से सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा था छठा जेपीएससी कि हमारी सरकार जब आएगी तो इसको कैंसिल करेंगे, लेकिन इन्होंने वो सबको जो है सो जो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी था उसको मेरिट में जोड़ दिया। बोला था 40% मार्क्स लाना जरूरी है, जो फेल रहेगा। वहां से लेकर के यहां तक, यहां के टोटल परीक्षा मैं गिनवा दे रहा हूं, जेपीएससी का, जेएसएससी का, लैब असिस्टेंट का, पीजीटी का, एक्साइज का, उसके बाद में क्या कहते हैं फील्ड वर्कर का, सहायकार का, उसके बाद जेपीएससी में एफआरओ का, एसीएफ का, उसके बाद फोर्थ जेपीएससी और बैकलॉग का, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं सब परीक्षाई का जो है ये सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, हम लोग का उम्र फिर घूम के नहीं आएगा।
16: तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो उनको इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल जो है जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांते जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रांची से आज तक के लिए आकाश कुमार।
0: साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवाद में घिरी है। जैसे इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा है। जुलाई की शुरुआत में ही जब 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स नतीजों की घोषणा की गई तो 103 खाली पदों के लिए आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 2204 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन तभी सवाल उठने लगे। पहला आरोप ये लग रहा है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया। दूसरा आरोप छात्रों का यह है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप यह है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर पर जितने गोले लगाए यानी सवाल सॉल्व किए उससे क्वालिफाइंग नंबर से बहुत नीचे नंबर मिलते, लेकिन उसे क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, मतलब ओएमआर के नाम पर फर्जीवाड़ा होने का दावा है। चौथा आरोप यह है कि लखनऊ की जो कंपनी टीडीपीएल परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो तो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसी से परीक्षा कराई जाती है। और अब शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर जेन जी के प्रदर्शन के बाद खबर जन अल्फा के उस प्रदर्शन की, जिसकी खबर आज तक ने आपको दिखाई तो फिर प्रशासन की नींद टूटी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुने। नतीजा ये रहा कि छात्रों की मांग सुनी जा रही है, पंखा क्लासरूम में लगा दिया गया है, साफ पीने की व्यवस्था हो रही है पानी की। लेकिन चौंकाने वाला आरोप ये सामने आया है कि स्कूली छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस उस छात्र के घर बाद में पहुंची।
2: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
19: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग मिलके धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम चाहते हैं करने
20: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
21: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
20: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं, बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
2: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी। अठारह सौ छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
22: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स बैठने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
2: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
23: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ अपनी हर
24: परेशान कर रहे हैं।
23: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए, जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
2: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
1: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
2: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पार्टियां चुनाव में या तो नौकरी देने का वादा करती हैं या फिर फ्री वाला वादा। कैशबैक और डिस्काउंट वाले विज्ञापनों में अक्सर आपने बड़ी बड़ी छूट देखी होगी, लेकिन जब आप खरीदने शोरूम जाते हैं तो पता चलता है कंडीशन सप्लाई, यानी ये छूट चुनिंदा और पुराने सामानों पर ही लागू है। दिल्ली की महिला वोटरों के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ, जिनसे बीजेपी ने चुनाव में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया, इसका आज ऐलान भी कर दिया गया। बताया गया कि 17 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ, जिसमें सबसे अहम है 3 से ज्यादा बच्चों की शर्त, यानी जिनके बच्चे 3 से ज्यादा हैं उन्हें फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
4: दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपए महीना देने वाले हैं, कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
2: दिल्ली में वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली जो महिलाएं अपने 2500 रुपए बैंक खाते में आने का इंतजार कर रही थी, उनमें से एक बड़े हिस्से को झटका लग गया है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई के नाम पर असल खेल बदलता दिख रहा है।
5: हमने जो वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे, मगर उसके साथ साथ दिल्ली की जनता को साफ पानी, साफ सड़कें, बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छे स्कूल, टेक एनेबल्ड स्कूल और AI ड्रिवन एजुकेशन आदि दिल्ली के लोगों को भी देना है। इसलिए प्रारंभिक दौर में आज इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी की गई है कि एक निश्चित सूची की महिलाओं को पहले ये पॉलिसी दी, इस के तहत राशि दी जाए।
2: चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब बताया जा रहा है कि अगर किसी परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है वो भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक या परिवार का कोई सदस्य GST का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहानी है कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने की मीठी किश्त तो जरूर मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। सवाल है क्यों? ये जानने हम दिल्ली के गृह मंत्री के पास पहुंचे, जिन्होंने हमें नियम और शर्तें लागू वाले इस योजना वाले खेल का असल मतलब समझाया।
5: कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हम पहली किश्त राखी पर देने वाले हैं। उसके अनुभव के बाद अपने साधनों को बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार की मदद लेते हुए इसको हम अपने वादे को पूरा करने की और सब तरफ एक्सटेंड करें।
2: तो दिल्ली सरकार पैसे की कमी का हवाला देकर, विकास करने की दलील देकर अपनी तरफ से नियम और शर्तें लागू के कदम का बचाव करती है, और एक दलील ये भी दी जाती है कि जरूरतमंद लोगों को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
7: चुनावों से पहले तमाम वादे थे कि भैया कि हर महिला को मिलेगा, उसको आप कैसा देख?
24: हर जरूरतमंद महिला को मिलेगा, ये मेरे ख्याल समझती हूँ कि हर जरूरतमंद बहने इस योजना को, जो जरूरतमंद हो, एक स्पेशल क्लॉज था, जरूरतमंद बहनों तक पहुँचेगा तो ये एक अच्छा है।
2: लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 3 से ज्यादा बच्चों की शर्त समाज के निचले तबके की महिलाओं इस योजना के लाभ से वंचित कर सकती। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे साल 2019-2021 के हिसाब से दिल्ली में 8.5% महिलाओं के 3 से ज्यादा बच्चे, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 10.5% है। दिल्ली में संपत्ति के आधार पर सबसे गरीब 20% परिवारों की महिलाओं में 14.8% के 3 से ज्यादा बच्चे हैं। उम्र के साथ ये हिस्सा बढ़ जाता है। 45 से 49 साल की उम्र की महिलाओं में आंकड़ा 25% और 35 से 39 साल की उम्र की महिलाओं में 13.5% था। दूसरे नजरिए से देखें तो इस मापदंड की वजह से बाहर की गई 45% महिलाएं सबसे गरीब वर्ग से होंगी। लेकिन सरकार इस पर बात करने की बजाय अपने बचाव में पोर्टल में दिक्कत से लेकर ट्रायल तक की बात कहने लगती है।
5: देखिए, अभी हमारा अनुमान है कि लगभग 20-21 लाख परिवारों को ये लाभ मिलेगा, और आगे जाते जाते इसमें हम, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके व्याप को बढ़ाने वाले, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली अड़चनों को देखकर एकदम इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दें, वो पोर्टल पे इसको एक तरीके से नो कनेक्ट, कि हम उसके लिए कहीं इधर उधर भागना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। इसलिए एक ट्रायल के तौर पर हमने, एक साल पुरानी, सवा साल पुरानी हम सरकार हैं, हमने इसको एक ट्रायल के तौर पर अभी इतने लोगों को हम दे रहे हैं जिनके पास एक डाटा है, एक सूची उपलब्ध है, जिसके आधार पर इसको ठीक से लागू करने के बाद इसको बढ़ाते चले जाएंगे, अपने वादे को पूरा करेंगे।
2: दिल्ली सरकार भले ही ये कहे कि वो आगे इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी महिलाओं को इसमें शामिल कर लेगी जो जरूरतमंद हैं, लेकिन तब तक दिल्ली में 3 बच्चों से ज्यादा वाली महिलाओं में मुस्लिम सबसे ज्यादा 16%, हिंदू 7.5% और 4.1% सिख महिलाओं के 3 से ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि दिल्ली की कुल महिलाओं में 84.6% महिलाएं हिंदू हैं, और इसलिए 3 बच्चों से ज्यादा वाली कुल महिलाओं में 75% हिस्सा हिंदू महिलाओं का होगा, जिसमें 34% गैर ओबीसी एससी और एसटी, 26% एससी, 14% ओबीसी महिलाएं शामिल हैं। तो दिल्ली की लक्ष्मी योजना में नियम और शर्तें लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू महिलाओं का ही होगा, जो बीजेपी की कोर वोटर है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल तंज कसते हुए कहते हैं,
3: उसमें इतनी एक्सेप्शंस हैं, शायद उन शर्तों को अगर माना जाए तो हार्डली कोई महिला इसमें, एक बार ही लागू करने देते हैं।
6: 17 लाख
3: महिलाएं तो दिल्ली के अंदर 1.25 करोड़ हैं, 1.25 करोड़ में से अगर 17 लाख महिलाओं को अगर ये दे रहे हैं तो फिर तो बहुत ही कम।
2: बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अक्सर चमकदार विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिनके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कंडीशन अप्लाई। क्या दिल्ली में भी महिलाओं को खाते में पैसा देने वाले चुनावी वायदे को करने और फिर उसको पूरा करने में यही कंडीशन अप्लाई वाला खेल हुआ है? सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: बड़ी खबर आ रही है इस समय, केंद्र ने मध्य प्रदेश में किसानों से मूंग खरीदी में देरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। शिवराज चौहान ने मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि मध्य प्रदेश को किसानों से मूंग की खरीद में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि राज्य के लिए मूंग खरीद का कोटा 4,54,580 मीट्रिक टन है, जो देश में सबसे अधिक है, और 29 जुलाई तक राज्य ने केवल 60,000 मीट्रिक टन मूंग ही खरीदी है। ये चिट्ठी तब बहुत अहम हो जाती है जब कल से मूंग की 100% खरीद की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए भोपाल तक पहुंच गए हैं, जिनसे आज शाम भोपाल में सरकार की बातचीत शुरू हुई है। यानी सीधे तौर पर देखें तो संभावनाएं हैं कि इस मामले का एक समाधान निकले। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। रवीश, ये बताइए कि किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो मार्च है, वो कहां तक इस समय पहुंचा है, और शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी अगर एक ताकीद है तो इसके साथ ही एक समाधान भी है।
8: बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों का ये जो मार्च है ये मुख्यमंत्री निवास से करीब करीब 500 मीटर दूर आके रुका हुआ है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पे भोपाल में किसान फिलहाल आके रुके हुए हैं। ये बैरिकेटिंग आखिरी बैरिकेटिंग है। इस बैरिकेटिंग से महज 500 मीटर दूरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवास है, आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा दूर किसान अब है नहीं। और जहां तक बात है केंद्रीय मंत्री की, ये जो चिट्ठी आई है ऐसे समय में आई है जब किसान 100% मूंग खरीदी एमएसपी पे करने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय में जो समिति बनी, मंत्रियों की जो समिति बनाई गई है जिसमें कृषि मंत्री है, सहकारिता मंत्री है, इन तमाम मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जो किसान के जो प्रतिनिधि है उनसे मुलाकात कर रही है, और ऐसे समय में मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेजी जा रही है दिल्ली से केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि मध्य प्रदेश में जो कोटा पहले से तय किया गया है खरीदी का 4,54,000 मीट्रिक टन का, तो कम से कम उसे तो पहले पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री को ये बताया उस चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने कि अगर किसानों की मांग है कि जो 25% जो खरीदी जा रही है मूंग, अगर उसे बढ़ाना है तो उससे पहले राज्य सरकार को 4,54,000 मीट्रिक टन मूंग कम से कम खरीदनी चाहिए।
0: हाँ।
8: जब ये खरीदी पूरी हो जाएगी उसके बाद कोटा बढ़ाने की बात की जा सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 60,000 मीट्रिक टन खरीदी गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार को समझाइश दिए कि वो पहले 4,00,000 मीट्रिक टन खरीदे पहले मूंग, उसके बाद आगे की बात करें।
0: इस पे अगर गंभीरता से विचार किया जाए और एक्शन हो तत्काल तो शायद इसमें से बहुत बड़ा एक ऐसा समाधान का रास्ता निकल सकता है जो इतनी बड़ी संख्या में किसानों के भोपाल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की उन्हें जरूरत न पड़ती और जो मूंग की खरीद है वो मांग पूरी हो जाती। देश में लगातार युवाओं रोजगार का मुद्दा हर सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींचकर समाधान देने के लिए मजबूर करने लगा है। आज बिहार में भी 2 साल बाद शिक्षक भर्ती का रास्ता आखिरकार खुल गया जब लगातार छात्र प्रदर्शन करते रहे, यहां तक कि पहले लाठी तक पुलिस की खाते रहे। तब जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि TRE4 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 के तहत 32,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां मूसलाधार बरसात के बाद कक्षा 4 की छात्रा नाले में गिर गई। ये बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। वीडियो में कई बच्चों के साथ इस बच्ची को भी घर लौटते देखा जा सकता है। उसकी आखिरी तस्वीर नाले के ऊपर चढ़ने की है। बच्ची के नाले में गिरने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम, नगर पालिका, पुलिस, फायर टीम मौके पर पहुंची। लगातार रेस्क्यू की कोशिशें हुई लेकिन NDRF की टीम लगने के बावजूद अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा है। कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप स्कूल से छुट्टी के बाद पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। जल भराव से बचने के लिए वो नाले के ऊपर रखी पटिया पर खड़ी हो गई लेकिन उफनते नाले की पटिया पर खड़े रहने के दौरान संतुलन उसका बिगड़ गया और वो नाले में बह गई।
9: आपने नगर पालिका पुलिस को सूचना दी?
11: जी वो तो सब टीम आई हुई है, पूछ रहे सब।
9: बच्ची कितनी उम्र होगी?
11: 10 साल की है।
9: और कौन सी क्लास में पढ़ती थी?
11: 4 क्लास
0: में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।
12: This is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
13: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
12: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
13: They score!
12: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HGMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: In association with
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर युवाओं का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने सड़क से संसद तक पूरी व्यवस्था को हिला दिया। लेकिन अब ये मामला सिर्फ सड़कों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, ये अब कानून, राजनीति और संसद के भीतर एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले चुका है। मामला दो हिस्सों में बंट गया है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो, और दूसरा, पेपर लीक रोकने के लिए संसद में चल रहा संग्राम। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक कड़ा नोटिस जारी किया है और आंदोलन में अभद्र भाषा वाले वीडियोस का जिक्र किया। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ इन वीडियोस को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं, बल्कि एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी कुंडली मांगी है, यानी अकाउंट्स किसके नाम पर है, आईपी एड्रेस क्या है, कब कब लॉग इन हुआ, कब कब लॉकआउट हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आलोचना करना अपराध है? जवाब बहुत साफ है। हमारा संविधान हर नागरिक को सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार देता है। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों ने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था पर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाए, जो उनका अधिकार था। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को गाली देना, अश्लीलता फैलाने की इजाजत नहीं देता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत जेनजी पीढ़ी को जेनरेशन गटर कह रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरी पीढ़ी को कंगना रनौत गटर कह देंगी? और यहां सवाल ये भी है कि आखिर ये भाषा आ कहां से रही है? क्या फिल्मों, ओटीटी, सोशल मीडिया में परोसी जाने वाली गालियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इस देश में गालियों का नॉर्मलाइजेशन नहीं हो चुका है, टीवी से लेकर मोबाइल तक? जेन जी की जिस भाषा पर सवाल उठ रहे थे, आज वही भाषा और शब्द देश की संसद तक पहुंच चुके हैं। संसद के भीतर नेता एक दूसरे के खिलाफ डेलुलू, एमआईए, फोमो, यहां तक कि कुचुपुचू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब आज संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए बोल दिया, बसते गुना हुईया। आज आपको इस आंदोलन से जुड़े सवाल, संसद के बवाल के बारे में विस्तार से बताएंगे और इन शब्दों के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम बताना चाहते हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए जिनमें आपत्तिजनक, अभद्र, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब यही मामला कानूनी रूप से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है। पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि जिन पोस्ट और वीडियोज की शिकायत हुई है उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए ताकि वो आगे और शेयर ना हो। हालांकि यहां कार्रवाई सिर्फ इन पोस्ट को हटाने तक सीमित नहीं है। पुलिस ने एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी मांगी है जिनसे ये वीडियोस या पोस्ट अपलोड किए गए थे। यानी अब इस सोशल मीडिया कंपनी को, जांच एजेंसियों को यह बताना होगा कि ये अकाउंट किसके नाम पर बने थे, उनको पता क्या है, उनसे जुड़ी ईमेल्स आईडी क्या है और इन अकाउंट्स में कब कब लॉग इन और लॉग आउट हुआ है। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि पुलिस ये बता सके और पता लगा सके कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियोस किसने बनाए, किसने अपलोड किया, किसने उन्हें फैलाया और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किन किन समय पर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से यह भी कहा है कि अगर उसके पास जांच में मदद करने वाली कोई भी अतिरिक्त या नई जानकारी हो तो वो उसे दिल्ली पुलिस के साथ जरूर शेयर करे। सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस सिर्फ इन वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि इन प्लेटफॉर्म से कह रही है कि इन पोस्ट, वीडियो, इनसे जुड़ी सभी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए। तो फिर मंशा क्या है? इस नोटिस के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाकई में ऐसे डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकती है या क्या ऐसा कानूनी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? आने वाले वक्त में क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी शिकायत के आधार पर पुलिस को शुरुआती जांच में ये सारे वीडियो जो है वो अपराध के तौर पर नजर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉक, आईपी एड्रेस, दूसरे डिजिटल सबूत जुटाकर जांच पुलिस कर सकती है। यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है तो फिर इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला क्यों ना माना जाए। तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय संविधान और कानून दोनों में मौजूद है। भारत का संविधान कहता है कि देश में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करना अपराध नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों का विरोध करना, अपनी असहमति दर्ज कराना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जंतर मंतर के आंदोलन में भी हजारों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, व्यवस्था में सुधार की मांग की और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से किया गया और ऐसी आलोचना पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। किसी को गाली देने, अपमानित करने, जानबूझकर अश्लील अभद्र वीडियो फैलाने की असीमित छूट नहीं देता है। अगर जांच एजेंसियों को यह लगता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपमानजनक भाषा, गालियों का वीडियो बनाकर इस्तेमाल किया, उसे फैलाया, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया या कानून का उल्लंघन करने के मकसद से ये सब किया, तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पक्ष भी है। यह आंदोलन और ये सवाल आंदोलन के दौरान भी लगातार उठ रहा था कि जब आंदोलन का मूल मुद्दा पेपर लीक है, परीक्षा व्यवस्था है, शिक्षा सुधार है, तो फिर ऐसे में सही मुद्दों को उठाने के लिए गालियों का इस्तेमाल क्यों किया गया और ऐसे कौन कौन से रीलबाज वहां पर आए थे जो सिर्फ गाली देने के लिए पहुंचे थे। आखिर उनको क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को गालियां दे देने से क्या यह पूरा आंदोलन उनके चाहे वाले निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकता था? बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो इस सवाल पर हमें यहां दो तस्वीरें साफ दिखाई देती है। पहली तस्वीर यह है कि आंदोलन में शामिल कई छात्रों, युवाओं ने पूरी गरिमा के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की, समाधान सुझाए। हमने आपको बताया कि सुझाव पेटी में 1800 से अधिक सुझाव लिखकर जमा किए गए थे। ये इस बात का प्रमाण था कि बड़ी संख्या में छात्र व्यवस्था में सुधार चाहते थे। वो अराजकता नहीं चाहते, वो तो शिक्षा में बराबरी की बात कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इस आंदोलन में आए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुद्दे से ध्यान हटाकर गाली गलौज, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो बनाए गए जिनकी भाषा इतनी अभद्र थी कि उन्हें टीवी पर आपको दिखाना भी संभव नहीं। आज यहां बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बात करना भी जरूरी है क्योंकि उनके एक बयान पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गालियों वाले वीडियो सामने आए हैं उन्हें लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज की जेन जी पीढ़ी जेनरेशन जी नहीं बल्कि जेनरेशन गटर बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर गालियां देने, अश्लीलता फैलाने, प्रदर्शन करने में सबसे आगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली गलौज करना गलत है और कई ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं। और ये खबर भी हम तब आपको दिखा रहे हैं जब बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल कंप्लेंट की है ऐसे लोगों के खिलाफ। और इन तमाम सोशल जो मीडिया हाउसेज हैं उनसे मांगा है डिटेल और इनको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी एक पीढ़ी को कैसे दे देंगे आप? जो लोग गालियां दे रहे थे वो सभी क्या वहां पर जो जेंजी के लोग आए हुए थे पूरे जेंजी के लोग गालियां दे रहे थे? लाखों ऐसे युवा भी थे। आपने लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया और ये कहा कि वो घर संभालने लायक नहीं रहेंगी। लाखों ऐसे युवा थे वहां जो जंतर मंतर पर सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे। उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया वहां पर और वो अपनी बात कह रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी पीढ़ी को गटर कह दिया आपने? और ये भी तो सोचे कि आज सरकार भी इसी पीढ़ी से बात कर रही है तो सरकार का फायदा पहुंचाने जा रही है या नुकसान पहुंचाने? क्योंकि कंगना रनौत के इस बयान के बाद जबरदस्त गुस्सा उनके खिलाफ कई हलकों से आ रहा है। भाषा की मर्यादा और संयम सिर्फ सिखाने की चीज नहीं है, अपनाने की भी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन युवाओं के नाम संदेश जारी कर रहे हैं। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नए कदम उठा रही है, छात्रों की मांगों पर चर्चा हो रही है और संसद में भी इन मुद्दों पर बहस हो रही है। यानी जिस पीढ़ी की बात आज पूरा देश सुन रहा है, उसी पूरी पीढ़ी को एक अपमानजनक नाम देना, गटर कहना, ये कैसे सही हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इन युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी, उनका कहना था कि उन्हें कॉकरोच कहा गया, इससे उनका अपमान हुआ। तब भी उस शब्द को लेकर पूरे देश में बहस हुई और सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जो सबसे बड़ी गले की फांस बन गई, अब ये गटर लेकर आई है। अब वही सवाल फिर खड़ा हो गया है, तब युवाओं को कॉकरोच कहने पर विवाद हुआ था, आज जनरेशन गटर कहने पर विवाद हो रहा है। यानी बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, अगर हमें गाली देने वाली भाषा गलत लगती है तो फिर किसी पूरी पीढ़ी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं है। इसी वजह से अब यह पूरा मामला राजनीतिक हो गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि कंगना रनौत के बयान से देश के युवाओं का अपमान हुआ है, उनसे इस पर जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि जब बीजेपी खुद कंगना रनौत के हर बयान से सहमत नहीं होती तो वो भी इस बयान को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जनरेशन जी को, जेन जी को जनरेशन गटर नहीं कहा। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिन्होंने आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियां दी और आपत्तिजनक वीडियोस बनाए हैं। सुनिए,
1: आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
2: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे, हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है।
0: आज अगर भारत के युवाओं को देश के लिए शक्तिपुंज माना जाता है तो इसके पीछे हमारी यही जो जेन जी युवा पीढ़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी हमारे देश में है, आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत की लगभग 35% आबादी जेन जी युवाओं की है। और ऐसे में अगर इस पूरी पीढ़ी को गटर बता दिया जाए तो ये किसी की कीमत पर सही नहीं हो सकता। आज हम कंगना रनौत से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज में गालियां सामान्य बन रही हैं और कुछ युवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा कारण है हमारी फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, जहां कंटेंट के नाम पर गालियों को परोसा जाता है। और ये बात कंगना रनौत तो खुद समझ सकती हैं। साल 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सिमरन। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 10 जगह कैंची चलाई, 10 जगह, 6 जगह गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था जिस पर कैंची चलाई गई थी। इस पूरे विवाद पर हम दो ही बात कहना चाहते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यह गलत है। और कुछ युवाओं की वजह से भारत की पूरी जेन जी पीढ़ी को गटर कहना यह भी उतना ही गलत है और इस पर सबको सोचना चाहिए। अब जरा उस दिन को याद कीजिए जब हजारों युवा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वो वहां किसी नेता के समर्थन में नहीं आए थे, ना उनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा था। वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस देश में शिक्षा, पेपर लीक का मुद्दा राजनीति की भीड़ में खो गया है। उनके पेपर लीक होते हैं, री एग्जाम होता है, मार्क्स आते हैं तो गड़बड़ी रहती है। उस वक्त उनकी मांग बहुत सीधी थी और वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो। लेकिन सोचिए क्या इन मांगों पर हमारी संसद खरी उतरी है। तो आ जाइए आपको दिखाते हैं, दुर्भाग्य से ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है। अब बहस फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटती दिख रही है। इस पर हमला करो, वो इसको गाली दें, ये उसको गाली दो, जिसमें राजनीतिक हंगामा होता है लेकिन जनता के मुद्दे की बात नहीं होती है। आज भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है, कोई पुराने बयान निकाल रहा है, कोई नए आरोप लगा रहा है। इस शोर में बच्चों की बात तो हो ही नहीं रही है, सबसे जरूरी सवाल फिर पीछे छूट रहा है, वो सवाल जिसके लिए बच्चे सड़कों पर उतरे थे, पेपर लीक कैसे रुकेगा, मार्किंग सिस्टम कैसे ठीक होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसद में पुलिस की कार्रवाई, पैलेट गन, सुरक्षा व्यवस्था, दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उठाइए ये मुद्दे, लोकतंत्र में हर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी बहस का केंद्र सिमट गया है और वो असल मुद्दे से भटक गया है, या फिर सबसे पहले उस समस्या पर बात होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर निकले हैं, आंदोलन किया है। आज इस पूरी बहस में एक चीज साफ दिखाई देती है और वो है व्हाट अबाउट इट, यानी आपने ये किया, नहीं आपने वो किया, आपकी सरकार में ऐसा हुआ, नहीं आपकी सरकार में ऐसा हुआ। लेकिन इस बहस में छात्र कहीं दिखाई नहीं देते, उनका भविष्य दिखाई नहीं देता, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति फिर से उसी पुराने आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई, शिक्षा सुधार पीछे छूट गया, सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी विपक्ष का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे छात्रों का होगा जिन्होंने ये भरोसा करके आवाज उठाई कि शायद इस बार देश उनकी बात सुनेगा। देखिए
3: कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार मुझे, मारो मारो सर मारो। बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, ये नौबत है, ये नौबत है।
4: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
5: या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है।
6: हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 इयर्स।
7: वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ।
8: छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी।
9: जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था, वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था।
10: सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर, ही डज नॉट हैव द करेज।
0: संसद का मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और आज 29 जुलाई हो चुकी है। हमें लगता है कि इस देश के तमाम युवा आज ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन पर संसद में हमारे नेता, हमारी सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस राजनीति के बीच पेपर लीक के खिलाफ जांच, सजा, जुर्माने को कड़ा बनाने वाला संशोधित जो बिल है वो ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा में जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में गड़बड़ी और चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। देखिए,
11: चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़,
12: काम का पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया,
13: बीजेपी के खाते में
12: प्रभु का पैसा कहाँ गया,
13: बीजेपी के खाते में
12: प्रभु का पैसा लूट लिया।
14: इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बीजेपी वाले चुराना ले जाए।
12: चोर
15: देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद है और राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा।
4: कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्यमंत्री और सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा। यानी वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिसका हमने अभी जिक्र किया था। तुम्हारे में ये हमारे में वो।
16: पोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो चलो, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं।
0: आज ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अगुवाई में कांग्रेस के सभी सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और ये आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के 4.5 सालों में 6 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक्स के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस कब तक इस्तीफा देंगे। देखिए,
17: पेपर लीक बंद करो,
18: बंद करो, बंद करो,
17: पेपर लीक बंद करो,
18: बंद करो, बंद करो।
17: पंजाब सरकार हाय हाय
18: हाय हाय हाय हाय।
17: हरजोत बैस को इस्तीफा लो,
18: इस्तीफा लो, इस्तीफा लो।
17: आप सरकार हाय हाय
18: हाय हाय हाय हाय।
17: भगवान मान माफी मांगो,
18: माफी मांगो, माफी मांगो।
19: पंजाब सरकार मुर्दाबाद,
18: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
19: पंजाब सरकार
18: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
20: 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस है। अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक? क्या सजा दी उन गुनहगारों को? चाहे चीटिंग का केस था, आपकी बात ही अगर मान ले, लेकिन पूरा देश आज उसको लेकर एकजुट है।
0: संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में शोर शराबा, नारेबाजी, स्थगन की तस्वीरें सामने आई। संसद भवन पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच था। ये वही टिप्पणी है जिसमें कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बिल्किस बानो रेप मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के समर्थन का आरोप लगा रही है।
21: उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगा। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोज हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है।
0: आज संसद में राहुल गांधी के भाषण पर भी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूरे सिस्टम शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर सवाल उठाए। सुनिए,
22: पहले उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? सांसद सर, सर बट आप सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
1: आप विधेयक में बोले मैं हाउस को ऑर्डर रखूंगा क्या?
2: यू आर नॉट अलाउइंग दैट लेट यू
22: द मोमेंट आई ओपन माय माउथ द एंटायर ऑपोजिशन स्टार्ट्स टू शाउट
3: शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति इतना ही तो है, फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
22: He is the home minister, sir.
3: सर, ये आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं आप बिना
4: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर छात्रों पर युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
0: आज शाम को लगभग 6 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये फिर से पैलेट गन का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।
23: हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन के यूज की बात आती है तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
0: सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए।
24: बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए, अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में परहेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया, MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे।
25: प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हा गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 2 से 5 विधेयकांग बना।
0: और ऐसे लोकसभा में कानून पास हो गया। अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर जेन जी युवाओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा भारत की संसद तक पहुंच गई है, और जो शब्द जेन जी पीढ़ी के युवा अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं उन पर देश के तमाम लोग अब बात कर रहे हैं। इनमें जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जो जेन जी लिंगो है, वो है डेलुलू, जो डेल्यूशनल शब्द से निकला है, और ये शब्द पिछले साल ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल भी हुआ था। डेलुलू शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हकीकत से दूर अपनी ही कल्पना या भ्रम में जी रहा हो। जैसे संसद में सरकार विपक्ष को घेरते हुए ये कह रही है कि विपक्षी दल इस डेलुलू में जी रहे हैं कि इस देश की युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है, वही विपक्ष भी इस शब्द का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार भी डेलुलू में ना रहे कि जेन जी उनके साथ है। दूसरा शब्द है MIA यानी मिसिंग इन एक्शन, इसका मतलब किसी जरूरी मौके पर गायब रहने से होता है, जैसे मीटिंग हो, टीम का सबसे जरूरी मेंबर ही उसमें ना पहुंचे, तो जेन जी पीढ़ी के युवा कहते हैं ही इज MIA, ही इज मिसिंग इन एक्शन, वो एक्शन में नहीं है, गायब है। ये शब्द भी संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे इसीलिए NDA के सांसद उन्हें अभी MIA बता रहे हैं, मिसिंग इन एक्शन। जेन जी युवाओं का एक और शब्द है फोमो, जिसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट, किसी आयोजन, विरोध प्रदर्शन में सबको जाते हुए देखता है और खुद वहां किसी वजह से नहीं जाता है, उसके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है, यानी वो सोचता है कि उसका ऐसे आयोजन या विरोध प्रदर्शन में जाना जरूरी है और ये शब्द भी जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हुआ और अब संसद में भी शब्द पहुंच गया। एक और शब्द है कुचू पुचू, और ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। इसे प्यार जताने या किसी बात का हल्का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर जब जेन जी युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तब उन्होंने अपील करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसी सूची में एक और शब्द है वास्तेगुना हुईया। ये शब्द भी किसी भाषा या डिक्शनरी से नहीं आया है, बल्कि ये शब्द जंतर मंतर के आंदोलन से जेन जी युवाओं को मिला है। दावा है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, तब एक लड़की पुलिसकर्मी से कुछ ऐसा कहते हुए सुनी गई जिसका उच्चारण वास्तेगुना हुईया जैसा था। इसके बाद ये शब्द जेंजी युवाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस पर मीम बनाने शुरू कर दिए, और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेंजी युवाओं ने इस आंदोलन के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि ये शब्द 2025 के एक मशहूर जो वाइन मीम है उससे बना और फिर इस आंदोलन में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बात यह है कि यह शब्द भी अब संसद पहुंच गए हैं। आज ही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए वास्तेगुना हुईया कहा। जैसे उन्होंने ये कहा, संसद में मौजूद सांसद चौंक गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, देखिए।
5: मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
6: अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
7: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है।
8: कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
5: जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
6: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर, फोमो होने के बाद लहू। इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू,
9: डॉक्टर श्री
6: डेलुलू,
9: डेल्यूशन,
6: डेल्यूशन।
9: श्रीकांत जी,
6: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं।
10: अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
7: ये जो नया जेन जी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
8: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
0: और अब तफ्तीश की बात, आज हम उस ट्रक की भी बात करना चाहते हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के दौरान जंतर मंतर के पास लाकर खड़ा किया था, क्योंकि इस पर खूब रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस वक्त कई छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा किया कि दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ये कहा कि जंतर मंतर के पास टूटी हुई गाड़ी छात्रों को बदनाम करने के लिए रखी गई है, लेकिन आज इस मामले में दिल्ली पुलिस की सफाई आई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरों से भरा ये ट्रक और टूटी हुई गाड़ी किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक सड़क हादसे के मामले में जब्त किया गया था। 16 जुलाई 2026 को यह ट्रक नई दिल्ली इलाके से ईंट, पत्थर, मिट्टी लेकर जहांगीरपुरी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान नई दिल्ली इलाके में संसद मार्ग थाना क्षेत्र में इसकी एक इको वैन से टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को जब्त किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के मालखाने में जमा करा दिया। अब क्योंकि इस मालखाने में इतने बड़े ट्रक को लंबे समय तक खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए ऐसे में ट्रक को सुरक्षित रखने के लिए संसद मार्ग थाने के पास जंतर मंतर पर खड़ा किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा है कि दावा पूरी तरह गलत है कि इस ट्रक को जानबूझकर जंतर मंतर या किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के मकसद से रखा गया। पुलिस ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई के संसद मार्च को देखते हुए उसने पहले ही इस ट्रक को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया था, लोगों को उसका पक्ष पता होना चाहिए। देखिए
11: भाई, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं,
0: किसी देश में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, इसका एहसास तब होता है जब धरना प्रदर्शन होते हैं। किसी देश की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है, यह तब पता चलता है जब वो प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनकर उनका समाधान निकालती है। हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र असल में क्या होता है, और जब लोकतंत्र में जनता किसी मुद्दे पर एकजुट होती है तो सरकार उनके हिसाब से फैसले करती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे, जो दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देश का होने का ढोंग तो करता है, समय समय पर उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, यानी भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया सामने आ जाता है। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही है, इसकी झलक आपको उसके कब्जे वाले कश्मीर में दिख जाएगी। पाकिस्तानी सेना इस वक्त वहां के मासूम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से अब तक 80 से ज्यादा मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं। इन मासूमों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वो मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इन मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शाहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना इन मासूम नागरिकों के प्रदर्शन को अपने बूटों तले कुचल रही है। मीरपुर और रावलकोट में तो जैसे पाकिस्तानी सेना को मासूमों के कत्लेआम का आदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कें खून से लाल हैं। पाकिस्तानी सेना लाशों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रही है, यानी एक तरफ वो नागरिकों को मार रही है, दूसरी तरफ अपने करतूत को छिपाने के लिए लाशों को ठिकाने लगा रही है। मासूमों और निहत्थों को मारने के मामले में पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है, और अब एक बार फिर से वो अपने आका मुनीर के कहने पर पीओके में नरसंहार पर उतारू है। 48 घंटे, जानते हैं, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी है।
12: ये देखें, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है।
13: लगातार फायरिंग जारी है।
12: मारे, हमें मारे, ये जालिम, ये जालिम ने मारे।
14: My followers have been killed in Ravlakot.
0: पीओके के मासूम नागरिक बहुत छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे थे। पिछले करीब 3 वर्षों से वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली और महंगाई कम करने की बस मांग कर रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। उनकी मांगे पूरी करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार फर्जी चुनाव आयोजित करवाने में लगी, और इसी बात से पीओके के नागरिक भड़के हुए हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन फर्जी चुनावों का बहिष्कार किया है और इसी बात से नाराज मुनीर ने पाकिस्तानी सेना से आंदोलनकारियों को कुचलने का आदेश दे दिया। और हद तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार पीओके में मारे गए नागरिकों को आतंकी भारत का एजेंट बताकर हत्याओं को सही ठहरा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मासूमों के नरसंहार को छिपाने के लिए पुराना पैतरा अपनाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो पीओके के नागरिक हैं उनको पाकिस्तान का दुश्मन बताकर उनके हत्याओं को जायज ठहरा दिया है। उन्होंने पीओके के पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताया है।
15: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
16: नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
0: सोचिए पाकिस्तान क्या हालात हो गए हैं आज। पाकिस्तान में बिजली, पानी, ऐसी जरूरी मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, उन्हें मांगने पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं भारत का एजेंट कहकर। लेकिन सच यही है कि ये चालबाजी पाकिस्तान की पुरानी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तानी सेना नागरिकों की हत्याएं करती है तो पाकिस्तान सरकार उसमें भारत का नाम जोड़कर हत्याओं को जायज ठहरा देती है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तान विरोधी आवाजें उठी थी तब पाकिस्तान सेना ने वहां भयानक जुल्म किए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताकर मार दिया था। 1971 में आजाद होने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने वहां सरकार विरोधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगाया था। पाकिस्तानी सेना ने वहां 30 लाख लोगों को मार डाला, 4 लाख महिलाओं से रेप किए, 30,000 महिलाएं लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना की कैद में जुल्म झेलती हुई मारी गई। आज पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर पाकिस्तानी सेना यही कर रही है। वहां भी सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सेना की बंदूकों का सहारा लिया जा रहा है। 19 जून से और उसके बाद से पाकिस्तानी सेना ने 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें करीब 31 लोग तो पिछले 48 घंटे में मारे गए और ये गिनती अब भी जारी है क्योंकि पीओके में प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं पाकिस्तान में कुचले जा रहे मानवाधिकारों को देख रही है या आंखें बंद है? क्या वो पाकिस्तान के सूट बूट वाला चेहरा देख रही है या फिर उसके खून से सने हाथ? पाकिस्तान के कुछ पत्रकार प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताने वाले पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार से पूछा जा रहा है कि वो पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट मान रही है। भारतीय फंडिंग वाला झूठ आखिर कैसे बोल सकते हैं? कुछ पत्रकारों ने तो आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके की सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है।
17: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरेन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरेन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
0: पीओके में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले जिन प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया जा रहा है, आप उन्हें भी देख लीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं। पीओके में हालात ही इस तरह के बना दिए गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं।
18: आगे जफराबाद के लिए चले तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ये झूठ है, ये लोग हमें अभी उधर हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोड तोड़ दिए, रात आगे घरों में छापे मारते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशत गर्द और कलदम करार दे दी है।
19: हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना, एक्टिविटी ने क्या गलत किया? वो तो हमारे वाम के हक के लिए आवाज उठा रहे थे। अगर हमें दहशत गर्द कहते हम इन्हें कहाँ से दहशत गर्द नजर आते? दहशत गर्द होते तो हम यहाँ पे बैठे हुए होते।
0: खैर आगे बढ़ते हैं। मानसून के मौसम में देश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश में कैश के लेन देन में एक परेशानी अक्सर आती है और वो है करेंसी नोट का पानी में भीग जाना। आपके साथ भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर आई होगी कि जेब में रखा नोट भीग जाता है, भूल गए, धोने के लिए दे दिया या बारिश में गए और नोट भीग गए। लेकिन आने वाले वक्त में अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक रहा तो जल्दी ही आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपका कागजी करेंसी नोट जल्दी खराब नहीं होगा। तो क्यों सरकार जल्दी बाजार में प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल शुरू करने जा रही है। मार्केट में जल्दी ही आपको 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आएंगे जो कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा टिकाऊ होंगे, लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, फिर चाहे आपने उसे कितनी भी तहों में दबा कर रखा। आरबीआई ट्रायल के तौर पर 10 रुपए और 20 रुपए के 100-100 करोड़ पॉलीमर करेंसी, जिसे प्लास्टिक नोट भी कह सकते हैं, वो मार्केट में उतारेगा। देखा जाए तो करीब 3000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक नोट्स बाजार में उतरने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर ये ट्रायल सफल रहता है और लोग इस नए नोट को अपनाने में रुचि दिखाते हैं तो आने वाले समय में 50, 100, 200, 500 रुपए के जो नोट है वो भी प्लास्टिक नोट में बदल जाएंगे। लेकिन मार्केट में प्लास्टिक नोट के ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि कागजी नोट बंद होने वाले हैं। कागजी नोट इन प्लास्टिक नोट्स के साथ साथ चलते रहेंगे और ट्रायल सफल अगर हुआ तो धीरे धीरे प्लास्टिक नोट्स इन कागजी नोटों की जगह लेते जाएंगे, यानी कागजी नोट वैध ही रहेंगे।

0: केंद्र सरकार से इस ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ट्रायल कब से शुरू होगा इसकी तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। प्लास्टिक करेंसी नोट को लॉन्च करने की एक वजह मार्केट में नए जनरेशन के नोट लाना है जो जल्दी खराब ना होते। हालांकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम जिसे प्लास्टिक नोट कह रहे हैं वो दरअसल तकनीकी तौर पर पॉलीमर बैंक नोट है। समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि हर तरह का प्लास्टिक असल में पॉलीमर ही होता है। पॉलीमर बैंक नोट छूने में प्लास्टिक जैसा महसूस होता है, इसीलिए लोग इसे प्लास्टिक नोट कहने लगते हैं। पॉलीमर बैंक नोट बॉप यानी बाई एक्चुअली ओरिएंटेड पॉली प्रोपिलीन, और यही उसका नाम है, और इस नाम के खास तरह के पॉलीमर से बनता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पारदर्शी सुरक्षा होती है, इसे खास तरह की स्याही से छापा जाता है, इसमें विशेष प्रकार के सुरक्षा धागे का इस्तेमाल होता है, इसकी प्रिंटिंग तकनीक कागजी नोट से अलग होती है। यानी पॉलीमर बैंक नोट को कॉपी करके नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है। पॉलीमर बैंक नोट कागजी करेंसी नोट की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी नमी गंदगी खराब नहीं होते, आसानी से फटते भी नहीं है, ये लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इसकी छपाई कई सालों में एक बार होती है, यानी छपाई का खर्च भी कम होता है। दुनिया के कई देशों ने पॉलीमर बैंक नोट को या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से अपना लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो पहला देश है जिसने सबसे पहले पॉलीमर बैंक नोट को अपनाया था। 1988 में ही ऑस्ट्रेलिया ने सभी कागजी जो करेंसी नोट है उनको पॉलीमर बैंक नोट में बदल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मालदीव्स, बारबाडोस और ओमान में भी पॉलीमर बैंक नोट चलते हैं। इसके अलावा कुछ देश जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब, मेक्सिको, ब्राजील, इनमें आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखिए तो इस लिस्ट में जल्दी ही भारत भी अब शामिल हो सकता है, जहां फिलहाल 10 और 20 रुपए के मतलब आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स वाले देश में भारत शामिल हो सकता है, क्योंकि 10 और 20 के बैंक नोट्स ट्रायल के लिए मार्केट में आने वाले हैं। पॉलीमर बैंक नोट को बाजार में उतारना आरबीआई के लिए एक चुनौती होगा, और इसकी वजह यह है कि हमारा सारा कैश काउंटिंग सिस्टम कागजी करेंसी नोट के हिसाब से बना हुआ है, और ये हमारे लोगों की आदत से भी जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर कैश काउंटिंग सिस्टम से जुड़ी जो मशीन्स हैं, जैसे एटीएम है, करेंसी काउंटिंग मशीन्स है, अन्य सारे वेंडिंग मशीन्स हैं, उनमें बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये सभी मशीनें अभी कागजी नोटों को गिनने के लिए तैयार की गई हैं। इनमें पॉलीमर नोट जाने पर कुछ खास तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मशीन में काउंटिंग के वक्त नोटों का फिसलना, पॉलीमर नोट कागजी नोट की तुलना में फिसलन ज़्यादा होता है, उनमें फिसलन भरे होते हैं, और ऐसी स्थिति में काउंटिंग में गलती हो सकती है। दूसरा चैलेंज लोगों की आदत से जुड़ा। अभी तक लोग कागजी नोट इस्तेमाल करते हैं, कागजी नोट चिपकते नहीं हैं, इन्हें कई बार फोल्ड भी किया जाता है, ऐसे फोल्ड करके लोग रख लेते हैं, और सहूलियत के हिसाब से रखा जा सकता है कहीं भी। पॉलीमर बैंक नोट के साथ ऐसा नहीं है, पॉलीमर बैंक नोट फिसलते हैं, कई बार नए नोट आपस में चिपकते हैं, इन्हें फोल्ड करके रखना भी मुश्किल है, आपको इसको संभाल कर रखना। हालांकि ये बैंक नोट के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनको समय के साथ बदला जा सकता है। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: Sokudo.
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन डीज जेमर मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Expectation से better placement मिली है तुझे? अब सब set है ना?
2: सब set है. बस अब चाहिए एक salary account जो match करे मेरी lifestyle से.
3: तू सोचना क्या है? मेरा अपना bank है ना?
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर OTT सब्सक्रिप्शन लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे.
2: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ.
3: पर जाना क्यों है? सब ऑनलाइन ही हो जाता है. PNB मेरा अपना बैंक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस किसी और का प्रमोशन करवा देती है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और

0: पर राहुल गांधी का सीधा हमला, बोले हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। अमित शाह देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा बार बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे राहुल। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मॉनसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चा। और मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले मोहन सरकार के मंत्री, 25% की जगह 60% मूंग खरीद का निर्णय, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखी चिट्ठी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्लान पर। जी हां, सीजेपी ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। साथ ही जनता कॉकरोचवाड़ी ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों से FIR वापस लेने का कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। सीजेपी कह रही है कि आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुए अंतरिम आदेश का हवाला देकर सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देश भर में फिर से वो करेंगे बड़ा आंदोलन।
1: अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेज है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे और रोड पे भी आएंगे।
2: सीजेपी की चेतावनी पर चेतावनी का मतलब क्या है?
3: वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करते रहे तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे।
2: क्या है अभिजीत दिपके का प्लान? आगे क्या करेगी सीजेपी? क्या है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर? क्यों भड़की है सीजेपी?
1: सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी।
2: सीजेपी क्यों कह रही है युवाओं के साथ विश्वासघात मत करना? प्रदर्शनकारियों पर लिखित आश्वासन न मिलने से भड़की सीजेपी।
4: मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गए मामो, सुबह हो गए।
2: जंतर मंतर पर 36 दिन के आंदोलन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने अगले प्लान में जुट गई है? क्योंकि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार को फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
3: इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा।
2: जंतर मंतर पर जीत का जश्न मनाने के बाद अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि सरकार और उनके बीच जो समझौते हुए हैं अगर वो नहीं माने गए तो वो फिर से सड़क पर उतरेंगे।
3: सरकार ये सब ना करे, ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था, लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करते रहे तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे।
2: अब सवाल ये है कि अभिजीत दिपके ने फिर से आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है जबकि बिहार सरकार प्रदर्शनकारियों से केस वापसी का ऐलान कर चुकी है। असम सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों से FIR वापस लेने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है। आपको बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच एक शर्त ये भी तय हुई थी कि प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर दर्ज FIR वापस होगी। अब कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापसी की लिखित गारंटी भी आ रही है जबकि दिल्ली में किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नामजद FIR नहीं है। 15 से 20 FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। तो फिर सरकार और सीजेपी के बीच बात कहां फंसी है और क्यों सीजेपी फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है? तो सुनिए, सीजेपी का कहना है कि देश भर में जहां भी नीट पेपर लीक से जुड़े प्रदर्शन हुए हैं हर राज्य में सरकार ने प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेने की बात कही थी और सरकार को मंगलवार यानी 28 जुलाई तक इस पर लिखित आश्वासन भी देना था। सीजेपी के मुताबिक ये अभी तक नहीं मिला है बल्कि सरकार ने सीजेपी प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया है जिसके तहत मौजूदा मामलों में जांच जारी रखने की अनुमति है जिससे मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अधीन हो गया है।
1: अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और आसाम जहां पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था, उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे, अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
2: सौरभ दास ने अपने बयान में कहा है कि CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच से पारित अंतरिम आदेश, खास तौर पर निर्देश संख्या 4, पूरे देश में प्रदर्शनकारियों के लिए खतरे की घंटी है। अब आपको दिखाते हैं कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 4 अंतरिम आदेश दिए थे। पहला, नाबालिगों की रिहाई। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। दूसरा, छात्रों पर रोक। किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा, जांच कमेटी। पुलिस लाठीचार्ज और हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित किए जाने की बात कही गई। चौथा, सबूतों का संरक्षण। मामले से जुड़े सभी CCTV, ड्रोन और वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब CJP को शक है कि केंद्र सरकार और BJP शासित राज्य सरकारें इस अदालती आदेश का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को जारी रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कर सकती हैं, और CJP इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बता रही है, तो ये भी कह रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर को हथियार न बनाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का राजनीतिकरण न करे।
1: रूपरेखा तैयार होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथों में है। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेज है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे एंड रोड पे भी आएंगे। मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार FIRs को विड्रॉ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डर में। सरकार इस ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज ना करे, सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी युवाओं के साथ।
2: अब एक तरफ तो CJP फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी अभिजीत दिपके भड़के हुए हैं, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कबूल की है उसके बाद न सिर्फ संसद में विपक्ष भड़का है बल्कि अभिजीत दिपके ने भी पैलेट गन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
5: हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
6: 87 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार, ये बहुत शर्म की बात है। अगर इस सरकार, ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पैलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे।
7: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे?
2: अब एक तरफ तो संसद प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर गर्व है, दूसरी तरफ CJP फिर से सरकार को आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रही है। आज तक ब्यूरो।
0: आज पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया तो राहुल गांधी से माफी की मांग भी की। राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और राहुल गांधी का पूरा भाषण नहीं हो पाया। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
2: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
5: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट से एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
2: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
5: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया, उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
2: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
5: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
0: सड़क से संसद तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के द्वारा क्या जेन जी के दिल में राहुल गांधी अपनी जगह बना पाएंगे। आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेन जी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर क्या चल रहा है। आज हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की पोस्ट्स और वीडियोज का विश्लेषण करेंगे। आखिर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर माहौल क्या है?
8: राहुल गांधी
2: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं, मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें चार पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: एक बड़ी खबर इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ 3 घंटे की बातचीत के बाद भी किसान खुश नहीं हैं। भोपाल में किसानों ने कहा है कि सरकार ने उन्हें लॉलीपॉप दिया है, उनकी मांगी नहीं मानी।
8: सरकार से जो चर्चा हुई लगभग 3 घंटे से हमारी चर्चा चल रही है। हमारी दूसरी मांग जो थी ई टोकन की, सरकार ने सहज स्वीकार करी है। ई टोकन प्रणाली को वर्तमान स्थिति पर स्थगित कर दिया गया है। मूंग खरीदी के स्लॉट मात्रा बढ़ाई गई है 3 क्विंटल प्रति एकड़, उस हिसाब से स्लॉट की तारीख भी बढ़ाई जाएगी, खरीदी की तारीख भी बढ़ाई जाएगी। और जिन किसानों पर FIR की गई है वह FIR सरकार वापस लेगी। और यहाँ आंदोलन में जितना भी अभी तक हुआ है किसी भी किसान के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। 3 क्विंटल प्रति एकड़ पर सरकार ने विचार रखा है, 3 क्विंटल। ये अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, हमारी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। हमारे किसान यहाँ सड़कों पर 3 दिन से पड़े हैं, उनकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। सरकार का प्रयास अच्छा था, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया पर बहुत लेट बुलाया, ये 3 दिन पहले। अगला कदम हम यहाँ से आपसे विचार करके कमेटी जो होगी करेंगे।
0: 100% मूंग खरीद की मांग किसान कर रहे हैं। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे। POK में मुनीर ने मचाया कत्लेआम, अब पाकिस्तान के हाथ से जाएगा POK। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दस्तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
10: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
13: I have no idea how this election is going to play out,
12: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
14: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
17: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
18: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
17: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
18: अर्ज किया है
17: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
19: वाह वाह वाह।
18: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
19: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
20: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
10: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
11: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
12: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
13: Kuch to baat hai is dil mein.
14: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi daba ke khate hain. Goldie Hing, kan kan mein jaan.
15: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
16: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
17: Rungta nahi, to ghar strong nahi. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: वी आर ओवर जिमी।
19: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
3: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले 1.5 साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले 1.5 साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके की अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK की। जी हाँ, POK में आसिम मुनीर और शहबाज ने मिलकर कत्लेआम मचा रखा है। भले ही मुनीर की सेना POK वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है, लेकिन अपने अधिकार की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। POK में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC अब आर पार की लड़ाई पर आ गई। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि हमारी जमीन है तो हम ही उस पर राज भी करेंगे। ये POK की तरफ से मुनीर और शहबाज को सीधी चुनौती। POK में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान फिर से कर दिया है। तो आइए आपको दिखाएं कि कैसे POK अब पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, निकल रहा है।
5: POK अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। POK में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने बचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, JAAC ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, POK के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब POK पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है, POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
6: ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएं, बहनें, बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
5: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने POK पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज POK में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है। क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि POK उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए POK के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से POK संभल नहीं रहा है और वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
7: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
8: नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं।
5: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गईं?
2: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें, या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ। दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
5: पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
9: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
5: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं। लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
10: आज मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
5: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जाँच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
11: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
5: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
12: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
5: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
4: और अब ईरान और अमेरिका युद्ध की खबर। 3 दिन के युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में सऊदी अरब भी शामिल हो गया। यह पहली बार है जब अमेरिका और सऊदी अरब की एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर इराक में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर हमला किया। इसी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार करके हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि जॉर्डन पर ईरानी हमले का हम जवाब देंगे। अब सवाल यही है कि बीते दिनों नेतन्याहू ट्रंप के बीच 90 मिनट की मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस मुलाकात के बाद युद्ध एकदम से शुरू हो गया।

0: ईरान अमेरिका में फिर सीधी जंग शुरू। ट्रंप की धमकी, ईरान बड़ी कीमत चुकाएगा। एक बार फिर अमेरिका ईरान वार्ता ठप। ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री हो गई। इराक पर अमेरिका और सऊदी का हमला। हमले के बाद जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला। यूक्रेन पर भी हमले की तैयारी में है ईरान। नेतन्याहू के साथ मीटिंग, क्या है प्लान 90?
1: Talking to them right now, I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it.
2: And we can say, just
1: I believe, Jeff, they're very serious. Okay. They should be.
2: And when you we're say
0: that... चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर वार्ता जारी है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका का युद्ध फिर से शुरू हो गया? दरअसल इराक पर अमेरिका और सऊदी अरब के जॉइंट ऑपरेशन से ठीक पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। 90 मिनट चली मीटिंग में ईरान युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई। मीटिंग खत्म हुई और इराक में ईरान के समर्थकों के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब ने बम बरसाए। पिछले 72 घंटों में IRGC के आदेश पर 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमले हुए। अमेरिकी सेना के खिलाफ ये हमले सफल नहीं हुए। जवाब में अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। फरवरी से अप्रैल 2026 तक इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने अमेरिकी नागरिकों और ठिकानों पर 600 से ज्यादा हमले के प्रयास किए हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए IRGC और उसके आतंकवादी सहयोगियों को अब हमलों को रोकना होगा। सरल शब्दों में समझे तो अब अमेरिका ईरान युद्ध में सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। बीती रात ईरान के प्रॉक्सी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में PMF के 20 लड़ाकों की मौत हो गई। इस लिस्ट में 4 ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि इराक में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले की तैयारी हो रही थी। सऊदी और अमेरिका के हमले के कुछ घंटों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी। इन हमलों के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि जॉर्डन पर मिसाइल हमले का जवाब ईरान पर हमले से अमेरिका देगा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ईरानी मिसाइल हमले का अमेरिका जोरदार जवाब देगा। हम बहुत जल्द ईरान को बुरी तरह हरा देंगे। हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। अब उनकी जमकर पिटाई होगी। भले ही ईरान ने मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के पास मिसाइलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे और उन्होंने उसे रोक दिया। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी तो मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए एकजुट हैं। हमारी एक साझा प्रतिबद्धता है। हम ईरान में एक कट्टरपंथी शासन को परमाणु हथियार हासिल करते हुए नहीं देखना चाहते। ईरान के संबंध में इजराइल और अमेरिका का एक साझा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात में ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर लंबी चर्चा की। नेतन्याहू ने ट्रंप को यही बताया कि ईरान के खिलाफ इजराइल को फिर से बड़ा हमला करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू यही मानते हैं कि ईरान पर दोबारा हमला ही अब आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि जब तक युद्ध भूमि में ईरान सरेंडर नहीं करता तब तक मिडल ईस्ट में शांति की संभावना नहीं है। इसी कड़ी में नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के नए टारगेट की लिस्ट ट्रंप को सौंपी है, जहां अभी तक एक बार भी हमले नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है की इस लिस्ट में ईरान का पिकैक्स परमाणु सेंटर भी शामिल है। वैसे ट्रंप पहले भी पिकैक्स परमाणु सेंटर पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
3: Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
4: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
3: I will.
4: Let them know we're coming, okay? There's not a damn thing they can do about it.
0: ट्रंप की इसी धमकी के बाद से ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। ईरान ने यही दावा किया है कि पिकैक्स माउंटेन पर कोई भी परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उल्टा ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप की नज़र इस सेंटर पर है और इसे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना बनाया जा रहा है। पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका की नज़र है, जहां कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है। आक्रामकता विनाश और तोड़फोड़ के लिए एक मनगढ़ंत बहाना मात्र है। ईरान ने कानून के तहत IAEA को अपनी सभी परमाणु गतिविधियों की जानकारी दी थी। ईरान अमेरिका के और हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पिकैक्स एटमी सेंटर को लेकर दी गई धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। वहीं ईरानी सांसद इब्राहिम ने दावा किया है कि अमेरिकी धमकी ही उनके लिए परमाणु सिद्धांत को बदलने के लिए ठोस आधार है। परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए परमाणु सिद्धांत में बदलाव करना एक ठोस कारण है। अमेरिका ने ईरान के एटमी सेंटरों पर पहले भी हमला किया। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सीधा हमला थे। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की धमकी दी है। ये धमकी ईरान को सोचने पर मजबूर करती है कि वो अपनी परमाणु नीति क्यों नहीं बदले। ईरान लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पिकैक्स एटमी सेंटर को लेकर इसराइल ने भी एक खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के साथ साझा की है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भले ही ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता है, लेकिन बीते साल हुए युद्ध के बाद ईरान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स एटमी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया था। बीते साल अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। अगर ईरान के एटमी सेंटर पर ट्रंप इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमले का आदेश देते हैं, तो ईरान भी अमेरिकी एटमी सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ईरान का कहना है कि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, और तो और मिसाइलों का प्रोडक्शन न तो युद्ध के दौरान रुका और न ही युद्ध के बाद कभी थमा है। इधर ईरान के खिलाफ ट्रंप नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसका प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ हमले की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि बाब अल मंदेब में सऊदी अरब के जहाजों की एंट्री पर हुती ने पाबंदी लगा रखी है। अब हुर्मुज की तर्ज पर हुती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी में हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुती लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले जलमार्ग का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। सिर्फ चीन के जहाजों को छूट दी जाएगी। वहीं चीन से एयर डिफेंस सिस्टम की खेप जल्द ईरान पहुंचने वाली है। मतलब युद्ध में चीन भी पर्दे के पीछे से शामिल है। तो क्या युद्ध में सऊदी अरब, यूक्रेन और इसराइल दोबारा शामिल होंगे? तो क्या चीन और रूस भी इस युद्ध में ईरान के समर्थन में सामने आ सकते हैं? आज तक ब्यूरो।
5: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
9: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
8: more top sports.
10: And he's gonna go. There's the tying goal.
8: And everything in between. Upgrade now for the premium listening experience.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
11: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, का हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले मोहन सरकार के मंत्री, 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंतर मंतर खामोश हो चुका है, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद छात्र और जेंजी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन खामोश जंतर मंतर खामोशी से पहले की कुछ तस्वीरें और कई ऐसे सवाल छोड़ गया जो न दिल्ली पुलिस से देखते बन पा रहा है और न ही जिनके जवाब देते। छर्रे और पत्थर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल तो सीधे AK-47 पूछ रहा है।
2: गर्मी लग रहा है सर, पानी चालू कर दिया सर, पसीना आ रहा सर, चक्कर आ रहा सर, एक बार सर।
3: पानी कब चालू होगा?
2: गर्मी लग रहा है सर।
4: गर्मी तो आपको भी लगता होगा, जाहिर सा बात है।
2: अभी जस्ट पानी पिए, पूरा चक्कर आ रहा है, पूरा पसीना पसीना, थोड़ा पानी चालू करवा देते।
5: भाई सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, पूछो व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे।
6: वाटर कलर
7: सर, लाठी चार्ज कब होगा? लाठी चार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था मैं, घर पे बैठ के फोमो हो रहा था मुझे।
1: जानते हैं वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी मारने की बात है। ये प्रदर्शनकारी क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें पता था कि यही वो तीन चीजें हैं जो हर धरने प्रदर्शन और आंदोलन के आखिरी तीन हथियार होते हैं। चाहे वो धरना प्रदर्शन या आंदोलन किसानों का, वकीलों का, छात्रों का, सरकारी कर्मचारियों का, मजदूर संगठनों का, नेताओं का या विपक्षी पार्टियों का, या फिर कई बार तो खुद सरकार का, एक तय सीमा से आगे जाने से रोकने के लिए या बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कई बार हिंसक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए अमूमन हमारे देश में यही तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यही बात हाल में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों को अच्छी तरह मालूम था। दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक जहां तानाशाही या फिर राजशाही, वहां आवाम को अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं होती। सत्ता के खिलाफ बगावत छोड़ी मुंह खोलने का अंजाम भी मौत से लेकर जेल तक की सजा होती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे देशों की एक बड़ी आबादी है जो खुशनसीब है कि वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र है इसीलिए खुलकर बोलने से लेकर धरना, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की भी इजाजत है, और उन खुशनसीब देशों में एक देश हमारा भी है। हमें हमारा संविधान और उस संविधान का अनुच्छेद 19, देश के हर नागरिक को अपने विचार रखने और बोलने की आजादी देता है, और इसी दायरे में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आंदोलन और भाषण भी आते हैं। लेकिन छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच से आई इन तीन तस्वीरों ने पूरे देश में इस वक्त एक बहस छेड़ दी। खासकर इनमें से दो तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी धरना प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान पुलिस या सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब तक वो यही जानते थे कि ऐसे मौकों पर पुलिस सिर्फ वाटर कैनन यानी पानी की तेज बौछारें, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले या फिर आखिर में लाठी चला सकते हैं। लेकिन पुलिस या सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर छोटे छोटे लोहे के छर्रे से भरे पैलेट गन और AK-47 जैसे घातक हथियार से गोलियां भी चला सकती है। ये लोगों ने पहली बार देखा और सुना। पैलेट गन फिर भी इससे पहले पहली बार 2010 में कश्मीर प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन देश के इतिहास में यह पहला आंदोलन था जिसमें पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से गोलियां दागी। सबसे पहले जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल इन प्रदर्शनकारियों को देखिए। चेहरे से लेकर जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर ये जो छोटे छोटे निशान आप देख रहे हैं, जानते हैं ये निशान किसके हैं? उसी पैलेट गन से निकले छर्रों के, छोटे छोटे लोहे के छर्रों के। यही सारे वो निशान थे जिन्हें इलाज के दौरान देखने के बाद डॉक्टरों ने पहली बार ये बताया कि ये पैलेट गन से चली गोलियों के छर्रों के जख्म हैं।
6: 20 तारीख के प्रदर्शन में जो बच्चे घायल हुए थे उनमें एक नाम 19 साल के साहिल का भी है, और साहिल के शरीर पर जो जख्मों के निशान हैं वो ऐसा देख करके लगता है कि पैलेट गन जैसे किसी बंदूक का इस्तेमाल किया, तमाम सारे छर्रे जो हैं उसकी वजह से उसकी आंखों पर भी खतरा है। तो साहिल के मामा जो हैं अजय, आपने उसको पहली बार कितने दिन बाद देखा जब चोट लगी थी? सेम डे आए थे या बाद में आए थे?
8: सेम डे आए थे, फोन आया था किसी का हमारे पास कि साहिल को घायल हो चुका है, मैम ऐसी ऐसी बात है तो आप आ जाओ। हम फिर वहाँ पहुंचे, हमने कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे नाम याद नहीं है,
6: सफदरजंग या एम्स,
8: एक हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, उसमें था साइन। तो देख के सारे में यहाँ ब्लड लग रही है, यहाँ
6: कटा हुआ था छर्रे, क्या
8: छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए, तो भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज।
1: जैसे ही पैलेट गन को लेकर अफवाह उड़ी, दिल्ली पुलिस ने बिना सोचे समझे इसे झूठी खबर करार दे दिया। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से फैक्ट चेक करने का दावा करते हुए न सिर्फ इसे गलत बताया बल्कि ये भी दावा कर दिया कि दिल्ली पुलिस न तो पैलेट गन लेकर जंतर मंतर गई थी और न ही उसका कोई इस्तेमाल हुआ। पर धरना प्रदर्शन के दौरान अमूमन ऐसे जख्म मिलते नहीं है, पर ये किस तरह के जख्म थे? तो दिल्ली पुलिस के झूठ को खुद उसी के एक थाने ने आईना दिखा दिया। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज एक जनरल डायरी है। जनरल डायरी में शिकायत या सूचना लिखी जाती है। 22 जुलाई की दोपहर 1:24 पर रैपिड एक्शन फोर्स का एक डिप्टी कमांडर सतीश कुमार सांगवान जनरल डायरी में एक सूचना लिखवाता है। ये सूचना ड्यूटी रूम में तब मौजूद सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश लिखते हैं। 3.5 लाइन की पूरी सूचना ये है। तो इस सूचना के मुताबिक रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडर सतीश कुमार सांगवान की ड्यूटी 20 जुलाई को जंतर मंतर के जोन 1 में थी। उन्हें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP राजा बांठिया के साथ अटैच किया गया था। CJP प्रोटेस्ट में भीड़ पर काबू के दौरान DCP के ही आदेश पर उसने नॉन इलेक्ट्रिकल शेल 55, इलेक्ट्रिकल 15, टेयर स्मोक ग्रेनाइट ARG-2BC 2PP इस्तेमाल किया। यहाँ PP शब्द उसी पैलेट गन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब कमाल देखिए, दिल्ली पुलिस पहले पैलेट गन के इस्तेमाल को ही नकार देती है, फिर पैलेट गन के इस्तेमाल के पूरे 48 घंटे यानी 2 दिन बाद इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से ये कबूला जाता है कि दिल्ली पुलिस के DCP के हुक्म पर उसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अब इससे ऊपर का भी कमाल देखना है तो ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के वही नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार साहब हैं, जिनकी बाकी वजहों के साथ साथ CJP के इस प्रोटेस्ट को बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए अचानक दिल्ली में उतारा गया। पुलिस कमिश्नर साहब CJP प्रोटेस्ट के दौरान लगातार इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद थे, DCP के दफ्तर में बैठकर लगातार हालात पर नजर रखने के लिए, और इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये जनरल डायरी लिखी गई। अब सवाल ये है कि क्या पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कमिश्नर साहब को कोई जानकारी नहीं थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या उन्हें पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उन्हीं के थाने में दर्ज इस जनरल डायरी के बारे में ही खुद उनके अफसरों ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, उन्हें अंधेरे में रखा? अब अगर ऐसा ही है तो जब कमिश्नर साहब को अपने थाने की ही खबर ठीक से न हो तो फिर बाकी का क्या कहें? अब आप सोच रहे होंगे कि पैलेट गन ही तो चलाया, बंदूक से गोली थोड़ी चलाई, पैलेट गन से कोई मरता भी नहीं, तो फिर इसे लेकर इतना हंगामा क्यों? तो पहले पैलेट गन के बारे में जान लीजिए। आम बंदूक से अमूमन एक बार में एक गोली निकलती है, लेकिन पैलेट गन के एक कारतूस में सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे होते हैं। ये छर्रे आमतौर पर मेटल, खासकर लीड यानी शीशे के बने होते हैं। ये छोटे छोटे गोल दाने जैसे होते हैं। जब पैलेट गन का ट्रिगर दबता है तो कारतूस में मौजूद बारूद इन सैकड़ों छर्रों को एक साथ बाहर फेंकता है। इस तरह बंदूक की नाली से बाहर निकलते ही ये छर्रे आसपास एक बड़े दायरे में फैल जाते हैं। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल आसमान की तरफ किया जाए तो नुकसान कम है, या भीड़ से एक खास दूरी बनाकर किया जाए तो भी नुकसान ना के बराबर है। लेकिन अगर ये करीब से प्रदर्शनकारियों पर चलाई जाए तो शरीर के नाजुक हिस्सों, खासतौर पर आंखों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे छर्रे होते हैं। लिहाजा अगर ये आंखों पर जाकर लगे तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। देश में पैलेट गन का पहली बार इस्तेमाल 2010 में जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान किया गया था। हालांकि पैलेट गन को आज भी बहुत घातक हथियार नहीं माना जाता। अभी जंतर मंतर पर इस पैलेट गन के छर्रों की गिनती जारी ही थी कि तभी अचानक बिहार से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर सामने आ जाती है। अगर सबूत के तौर पर यह वीडियो सामने ना आता तो शर्तिया बिहार पुलिस कभी ये मानती ही नहीं कि उसने छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों की तरफ AK-47 जैसे घातक हथियार से गोलियां चलाई थी। ये तस्वीर बिहार के सिवान की है, उसी सिवान की जो एक वक्त शहाबुद्दीन की वजह से सुर्खियों में रहता था। छात्रों और CJP के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले के हाथ में ये AK-47 दिखाई देता है। ये पुलिस वाला सिर्फ AK-47 अपने साथ लेकर इस आंदोलन में पहुंचा नहीं था, बल्कि वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो इसी AK-47 से हवा में दो राउंड गोली भी चलाता है। देश के इतिहास में किसी आंदोलन के दौरान AK-47 से गोली चलाने का ये पहला मामला है। दिल्ली पुलिस की तरह बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने पहले तो इस खबर को ही गलत करार दे दिया, लेकिन तस्वीर तो तस्वीर है, इंसान की तरह झूठ नहीं बोलती। लिहाजा जब तस्वीरें आईना बनकर बिहार पुलिस के सामने खड़ी हो गई तो पुलिस को भी मानना पड़ा। फिर बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिस पुलिस वाले के हाथों में ये AK-47 है और जिसने गोलियां चलाई, वो सिवान के SP का सुरक्षा गार्ड था। उसकी ड्यूटी आंदोलन की जगह पर थी ही नहीं, वो तो कहीं और जा रहा था, भीड़ में फंस गया और फिर भीड़ से निकलने के लिए गोली चला दी। मतलब कॉमेडी की भी हद होती है, ऐसे सीरियस मैटर में भी बिहार पुलिस मजाक करने से बाज नहीं आ रही।
9: सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उसके उस पर कार्रवाई हुई है सर?
10: जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
11: क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या?
12: जी, उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे।
1: फिर हुआ यूं कि सारी गाज एक अकेले उसी पुलिस वाले पर गिरा दी गई और सस्पेंड कर दिया गया, यानी बाकी बड़े पुलिस अफसर जिम्मेदारी के इस जंजाल से बच गए। अब पैलेट गन की तरह यहाँ भी सवाल है कि AK-47 का क्यों इतना भौकाल है। अब तोमल क्लाशनकोव राइफल यानी AK-47 बनाने वाले का नाम है मिखाइल क्लाशनकोव। 1947 में जब उन्होंने AK-47 बनाया तो देखते ही देखते दुनिया भर में सुरक्षा बलों, सेना, पुलिस और फिर अपराधियों का भी ये सबसे पसंदीदा हथियार बन गया। AK-47 के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये लंबी दूरी से भी जानलेवा है। ज्यादातर बाकी हथियार की रेंज जहाँ 30 से 50 मीटर तक होती है, वहीं AK-47 200 से 300 मीटर की दूरी पर भी गोली मार कर किसी की जान ले सकती है। AK-47 गोली चलाने के दो विकल्प देता है, S और R। अगर राइफल को S यानी सिंगल मोड पर रखा जाए तो ये कंट्रोल फायर करता है, यानी इससे एक फायर में एक ही गोली निकलती है, जबकि अगर इसे R यानी रिपीट मोड पर चलाया जाए तो एक ही फायर में इसकी पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। AK-47 की एक मैगजीन में 30 गोलियां होती हैं, यानी एक फायर में एक साथ 30 गोलियां निकलती हैं। हालांकि अब दो मैगजीन वाली AK-47 आ चुकी है, यानी एक ही फायर में दोनों मैगजीन खाली, एक साथ एक फायर में 60 गोलियां। भारत में AK-47 का इस्तेमाल सबसे पहले सेना ने किया, इसके बाद अर्धसैनिक बलों, बॉर्डर से लगे राज्य और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार पुलिस को भी AK-47 को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तो मनीषा झा, सुप्रतीम बैनर्जी, अंशुल सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आखिर इस ट्रक की असलियत क्या थी? संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था, संसद मार्च का ऐलान हो चुका था, छात्र धरने पर बैठे थे। ऐसी सूरत में संसद भवन के आसपास चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाती है, खुफिया ब्यूरो अलग से जानकारी देता है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आखिर इतना भारी भरकम ट्रक जिनमें पत्थर थे वो जंतर मंतर तक पहुंचा कैसे? तो पैलेट गन और AK-47 की तस्वीर और कहानी तो आपने सुन ली, और अब उस तीसरी तस्वीर की कहानी। इस तस्वीर में न कोई पैलेट गन है न AK-47, बल्कि इसमें एक ट्रक है, और ट्रक में दुनिया का सबसे पुराना हथियार पत्थर। ये ट्रक और पत्थर दोनों इस वक्त दिल्ली पुलिस को उतनी ही चोट पहुंचा रहा है जितनी पैलेट गन के छर्रों ने पहुंचाई है। 20 जुलाई को ये ट्रक जंतर मंतर पर ठीक उस जगह से कुछ दूरी पर खड़ा दिखाई दिया जहां छात्रों और CJP का प्रदर्शन चल रहा था। इस ट्रक पर पत्थरों के अलावा कंस्ट्रक्शन के बाकी सामान भी लदे हुए थे। एक तो छात्रों का प्रदर्शन, ऊपर से 20 जुलाई को संसद मार्च, ठीक ऐसे वक्त में जंतर मंतर पर पत्थरों से भरे इस ट्रक पर जब प्रदर्शनकारी छात्रों की नजर पड़ी तो वो भी हैरान थे। पर तब तक मीडिया के एक हिस्से ने ट्रक और पत्थर दोनों को दिखाते हुए इसे कुछ और ही रंग देने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा मैसेज दिया जाने लगा कि प्रदर्शनकारी खुद पत्थरों से भरा ये ट्रक लेकर आए, लेकिन जब ट्रक की असलियत सामने आई तो दिल्ली पुलिस को जवाब देते नहीं बना। दरअसल इस ट्रक के नंबर से पता चला कि 16 जुलाई को इस ट्रक ने फिरोज शाह रोड कस्तूरबा मार्ग गांधी क्रॉसिंग पर एक ओमनी कार को टक्कर मारी थी। कार में बैठे 7 लोग जख्मी हो गए। बाद में पुलिस इस ट्रक को जब्त कर इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आई, यानी 20 मार्च के छात्रों के संसद मार्च से 4 दिन पहले ही ये ट्रक दिल्ली पुलिस के अपने थाने में खड़ा था, उसकी कस्टडी। अब सवाल ये है कि जो ट्रक एक केस प्रॉपर्टी है, थाने के परिसर के अंदर है, वो जंतर मंतर पर ठीक प्रदर्शन की जगह पर कैसे पार्क हो गया? क्या खुद पुलिस ने ऐसा किया? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने 20 जुलाई को 2 वीडियो पोस्ट कर प्रोटेस्ट की जगह पर पार्क इस ट्रक को दिखाया। इसके बाद होता यह है कि अचानक ये ट्रक जंतर मंतर से गायब हो जाता है, पुलिस वाले इसे हटा देते हैं।
13: भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं।
1: पर जंतर मंतर से गायब ये ट्रक अब अचानक मुश्किल से वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़ा मिलता है। हालांकि ये पूरा इलाका वो इलाका है जहां ट्रकों की एंट्री है ही नहीं, यानी इस इलाके में कोई ट्रक आ ही नहीं सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस की एक केस प्रॉपर्टी जंतर मंतर से यूथ कांग्रेस के दफ्तर तक यूं ही लावारिस घूमती और खड़ी नजर आती। ट्रक अगले 3 दिनों तक यूथ कांग्रेस के बाहर ही पार्क था। 3 दिन बाद जब यहां से भी इस ट्रक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो इसके 1 घंटे बाद ये ट्रक वहां से भी गायब हो जाता है।
14: और जो इसमें सचिन में वरापू जो ट्रक कैसे खड़ा हुआ यहाँ पे, नो एंट्री, ट्रक आया कैसे?
15: अरे ये
14: NDMC का सर, NDMC की सारी गाड़ियों में स्टिकर लगे हुए, प्लेट लगी हुई है।
15: कल भी था
14: सर, 3 दिन से खड़ा हुआ है ये। अब इसके नहीं, सामने देश की पार्लियामेंट है, ये एक ट्रक यहाँ पे पिछले 3 दिनों से खड़ा हुआ है। 3 दिनों से एक ट्रक इसके अंदर है और ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा हुआ है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस ट्रक में क्या है, कहाँ से आया है? अगर दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद है तो इस ट्रक को ऐसे टो क्यों नहीं करवा रही? यहाँ पर MPs की मूवमेंट होती है, ट्रैफिक मूवमेंट सीवियर है, प्रोटेस्ट चल रहा पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इस ट्रक को नहीं हटवाया जा रहा। हम जैसे ही अंदर कूदे हैं देखने के लिए कि इस ट्रक में क्या पड़ा हुआ है, तभी सारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ आ गया।
1: इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों के मालखानों में जगह की कमी, एक्सीडेंटल या बाकी केस से जुड़ी गाड़ियां भी बड़ी तादाद में थानों में पड़ी रहती है। लेकिन जब खुद दिल्ली पुलिस को मालूम है कि 20 मार्च को छात्रों का संसद मार्च है, भीड़ बेकाबू हो सकती है, फिर भी ऐसी सूरत में अपने ही थाने से ट्रक को बाहर निकाल कर पत्थर समेत उसी जंतर मंतर पर क्यों खड़ा कर दिया जहाँ सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। जाहिर है इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी और ये भी तय है कि ये फैसला पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के SHO के एक अकेले अपने बूते की बात नहीं, आला अफसरों को भी पक्का इसकी जानकारी होगी। पर क्या पत्थरों से भरे इस ट्रक के थाने से जंतर मंतर तक पहुंचने का सच कभी सामने आ पाएगा? शर्त या नहीं। पर इसके बावजूद इसी दिल्ली पुलिस को ये याद दिलाना जरूरी है कि इसी दिल्ली में 2020 में जो दंगा हुआ था उसकी शुरुआत ऐसे ही पत्थरों और पत्थरबाजी से हुई थी। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, परेड, मार्च, रैली, बेशक नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सभी लोकतंत्र का ही एक हथियार है। लोगों को जब लगता है कि उनकी बात हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच रही, तब वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जाहिर ये देश गांधी का है और गांधी ने ही अहिंसा और आंदोलन का पहली बार रास्ता दिखाया था। पर यह भी एक सच है कि कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन या आंदोलन में शांति बिगाड़ने के मकसद से शांति के कुछ दुश्मन भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माहौल को बिगाड़ देते हैं और फिर उसका खामियाजा बाकी प्रदर्शनकारियों को भुगतना होता है।
16: और फिर जानना चाहेंगे, क्योंकि कई वीडियो वायरल हैं, आज तक इंडिया टुडे को भी वीडियोस मिले हैं जिसमें देखा गया है कि पथराव हो रहा है, पुलिस पर अटैक हुए हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए इसमें? लगभग
17: मोर देन 110
16: पुलिसकर्मी घायल
17: जी।
16: और किस तरह के चोट है, क्या पथराव, लाठी डंडे? क्या
17: बिल्कुल सिर पे चोट है, हाथ है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो इस तरफ से काफी चोट लगी है और तो सबका अभी इलाज चल रहा है।
16: वीडियोस आपको काफी मिल रहे हैं इस तरह के पत्थरबाजी के, और ये सारे वीडियोस मिले हैं?
17: हाँ, कुछ जो भी है अभी सब कंपाइल कर रहे हैं, जो हमारे CCTVs लगे हुए थे, वीडियोग्राफर्स थे, तो दैट कंपाइलेशन इज गोइंग ऑन।
1: पर जिस तरह हिंसक प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाना जरूरी है, ठीक वैसे ही ये भी जरूरी है कि पुलिस वाले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करें। ऐसे आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने के जो खास तरीके हैं और खासकर जो प्रदर्शनकारियों के बीच खासे पॉपुलर हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कायदे से किया जाना चाहिए, वो भी जरूरत पड़ने पर और जरूरत के हिसाब से। तभी तो लोग खुद से पूछेंगे कि टियर गैस, पानी की बौछार और लाठी की व्यवस्था है कि नहीं। इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक आरजू, एक डिमांड और एक अपनापन सा है, कोई चाहे या ना चाहे। लेकिन बरसों से हमारे देश आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की यही पहचान बन चुकी है।
2: सर गर्मी लग रहा है सर, पानी चालू कर दिए सर, सर पसीना आ रहा है सर, चक्कर आ रहा है सर, सर एक बार सर।
3: पानी कब चालू होगा?
2: गर्मी लग रहा है सर,
4: गर्मी तो आपको भी लगता होगा जाहिर सा बात है।
2: अभी जस्ट पानी पिए, पूरा चक्कर आ रहा है, पूरा पसीना पसीना, थोड़ा पानी चालू करवा देते हैं।
5: भाई सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, पूछो व्यवस्था आप लोग नहीं करके
4: वाटर कैनन।
7: सर लाठी चार्ज कब होगा? लाठी चार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था मैं, घर पे बैठ के फोमो हो रहा था मुझे।
1: मनीषा झा, सुप्रतीम बैनर्जी, अंशुल सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: मामला का हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, का हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले मोहन सरकार के मंत्री, 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: मुंबई बीएमसी मेयर ऋतु तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली चेंबूर मामले में चर्चा के बाद गार्डन विभाग के अधिकारी सस्पेंड, जिम्मेदारी तय करने के लिए की जा रही है कार्रवाई। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीप के दिल्ली में लंबे विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे, छत्रपति संभाजी नगर में उनके घर पर जोरदार स्वागत। अभिजीत दीप के ने कहा, प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी नहीं है, सरकार को उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए, वरना जरूरत पड़ने पर फिर से करेंगे आंदोलन। राजेश खन्ना के मशहूर आशीर्वाद बंगले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मीडिया पर पुराने बंगले को शापित और भूतिया कहने पर लगाई गई है रोक। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकार ने उकेरी अनोखी कलाकृति, पीपल के पत्तों पर बनाई महर्षि वेदव्यास की तस्वीर, गुरु शिष्य परंपरा का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, साईं बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, पुजारियों ने बाबा की उतारी विशेष आरती। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को चढ़ाए। अरावली जिले के शामला जी में गुरु पूर्णिमा के पवित्र त्यौहार के शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, संत सुरमल दास जी महाराज की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर अंबाजी मंदिर में भारी भीड़, रंग बिरंगे फूलों से सजाए गए मंदिर, भक्तों ने मां को मां गुरु मानकर दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके शव को फेंका, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राज्यकर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगते हुए भी नजर आया। भीड़ में आईटीआई परिसर में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने के बाद हड़कंप, पॉक्सो मामले में केस दर्ज। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, साफ सफाई में गंभीर खामियां पाए जाने पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंसीज। अगस्त से चाय और खाने पीने के सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और साथ ही कपड़े महंगे होने की आशंका, लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियां त्योहारी सीजन से पहले 8% तक बढ़ा देंगी दाम। मई तक गोल्ड लोन 105% तक बढ़कर 5.1 लाख करोड़ रुपए तक के पार पहुंचा, आरबीआई की बार बार चेतावनी के बावजूद सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का चलन तेजी से बढ़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है, डॉलर की मजबूती और हाई बॉन्ड यील्ड के सोने की चमक पर दबाव बढ़ गया है। गोल्ड सर्किल लोकल सर्किल के सर्वे में दावा किया गया है कि यूजर्स ने E20 पेट्रोल से माइलेज घटने का दावा किया, सरकार और ऑटो इंडस्ट्री ने तय मानकों वाले इंजन को E20 पेट्रोल से नुकसान न होने की बात कही। वॉकिंग आवर्स की रिकॉर्ड न रखने पर फ्रांस के लेबर डिपार्टमेंट ने इंफोसिस पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्रांस में कर्मचारियों से वीक में 35 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार खत्म हुआ, कल रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीदे। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद भागवतम फिल्म सीरीज की घोषणा की गई, श्रीमद भागवतम पर बनेंगी 7 फिल्मों की सीरीज, रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं इसे डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हुआ, फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अमित राय की फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना रिलीज हुआ, 7 अगस्त को फिल्म रिलीज की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन जारी है, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के निर्देश पर मुंबई के 5 बड़े क्लब्स का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इन क्लब्स की किचन में जिंदा और मरे हुए कॉकरोच मिले हैं, कई जगहों पर बर्तनों में जंग मिली है, कई सब्जियों में फफूंद लगी हुई मिली है और इसके अलावा एफडीए ने पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री और उसके विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कुछ कंपनियों ने एफडीए पर मनमानी के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।

0: महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ताबड़तोड़ कार्रवाई चालू है। जब से तुकाराम मुंडे ने FDA की कमान संभाली है, तब से मिलावटी दूध, नकली दवाइयों और नामी रेस्टोरेंट के साथ बड़े बड़े क्लबों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। FDA ने मुंबई के 5 बड़े क्लब CCI यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, MIG, RK जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और विलिंगडन के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। FDA के मुताबिक उन्हें इन क्लबों की रसोई में गंदगी, जिंदा कॉकरोच, सब्जियों में फफूंद और खाने पीने का सामान एक्सपायर मिला।
1: इस वक्त हम मुंबई के MIG क्लब पे हैं। ये उन क्लब में से है जिनके लाइसेंसेस फूड के FDA ने सस्पेंड किए हैं। FDA का कहना है कि उनके जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो इन जगहों पर जाकर जब इन्होंने छाननी की तो कहीं ना कहीं जो हाइजीन स्टैंडर्ड है वो कम पाया गया था। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, MIG क्लब जिसके बाहर हम खड़े हैं, RK जू जिमखाना, अपर्णा जू जिमखाना, विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, ये वो क्लब्स हैं जिनके बाहर आप कह सकते हैं जो एक्शन है वो लिया गया, फूड लाइसेंसेस सस्पेंड किए गए। ये MIG क्लब में तो जो कैटरर है उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, इस तरह की भी बात सामने आई है। और जिस तरह से ग्लव्स कैप्स पहनकर लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं होता हुआ दिख रहा था। कई जगहों पर जो बर्तन है वो जमीन पर धोए जा रहे थे, कई पर कॉकरोच पाए गए, कई पर मक्खियां पाई गई। तो ये सारे आप कह सकते हैं जो वायलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए इन 5 क्लब्स का जो लाइसेंस फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनको अपील फाइल करनी पड़ेगी FDA में, तब जाकर लाइसेंस रिन्यू होगा। पिछले दिनों में हमने देखा है कि जब से तुकाराम मुंडे FDA के कमिश्नर बने हैं वो एक्शन मोड पर है, और इसीलिए फिर वो बेकरीज हो, फिर वो रेस्टोरेंट्स हो या फिर जाने माने मुंबई के क्लब्स हो, इन सभी पर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और इसी पे नहीं, दूध की मिलावट हो, गुटखा की बिक्री हो, इन सभी चीजों पर FDA फोकस कर रही है। एक हेल्पलाइन नंबर भी ओपन किया है जिस पर लोग कंप्लेन कर सकते हैं, और ये सारी कंप्लेन जो FDA को मिल रही है उस पर एक्शन लिया जा रहा है।
0: FDA को अपर्णा जुहू जिमखाना में खाना पकाने के बर्तन जंग लगे हुए मिले।
2: ऑलमोस्ट कल 7 क्लब के इंस्पेक्शन हुए, उसमें से 5 क्लब पे सस्पेंशन हुआ, उसमें से CCI एक है, दूसरा RK जुहू जिमखाना है, तीसरा अपर्णा जुहू जिमखाना है, 14 MIG क्रिकेट क्लब बांद्रा ईस्ट है और 5वां विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पे उनका सस्पेंशन हुआ, उसके अलग अलग रीजन है। बेसिकली जो रीजन्स है तो शेड्यूल 4 का वायलेशन बेसिक बहुत बड़े पैमाने में पाया गया। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, वेज और नॉन वेज का जो प्रिपरेशन अलग होना चाहिए स्टोरेज अलग नहीं था। अब इसको माइनर मानोगे? नॉट अलाउड। दूसरा जो वेस्टेज मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से नहीं था, एज पर नॉर्म नहीं था। कॉकरोच मिले, जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर वाटर और वो स्टोर हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर मिला है, या स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं। कॉकरोच मिले, स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं। देन जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उस पर नॉर्मल ब्रूम भी यूज किया है। उसके बाद जो बुरशी भाजा जा है सब्जी वो भी मिला है।
0: यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था, इसके साथ ही खाना बनाने और परोसने वालों की साफ सफाई में लापरवाही मिली, जैसे ग्लव्स, कैप या एप्रन का इस्तेमाल ना करना।
1: मुंबई के 5 क्लब्स में FDI ने रेड किए, जिसके बाद उनका फूड लाइसेंस सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई लगातार देखने के लिए मिल रही है। रुस्तम जी आइसक्रीम्स हो, जो कि आइसक्रीम के लिए बहुत फेमस है, दूध के लिए फेमस पास डेयरी फार्म को सील किया गया, शालीमार, नूर मोहम्मद जैसे मुगले रेस्टोरेंट्स को सील किया गया। उसके बाद अब जो बारी आई है वो मुंबई के आलिशान क्लब्स की है। इस वक्त हम विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब के बाहर खड़े हैं। आप पीछे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, एक बड़ा ही आलिशान क्लब जिसमें जब FDA की रेड हुई तब जो यहां पर आप कह सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। इस तरह की बात करने के बाद FDA ने लाइसेंस फूड का जो है वो आप कह सकते हैं कि सस्पेंड किया है।
0: इसी महीने FDA मुंबई की मशहूर पारसी डेयरी का लाइसेंस भी सस्पेंड कर चुका है। वहीं महाराष्ट्र FDA ने राज्य भर के स्कूलों में कैंटीन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। स्कूल के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट और ट्रांस फैट वाले खाने पीने के सामान की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के मुताबिक यह आदेश 28 जुलाई को जारी किया गया है। स्कूलों को अपनी कैंटीन चलाने के लिए सिर्फ लाइसेंस वाले वेंडर रखने की इजाजत होगी। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
2: आसान तरीके से हाई फैट जो प्रोडक्ट है, डीप फ्राइड है, शुगरी है, जहाँ ज्यादा मैदा होता है, जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, ऑल दिस इज नॉट अलाउड विद इन 50 मीटर्स पेरिफेरी ऑफ द स्कूल्स। दिस इज सिंपल एज दिस।
0: वहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र एफडीए को याद दिलाया कि ये भारत है और अथॉरिटी को रियलिस्टिक नजरिया अपनाना चाहिए। दरअसल एफडीए ने इसी महीने करीब 100 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। उसके बाद ही कुछ कंपनियों ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
3: दरअसल एफडीए ने 2 जुलाई के आसपास नवी मुंबई के पार्क इन होटल में एक इंस्पेक्शन किया था और उसके बाद उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन में काफ़ी सारी खामियां पाई थी, लेकिन जो होटल है उसने कहा कि ऐसी कोई खामियां नहीं थी और यही वजह है कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। बहरहाल दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अदालत ने एक री इंस्पेक्शन ऑर्डर किया था और अब इसकी रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जाएगी। और अदालत ने कहा था कि अगर इंस्पेक्शन में सब ठीक पाया गया तो सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो अब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने हैं।
0: हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र बी घुगे ने एफडीए की तरफ से सरकारी वकील नेहा भिड़े से कहा, हम इंडिया में हैं मैडम, आपको एक रियलिस्टिक स्टैंड लेना होगा। ये बात नवी मुंबई के होटल पार्क इन बायर एडिसन की अथॉरिटी के एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई। ये तब हुआ जब सुनवाई के दौरान ही बेंच के सामने एक मक्खी आ गई। लेकिन नवी मुंबई की एक कंपनी अकेली नहीं है जिसने कोर्ट में गुहार लगाई है। साउथ मुंबई के एक और रेस्टोरेंट में भी एफडीए पर आरोप लगाए हैं और अथॉरिटी को हाईकोर्ट में घसीटा है।
3: रेस्टोरेंट ने इन सब आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा ठीक था। जब सरप्राइज चेक हुआ था तब दरअसल साफ सफाई हो रही थी और इसी की वजह से उस समय फ्लोर गीला था। स्टोरेज की समस्या को लेकर भी उन्होंने इसको डिनाई किया और साथ ही ये भी कहा कि जालियां जो है वो लगी हुई है हर जगह, इसकी वजह से पेस्ट कंट्रोल करने के भी काफी इंतजाम है। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो पूर्णिमा रेस्टोरेंट है उन्होंने अपने प्रोप्राइटर के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की है और एफडीए के इस एक्शन के खिलाफ को स्टे करने की मांग की है अपने ताकि वो ऑपरेट कर सके। और साथ ही ये भी कहा है कि काफी सारे प्रोसीजरल लैप्सेस थे इस एफडीए के चेक में। तो तमाम आरोपों के बीच में ये याचिका अब दर्ज हो गई है। अब इसकी सुनवाई हो सकता है कि शुक्रवार तक होगी। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
4: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कंगना ने जेंजी को लेकर एक पोस्ट में उन्हें गटर छाप कहा था और उसके बाद आज बाकायदा वीडियो जारी करके वो अपने बयान पर कायम भी नजर आईं। लेकिन कंगना के बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई है। अब सवाल यह है कि कंगना रनौत ने यह सब कुछ अपने मन से कह दिया है या फिर पार्टी ने भी उन्हें हरी झंडी दी हुई है।

0: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। कोई उनको भगवान मानता है,
1: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें।
2: कंगना रनौत इतनी नाराज क्यों है? जंतर मंतर पर उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ जिसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए या फिर वहां प्रदर्शनकारियों ने अभिव्यक्ति की आजादी की सारी सीमाएं लांघी? इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की वो रील्स जिनमें जेंजी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के लिए भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे, आपत्तिजनक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कंगना रनौत ने इसे भारतीय संस्कृति का मुद्दा बना दिया।
0: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे, हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है।
2: कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी को खूब खरी खोटी सुनाई और कई हदें भी पार कर दी। जैसे कंगना ने लिखा, यह तथाकथित पश्चिमी भारतीय महिलाओं की पीढ़ी है जिन्हें मैं गटर वाली पीढ़ी कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास तो इस समाज को देने के लिए कुछ नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बल्कि ये तो इतने भद्दे और भ्रष्ट हैं कि यह हाउसवाइफ भी नहीं बन सकते। लेकिन वो बड़े गर्व से ड्रग्स, शराब और अनैतिक यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती, अपने घर वालों के पैसों पर पलती।
0: क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं, तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं।
2: असल में कंगना लगातार इस आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रही है। जिस दिन से इस आंदोलन ने तूल पकड़ा, कंगना ने लगातार आंदोलन के खिलाफ अपना अलग स्टैंड लिया हुआ है। कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी बदसूरती एक साथ नहीं देखी। जेंजी के विरोध प्रदर्शनों की ये रीलें देखकर घिन आती है। इन लोगों के बोलने का तरीका और जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर फ्रेम इतना अजीब और परेशान करने वाला है कि देखकर घिन आती है। आखिर इन्हें जन्म कौन दे रहा है और कौन इनकी परवरिश कर रहा है?
0: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
2: असल में कंगना इस बात से ज्यादा नाराज है कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौच हुआ। कंगना ने आज जो वीडियो जारी किया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत से लोगों के लिए प्रधानमंत्री भगवान हैं और प्रदर्शन में जिस तरह की बातें हुई हैं उससे उनकी भावनाएं आहत हुई।
0: कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा।
3: आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे।
2: कंगना रनौत पर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो और हंगामा हो गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कह दिया कि कंगना रनौत को उनकी पार्टी में ही कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इस पर भी कंगना ने जवाब दिया,
1: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली सम्मान लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं।
2: कंगना ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को फिर से सोशल मीडिया पर ही रिप्लाई किया, लिखा मैंने गूगल किया है, ये लड़का 28 साल का है, ये खुद को स्टूडेंट कैसे बोल रहा है समझ में नहीं आता। हाँ मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूँ लेकिन पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ जी रही हूँ। उसकी उम्र तक आते आते मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। हाँ एक नई सांसद के तौर पर मैं काम के बोझ से अभिभूत हो गई थी क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और उद्यमी भी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो वो कभी नहीं समझ सकता कि किसी भी उम्र में हर समय इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारे मुद्दे निजी हैं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो स्किल्स सीखने से शुरू करते हैं, शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है।
3: वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भोंडे हो जाए ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए।
2: अब सवाल है कि क्या कंगना ये सब कुछ अपनी पार्टी लाइन पर कह रही है या फिर अपने मन से बोल रही है, क्योंकि अगर बीजेपी की भी लाइन यही है तो फिर पूरे देश में जेनजी 40 करोड़ वोटर हैं, और अगर इस जनरेशन को गटर छाप कहा जाएगा तो यह राजनीतिक रूप से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
4: कंगना रनौत जब सांसद नहीं थी तब भी वो कई बार कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाती थी, लेकिन अब वो बीजेपी की सांसद बन चुकी हैं, जिन जेनजीज के लिए उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिन जेनजीज से उनकी सरकार के दो दो मंत्री नेगोशिएट करते हुए नजर आए। अब उसी आंदोलन में गाली देने वाले युवाओं को गटर छाप, बेशर्म, भद्दा कहना कहीं राजनीतिक तौर पर भारी न पड़ जाए।
2: कंगना ने जेनजी पर जो बोला है उस पर तो अब उन्हें अपनी इंडस्ट्री से भी साथ नहीं मिल रहा। कंगना की बात को सोनू सूद ने खुलकर शर्मनाक कहा है।
5: अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोले, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
2: कंगना को वैसे तो विवादों में रहने की पुरानी आदत है और उन्हें पहले भी बीजेपी की तरफ से कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी भी चुप है क्योंकि कंगना ने सीधे प्रधानमंत्री के लिए आवाज उठाई है। वो जेंजी से जुड़े हर विवाद पर बोल रही हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जब मुंबई में इस प्रदर्शन के दौरान एक अकेली लड़की पुलिस की वैन के आगे खड़ी हो गई थी। इसे ऐसे देखा गया कि जेंजी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये रिया अहिर है जो मुंबई की एक मॉडल है। पहले दो दिन तो उनकी बहुत तारीफ हुई, लेकिन अब जब ये प्रदर्शन खत्म हो गया तो रिया को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया पर उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनकी पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की है।
6: मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। अगर मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं करूंगी तो आपको पता ही है औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। मुझे माफ करना, तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी को बचना चाहिए। ये मैं आपसे पूछती हूँ, पॉलिटिशियंस जो भी ये देख रहे हैं संसद के साथी, कि देखकर मुझे बताएं कि बेटी का रेप होना चाहिए और उसे उसका एंजॉय करना चाहिए, या बेटी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो उसका मुंह कुचल देना चाहिए।
2: और ऐसा किसी एक प्रदर्शनकारी के साथ नहीं हो रहा, कईयों के साथ हो रहा है। कई लोगों को सड़क पर पकड़कर पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और इनके लिए भी कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, जिन प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर आम लोग पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही घटिया और गाली गलौच वाली रील पोस्ट की थी, उन्हें समझना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो तुमको पब्लिक भी डैमेज करेगी। अगर तुमको देश और लीडरशिप से प्रॉब्लम है और तुमने पब्लिकली खूब गंदी गंदी गालियां दी, तो अब उनकी सुनो जो देश से प्यार करते हैं और इस सरकार को वोट की पावर से लेकर आए हैं, क्योंकि बोलने का हक उनको भी है। अब रोने की कोई बात नहीं। तो जिन लोगों को गालियां पड़ रही हैं, जिनसे बदला लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कंगना भी है। कंगना को लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है।
6: मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया

0: कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें एक और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये यू नो एक रिलीजन के ऊपर मैं बोलना ही चाहूंगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियां दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को, तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेंजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है।
1: कंगना रनौत पहले भी कई बार इस तरह के विवादों से घिरी रही हैं। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो किसान आंदोलन के दौरान कंगना के बयान से नाराज थी। किसान आंदोलन और शाहीनबाग प्रदर्शन में शामिल दो बुजुर्ग महिलाओं की फोटो को पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश की हिंसा हुई तो कंगना ने उसे किसान आंदोलन से जोड़ दिया था। कंगना ने कहा था कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसा बांग्लादेश में हुआ। 2024 में संसद सत्र के बाद कंगना ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो।
2: इसी के साथ मुंबई मेट्रो में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मुंबई पुलिस ने फर्जी एमजीएल एपीके से देश भर में साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों को धोखाधड़ी वाली एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया, जिसके जरिए मोबाइल बैंकिंग की गोपनीय जानकारी चोरी कर साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता रहा। फर्जी एपीके फाइल तैयार करने वाले 26 साल के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। इस साइबर अपराध के जरिए अब तक 63 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अनुमान लगाया गया है।
6: 3-7 रोजी एक गुना दाखिल हो गया हुआ था, जिसमें महानगर गैस की तरफ से बोल रहे करके एपीके फाइल्स वगैरह भेज के कंप्लेनेंट का 70,500 रुपीस का फसवनुक किए थे, जिसके ऊपर से डीबी मार्ग का साइबर टीम एंड डिटेक्शन टीम काम कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने एपीके फाइल जो एपीके फाइल क्रिएट किए थे वो आरोपी हमने वेस्ट बंगाल से थाबियत लिया था जुलाई 24 को। सो वो आरोपी की तरफ से हम 10 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप, इसके अलावा उनके पोजेशन से 37,200 विक्टिम का बैंक डिटेल्स एज वेल एज 967 एपीके फाइल्स हमने ताबियत लिए हैं। 3 करोड़ रुपए का अब तक है, 63,69,68,174 रुपए का है ये 92 एपीके फाइल्स से फसवनुक हुआ अमाउंट। यस, मैं नहीं बता सकती हूँ, बट सोशल मीडिया एंड एआईएस।
2: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: स्पोर्ट्स फैंस, ट्यून इन प्रीमियम इज द अल्टीमेट प्लेबुक। From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
8: Lee looks for someone, finds the right someone.
7: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
9: Because people who all watch games, they hear the voice.
7: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी।

लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया ट्वीट, देश भर के छात्रों को बधाई दी। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। लोकसभा में पूरा नहीं हुआ राहुल गांधी का बयान, गृहमंत्री पर आरोपों के बाद आग बबूला हुआ एनडीए, कहा पहले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष अब आगे बोले। राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह ने टोका तोका, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, कहा अगर नेता प्रतिपक्ष के गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जांच करे। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट बताते हुए कहा सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, देश की हर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का वाइस चांसलर। देश के बाहर राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले डर के कारण शाह नहीं आए, यदि फायरिंग का आदेश नहीं दिया तो सदन में नहीं आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी और प्रियंका समेत विपक्ष को करारा जवाब, बोले गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री नहीं देते। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा उनके पूरे वक्तव्य में सिर्फ झूठ और फ्रस्ट्रेशन नजर आया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा जनता उन्हें लगातार पराजय दे रही है, इसीलिए उनके पास झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं बचा। राहुल गांधी की इडियट और अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी का तगड़ा हमला, समित पात्रा बोले नेता विपक्ष ने देश के छात्रों का अपमान किया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 तस्वीरें दिखाई, कहा छात्रों के साथ बर्बरता हुई, संसद ने 500 मीटर दूर भारत के बच्चों को मारा गया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले अमित शाह फोन पर पुलिस वालों से बात कर रहे थे, मैंने खुद देखा। गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ ये सब। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद फिर से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समित पात्रा बोले राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, का हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। समित पात्रा का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस को सिर्फ जेंजी यानी कि गांधी परिवार की चिंता। संसद में राहुल गांधी और निशिकांत दुबे के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द इडियट सदन की कार्यवाही से हटाए गए। राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल। दिल्ली के जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र संगठनों का प्रदर्शन, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग। मुंबई बीएमसी मेयर रितु तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, चेंबूर मामले के बाद चर्चाओं के बाद गार्डन विभाग के अधिकारी सस्पेंड, जिम्मेदारी तय करने के लिए की जा रही है कार्रवाई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली में लंबे विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे, छत्रपति संभाजीनगर में उनके घर पर स्वागत हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी नहीं है, सरकार को उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, वरना जरूरत पड़ने पर फिर से आंदोलन होगा। राजेश खन्ना के मशहूर आशीर्वाद बंगले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मीडिया पर पुराने बंगले को शापित और भूतिया कहने पर रोक। मध्य प्रदेश में 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, राज्य के मंत्रियों ने मुलाकात की, मूंग की 100% खरीद की मांग। तमिलनाडु के सीएम विजय चेन्नई से ओमांथुरार एस्टेट में नंदनम तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आए, मेट्रो में एंट्री करते समय मेट्रो कर्मी भी बड़े खुश थे। नैनीताल के मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ₹1,000 का जुर्माना। आज से शुरू हो रहे हैं सावन मेले को लेकर देशभर में तैयारियां तेज हुई, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, दुम्मा बॉर्डर पर विधिवत द्वीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ हुआ। मेले को लेकर प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम, इस दौरान बंद रही स्पर्श पूजा, सुरक्षा के लिए 11,000 से ज्यादा पुलिस का भी तैनात। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा की दिख रही है रौनक, राजधानी के अलग अलग इलाकों में सज चुके हैं कांवड़ कैंप्स। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकारों ने उकेरी अनोखी कलाकृति, पीपल के पत्तों पर बनाई महर्षि वेदव्यास की तस्वीर, गुरु शिष्य परंपरा का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा पर साई के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषणों को चढ़ाया। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सूरज सुदर्शन ने बनाई रेत की अद्भुत तस्वीर, बाघ संरक्षण का संदेश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नाममार्ग क्षेत्र में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, जनजीवन अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांव में आ गई अचानक से बाढ़, लोगों में दहशत, एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश, प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी, कई क्लबों संस्थानों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान।
असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी है भारतीय एथलीट, लोगों का राहत सामान पहुंचा रही है हिमा दास, सावधानी बरतने की भी अपील। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुश नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड के कारण प्रज्ञा जल स्तर फंसे हुए शख्स को बचाया गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़ गए हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, चारधाम यात्रा पर आज के लिए भी रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, घरों तक पहुंच गया अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, घरों में घुस गया पानी, सड़कें नाले में तब्दील हुई, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें सैलाब बन गई हैं, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, घरों में भी घुस गया बारिश का पानी। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हो गई है बाधित, पुलिस ने जागतियाल से मिंचरियल जाने वाले यात्रियों को जारी कर दी है एडवाइजरी। मुतिहारी में परीक्षा में नकल करते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार, चप्पल में छुपाकर लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूट्यूब से सीखा था तरीका। मेरठ में नाम बदलकर दोस्ती करने वाले युवती के परिजनों ने पिटाई कर डाली, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से बचकर सोसाइटी में घुसा चोर, सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सौंपा। कोटा में भी सड़क पर स्कूटी सवार युवक पर 4 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोला, पुलिस जवानों ने बचाई उसकी जान, चाकू समेत मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे बदमाश परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में उफनती हुई सरयू नदी के बीच जा बैठा नशे में धुत शख्स, ग्राम प्रधान ने बचाई युवक की जान, पुलिस एक्ट के तहत कटा चालान। झांसी में चालक को झपकिया जाने के बाद यात्रियों से भरी हुई बस की डंपर से टक्कर हुई, चालक समेत 2 की मौत, करीब 40 लोग घायल। इंदौर में चोरी के शक में 2 युवकों को दी गई तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर बेल्ट और लाख घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। पश्चिम बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, बीरभूम में कारोबारी के घर से करोड़ों की नकदी और 15 किलो सोने को जब्त किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। बेगूसराय में जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग में 4 लोग घायल हुए, भीड़ ने बदमाशों की पिटाई कर डाली, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 3 25,000 के नामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके शव को फेंका, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राज्य कर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगता हुआ नजर आया। भीड़ में आईटीआई परिसर में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने के बाद हड़कंप, पॉक्स को मामले में केस दर्ज। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, साफ सफाई में गंभीर खामियों पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंस रद्द किए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के गुलवीर सिंह ने लहराया तिरंगा, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं गुलवीर सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 10,000 मीटर दौड़ में ये पहला भारत का पदक। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता है सिल्वर मेडल, 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो का उठाया वजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले हरजिंदर कौर और गुलबीर सिंह को बधाई दी। भारत ने अब तक 2 गोल्ड और 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 12 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार खत्म हुआ, आज रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया है ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीदे हैं राइट्स। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा की गई है, श्रीमद भगवतम पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज, रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म का रिलीज का रास्ता साफ हुआ है, फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अमित राय की फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना रिलीज, 7 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म। अगस्त से चाय खाने पीने के सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कपड़े महंगे होने की आशंकाएं हैं, लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियां त्योहारी सीजन से पहले 8% तक बढ़ाएंगी दाम। मई तक गोल्ड लोन 105% से बढ़कर 5.1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, आरबीआई की बार बार चेतावनी के बावजूद सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का चलन तेजी से बढ़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका जताई, डॉलर की मजबूती और हाई बॉन्ड यील्ड से सोने की चमक पर बढ़ गया है दबाव। लोन
लोन साइकिल्स के सर्वे में शामिल दो तिहाई यूजर्स ने E20 पेट्रोल से माइलेज घटने का दावा किया है। सरकार ने ऑटो इंडस्ट्रीज ने तय मानकों और इंजन को E20 पेट्रोल से नुकसान न होने की बात कही है। वर्किंग आवर्स का सही रिकॉर्ड न रखने पर फ्रांस के लेबर डिपार्टमेंट ने इंफोसिस पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इराक में मौजूद खताए हिजबुल्ला संगठन की हमलों के बाद चेतावनी का अमेरिका और सऊदी अरब को देंगे कड़ा जवाब। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया जा सकता है हमला। ईरान को लेकर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान को हथियार बेचेगा चीन, करीब 400 मैनपैड सिस्टम खरीदेगा ईरान। जॉर्डन पर ईरानी हमले की तस्वीरें सामने आ गई, अमेरिकी एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना, ईरान ने किया था हमला। IRGC ने कहा जब तक ईरान के हितों के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाइयां और धमकियां जारी रहेंगी ऐसे ही हम हमले करते रहेंगे। यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची की दो टूक, कहा ईरानी नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं होगा, नुकसान की होनी चाहिए भरपाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यमन के हुती विद्रोही दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं, चीन के जहाजों को हुती के प्रस्तावित टैक्स सिस्टम से मिल सकती है छूट। यूक्रेनी सेना का रूस के कई इलाकों पर बड़ा ड्रोन हमला, रूस के पम और रियाजान और साथ ही तगान रोक शहरों की तेल रिफाइनरीज और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने गजा और दीर अल बलाह इलाकों पर किया बड़ा हमला, इजरायली सेना के मुताबिक हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था हमला। रूस ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के फाउंडर को वांटेड लिस्ट में डाला है, पावेल दुरो पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए, केस दर्ज FB हो सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान समेत दुनिया भर के देशों को दिए चेतावनी, कहा ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश के लिए कोई जगह नहीं है। जापान में आए भूकंप में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है, मंगलवार को देर से आए भूकंप के बाद अब तक देश के अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए हैं 100 से ज्यादा झटके।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर युवाओं का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने सड़क से संसद तक पूरी व्यवस्था को हिला दिया। लेकिन अब ये मामला सिर्फ सड़कों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, ये अब कानून, राजनीति और संसद के भीतर एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले चुका है। मामला दो हिस्सों में बट गया है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो, और दूसरा, पेपर लीक रोकने के लिए संसद में चल रहा संग्राम। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक कड़ा नोटिस जारी किया है और आंदोलन में अभद्र भाषा वाले वीडियोस का जिक्र किया। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ इन वीडियोस को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं, बल्कि एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी कुंडली मांगी है, यानी अकाउंट्स किसके नाम पर है, आईपी एड्रेस क्या है, कब कब लॉग इन हुआ, कब कब लॉकआउट हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आलोचना करना अपराध है? जवाब बहुत साफ है। हमारा संविधान हर नागरिक को सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार देता है। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों ने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था पर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाए, जो उनका अधिकार था। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को गाली देना, अश्लीलता फैलाने की इजाजत नहीं देता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत जेनजी पीढ़ी को जेनरेशन गटर कह रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरी पीढ़ी को कंगना रनौत गटर कह देंगे? और यहां सवाल ये भी है कि आखिर ये भाषा आ कहां से रही है? क्या फिल्मों, ओटीटी, सोशल मीडिया में परोसी जाने वाली गालियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इस देश में गालियों का नॉर्मलाइजेशन नहीं हो चुका है? टीवी से लेकर मोबाइल तक जेन जी की जिस भाषा पर सवाल उठ रहे थे, आज वही भाषा और शब्द देश की संसद तक पहुंच चुके हैं। संसद के भीतर नेता एक दूसरे के खिलाफ डेलुलू, एमआईए, फोमो, यहां तक कि कुचुपुचू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब आज संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए बोल दिया, बसते गुना हुईया। आज आपको इस आंदोलन से जुड़े सवाल, संसद के बवाल के बारे में विस्तार से बताएंगे और इन शब्दों के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम बताना चाहते हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए जिनमें आपत्तिजनक, अभद्र, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब यही मामला कानूनी रूप से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है। पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि जिन पोस्ट और वीडियोज की शिकायत हुई है उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए ताकि वो आगे और शेयर ना हो। हालांकि यहां कार्रवाई सिर्फ इन पोस्ट को हटाने तक सीमित नहीं है। पुलिस ने एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी मांगी है जिनसे ये वीडियोस या पोस्ट अपलोड किए गए थे। यानी अब इस सोशल मीडिया कंपनी को, जांच एजेंसियों को यह बताना होगा कि ये अकाउंट किसके नाम पर बने थे, उनको पता क्या है, उनसे जुड़ी ईमेल्स आईडी क्या है और इन अकाउंट्स में कब कब लॉग इन और लॉग आउट हुआ है। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि पुलिस ये बता सके और पता लगा सके कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियोस किसने बनाए, किसने अपलोड किया, किसने उन्हें फैलाया और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किन किन समय पर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से यह भी कहा है कि अगर उसके पास जांच में मदद करने वाली कोई भी अतिरिक्त या नई जानकारी हो तो वो उसे दिल्ली पुलिस के साथ जरूर शेयर करे। सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस सिर्फ इन वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि इन प्लेटफॉर्म से कह रही है कि इन पोस्ट, वीडियो, इनसे जुड़ी सभी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए। तो फिर मंशा क्या है? इस नोटिस के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाकई में ऐसे डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकती है या क्या ऐसा कानूनी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? आने वाले वक्त में क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी शिकायत के आधार पर पुलिस को शुरुआती जांच में ये सारे वीडियो जो है वो अपराध के तौर पर नजर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉक, आईपी एड्रेस, दूसरे डिजिटल सबूत जुटाकर जांच पुलिस कर सकती है। यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है तो फिर इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला क्यों ना माना जाए। तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय संविधान और कानून दोनों में मौजूद है। भारत का संविधान कहता है कि देश में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करना अपराध नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों का विरोध करना, अपनी असहमति दर्ज कराना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जंतर मंतर के आंदोलन में भी हजारों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, व्यवस्था में सुधार की मांग की और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से किया गया और ऐसी आलोचना पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। किसी को गाली देने, अपमानित करने, जानबूझकर अश्लील अभद्र वीडियो फैलाने की असीमित छूट नहीं देता है। अगर जांच एजेंसियों को यह लगता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपमानजनक भाषा, गालियों का वीडियो बनाकर इस्तेमाल किया, उसे फैलाया, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया या कानून का उल्लंघन करने के मकसद से ये सब किया, तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पक्ष भी है। यह आंदोलन और ये सवाल आंदोलन के दौरान भी लगातार उठ रहा था कि जब आंदोलन का मूल मुद्दा पेपर लीक है, परीक्षा व्यवस्था है, शिक्षा सुधार है, तो फिर ऐसे में सही मुद्दों को उठाने के लिए गालियों का इस्तेमाल क्यों किया गया और ऐसे कौन कौन से रीलबाज वहां पर आए थे जो सिर्फ गाली देने के लिए पहुंचे थे। आखिर उनको क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को गालियां दे देने से क्या यह पूरा आंदोलन उनके चाहे वाले निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकता था? बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो इस सवाल पर हमें यहां दो तस्वीरें साफ दिखाई देती है। पहली तस्वीर यह है कि आंदोलन में शामिल कई छात्रों, युवाओं ने पूरी गरिमा के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की, समाधान सुझाए। हमने आपको बताया कि सुझाव पेटी में 1800 से अधिक सुझाव लिखकर जमा किए गए थे। ये इस बात का प्रमाण था कि बड़ी संख्या में छात्र व्यवस्था में सुधार चाहते थे। वो अराजकता नहीं चाहते, वो तो शिक्षा में बराबरी की बात कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है, इस आंदोलन में आए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुद्दे से ध्यान हटाकर गाली गलौज, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो बनाए गए जिनकी भाषा इतनी अभद्र थी कि उन्हें टीवी पर आपको दिखाना भी संभव नहीं। आज यहां बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बात करना भी जरूरी है क्योंकि उनके एक बयान पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गालियों वाले वीडियो सामने आए हैं उन्हें लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज की जेन जी पीढ़ी जेनरेशन जी नहीं बल्कि जेनरेशन गटर बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर गालियां देने, अश्लीलता फैलाने, प्रदर्शन करने में सबसे आगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली गलौज करना गलत है और कई ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं। और ये खबर भी हम तब आपको दिखा रहे हैं जब बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल कंप्लेंट की है ऐसे लोगों के खिलाफ। और इन तमाम सोशल जो मीडिया हाउसेज हैं उनसे मांगा है डिटेल और इनको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी एक पीढ़ी को कैसे दे देंगी आप? जो लोग गालियां दे रहे थे वो सभी क्या वहां पर जो जेंजी के लोग आए हुए थे पूरे जेंजी के लोग गालियां दे रहे थे? लाखों ऐसे युवा भी थे। आपने लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया और ये कहा कि वो घर संभालने लायक नहीं रहेंगी। लाखों ऐसे युवा थे वहां जो जंतर मंतर पर सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे। उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया वहां पर और वो अपनी बात कह रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी पीढ़ी को गटर कह दिया आपने? और ये भी तो सोचे कि आज सरकार भी इसी पीढ़ी से बात कर रही है तो सरकार का फायदा पहुंचाने जा रही है या नुकसान पहुंचाने? क्योंकि कंगना रनौत के इस बयान के बाद जबरदस्त गुस्सा उनके खिलाफ कई हलकों से आ रहा है। भाषा की मर्यादा और संयम सिर्फ सिखाने की चीज नहीं है, अपनाने की भी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन युवाओं के नाम संदेश जारी कर रहे हैं। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नए कदम उठा रही है, छात्रों की मांगों पर चर्चा हो रही है और संसद में भी इन मुद्दों पर बहस हो रही है। यानी जिस पीढ़ी की बात आज पूरा देश सुन रहा है, उसी पूरी पीढ़ी को एक अपमानजनक नाम देना, गटर कहना, ये कैसे सही हो सकता है? दिलचस्प बात यह भी है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इन युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उनका कहना था कि उन्हें कॉकरोच कहा गया, इससे उनका अपमान हुआ। तब भी उस शब्द को लेकर पूरे देश में बहस हुई और सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जो सबसे बड़ी गले की फांस बन गई, अब ये गटर लेकर आई है। अब वही सवाल फिर खड़ा हो गया है, तब युवाओं को कॉकरोच कहने पर विवाद हुआ था, आज जनरेशन गटर कहने पर विवाद हो रहा है। यानी बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, अगर हमें गाली देने वाली भाषा गलत लगती है तो फिर किसी पूरी पीढ़ी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं है। इसी वजह से अब यह पूरा मामला राजनीतिक हो गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि कंगना रनौत के बयान से देश के युवाओं का अपमान हुआ है, उनसे इस पर जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि जब बीजेपी खुद कंगना रनौत के हर बयान से सहमत नहीं होती तो वो भी इस बयान को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जनरेशन जी को, जेन जी को जनरेशन गटर नहीं कहा। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिन्होंने आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियां दी और आपत्तिजनक वीडियोस बनाए हैं। सुनिए,
1: आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं, आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
2: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे, हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है।
0: आज अगर भारत के युवाओं को देश के लिए शक्तिपुंज माना जाता है तो इसके पीछे हमारी यही जो जेन जी युवा पीढ़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी हमारे देश में है, आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत की लगभग 35% आबादी जेन जी युवाओं की है, और ऐसे में अगर इस पूरी पीढ़ी को गटर बता दिया जाए तो ये किसी की कीमत पर सही नहीं हो सकता। आज हम कंगना रनौत से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज में गालियां सामान्य बन रही हैं और कुछ युवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा कारण है हमारी फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, जहां कंटेंट के नाम पर गालियों को परोसा जाता है, और ये बात कंगना रनौत तो खुद समझ सकती हैं। साल 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सिमरन। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 10 जगह कैंची चलाई, 10 जगह, 6 जगह गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था जिस पर कैंची चलाई गई थी। इस पूरे विवाद पर हम दो ही बात कहना चाहते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यह गलत है, और कुछ युवाओं की वजह से भारत की पूरी जेन जी पीढ़ी को गटर कहना यह भी उतना ही गलत है और इस पर सबको सोचना चाहिए। अब जरा उस दिन को याद कीजिए जब हजारों युवा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वो वहां किसी नेता के समर्थन में नहीं आए थे, ना उनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा था। वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस देश में शिक्षा, पेपर लीक का मुद्दा राजनीति की भीड़ में खो गया है। उनके पेपर लीक होते हैं, री एग्जाम होता है, मार्क्स आते हैं तो गड़बड़ी रहती है। उस वक्त उनकी मांग बहुत सीधी थी और वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो। लेकिन सोचिए क्या इन मांगों पर हमारी संसद खरी उतरी है। तो आ जाइए आपको दिखाते हैं, दुर्भाग्य से ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है। अब बहस फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटती दिख रही है। इस पर हमला करो, वो इसको गाली दें, ये उसको गाली दो, जिसमें राजनीतिक हंगामा होता है लेकिन जनता के मुद्दे की बात नहीं होती है। आज भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है, कोई पुराने बयान निकाल रहा है, कोई नए आरोप लगा रहा है। इस शोर में बच्चों की बात तो हो ही नहीं रही है, सबसे जरूरी सवाल फिर पीछे छूट रहा है, वो सवाल जिसके लिए बच्चे सड़कों पर उतरे थे, पेपर लीक कैसे रुकेगा, मार्किंग सिस्टम कैसे ठीक होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसद में पुलिस की कार्रवाई, पैलेट गन, सुरक्षा व्यवस्था, दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उठाइए ये मुद्दे, लोकतंत्र में हर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी बहस का केंद्र सिमट गया है और वो असल मुद्दे से भटक गया है, या फिर सबसे पहले उस समस्या पर बात होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर निकले हैं, आंदोलन किया है। आज इस पूरी बहस में एक चीज साफ दिखाई देती है और वो है व्हाट अबाउट री, यानी आपने ये किया, नहीं आपने वो किया, आपकी सरकार में ऐसा हुआ, नहीं आपकी सरकार में ऐसा हुआ। लेकिन इस बहस में छात्र कहीं दिखाई नहीं देते, उनका भविष्य दिखाई नहीं देता, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति फिर से उसी पुराने आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई, शिक्षा सुधार पीछे छूट गया, सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी विपक्ष का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे छात्रों का होगा जिन्होंने ये भरोसा करके आवाज उठाई कि शायद इस बार देश उनकी बात सुनेगा। देखिए
3: कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार मुझे, मारो मारो सर मारो। बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, ये नौबत है, ये नौबत है।
4: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
5: या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है।
6: हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 इयर्स।
7: वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ।
8: छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी।
9: जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था, वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था।
10: सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर। ही डज नॉट हैव द करेज।
0: संसद का मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और आज 29 जुलाई हो चुकी है। हमें लगता है कि इस देश के तमाम युवा आज ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन पर संसद में हमारे नेता, हमारी सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस राजनीति के बीच पेपर लीक के खिलाफ जांच, सजा, जुर्माने को कड़ा बनाने वाला संशोधित जो बिल है वो ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा में जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में गड़बड़ी और चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। देखिए,
11: चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़,
12: काम का पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया,
13: बीजेपी के खाते में
12: प्रभु का पैसा कहाँ गया,
13: बीजेपी के खाते में
12: प्रभु
14: पैसा लूट लिया।
15: इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बीजेपी वाले चुराना ना ले जाए।
16: देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद है, और राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा।
4: कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्यमंत्री और सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा। यानी वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिसका हमने अभी जिक्र किया था। तुम्हारे में ये हमारे में वो।
17: पोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी, यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है तो चलो, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं।
0: आज ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अगुवाई में कांग्रेस के सभी सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और यह आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के 4.5 सालों में 6 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक्स के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस कब तक इस्तीफा देंगे। देखिए,
18: पेपर लीक बंद करो,
19: बंद करो, बंद करो,
18: पेपर लीक बंद करो,
19: बंद करो, बंद करो,
18: पंजाब सरकार हाय हाय
19: हाय हाय हाय हाय,
18: हरजोत बैस को इस्तीफा लो,
19: इस्तीफा लो, इस्तीफा लो,
18: आप सरकार हाय हाय
19: हाय हाय हाय हाय,
18: भगवान की मान माफी मांगो,
19: माफी मांगो, माफी मांगो,
20: पंजाब सरकार मुर्दाबाद,
19: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
20: पंजाब सरकार
19: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
21: 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस, अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक, क्या सजा दी उन गुनहगारों को, चाहे चीटिंग का केस था आपकी बात ही अगर मान ले, लेकिन पूरा देश आज उसको लेकर एकजुट है।
0: संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा, लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों सदनों में शोर शराबा, नारेबाजी, स्थगन की तस्वीरें सामने आई। संसद भवन पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच था। ये वही टिप्पणी है जिसमें कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बिल्किस बानो रेप मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के समर्थन का आरोप लगा रही है।
22: उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस, तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगा। आपने देखे हैं पूरे वीडियोस हैं, और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया, प्रहलाद जोशी जी ने, उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी, तो उनका एक एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है।
0: आज संसद में राहुल गांधी के भाषण पर भी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूरे सिस्टम शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर सवाल उठाए, सुनिए।
23: पहले उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है, उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी, मैंने कहा अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए। सर बट आप सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
1: आप विधेयक में बोले मैं हाउस में ऑर्डर रखूंगा क्या?
2: यू आर नॉट अलाउड इन दैट
23: द मोमेंट आई ओपन माय माउथ द एंटायर ऑपोजिशन स्टार्ट्स टू शाउट
3: शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति इतना ही तो है, फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
23: He is the home minister, sir.
3: सर ये आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं आप बिना
4: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर छात्रों पर युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
0: आज शाम को लगभग 6 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये फिर से पैलेट गन का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।
5: हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
0: सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए।
24: बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए, अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में कुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया, MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे।
25: प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक काम बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 2 से 5 विधेयक अंग बना।
0: और ऐसे लोकसभा में कानून पास हो गया। अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर जेन जी युवाओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा भारत की संसद तक पहुंच गई है, और जो शब्द जेन जी पीढ़ी के युवा अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं उन पर देश के तमाम लोग अब बात कर रहे हैं। इनमें जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जो जेन जी लिंगू है, वो है डेलुलू, जो डेल्यूजनल शब्द से निकला है, और ये शब्द पिछले साल ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल भी हुआ था। डेलुलू शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हकीकत से दूर अपनी ही कल्पना या भ्रम में जी रहा हो। जैसे संसद में सरकार विपक्ष को घेरते हुए ये कह रही है कि विपक्षी दल इस डेलुलू में जी रहे हैं कि इस देश की युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है, वही विपक्ष भी इस शब्द का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार भी डेलुलू में ना रहे कि जेन जी उनके साथ है। दूसरा शब्द है MIA यानी मिसिंग इन एक्शन, इसका मतलब किसी जरूरी मौके पर गायब रहने से होता है, जैसे मीटिंग हो, टीम का सबसे जरूरी मेंबर ही उसमें ना पहुंचे, तो जेन जी पीढ़ी के युवा कहते हैं ही इज MIA, ही इज मिसिंग इन एक्शन, वो एक्शन में नहीं है, गायब है। ये शब्द भी संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से

0: इस्तेमाल हुआ है और क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे इसीलिए एनडीए के सांसद उन्हें अभी एमआईए बता रहे हैं, मिसिंग इन एक्शन। जेंजी वाव का एक और शब्द है फोमो, जिसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट, किसी आयोजन, विरोध प्रदर्शन में सबको जाते हुए देखता है और खुद वहां किसी वजह से नहीं जाता है, उसके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है, यानी वो सोचता है कि उसका ऐसे आयोजन या विरोध प्रदर्शन में जाना जरूरी है। और ये शब्द भी जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हुआ और अब संसद में भी शब्द पहुंच गया। एक और शब्द है कुछ पुछू, और ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है, इसे प्यार जताने या किसी बात का हल्का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर जब जेन जी युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे तब उन्होंने अपील करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसी सूची में एक और शब्द है वास्तेगुना हुईया। ये शब्द भी किसी भाषा या डिक्शनरी से नहीं आया है बल्कि ये शब्द जंतर मंतर के आंदोलन से जेन जी युवाओं को मिला है। दावा है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तब एक लड़की पुलिसकर्मी से कुछ ऐसा कहते हुए सुनी गई जिसका उच्चारण वास्तेगुना हुईया जैसा था। इसके बाद ये शब्द जेन जी युवाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस पर मीम बनाने शुरू कर दिए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेन जी युवाओं ने इस आंदोलन के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि ये शब्द 2025 के एक मशहूर जो वाइन मीम है उससे बना और फिर इस आंदोलन में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये शब्द भी अब संसद पहुंच गए हैं। आज ही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए वास्तेगुना हुईया कहा। जैसे उन्होंने ये कहा संसद में मौजूद सांसद चौंक गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, देखिए।
1: मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
2: अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? काम चले पीएम आवास पर।
3: हम जो दिलुलू के बारे में बोले ना, आप उस दिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है।
4: पुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
1: जहाँ पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
2: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? काम चले गए पीएम आवास पर। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू।
5: डॉक्टर श्री
2: डेलुलू,
5: डेल्यूशन। श्रीकांत जी,
2: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं।
6: अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
3: ये जो नया जेन जी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। yes. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
4: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
0: और अब तफ्तीश की बात, आज हम उस ट्रक की भी बात करना चाहते हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के दौरान जंतर मंतर के पास लाकर खड़ा किया था, क्योंकि इस पर खूब रील सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उस वक्त कई छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दावा किया कि दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ये कहा कि जंतर मंतर के पास टूटी हुई गाड़ी छात्रों को बदनाम करने के लिए रखी गई है, लेकिन आज इस मामले में

0: पुलिस की सफाई आई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरों से भरा ये ट्रक और टूटी हुई गाड़ी किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक सड़क हादसे के मामले में जब्त किया गया था। 16 जुलाई 2026 को यह ट्रक नई दिल्ली इलाके से ईंट पत्थर मिट्टी लेकर जहांगीरपुरी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान नई दिल्ली इलाके में संसद मार्ग थाना क्षेत्र में इसकी एक इको वैन से टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को जब्त किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के मालखाने में जमा करा दिया। अब क्योंकि इस मालखाने में इतने बड़े ट्रक को लंबे समय तक खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए इसमें ट्रक को सुरक्षित रखने के लिए संसद मार्ग थाने के पास जंतर मंतर पर खड़ा किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा है कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि इस ट्रक को जानबूझकर जंतर मंतर या किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के मकसद से रखा गया। पुलिस ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई के संसद मार्च को देखते हुए उसने पहले ही इस ट्रक को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया था, लोगों को उसका पक्ष पता होना चाहिए। देखिए
1: भाई, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं,
0: किसी देश में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, इसका एहसास तब होता है जब धरना प्रदर्शन होते हैं। किसी देश की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है, यह तब पता चलता है जब वो प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनकर उनका समाधान निकालती है। हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र असल में क्या होता है, और जब लोकतंत्र में जनता किसी मुद्दे पर एकजुट होती है तो सरकार उनके हिसाब से फैसले करती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे, जो दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देश का होने का ढोंग तो करता है, समय समय पर उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, यानी भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया सामने आ जाता है। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही है, इसकी झलक आपको उसके कब्जे वाले कश्मीर में दिख जाएगी। पाकिस्तानी सेना इस वक्त वहां के मासूम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से अब तक 80 से ज्यादा मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं। इन मासूमों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वो मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इन मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शाहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना इन मासूम नागरिकों के प्रदर्शन को अपने बूटों तले कुचल रही है। मीरपुर और रावलकोट में तो जैसे पाकिस्तानी सेना को मासूमों के कत्लेआम का आदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कें खून से लाल हैं। पाकिस्तानी सेना लाशों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रही है, यानी एक तरफ वो नागरिकों को मार रही है, दूसरी तरफ अपने करतूत को छिपाने के लिए लाशों को ठिकाने लगा रही है। मासूमों और निहत्थों को मारने के मामले में पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है, और अब एक बार फिर से वो अपने आका मुनीर के कहने पर पीओके में नरसंहार पर उतारू है। 48 घंटे, जानते हैं, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी है।
2: ये देखिए, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है।
3: लगातार फायरिंग जारी है।
2: हमें मारे, ये जालिम, ये जालिम ने मारे।
4: My father has been killed in Ravlakot.
0: पीओके के मासूम नागरिक बहुत छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे थे। पिछले करीब 3 वर्षों से वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली और महंगाई कम करने की बस मांग कर रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। उनकी मांगे पूरी करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार फर्जी चुनाव आयोजित करवाने में लगी और इसी बात से पीओके के नागरिक भड़के हुए हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन फर्जी चुनावों का बहिष्कार किया है और इसी बात से नाराज मुनीर ने पाकिस्तानी सेना से आंदोलनकारियों को कुचलने का आदेश दे दिया और हद तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार पीओके में मारे गए नागरिकों को आतंकी भारत का एक

0: दुश्मन बताकर उनके हत्याओं को जायज ठहरा दिया है। उन्होंने पीओके के पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताया है।
1: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
2: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग ही पाकिस्तान दुश्मन है।
0: सोचिए पाकिस्तान क्या हालात हो गए हैं आज। पाकिस्तान में बिजली, पानी, ऐसी जरूरी, मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, उन्हें मांगने पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही है भारत का एजेंट कहकर। लेकिन सच यही है कि ये चालबाजी पाकिस्तान की पुरानी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तानी सेना नागरिकों की हत्याएं करती है तो पाकिस्तान सरकार उसमें भारत का नाम जोड़कर हत्याओं को जायज ठहरा देती है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तान विरोधी आवाजें उठी थी तब पाकिस्तान सेना ने वहां भयानक जुल्म किए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताकर मार दिया था। 1971 में आजाद होने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने वहां सरकार विरोधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगाया था। पाकिस्तानी सेना ने वहां 30 लाख लोगों को मार डाला, 4 लाख महिलाओं से रेप किए, 30,000 महिलाएं लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना की कैद में जुल्म झेलती हुई मारी गई। आज पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर पाकिस्तानी सेना यही कर रही है। वहां भी सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सेना की बंदूकों का सहारा लिया जा रहा है। 19 जून से और उसके बाद से पाकिस्तानी सेना ने 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें करीब 31 लोग तो पिछले 48 घंटे में मारे गए और ये गिनती अब भी जारी है क्योंकि पीओके में प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं पाकिस्तान में कुचले जा रहे मानवाधिकारों को देख रही हैं या आंखें बंद हैं? क्या वो पाकिस्तान के सूट बूट वाला चेहरा देख रही हैं या फिर उसके खून से सने हाथ? पाकिस्तान के कुछ पत्रकार प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताने वाले पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार से पूछा जा रहा है कि वो पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट मान रही है। भारतीय फंडिंग वाला झूठ आखिर कैसे बोल सकते हैं? कुछ पत्रकारों ने तो आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके की सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है।
3: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है, कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
0: पीओके में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले जिन प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया जा रहा है, आप उन्हें भी देख लीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं। पीओके में हालात ही इस तरह के बना दिए गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं।
4: आगे हम जफराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, ये झूठ है, ये लोग हमें अभी उधर हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इनने हमारी रोड तोड़ दिए, रात आके घरों में छापे मारते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशत गर्द और कलदम करार दे दी है।
5: हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे वर्म के हक के लिए वाल उठा रहे थे। हमें दहशत गर्द कहते हम इन्हें कहाँ से दहशत गर्द नजर आते? दहशत गर्द होते तो हम यहाँ पे बैठे भी होते।
0: खैर आगे बढ़ते हैं। मॉनसून के मौसम में देश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश में कैश के लेन देन में एक परेशानी अक्सर आती है और वो है करेंसी नोट का पानी में भीग जाना। आपके साथ भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर आई होगी कि जेब में रखा नोट भीग जाता है, भूल गए, धोने के लिए दे दिया या बारिश में गए और नोट भीग गए। लेकिन आने वाले वक्त में अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक रहा तो जल्दी ही आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपका कागजी करेंसी नोट जल्दी खराब नहीं

होगा तो क्यों? सरकार जल्दी बाजार में प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल शुरू करने जा रही है। मार्केट में जल्दी ही आपको 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आएंगे, जो कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा टिकाऊ होंगे, लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, फिर चाहे आपने उसे कितनी भी तहों में दबा कर रखा। आरबीआई ट्रायल के तौर पर 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर करेंसी, जिसे प्लास्टिक नोट भी कह सकते हैं, वो मार्केट में उतारेगा। देखा जाए तो करीब 3000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक नोट्स बाजार में उतरने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर ये ट्रायल सफल रहता है और लोग इस नए नोट को अपनाने में रुचि दिखाते हैं, तो आने वाले समय में 50, 100, 200, 500 रुपए के जो नोट है वो भी प्लास्टिक नोट में बदल जाएंगे। लेकिन मार्केट में प्लास्टिक नोट के ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि कागजी नोट बंद होने वाले हैं। कागजी नोट इन प्लास्टिक नोट्स के साथ साथ चलते रहेंगे, और ट्रायल सफल अगर हुआ तो धीरे धीरे प्लास्टिक नोट्स इन कागजी नोटों की जगह लेते जाएंगे, यानी कागजी नोट वैध ही रहेंगे। केंद्र सरकार से इस ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ट्रायल कब से शुरू होगा इसकी तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। प्लास्टिक करेंसी नोट को लॉन्च करने की एक वजह मार्केट में नए जनरेशन के नोट लाना है, जो जल्दी खराब ना होते हो। हालांकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम जिसे प्लास्टिक नोट कह रहे हैं वो दरअसल तकनीकी तौर पर पॉलीमर बैंक नोट है। समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि हर तरह का प्लास्टिक असल में पॉलीमर ही होता है। पॉलीमर बैंक नोट छूने में प्लास्टिक जैसा महसूस होता है, इसीलिए लोग इसे प्लास्टिक नोट कहने लगते हैं। पॉलीमर बैंक नोट बॉप यानी बाई एक्चुअली ओरिएंटेड पॉली प्रोपिलीन, और यही उसका नाम है, और इस नाम के खास तरह के पॉलीमर से बनता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पारदर्शी सुरक्षा होती है, इसे खास तरह की स्याही से छापा जाता है, इसमें विशेष प्रकार के सुरक्षा धागे का इस्तेमाल होता है, इसकी प्रिंटिंग तकनीक कागजी नोट से अलग होती है। यानी पॉलीमर बैंक नोट को कॉपी करके नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है। पॉलीमर बैंक नोट कागजी करेंसी नोट की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी, नमी, गंदगी खराब नहीं होते, आसानी से फटते भी नहीं है, ये लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इसकी छपाई कई सालों में एक बार होती है, यानी छपाई का खर्च भी कम होता है। दुनिया के कई देशों ने पॉलीमर बैंक नोट को या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से अपना लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो पहला देश है जिसने सबसे पहले पॉलीमर बैंक नोट को अपनाया था। 1988 में ही ऑस्ट्रेलिया ने सभी कागजी जो करेंसी नोट है उनको पॉलीमर बैंक नोट में बदल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मालदीव्स, बारबाडोस और ओमान में भी पॉलीमर बैंक नोट चलते हैं। इसके अलावा कुछ देश जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब, मेक्सिको, ब्राजील, इनमें आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखिए तो इस लिस्ट में जल्दी ही भारत भी अब शामिल हो सकता है, जहां फिलहाल 10 और 20 रुपए के मतलब आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स वाले देश में भारत शामिल हो सकता है, क्योंकि 10 और 20 के बैंक नोट्स ट्रायल के लिए मार्केट में आने वाले हैं। पॉलीमर बैंक नोट को बाजार में उतारना आरबीआई के लिए एक चुनौती होगा, और इसकी वजह यह है कि हमारा सारा कैश काउंटिंग सिस्टम कागजी करेंसी नोट के हिसाब से बना हुआ है, और ये हमारे लोगों की आदत से भी जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर कैश काउंटिंग सिस्टम से जुड़ी जो मशीन्स हैं, जैसे एटीएम है, करेंसी काउंटिंग मशीन्स है, अन्य सारे वेंडिंग मशीन्स हैं, उनमें बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये सभी मशीनें अभी कागजी नोटों को गिनने के लिए तैयार की गई हैं। इनमें पॉलीमर नोट जाने पर कुछ खास तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मशीन में काउंटिंग के वक्त नोटों का फिसलना, पॉलीमर नोट कागजी नोट की तुलना में फिसलन ज़्यादा होता है, उनमें फिसलन भरे होते हैं, और ऐसी स्थिति में काउंटिंग में गलती हो सकती है। दूसरा चैलेंज, लोगों की आदत से जुड़ा। अभी तक लोग कागजी नोट इस्तेमाल करते हैं, कागजी नोट चिपकते नहीं हैं, इन्हें कई बार फोल्ड भी किया जाता है, ऐसे फोल्ड करके लोग रख लेते हैं, और सहूलियत के हिसाब से रखा जा सकता है कहीं भी। पॉलीमर बैंक नोट के साथ ऐसा नहीं है, पॉलीमर बैंक नोट फिसलते हैं, कई बार नए नोट आपस में चिपकते हैं, इन्हें फोल्ड करके रखना भी मुश्किल है, आपको इसको संभाल कर रखना। हालांकि ये बैंक नोट के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनको समय के साथ बदला जा सकता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस किसी और का प्रमोशन करवा देती है। नमस्कार।

0: पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एन ओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया, उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर,
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
2: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले न्याय मिलेगा आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
3: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
2: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
3: जब तक जानी पड़ेगी। बट the person who has done this, he has shot our students, he's going to be held accountable today or tomorrow.
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम हैं तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर खाना, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है, हम चाहते हैं
7: अंदर
6: खेल करने धमकी दी जा रही है, चाहता
8: हूँ मुख्य मांगे है की स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
9: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
8: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
10: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
11: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे DIOS के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है, तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
12: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ अपनी हाथ
4: परेशान कर रहे हैं।
12: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए, जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो, तो उसी समय सर को DIOS सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की DM तक पहुँचता है।
8: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें, और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाए और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाए, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: DM कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पार्टियां चुनाव में या तो नौकरी देने का वादा करती हैं या फिर फ्री वाला वादा। कैशबैक और डिस्काउंट वाले विज्ञापनों में अक्सर आपने बड़ी बड़ी छूट देखी होगी, लेकिन जब आप खरीदने शोरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये छूट चुनिंदा और पुराने सामानों पर ही लागू होती है। दिल्ली के महिला वोटर्स भी कुछ ऐसी ही हालत में है इस वक्त, जिनसे बीजेपी ने चुनावों में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा तो किया, इसका ऐलान भी कर दिया गया था। बताया गया कि 17 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ।
7: दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपए महीना देने वाले हैं, कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
5: दिल्ली में वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली जो महिलाएं अपने 2500 रुपए बैंक खाते में आने का इंतजार कर रही थी, उनमें से एक बड़े हिस्से को झटका लग गया है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई के नाम पर असल खेल बदलता दिख रहा है।
10: हमने जो वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे, मगर उसके साथ साथ दिल्ली की जनता को साफ पानी, साफ सड़कें, बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छे स्कूल, टेक एनेबल्ड स्कूल और एआई ड्रिवन एजुकेशन आदि दिल्ली के लोगों को भी देना है। इसलिए प्रारंभिक दौर में आज इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी की गई है कि एक निश्चित सूची की महिलाओं को पहले ये पॉलिसी दी, इस के तहत राशि दी जाए।
5: चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब बताया जा रहा है कि अगर किसी परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है वो भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहानी ये कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने की मीठी किश्त तो जरूर मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। सवाल है क्यों, ये जानने हम दिल्ली के गृह मंत्री के पास पहुंचे, जिन्होंने हमें नियम और शर्तें लागू वाली इस योजना वाले खेल का असल मतलब समझाया।
10: कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हम पहली किश्त राखी पर देने वाले हैं। उसके अनुभव के बाद अपने साधनों को बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार की मदद लेते हुए इसको हम अपने वादे को पूरा करने की और सब तरफ एक्सटेंड करें।
5: तो दिल्ली सरकार पैसे की कमी का हवाला देकर, विकास करने की दलील देकर अपनी तरफ से नियम और शर्तें लागू के कदम का बचाव करती है, और एक दलील ये भी दी जाती है कि जरूरतमंद लोगों को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
13: चुनावों से पहले तमाम वादे थे कि भैया कि हर महिला को मिलेगा, उसको आप कैसा देखें?
14: हर जरूरतमंद महिला को मिलेगा, ये मेरे ख्याल समझती हूँ कि हर जरूरतमंद बहनें इस योजना को, जो जरूरतमंद हो, एक स्पेशल क्लॉज था, जरूरतमंद बहनों तक पहुँचेगा तो ये एक अच्छा है।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर,
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले मैं मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वही बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे? क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई है, मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें, तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम चाहते हैं अंदर
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
8: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं
7: को लेकर? की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज द्वारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी
12: हाथ परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पाने के लिए, जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो, तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
12: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने मचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
13: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माए बहने बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाए, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
14: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
15: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गईं?
16: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
1: पीओके में इस वक्त

0: घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
1: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, जालिमाना अंदाज में नते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शातें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
0: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
2: पास मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे।
0: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जाँच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
3: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
0: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
4: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
0: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले मैं मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए, और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहाँ भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलके धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा थे। हम चाहते हैं
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
8: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
7: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ अपनी
4: हाथ परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए, जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हों तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुँचता है।
7: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर
12: कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने मचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
13: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
14: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
15: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले 1-1.5 साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गईं?
16: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ, जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
1: यूके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्ते कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुरीद की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
17: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
18: पास मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे।
1: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
19: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
1: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
20: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: साल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले यहाँ मिले थे, आपने कहा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपोलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष है, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र, इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया, यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आया, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलके धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम चाहते हैं
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
8: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
7: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स बैठने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे DIOS के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ अपनी हाथ
12: परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए, जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो, तो उसी समय सर को DIOS सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
12: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने मचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, JAAC ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
13: डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
14: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
15: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गईं?
16: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय

0: से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरेन फंडेड है, ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें, या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरेन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी।
1: पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्ते कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
2: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
3: पास मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहाँ से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना, इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला, अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
1: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है, लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
4: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
1: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
5: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया, ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे, सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले मैं मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा बेंच साफ पानी साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलके धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा उनको रोक रहा देखो हम चाहते
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए टंकी सफाई करवाई जाए बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं नहीं जाती हैं।
8: अच्छा इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बात की थी इन समस्याओं को लेकर?
7: बातें की जाती हैं टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं की जाती हैं बातें डांट देते हैं
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स बैठने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे DIOS के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा। फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी
12: हाँ परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो तो उसी समय सर को DIOS सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
12: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: पीओके अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने बचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
13: डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
14: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
15: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गईं?
16: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रो की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
1: पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
17: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
18: मुजफ्फराबाद बैठे हुए बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहाँ से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
1: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
19: मैं आप हजरात को दस बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
1: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
20: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर,
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले मैं मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो वही बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई है, मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें, तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया, उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें, तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा बेंच साफ पानी साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा उनको रोक रहा देखो हम चाहते हैं अंदर
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए टंकी सफाई करवाई जाए बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं नहीं जाती हैं।
8: अच्छा इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं
7: को लेकर? की जाती है टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं की जाती है बातें डांट देते हैं
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी। अठारह सौ छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा। फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी
12: हाथ परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
12: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने मचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
13: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माए बहने बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
14: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
15: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग ही पाकिस्तान दुश्मन।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती

0: पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रोह की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
1: यूके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
2: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कलशातें हुई और 400 से अबव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
3: पास मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
1: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
4: मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
1: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
5: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया, ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे, सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले नया मिनिस्टर, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है, क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वही बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के यूट्यूब वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,77,000 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आया, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब
7: मुख्य मांगे हैं कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
8: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
7: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगें जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी हाँ
4: परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पाने के लिए, जो गलत मुद्दा उठाए या गलत कोई ऐसा किए हों, तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
9: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने बचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
12: एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माए बहने बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाए, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है, यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
13: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
14: नहीं? जी, मेरे नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गईं,
15: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो। तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ, जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें, या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ। दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
1: पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुरीद की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
16: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शातें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
17: पास मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्ले पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
1: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
18: मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
1: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम बदल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
19: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी।

0: पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एमओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया, उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
4: हाँ।
3: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलोजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
4: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
4: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
5: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वही बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
6: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
7: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा देखो। हम चाहते हैं
8: अंदर चाहते
7: हैं दबाव बनाने खेल करने
9: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए, टंकी सफाई करवाई जाए, बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं, नहीं जाती हैं।
10: अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं को लेकर?
9: की जाती है, टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं, की जाती है बातें, डांट देते हैं,
11: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
6: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
12: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
6: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
13: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ, पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी
14: परेशान कर रहे हैं।
13: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए, जो गलत मुद्दा उठाए या गलत कोई ऐसा किए हों, तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
6: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
9: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें, और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
6: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचाया हुआ है। भले ही मुनीर की फौज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा।
1: के अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने बचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, जेएएसी ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
14: डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
1: जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
15: सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, लोग फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या
16: नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
1: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा

0: वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गईं?
1: जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर दो साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरेन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, दो डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरेन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी?
0: पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुरीद की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
2: जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असलाह का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शहादतें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
0: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
3: आज मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे।
0: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
4: मैं आप हजरात को 10 बस तक गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
0: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम बदल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी।
5: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है क्या? आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
0: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे, सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर,
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले न्याय मिलेगा, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे? क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा बेंच साफ पानी साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं जर्जर आया बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलके धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा उनको रोक रहा देखो हम चाहते हैं
7: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए टंकी सफाई करवाई जाए बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं नहीं जाती हैं।
8: अच्छा इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की तीन समस्याओं को लेकर
7: बातें की जाती हैं टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं की जाती हैं बातें डांट देते हैं
9: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
10: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया जिसमें कि बच्चों की मांगें जायज निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा। फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
11: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ पता नहीं किस लिए हम बताओ अपनी
4: हाँ परेशान कर रहे हैं।
11: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो तो उसी समय सर को डीआईओएस सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
12: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पार्टियां चुनाव में या तो नौकरी देने का वादा करती हैं या फिर फ्री वाला वादा। कैशबैक और डिस्काउंट वाले विज्ञापनों में अक्सर आपने बड़ी बड़ी छूट देखी होगी, लेकिन जब आप खरीदने शोरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये छूट चुनिंदा और पुराने सामानों पर ही लागू होती है। दिल्ली के महिला वोटर्स भी कुछ ऐसी ही हालत में है इस वक्त, जिनसे बीजेपी ने चुनावों में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा तो किया, इसका ऐलान भी कर दिया गया था। बताया गया कि 17 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ।
13: दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपए महीना देने वाले हैं, कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
5: दिल्ली में वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली जो महिलाएं अपने 2500 रुपए बैंक खाते में आने का इंतजार कर रही थी, उनमें से एक बड़े हिस्से को झटका लग गया है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई के नाम पर असल खेल बदलता दिख रहा है।
14: हमने जो वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे, मगर उसके साथ साथ दिल्ली की जनता को साफ पानी, साफ सड़कें, बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छे स्कूल, टेक एनेबल्ड स्कूल और एआई ड्रिवन एजुकेशन आदि दिल्ली के लोगों को भी देना है। इसलिए प्रारंभिक दौर में आज इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी की गई है कि एक निश्चित सूची की महिलाओं को पहले ये पॉलिसी दी, इस के तहत राशि दी जाए।
5: चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब बताया जा रहा है कि अगर किसी परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है वो भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहानी ये कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने की मीठी किश्त तो जरूर मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। सवाल है क्यों, ये जानने हम दिल्ली के गृह मंत्री के पास पहुंचे, जिन्होंने हमें नियम और शर्तें लागू वाले इस योजना वाले खेल का असल मतलब समझाया।
14: कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हम पहली किश्त राखी पर देने वाले हैं। उसके अनुभव के बाद अपने साधनों को बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार की मदद लेते हुए इसको हम अपने वादे को पूरा करने की और सब तरफ एक्सटेंड करें।
5: तो दिल्ली सरकार पैसे की कमी का हवाला देकर, विकास करने की दलील देकर अपनी तरफ से नियम और शर्तें लागू के कदम का बचाव करती है, और एक दलील ये भी दी जाती है कि जरूरतमंद लोगों को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
15: चुनावों से पहले तमाम वादे थे कि भैया कि हर महिला को मिलेगा, उसको आप कैसा देखते?
16: हर जरूरतमंद महिला को मिलेगा, ये मेरे ख्याल समझती हूँ कि हर जरूरतमंद बहनें इस योजना को, जो जरूरतमंद हो, एक स्पेशल क्लॉज था, जरूरतमंद बहनों तक पहुंचेगा तो ये एक अच्छा है।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: Wow. Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
18: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
17: More top sports.
19: And he's gonna go! There's the tying goal!
17: And everything in between.
19: This game is over!
17: Upgrade now for the premium listening experience.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: सावन के महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ता है? सावन के महीने में मिल सकते हैं कौन से वरदान, और सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।